0: वरना ताद के लिए कुछ कम न थे करुबियां। यानी इंसान की तखलीक का एक मकसद दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करना मकसूद होता तो उसके लिए फरिश्तों की कोई कमी नहीं, जो हर वक्त उसके इताअत और इबादत में लगे रहते हैं। याद रखिए कि जिन लोगों के दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसास में खुलूस और सोचों में सच्चाई हो, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन इन सब में अल्लाह का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत है।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पालें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।
3: अल्हम्दुलिल्लाह।

شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: समीन, ये मुहावरा आपने जरूर सुना होगा, ना छोड़ बंदे का मुहावरा, यानी जब तक वो अपने मांग को हासिल नहीं कर लेता, अपने ख्वाहिश को नहीं पूरा कर लेता, तब तक वो कोई भी उज़्र कबूल नहीं करने वाला। अरबी जबान की कहावत है, इल्ली यबिनक मा यअज़रक, यानी अगर बंदा ऐसा है जो तुमसे कोई चीज़ हासिल करने का इरादा रखता है तो वो कभी भी तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं, वो अपने ख्वाहिश की तकमील के लिए मुसलसल दबाव डालता रहता है। इल्ली यबिनक मा यअज़रक।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, गिजा सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है बल्कि जिंदगी भरने के लिए भी है। यानी आज हम बात करेंगे बैलेंस्ड डाइट पर, वो गिजा जो जिस्म को ताकत, दिमाग को तवानाई और दिल को खुशी देती है। एक नौजवान जो कि फास्ट फूड पर गुजारा करता था, थकान, चिड़चिड़ापन और वजन उसका ज्यादा होता जा रहा था, मगर जब उसने घर का बना हुआ खाना, सैलड, दाल और फल शुरू किए तो 3 माह में उसकी जो सेहत है वो बेहतर होना शुरू हो गई। जो बैलेंस डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, चिकनाई, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी जो है वो बहुत अहम है। रिसर्च के मुताबिक जिस गिज़ा में सब रंग हों, जैसे कि ग्रीन है, ऑरेंज है, पीला है, सफ़ेद रंग है या सुर्ख रंग है, वो शामिल हों तो सबसे ज़्यादा मुतवाजन गिज़ा मानी जाती है। हर खाने में सब्जी या फल ज़रूर शामिल कीजिए, प्रोसेस्ड फूड कम से कम इस्तेमाल कीजिए और ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता तो लाजम है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। गिज़ा में तवाज़ुन ही सेहत की कुंजी है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, एतदाल बेहतरीन है।

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानी।

0: जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। एक दिन तीलू बंदर अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेज तेज छलांगे लगा रहा था और अपने आप से कह रहा था, जल्दी करो तीलू, जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो, रात होने से पहले घर पहुंचना है, वरना मेरी अम्मी की डांट तो मुझे सुननी ही पड़ेगी। जब वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त के बीच छलांग लगा रहा था, तब अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। तीलू ने आवाज की तरफ ध्यान दिया और इधर उधर देखा, लेकिन उसे तो कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसकी नजर एक गहरे खड्डे पर गई, जहाँ कुछ गिर गया था। उसे कुछ समझ न आया तो उसने पास जाकर देखा, वहाँ एक शेरनी फंसी हुई थी। तीलू ने डरी हुई आवाज से कहा,
1: ये क्या, रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई हो?
0: रानी शेरनी ने कहा, अरे भाई मुझे नहीं पता तीलू भाई, मेरे बच्चे भूखे थे और मैं जल्दी में जा रही थी। इस गड्ढे पर कई पत्ते पड़े हुए थे और जब मैं छलांग मार कर इधर आई तो अचानक से गड्ढे में गिर गई। ये कहकर रानी शेरनी रोने लग गई। तीलू ने कहा, अच्छा आप रोना बंद करें, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। तीलू थोड़ी देर में कहीं से रस्सी ढूंढ कर ले आया और कहा, ये लो रानी शेरनी, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद रानी शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही रानी शेरनी बाहर आई तो तीलू बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं रानी शेरनी उसे अपना खाना ना बना ले। रानी शेरनी ने ये देखा और तीलू से कहा, अरे बंदर भाई, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तीलू ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। रानी शेरनी ने जवाब दिया, हाँ मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मुलाकात होगी। दोनों ने एक दूसरे को अल्लाह हाफिज कहा और अपनी अपनी राह पर चल दिए। कई दिन गुजरते चले गए, इन दोनों की मुलाकात फिर नहीं हुई। फिर एक दिन रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त का एहसान चुकाया। हुआ यूं कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था, जो चुपके से जानवरों का शिकार किया करता था। एक दफा शिकार ढूंढते हुए वो उस दरख्त पर चढ़ गया जहाँ तीलू का बड़ा सा घर था। उस वक्त तीलू बंदर अपने घर की टहनी पर लटका हुआ था और उसकी अम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखा और अपने हाथों पर जबान फेरते हुए कहा, आहा, वाह जी वाह, डाडू चीता, आज तो पार्टी होगी पार्टी। दादू चीता धीरे धीरे आगे बढ़ा और एकदम से तीलू पर हमला करके उसे अपने पंजों में दबोच लिया। चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा, बंदर कहीं के? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाओ, तीलू चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे गिर गया। चीता भी फौरन छलांग मार कर नीचे आया और धीरे धीरे तीलू के पास आते हुए कहा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई बेटा, भागो भागो, अब कितना भाग सकते हो तुम। लेकिन अचानक से चीता रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी शेरनी ने कहा, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं हटूंगी, तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है, ये मेरा दोस्त है और तुमने मेरे दोस्त पे हमला किया है। तीलू मेरा दोस्त है, समझे, एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने चीते को बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुम दबाकर वहां से भाग गया। तीलू बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने तीलू से कहा, अरे नहीं तीलू भाई, ये तो मेरा फर्ज था, एक वक्त ऐसा था जब तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मुझे ये मौका मिला कि मैं उसका कर्ज अदा कर दूं।

तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने दोस्तों को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: दोस्तों,

0: आज हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है बड़ी पिक्चर देखना, पूरी कंट्री या दुनिया की इकोनॉमी को समझना। जैसे एक मुल्क की टोटल इनकम कितनी है, मुल्क में महंगाई क्यों बढ़ती है, लोगों के पास नौकरियां हैं या नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बढ़ रहा है, एक मुल्क कितना पैसा खर्च कर रहा है, एक मुल्क कितना और कैसे उधार ले रहा है, इन सभी चीजों की स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी आसान लफ्जों में कहा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक मुल्क की इकोनॉमी का बर्ड्स आई व्यू है। ये मुल्क के बड़े मसाइल और सॉल्यूशंस के बारे में ऐसी स्टडी तैयार करता है जिससे कि उस मुल्क की ग्रोथ को बढ़ावा मिले। तो आज हमने बात की मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगली मुलाकात में एक और नए इकोनॉमिक टर्म्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेंगे। सुनते रहे एफएम 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्लाह।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के हलके में आपका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। गुज़श्ता हलके में हमारी गुफ्तगू हुई है इंसानी या नफ्सियाती तरबियत के हवाले से, आज के हलके में भी हम इसी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वैसे सामने किराम, आज का हमारा मौजू ये रहेगा कि कुरान जब इंसान की जो इंसानी तरबियत की बात करता है तो दरअसल वो किस तरह का कैरेक्टर पैदा करना चाहता है। इस माना को समझने के लिए चलें सूरह कलम में अस्हाब जन्नत का वाकया समझ लेते हैं। ये लोग अस्हाब जन्नत अपने बाग की फसल समेटने के लिए निकले और आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे कि आज कोई मिस्कीन हमारे बाग में दाखिल न होने पाए, किसी मोहताज को कुछ न मिले। यानी मसला ये हुआ कि उन्होंने खैर का रास्ता बंद करने का फैसला किया। तो फिर जब उनका बाग तबाह हो गया तो उन्होंने खुद इतराफ किया, या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, हाय हमारी बर्बादी, हम ही हद से बढ़ने वाले थे। तो यहाँ एक नहायत गहरा नुक्ता सामने आता है कि तुगयान सिर्फ ये नहीं कि किसी पर बराह रास्त जुल्म कर दे, कभी दूसरों तक पहुंचने वाली खैर को जानबूझकर रोकना भी ज्यादती और तजावुज बन जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ कोई अच्छा काम नहीं किया बल्कि किसी दूसरे के हक, मौका या फायदे के सामने दीवार खड़ी कर दी। तो यही वजह है कि कुरान खैर रोकने वाले इंसान को महज पैसिव नहीं समझता बल्कि उसके रवैये को इत्तेदा यानी हद से तजावुज के साथ जोड़ता है। आज उसकी शक्लें हमारे इदारों, मुआशरों और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी नज़र आ सकती है। कभी कोई अच्छा मंसूबा शुरू होता है लेकिन एक ज़िम्मेदार शख्स सिर्फ इसलिए उसे रोकने लगता है कि मंसूबा उसके नाम से नहीं, अगर यही काम उसके अपने शोबे से निकलता है तो उसे प्रमोट करता, सपोर्ट करता, लेकिन चूँकि कामयाबी किसी और के हिस्से में जा रही है इसलिए वो फाइल रोक देता है। तो ये एक नहायत ख़तरनाक नफ्सियात है। अगर कामयाबी मेरे ज़रिए नहीं आएगी तो कामयाबी आई ही क्यों, यही वो मकाम है जहाँ इंसान जो मिफ्ताहुल खैर यानी खैर की कुंजी बनने के

0: होगा, सब लोग करते हैं, मुझे भी हक है, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ इंसान अगर फौरन रुक जाए, अल्लाह की पनाह ले, तो मामला वहीं ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर वो इस ख्याल को जगह दे दे तो अगला मरहला आता है तज़यीन, यानी गलत काम को खूबसूरत बनाकर दिखाना। फ़र्ज़ कीजिए वरासत का मामला है, एक बहन का शरी हक है, लेकिन भाई के दिल में ख्याल आता है, अरे वो तो अभी छोटी है, मैं ही तो उस पर खर्च करता हूँ, पैसे आखिर इस घर में रहेंगे, मैं उसका भाई हूँ, कोई गैर तो नहीं, पैसे आखिर इसी घर में रहेंगे, मैं उसका भाई हूँ, कोई गैर तो नहीं। ये पहला वसवसा है। अगर वो उसी वक्त अपने आप से कहे नहीं, जो हक अल्लाह ने मुकर्रर किया है वो पूरा हक उसे मिलेगा, तो रास्ता बंद हो गया। लेकिन अगर उसने पहली जस्टिफिकेशन कबूल कर ली तो नफ्स और शैतान अगली दलील देंगे कि तुमने तो उसके लिए इतना किया है, वो इन पैसों का करेगी भी क्या, तुम ज़्यादा समझदार हो, असल फ़ायदा तो उसी का है कि माल तुम्हारे पास रहे। फिर एक मरहले पर गलती गलती महसूस ही नहीं होती, इंसान उसे माकूल समझने लगता है, उसके बाद वो उसे डिफेंड करता है, फिर वही काम रिपीटेड बिहेवियर बन जाता है। और यही वो ख़तरनाक यानी एक रास्ता है जिसकी तरफ कुरान तवज्जो दिलाता है। पहाड़ का उसूल है, चढ़ना मेहनत मांगता है, उतरना आसान होता है। अखलाकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा ही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम ख्वाहिशात से घिरी हुई है, यानी बहुत सी गलत चीज़ें इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक होती हैं, फौरी लज्जत देती हैं, इमीडिएट कंफर्ट देती है, मेहनत नहीं मांगती। इसलिए एक बहुत अहम कुरानी उसूल ये है कि आसान होना इस बात की दलील नहीं कि रास्ता दुरुस्त है। बाज लोग कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन सिर्फ स्मूथनेस हक और बातिल का मेयार नहीं। कभी खैर का रास्ता दुश्वार होता है, कभी बातिल का रास्ता बहुत आसान, कभी सही फैसला फौरी नुकसान देता है, मगर आखिरत और किरदार के एतबार से वही कामयाबी होता है, और कभी गलत फैसला फौरी फ़ायदा देता है, मगर इंसान को अंदर से गिराता चला जाता है। लिहाजा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये काम आसान है या मुश्किल, बल्कि असल सवाल तो ये होना चाहिए कि ये काम अल्लाह के नज़दीक दुरुस्त है या नहीं। क्या मेरे पास वही से इसकी दलील, इसका सबूत मौजूद है या नहीं, क्या यह अदल के मुताबिक है, क्या यह अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर है। कुरान में एक ताबीर आती है, फसनुयस्सिरुहू लिलउसरा, यानी कुछ लोगों के लिए मुश्किल अंजाम की राह आसान कर दी जाती है। ये एक बहुत खौफनाक तसव्वुर है। इंसान बार बार गलती करे, उसके अंदर जो एक गलत काम करने की वजह से जो खौफ है, जो एहसास है, इसको खामोश करता रहे, बार बार हक से मुंह मोड़े, तो आहिस्ता आहिस्ता गलती उसके लिए साइकोलॉजिकली ईजी होने लगती है। पहली दफ़ा झूठ बोलते वक्त दिल तो कांपता है ना, फिर दूसरी बार कम, फिर तीसरी बार और कम, फिर झूठ पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। पहली मरतबा किसी का हक खाते हुए ज़मीन मलामत करता है, फिर इंसान जस्टिफिकेशन बनाता है, फिर एक दिन वही जुल्म उसे नॉर्मल प्रोसीजर लगने लगता है। तो यानी बाज़ औक़ात गुनाह का आसान हो जाना कामयाबी नहीं, ख़तरे की निशानी हो सकती है। इसीलिए कुरान बार बार जहद और मुजाहदा की ज़बान इस्तेमाल करता है, क्योंकि बुलंदी एफर्टलेस नहीं आती, सब्र करना मेहनत है, गुस्से में खामोश रहना मेहनत है, अपना हक होते हुए माफ़ करना कभी मेहनत है, माल होते हुए देना मेहनत है, लोग तारीफ कर रहे हों और तकब्बुर से बचना मेहनत है। और जिस तरह पहाड़ पर चढ़ने वाले को हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, इसी तरह मोमिन को भी अपने नफ्स के हर बड़े फैसले में उसे मोहतात रहना पड़ता है। इसके साथ सामने इकराम चलें रुख करते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो

0: तो दिल इब्लीसी न बने, दिल आदमी रहे, ऐसा दिल जो कहे मैं गलत था और मेरा रब दुरुस्त है। यही उबूदियत है, यही इस्लाह की इब्तिदा है और यही वो दरवाज़ा है जो इंसान को दोबारा बुलंदी की तरफ ले जाता है। प्रोग्राम तफ़हीमुल कुरान के आज के इस हल्के से तकने के मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअस्सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी।
4: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

FM 107. Time check. Time check. जी हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.

0: Alright guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नाजिया आपके साथ, पूरे तीन घंटे आपके साथ रहने वाली हूं। बहुत सारी बातें आज भी है मेरे पास, ऑफ कोर्स दो दिन की छुट्टी के बाद जब हम आते हैं तो बातें तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली जमा हो जाती है। बाय द वे, आप लोगों ने क्या किया दो दिन पूरे जो थे, जो आप और हम, मौका हमें और आपको नहीं मिला कि हम दोनों हम लोग इंटरेक्ट कर सकें, तो इन दो दिनों में आपने क्या किया वो आप मुझे बताइए 666-22-107 पर। और आज का दिन संडे का दिन है, खूबसूरत सा दिन है, 16th of August है, एक नया वीक है, एक नई एनर्जी है, एक नया मौका है कि हम अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने ड्रीम्स के एक कदम और आगे बढ़ जाएं। तो हर रोज़ हमारी कोशिश रहती है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम जो हैं वो आगे बढ़ें। तो बस आज के शो की शुरुआत इसी पॉजिटिविटी, इसी एनर्जी के साथ करेंगे। और हाँ, आपको मेक श्योर करना है कि आपको तीन घंटे मेरे साथ रहना है, यानी 6 से 9 आपका मेरा साथ होगा। आज का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, एंड आई थिंक अराउंड 6:30 या 6:40 के आसपास हम अपना टॉपिक लाएंगे। उसके पहले मौसम का हालचाल होगा, आज के दिन के बारे में जो खास है वो होगी बात, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी सी दो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे होती जाएंगी। तो आज भी हमारा और आपका जो है भरपूर साथ हो सकता है 666-22-107 पर। एंड ऑफ कोर्स आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 443-443-77, तो यहाँ भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स 666 पे तो आप गुड मॉर्निंग के मैसेज, या आपने अपना वीकेंड कैसे स्पेंड किया, या कुछ खास हुआ इस वीकेंड में, या कुछ भी खास नहीं हुआ इस वीकेंड में, या आपने सिर्फ सिंपली यू नो रेस्ट किया, या कुछ अपने पेंडिंग वर्क थे वो कंप्लीट किए, या कुछ और स्पेशल किया, तो मुझे बताइएगा। फिलहाल जो है वो शो का आगाज करते हैं सुबह के असकार के साथ, वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

Alright guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ. It's 6:14 on the clock. तो चलिए मौसम के हालचाल की तरफ आ जाते हैं और आज का मौसम कैसा रहने वाला है. जैसे कल था ऑलमोस्ट वैसा ही रहने वाला है आज भी. तो आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो है 43 डिग्री सेल्सियस. वहीं अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो ये रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस. और अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो करंट ह्यूमिडिटी इज 60% और दिन भर में ह्यूमिडिटी के जो लेवल हैं वो चेंज हो सकते हैं, लिहाजा आपको अपने हाइड्रेशन का खास ख्याल रखना है. इसके अलावा सनराइज हुआ 5:07 पर और सनसेट होगा 6:08 PM पर. हवा की रफ्तार की बात की जाए तो हवा की रफ्तार जो है वो तकरीबन 6 to 22 किलोमीटर पर आर के दरमियान रहने के इम्कान है. वहीं पर यूवी इंडेक्स इज अगेन वेरी हाई, इसीलिए आप बाहर निकलते हैं तो अपने सनस्क्रीन जो हैं वो ज़रूर लगाइए और धूप में ज़्यादा ना रहना पड़े परहेज़ कीजिए, बचिए जितना मैक्सिमम बच सकते हैं. ऐसे तो मुझे पता ही है सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें बाहर जाना है, जो काम करना है वो तो करने ही करना है, उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. बट स्टिल सी क्या आप अपना कितना ख्याल रख सकते हैं,

कितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जस्ट गो फॉर दैट. इसके साथ अब मैं बात करने वाली हूँ आज के दिन के ऑब्जर्वेंसेस के हवाले से. आज है 16th of August. तो मैं देख रही थी बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तो आज के दिन के ऑब्जर्वेंसेस नहीं है, लेकिन हाँ आज है नेशनल टेल अ जोक डे. यानी आज का दिन हंसी और मुस्कुराहट को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है. एक अच्छा जोक मैं समझती हूँ किसी का मूड बना देता है, और एक वर्स जोक किसी का मूड बिगाड़ भी देता है. आज के टाइम में तो लोग जो है ना क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं और कहते हैं अरे ये तो जोक था, मैं तो मजाक कर रहा था. मतलब इस तरह के मजाक जो काफ़ी ज़्यादा हर्टिंग भी होते हैं, उसमें हंसी तो बिल्कुल नहीं आ रही होती है. सिर्फ उस बंदे को हंसी आ रही होती है जो अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है, बाकी जितने लोग हैं वो सब देख ही रहे होते हैं कि ये है क्या. अच्छा तो इस तरह के जोक तो मुझे समझ में नहीं आते, लेकिन हाँ बहरहाल जोक्स डे है तो जोक्स तो आज भी बनते हैं. इसके साथ है नेशनल रोलर कोस्टर डे, और ये ना ये बड़ा हमारी और आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है. जैसे रोलर कोस्टर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे हमारी ज़िंदगी में भी ना कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन हर मोड पर हमें और आपको भरपूर मौका मिल रहा होता है कुछ ना कुछ नया सीखने और अपनाने का. तो चलिए ये दो मुझे लगे जो इम्पोर्टेंट हैं. बाकी एक दो और हैं डेज, बट मुझे लगा कि इन पर बहुत ज़्यादा बात करने का कुछ बन नहीं रहा, तो बस इसलिए मैंने इस पर छोड़ ही दिया कि अभी छोड़ो. अब आ जाते हैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ. तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे मैसेज किया है यूनुस जी ने. गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका वीकेंड, और क्या आज आप अपने काम पे पहुँच चुके हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं, इस ये भी मुझे बताइएगा. इसके साथ हमें है यूसुफ शमीम जी का मैसेज. सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, सारी टीम को अपने सलाम का है, और कहते हैं दुआ है आज का दिन आप सब के लिए स्माइल्स, पॉजिटिव वाइब्स, गुड एनर्जी और खुशियों से भरा हो. आमीन सुमामीन. और हमारी भी आपके लिए दुआएं, और जो आपने लिखा बिल्कुल ठीक, बट मेरा दिल ही नहीं जा मैं इस वाले ऑब्जर्वेंस पर बात करूँ. अच्छा एक और यूसुफ हमारे साथ हैं. नाइस, बैक टू बैक दो यूसुफ के मैसेजेस. सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. इसके अलावा हमें मैसेज किया है, हेलो कहते हैं, इनका नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, पाकिस्तान से AMD लिखा हुआ है. सो थैंक यू सो मच. फजल जी हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको. एंड इसके साथ हमारे पास मैसेज है, इनका नाम हम चेक कर लेते हैं, अली. अली हमें और आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग. सभी सुनने वालों को सलाम कहा है. और यहाँ हैं सत्तार जी, वालेकुम अस्सलाम. उम्मीद कर रहे हैं आप भी खैरियत से होंगे. इसके साथ हमारे पास ये मैसेज है, इनका नाम भी हम चेक करते हैं. एंड इनका नाम है SH. वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, हमारी वीकेंड नहीं होता है. अच्छा जी, चलिए सॉरी अगर आपका वीकेंड नहीं होता, आई एम रियली सॉरी. फिर तो आपका काम, तो ये बताइए दो दिन आपने काम अच्छे से किया, अच्छे से अपने, लेकिन कभी तो छुट्टी होती होगी ना एक दिन. चलिए मानते हैं कि आपको फ्राइडे सैटरडे से मिलता, कोई और दिन मिलता होगा, आई मीन टू से, तो वो मुझे बताइएगा. अच्छा सरफराज जी हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं एंड वेलकम बैक, थैंक यू सो मच. शहजाद अहमद जी हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड ओके गुड मॉर्निंग सिस्टर. और यहाँ पर सऊदी अरेबिया से हमें मैसेज है, इनका नाम है आसिम, और कहते हैं उठ जाए दिल, सुबह हो गई, ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो गया. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ सऊदी अरेबिया में मौसम अच्छा होगा, और आपके आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छे नोट पे हुई होगी. यहाँ सरफराज जी ने मुझसे पूछा आपका वीकेंड कैसा रहा. मेरा वीकेंड तो बहुत अच्छा रहा, इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ मल्टीपल थिंग्स. मैं कह सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें की मैंने, कुछ जैसे हमेशा मेरे पेंडिंग वर्क होते हैं. व्हेन आई से माय पेंडिंग वर्क मींस मुझे अपनी वार्डरोब हमेशा सेट करनी होती है, और वो हमेशा पूरे वीक आप ना ऐसे निकालते रहते हैं, काम जल्दी जल्दी करना है, फिनिश करना है, उतना आपके पास टाइम नहीं होता, तो बहुत मेसी हो जाती है. तो आई मेक श्योर एवरी फ्राइडे मैं अपने वार्डरोब के साथ बैठती हूँ, उसका हाल चाल पूछती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो कितनी परेशान है, मतलब उसमें कितना लोड बढ़ चुका है, कितना मुझे कम करना है, उसका ख्याल करती हूँ, फिर अपना ख्याल करती हूँ, फिर चीज़ों को सॉर्ट करती हूँ. तो इस तरह से ये काम तो मेरा हमेशा ही होता है. सेकंड चीज़ जो मैं हर फ्राइडे मेक श्योर करती हूँ कि मुझे करना है इज़ माय किचन कैबिनेट्स. तो वो काम भी मेरा हमेशा ही होता है कि लेट मी चेक क्या सामान जो है वो कोई चीज़ ख़राब हो रही है या ख़राब होने वाली है या ऑलरेडी एक्सपायर हो

0: चुकी है, वो सारी चीजें मैं देख लूं, क्योंकि बस एक ही दिन होता है ना ठीक तरीके से जहां आप खुद मुखातिब हो रहे होते हैं अपने किचन से एक सही तरीके से, एक सही अंदाज में, वरना आप झटपट चीजें उठा रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं और आप उस तरह से चीजें नहीं देखते ना। चलो फ्रिज में वो सारी चीजें फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो नजर आ जाती हैं और आप देख लेते हैं, लेकिन अदरवाइज जो और आपके स्पाइसेस हैं वो सारे नहीं होते, तो मैं वो काम कर रही होती हूँ। फिर एक और बहुत ही टीडियस टास्क जो मुझे लगता है, जो मुझे जिससे काम से नफरत आती है, वो है लॉन्ड्री का काम। तो वो काम तो चलता है, प्लस आयरन करना। आई हेट दिस वर्क। ये काम मुझे इतना ज़्यादा जहर लगता है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन हाँ करना तो पड़ता है देर सवेर, तो ये काम भी होता है फ्राइडेज में ज़्यादातर। तो मुझे बताइएगा कौन सा ऐसा घर का काम है जिससे आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ है, और इत्तेफाक ऐसा है कि वो काम आपके ऊपर सबसे ज़्यादा आता है। देखो कुछ लोग बर्तन धोने से चिढ़ते हैं, एक टाइम था, वंस अपॉन अ टाइम मुझे भी बहुत नफरत आती थी, बट अभी आई एम सो यूज्ड टू, अभी मुझे लगता है चलो इसमें इतना हेडेक नहीं, बर्तन धो लो। बट आयरन करने के लिए कोई मुझे कह दे तो बस मुझे लगता है उफ क्या हो सकता है, और बस उफ उफ करते करते वो वाली सिचुएशन आ गई है मेरी, मतलब इतना पेंडिंग होता चला जाता है, इतना होता जाता है। तो भाई मैं फ्राइडे में बकायदा बैठी रहती हूँ, आधा दिन मेरा, आधे से ज़्यादा दिन इन चीज़ों में जाता है, और बचा कुचा टाइम फिर क्या होता है कि कहीं किसी ने आपको इन्वाइट कर रखा है तो वो डिनर्स हो जाते हैं आपके, या फिर ग्रॉसरीज। आई डू ऑलवेज, आई ट्राई टू यू नो डू इट ऑन फ्राइडेज़ या फिर सैटरडेज़, में भी बहुत कम बट फ्राइडेज़ में होता है। तो फ्राइडे मेरे लिए बहुत ही हैक्टिक डे होता है, सैटरडे मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही होती हूँ, एंड इवनिंग्स मैंने आपको बताया कि वो इंट्रैक्शन अपने दोस्तों के साथ मिलना, आना जाना एंड लाइक दैट, तो बहुत ही अच्छा। लेकिन जब ये सारे काम आप कर लेते हैं ना तो आपको बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कितना बड़ा बोझ था ना वो आपका हल्का हो गया। तो बस इस तरह के जो छोटे छोटे काम हैं जो हमारे जो है ना वो कलेक्ट होते चले जाते हैं, पूरे वीक हम उस तरह से नहीं करते, अगर हम अपने आप को उस तरह से वो प्रिपेयर करके रखें और अपना काम रोज़ के रोज़ हाथ के हाथ या लाइक तीन दिन में कर लें तो आसान हो जाता है। ये तो मुझे भी समझ में आया और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को फॉलो कर पाऊँ। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी मुझे बताइएगा क्या कोई ऐसा घर का काम है जिससे आपको सख्त नफरत है, चिढ़ आती है, जहर लगता है, मुझे बताइए 666-2107 पर। वैसे आज का ये मुद्दा नहीं है, आज का ये टॉपिक नहीं है, वापस आएंगे तो कुछ अपडेट्स और फिर अपना टॉपिक आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे। और तब तक के लिए आपको जुड़े रहना है सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: नूर अला नूरी यहदी अल्लाह लिनूरिहि मन यशा। रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
2: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुताल्लिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तर्तीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
3: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटीरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए

0: लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
1: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
1: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।

0: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
2: Hawa ke jhonke aaj mausamon se uth gaye.
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 to 5 फजील के साथ, फजील के साथ संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
4: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
5: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
4: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
5: हर मंडे सुबह 10 से आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107।
4: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
6: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
7: आज ही राब्ता करें
6: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
8: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ 6:31 ऑन द क्लॉक. और चलिए कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं. और सबसे पहले बात करते हैं कतरपोस्ट की नई मनी ट्रांसफर सर्विस के बारे में. तो कतरपोस्ट ने इंडिया पोस्ट और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ मिलकर कतर से इंडिया पैसे भेजने के लिए एक नई सर्विस लॉन्च की है. और सर्विस का नाम है पोस्ट ट्रांसफर, जो कि UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी पर काम करती है. आपको बताएं कि इससे कतर में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी अपने घर वालों को पैसे आसानी से और भरोसे के साथ भेज सकती है. ये कदम जो है वो कतर और इंडिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को फ़रोग देने के लिए उठाया गया. तो कहा जा सकता है कि कतर पोस्ट ने जो इंडिया पैसे भेजने को और आसान बनाया है, उसके बाद इसका फ़ायदा जो जितने भी यहाँ पे इंडियन एक्सपैट्स रहते हैं उनको मिलेगा. वो अपनी फैमिलीज को बड़ी आसानी से बहुत ही क्विकली एंड मेक श्योर सिक्योरली जो है वो मनी ट्रांसफ़र कर सकेंगे. तो चलिए, ये तो एक अच्छी अपडेट. और इसी अपडेट के साथ एक और अपडेट है, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन की, जो कि कतरी स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली खास करके ये अपडेट जो है वो शेयर की गई है, जहाँ पे 17 प्राइवेट स्कूल्स में 3783 यानी इतनी सीट्स जो हैं वो ऑफ़र की गई हैं कतरी स्टूडेंट्स को. और मैं आपको बताऊं कि स्कीम के तहत हर स्टूडेंट के लिए कतरी रियाल 28,000 जो है वो एजुकेशन वाउचर्स भी दिए जाएंगे. और पेरेंट्स को एडिशनल ट्यूशन फ़ी देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. अब पहली वाली इनकम लिमिट को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम कतरी फैमिलीज जो हैं वो इस इनिशिएटिव के लिए अप्लाई भी कर सकती हैं. और इसका मकसद कहीं ना कहीं फैमिलीज को बेहतर और एक अच्छी एजुकेशनल ऑप्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करना है. तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ कि आपको ट्यूशन फ़ी भी नहीं देनी है, बल्कि एजुकेशनल वाउचर्स भी आपको एडिशनल मिल रहे हैं. और कुछ सीट्स भी जो हैं वो कवर की गई हैं, और कुछ सीट्स जो हैं वो इसके इस अनाउंसमेंट के अंदर आती हैं. तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा. ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिखाता है कि कतर कितना कीन है क्वालिटी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए. तो बहुत ही खूबसूरत सी कोशिश, और ये दोनों अपडेट्स आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर की. और अब आ जाते हैं आज के अपने मुद्दे की तरफ. तो वही आज का जो सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और सिंपल भी है, और आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा उस पर बात बताने के लिए. आज हमने सोचा कि अपने टी टेबल टॉक पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े हुए टॉपिक पे बात करते हैं. आई थिंक आपने और हमने एक लाइन तो सुनी रखी है, वो कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो ये लाइन हमने और आपने सुनी है कि हमें जो है वो किसी को यूं ही एवी एकदम से फर्स्ट इम्प्रेशन के साथ उसके बारे में कोई सच राय नहीं बनानी चाहिए. सोचिए, आप किसी को पहली दफ़ा मिलते हैं तो होता क्या है? क्या आप चंद सेकंड्स में आपके जहन में उस शख्स के बारे में एक तस्वीर बन जाती है? और शायद हो सकता है कि वो इसलिए बन जाती है क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंट लग रहा था, शायद वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था उस जगह में तो आपको लगा कि अरे वाह, ये तो बड़ा ही फ्रेंडली बंदा है. या हो सकता है किसी को आपने पहली बार ऐसे जज किया कि ये तो बड़ा ही सीरियस सा या रूड सा या बहुत ही रिजर्व सा बंदा है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि नहीं, ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है. तो होता यूजुअली ये है कि हम जब पहली मुलाकात किसी से करते हैं, बात करते हैं, तो उस इंसान के चलने का तरीका, बात करने का तरीका, इंटरेक्ट करने का तरीका, स्माइल कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें हम पर बड़ा ही लास्टिंग इम्प्रेशन डालती हैं. और हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक राय अपने जहन में कायम कर लेते हैं, और वो राय जो है वो

0: आती है फर्स्ट इम्प्रेशन, जो हमारा कभी भी किसी को लेकर बनता ही बनता है, जो कि होना भी चाहिए। तो बस आज मैंने सोचा कि इस फर्स्ट इम्प्रेशन पे ही आपसे बात की जाए, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम और आप मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपके बारे में किसी ने बहुत ही अजीब सा फर्स्ट इम्प्रेशन जो था वो बनाया, देन लेटर ऑन पता चला कि नहीं आप तो वैसे हैं ही नहीं, हो सकता है उसने आपको बहुत ही फनी समझा, देन लेटर ऑन उसे पता चला आप तो काफ़ी रिजर्व बंदे हैं, काफ़ी सीरियस टॉपिक्स पर ज़्यादा बात करते हैं, या वाइस वर्सा, या कोई और चीज़। या फिर एक और सवाल जो मेरे जहन में आया अभी के अभी कि आपके ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है। मान लीजिए आपको बनाना ही है, और वो कहा भी जाता है ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन, तो बस आपको फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा डालना है, और कुछ ओकेजन्स हैं या कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वो मैं आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ बहुत मैटर करती है। लेकिन उसके पहले आप मेरे साथ जुड़िए और मुझे बताइए कि आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है उसे बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। किसी भी बंदे की यू नो स्माइल आपको लगता है कि वो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो अच्छा क्रिएट और स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर देती है, या कोई बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है, बात करने या अच्छा तरीके से उसको आता है, तो वो एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेसिंग, एक बहुत ही लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट कर पाता है। या फिर किसी का हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो कि कोई भी टॉपिक निकला और वो धड़ाधड़ बोल रहा है, उसकी नॉलेज इतनी कमाल की है कि आप जो है बहुत चक्कर रह गए, आपको लग रहा है अरे मेरी तो मैं तो इतना कुछ जानता भी नहीं और ये बंदा तो कितना इंटेलिजेंट है। या हो सकता है कि उसका ड्रेसिंग सेंस इतना अमेजिंग हो कि आपके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन बना हो कि अरे वाह कितने अच्छे कपड़े पहनता है, ये तो कितना स्मार्ट लगता है, इसे कितना सेंस है, या कुछ और भी हो सकता है आपके जहन में। बताइए आपके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ एक इस वक्त एक कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ मैं आपके पास हूँ।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शहजादा जी आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है
0: अल्हम्दुलिल्लाह। और शुरुआत हो गई है आपके ऑफिस, मतलब काम की शुरुआत हो गई है, पहुँच गए क्या?
1: जी शुरुआत हो गई है काम की।
0: ये बड़ा बुरा लगता है सम डेज में ना, उतना दिल नहीं लग रहा होता है काम पे।
1: कल का वीकेंड इंडिपेंडेंट डे से ना मिस हो गया।
0: अच्छा आपसे मिस हो गया?
1: हाँ मिस मत तो बोलेंगे तो कोई नहीं था ना, एफएम था हमारे साथ ना और कुछ था, बना रहे थे ना।
0: हाँ हमने कहा चलिए इस बार आपके ऊपर छोड़ा, आप जैसे चाहे मनाए इंडिपेंडेंस डे, 14th वाला भी 15th भी दोनों दिन आपके पास हैं, जैसे चाहे आप अपने स्टाइल में सेलिब्रेट करें। तो कम से कम अपने दोस्तों के साथ मिलके बाहर में कुछ चाय पियोगे, कुछ घूमे घामे, कुछ तो किया होगा इंडिपेंडेंस डे पे? कुछ भी नहीं किया।
1: ड्यूटी पे थे तो अच्छा, बड़ा ड्यूटी पे थे गया, लेकिन आज एक्शन में ना रौनक आ जाएगी, तो आप एक मेरा रिक्वेस्ट सॉन्ग है ना बजा देना, कर्मा का हर कर्म अपना करेंगे।
0: पक्का?
1: हाँ जी आज? जी
0: चलिए अभी मुझे लगा 16th आ गई, अब तो जो गई सो बात गई है।
1: थोड़ा सा तड़का लग जाएगा।
0: अच्छा तड़का लगवा मैं, चलो ठीक है ओके। अच्छा अब बताइए आज का जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन को लेके सवाल है, आपके बारे में लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या सही इम्प्रेशन था, जो लोगों ने आपको पहली बार देखे आपसे मिले तो जो राय बनाई वो सही थी, आपको उन्हें सही करवाना पड़ा कि नहीं भाई आपने जो सोचा मैं वैसा नहीं, मैं तो ऐसा हूँ?
1: फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है ना।
0: क्या ये वाकई होना चाहिए फर्स्ट इम्प्रेशन से लास्ट इम्प्रेशन, और वी नीड टू कीप ऑन चेंजिंग द इम्प्रेशंस, मतलब चेंजिंग आवर थॉट्स?
2: जी आप जब आप अपने आप को किसी को प्रेजेंट करते हो ना, तो अगर आप अपने जॉब के सिलसिले में अगर जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और आप अपने एक सीनियर से एक अच्छे बड़े क्लाइंट के पास जा रहे हो, तो आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड, आपके ड्रेसेस, आपके कपड़े और आपका हैंडशेक, काफी चीजें मैटर करती है।
0: सही कहा।
2: हाँ एंट्री करते हैं ना, डोर को नॉक किया नहीं किया,
0: हाँ, हाँ, सही।
2: और किस तरह से आके बैठा,

0: और यानी वो तुम्हारा एक एक पॉइंट से ना वहाँ पर वो वॉच होता है, इवन फिजिक्स कैमरा रहते हैं, और इसके अलावा फिर फेस टू फेस होने के बाद है ना एक एक अदा पे एक एक आपके मतलब है ना हरकतों पर है ना नजर होती है वहाँ पे। तो आप बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मोमेंट्स होता है, एक इंटरव्यू के बारे में मैंने बताया,
1: बिल्कुल सही काम है।
0: हाँ हाँ, वो भी आप अपने आप को एक मतलब बेस्ट से बेस्ट मतलब प्रेजेंट करने का एक मौका होता है कि मैं किसी तरह मतलब है ना सेलेक्ट हो जाऊं। तो ऐसे से दिए जाते हैं। हाँ, तो आपका जो रिएक्ट करने का जो अंदाज होता है, जो रिप्लाई करने का अंदाज होता है, जो आंसर करने का अंदाज होता है, वो किस तरीके का होता है? क्या वाकई आपने एजुकेशन इतनी हाई एजुकेशन करने के बाद क्या हासिल किया आपने?
1: सही।
0: तो कई लोग बहुत कई लोग बहुत मतलब एकदम हाई एजुकेशन बहुत हाई पे हाई, और जब वो जाके बैठते हैं तो एक अजीब तरीके का उनका मतलब बैठने का एक अजीब मतलब स्टाइल होता है ना, तो सामने वाला एकदम एरिकेट हो जाता है एकदम से। यार एकदम से ना ऐसा। और जब आप एक मतलब बैठने के बाद हैंडशेक करते हैं और आपकी जो स्माइलिंग होती है और आपका जो अंदाज होता है और टोन आपका जो एकदम प्रॉपर जो है मेंटेन होता है, एकदम बैलेंस में होता है बात करने का टोन जो है, तो कई लोग हैं आपको सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और यानी इंटरव्यू तो उस टाइम पे एक्साइट हो जाता है, लेकिन कुछ टॉक टू अबाउट योर सेल्फ उसके बारे में आ जाते हैं बॉस लोग, क्लाइंट्स लोग। हाँ, वो चाहते हैं कि मैं इससे और मतलब यानी बड़ा मजे से मतलब इतना मजा आ रहा होता है जिस तरह आप प्रेजेंट करते हो जो ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हो ना। तो नाजिया जी 3 घंटा नहीं 6 घंटा भी बात करें तो हमारे लिए इनफ नहीं है।
1: अच्छा, बात करते हैं इतना बर्दाश्त नहीं है, तब तक तो आपके कानों से फोन ना निकल है सुन के
0: जब इतना बेस्ट रहता ना आपका जो आवाज है, बात करने का स्टाइल है, और जो आप सबको इतना जो टाइम देते हैं और सब आप सबके लिए ना इक्वल जो आपका जो ये रहता है ना रिस्पॉन्स जो रहता है ना सबके लिए इक्वल रहता है, कोई कैसा भी कॉलर हो।
1: चलिए, थैंक यू सो मच। इसका मतलब मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो अच्छा पड़ा है आप लोगों के ऊपर। लेकिन मैं अपने बारे में आपको एक चीज बताऊं शहजादा जी, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया आप लोगों से, तो खैर मैं ऑन एयर ही ऐसे ऑडियो ऐसे ही बात हो पाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मुझे लेकर बड़ा ही रॉन्ग इम्प्रेशन का बना। मतलब आप समबड़ी एकदम से आके मैं बहुत जल्दी ओपन अप नहीं हो पाती हूँ। फॉर मी टेक सम टाइम, कि थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे मिंगल करने में, समझने में। तो आई लाइक मतलब मैं एकदम से बहुत बात नहीं, आई एम नॉट अ वेरी वेरी फ्रेंडली पर्सन, यू नो, एकदम नई पहुंची और सबसे हाय हेलो करके ऐसे ऐसे कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, और मैं अपना सलाम करके एक साइड में, तो लोगों को लगा कि शी इज़ वेरी प्राउड ही। तो मेरे बारे में ये रॉन्ग इम्प्रेशन था, और ये बहुत टाइम तक मेरे कलीग्स को लगता रहा कि ये तो बहुत ही ऐठू है, बहुत ही प्राउडी है, ये तो ज्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहती, ये किस तरह से है, इसका नेचर है अजीब सा, रिजर्व रहने वाला, एंड ऑल दैट। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे सैफुर रहमान सर ने बुलाया एक बार, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके साथ क्या कोई इश्यू है। आई सेड व्हाट सर, कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, आप बात नहीं करती, लोगों ने बकायदा आपके लिए कंप्लेन की है। सो आई एम लाइक ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या? तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये देखिए चीजें आपको नहीं पता चलती, बट लोग आपको किस तरह से यू नो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दे जज यू दैट वे। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सलाम से आगे भी बढ़ना चाहिए, स्माइल से आगे भी बढ़ना चाहिए, एक दो बात तो कर लेनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ। तो होता है कि हम कभी ना किसी भी शख्स के बारे में गलत इंप्रेशन बना लेते हैं, देन लेटर ऑन हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो वैसा नहीं था, हमने ऐसे सोचा।
0: कई लोग है ना मतलब पेश करते हैं ना, यानी सुनते हैं ना, यहाँ वहाँ से सुनते हैं तो बहुत एकदम रॉन्ग ही ना जजिंग करते हैं, बहुत एकदम रॉन्ग जज करते हैं। जब उनका आमने सामने जब बैठते हैं और चाय पीते हैं साथ में ना, तो वो एकदम एकदम उनको शौक लगता है, यार ये बन रहा है, यार कितना पीसफुल, कितना खुश है यार,
1: है ना?
0: अरे ये तो मैं तो ऐसा कह रहा था।
1: अच्छा, आपने कोई पर्टिकुलरली खुद अपनी राय, अपने मतलब अपना एक्सपीरियंस बताइए कि किसी के बारे

0: अरे मैं वाकई आपने जज किया पहली नजर में सोचा कि ये बंदा ये बंदी ऐसी है और बाद में आप हैरान हो गए कि नहीं मैंने तो बिल्कुल गलत राय कायम की थी. कौन था वो, कोई था ऐसा आपका दोस्त, कोई रिलेटिव या कोई भी हो सकता है? कि कई बार हम अपने अम्मा अब्बा के बारे में एक इम्प्रेशन बना लेते हैं, अरे ये तो हमेशा डांटते ही डांटते, अरे ये तो हमेशा नसीहत ही करते हैं, बट देन वी रियलाइज कि इसमें हर चीज में फैलाई छुपी हुई है. या दोस्त को लेके
1: जी जी मैं बॉम्बे में काम कर रहा था ना जहाँ पर बहुत पहले बहुत बैचलर लाइफ में, तो जिनके पास मैं काम कर रहा था ना तो बॉस के एक भाई थे, तो उनका मतलब है ना जो है कि बहुत मतलब गुस्से वाले एकदम से थे ना.
0: अच्छा.
1: तो हाँ बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे. तो मेरा एक दिन क्या हो गया, एक जगह गाड़ी है ना मतलब ट्रैफिक में मतलब कुछ रॉन्ग मैंने नो एंट्री में किया था, वहाँ गया था तो पता नहीं कहाँ वहाँ पर वो मौजूद थे या आगे थे, उन्होंने देख लिया था गाड़ी, तो उन्होंने आके कन्वेंस कर है ना पुलिस वाले से ना, तो मेरे को सेव किया उन्होंने और बड़े अच्छे से. तो मैं बोला यार ये मोदी को इतना गुस्सा हो रहे थे और तो मेरे फेवर में आके मतलब इतना अच्छे से मतलब है ना मेरे को सेव किया बचाया मतलब.
0: तो
1: यहाँ ऐसा हुआ था ऐसा. और जहाँ मैं हूँ अभी इस वक्त जहाँ मैं काम करता हूँ ना, तो लोग कहाँ से जो सुनते हैं ना तो अजीब अजीब तरह की है ना मतलब बातें करते ऐसे वैसे ये वो जो भी है बहरा है ना. तो जब वो मेरे साथ पहली दफा आए ना तो गए हम यहाँ वहाँ थोड़ा सा उनके साथ काम का वक्त निकाला ना, तो मेरा तो यही रहता है कि कहीं भी कुछ ब्रेकफास्ट करना कुछ हो तो मैं पहला सामने वाले को पहला ये पूछता हूँ ना कि आप क्या देंगे क्या खाएंगे वगैरह वगैरह है ना. तो वो जब ये सब चीजें देखता है ना तो बोलता है यार ये मतलब यार कैसे कैसे लोग है बोले मतलब क्या हो गया कैसे कैसे बोले यार ये सलीम भाई यार क्या क्या बोलते हैं यार ये आप रेडियो पे बात करते हो स्टाइल मारते हो ऐसा वैसा दुनिया भर का है ना. तो मैं बोला आप क्या सोचते हो व्हाट अबाउट थिंग्स व्हाट यू थिंक अबाउट मी. तो यार ये मैं मतलब ऐसे ही है ये सब है.
0: मतलब एकदम से आप कहते हैं जज नहीं करना चाहिए किसी को, थोड़ा सा टाइम लीजिए उससे, थोड़ा सा और एक दो मुलाकात कीजिए फिर कोई राय कायम कीजिए.
1: फिर बाद में रिजल्ट निकलता है एकदम से जो फाइनल रिजल्ट है ना वो इतना जल्दी किसी से नहीं मिल सकता ना जब तक थोड़ा वक्त उसके साथ नहीं गुजारेगी.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही.
1: और एक चीज
0: जी.
1: हमारे लिसनर्स है बेहतरीन लिसनर्स है तो कुछ ऐसी बातें हो गई कल तो उन्होंने मैसेज बैठे थे आप रेडियो पे बता देना जरूर.
0: अच्छा.
1: हाँ तौफीक भाई को तो आप जानते होंगे.
0: हाँ हाँ बहुत अच्छे से.
1: तो असल में क्या हो गया हमारे तौफीक भाई और हमारी जुमेरात से मतलब कांटेक्ट चल रहा था कि हम जुमे से मिलेंगे या सैटरडे को मिलेंगे, उनकी हफ्ते में दो दिन छुट्टी है तो सैटरडे का डन हो गया. सैटरडे का डन हो गया मिलना है और चाय वगैरह पीना है जो भी बहरहाल है. कल उनका एक फोन आया ना तो बहुत दुखी वाली बात है कि वो एयरपोर्ट पे थे उनके वालिद गुजर चुके हैं तो वो पाकिस्तान चलेंगे. तो बोले बता देना. तो मैंने भी बोला कि थोड़ा दिला था दिया. मैं बोला खैर कोई बात नहीं तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको
0: सब्र दे बिल्कुल
1: और आपके वालिद को जन्नत
0: आला मकाम फरमाए इंशाल्लाह.
1: तो ये सैड न्यूज थी. तो उन्होंने कहा था लेकिन फोन पे मतलब बता देना मैं किसी को कॉल नहीं किया हूँ, मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ और मेरे को तुम्हारे पास आना था, मैंने लोकेशन दिया था तो बहरहाल मैं नहीं आ पाऊंगा. तो मैं बोला कोई बात नहीं बस आप पहले जाए आप जाए और तमाम जो जरूरी काम है आपके वो करे फिर इंशाल्लाह मुलाकात तो होते रहेगी.
0: बिल्कुल.
1: तो यानी देखो कितना बेहतरीन उनका ये था कि ऐसे मोमेंट थे उन्होंने इस तरह रिस्पॉन्स दिया ना.
0: हाँ देखिए
1: तो
0: इससे उनकी सिंसियरिटी पता चलती है वो किस तरह के शख्स हैं है ना. कभी हम जो है ना ऐसे ही समझते हैं जैसे मुबीन बुखारी जी, हम उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम ये समझते रहते थे कि ये तो सिर्फ ऐसे ही है, ये तो लाइफ में कुछ सीरियस नहीं है. लेकिन एक बार वो जुड़े और उन्होंने इतने सीरियस टॉपिक पे इतनी सीरियस बात की तो मुझे लगा कि जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था इनको लेकर मुझे उसको आई हैव टू गिव अ सेकेंड थॉट. मतलब हम इनको ऐसे ही समझते हैं कि मजाक हंसी ऐसी फ्रेंडली लाइवली बातें करते हैं बट ही इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन. तो होता है

कुछ लोगों के कुछ छोटे से हम उनकी हैबिट को देख के जज कर लेते हैं एंड दे वी क्रिएट अ काइंड ऑफ इम्प्रेशन. पर चलिए ये बात सुन के बहुत अफसोस हुआ. इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं हम लोग उनसे कनेक्ट होंगे, बात करेंगे.

0: कि आर सेकेंड इम्प्रेशंस मोर इम्पॉर्टेंट दैन फर्स्ट इम्प्रेशंस, आपको क्या लगता है बताइए. मेरे साथ जुड़िए 6662107 पर, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर. फिलहाल एक कॉलर यहाँ पे जुड़ रहे हैं, बात कर लेते हैं. हेलो.
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम.
0: हाय, वेरी गुड मॉर्निंग. कौन है हमारे साथ?
1: मैम, मैं कुमार कुरुंग बोल रहा हूँ. सेकंड बार आपका शेयर मिल रहा है.
0: ओह नाइस नाइस. कुमार जी, कैसे हैं आप? कैसी जा रही है आपकी मॉर्निंग?
1: बस मैम ठीक है. अभी तो परदेश में ऐसे है ना मैम, आप हैप्पी है ने? जरूर है, जो अपना सेहत के लिए हैप्पी होना चाहिए और सबसे मिलना चाहिए. कंपनी का काम ऐसे चलते रहेगा, बस जब तक हम परदेश में रहे तो हैप्पी होना चाहिए.
0: कहीं भी रहिए, खुश रहिए, और खुश रहने से, अच्छा सोचने से परेशानियां जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सलूशन भी मिल जाता है. हम परेशान रहते हैं ना, तो हम उस तरह से उनके सलूशंस भी नहीं ढूंढ पाते. तो खैर चलिए, आई एम ग्लैड कि आप मेरे साथ जुड़े हैं. आज हम बात कर रहे थे फर्स्ट इम्प्रेशन को लेकर. क्या कभी किसी शख्स के बारे में आपने जो सोचा, पहली नज़र में जो आपने सोचा समझा, वो गलत साबित हुआ? दे यू रियलाइज कि नहीं, ये बंदा तो ऐसा है नहीं. जो भी आपने राय कायम की, या आपके बारे में किसी ने कुछ.
1: ऐसे मैम, अभी अभी कोई भी अभी आदमी लोग से, नए नए आदमी लोग से जो मिलता है, दोस्त से मिलता है, कोई भी सोच लो कि परदेश का जगह में थोड़ा हैप्पी होके बोलना पड़ेगा, थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा, सबको साथ में मिलना पड़ेगा मैम. मुझे तो यही लगता है, सबसे मिलना है जरूरी, अच्छा है.
0: इसमें तो मैंने अपना बताया कि मैं लोगों से बहुत ज्यादा, जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, मतलब मैं उतना मिलती नहीं थी. नहीं सलाम, मतलब ग्रीट तो करती थी सबको, लेकिन बहुत ज्यादा मेरी कम्युनिकेशन नहीं होता था. तो बकायदा लोगों को ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ, बहुत प्राउडी हूँ. और ऐसा शिकायत तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये बात मेरी, मैंने जो मेरे बॉस थे उन तक पहुँची. उन्होंने मुझे बुला के कहा कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आप क्यों नहीं लोगों से इंटरेक्ट करती हैं? मुझे लगा अच्छा, ये इतना मैटर करता है लाइफ में. तो जैसे आपने कहा कि आप जब कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, या किसी भी गैदरिंग का, किसी भी इवेंट का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा यू नो स्माइल के साथ कहीं ना कहीं बातचीत को इनिशिएट करें और कम्युनिकेशन का हिस्सा बने. ये आपने बात सही कही, ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस की, इसलिए मैं रिलेट कर पा रही हूँ.
1: जी मैम, इतना मैं थोड़ा मतलब आपसे बोलना तो चाहता हूँ मैम, लेकिन इतना ज्यादा तो मैं भी कभी रेडियो में फोन नहीं किया, सेकंड बार आपसे कॉल लग गया.
0: ओहो थैंक यू जी. चलिए कोई नहीं, आगे भी आप कभी भी आपका दिल चाहे तो कॉल कीजिएगा मुझे, ठीक है? आपने आज भी बहुत अच्छा बोला, और नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि जब मौका मिले आप जुड़े, ठीक है? वेरी नाइस मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय
1: बाय.
0: ऑल राइट, आज दोस्तों बात चल रही है फर्स्ट इम्प्रेशन की. क्या फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, या फिर सेकेंड इम्प्रेशन की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए? एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं. हेलो
2: जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकात.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू.
2: गुड मॉर्निंग टू FM 107 और आपको भी और मुझे भी.
0: क्या नफीस है हमारे साथ?
2: जी नफीस बात
0: है. क्या बात है आपकी, तो आप बहुत ही अलग लेकर आएंगे. मुझे हमेशा लगता है आपके बारे में ऐसा इम्प्रेशन बन गया है, पता नहीं
2: आप लोगों ने ना ये वही फर्स्ट इम्प्रेशन को लेके ना.
0: हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी आपके करियर में बहुत ही गुंजाइश है, बहुत पोटेंशियल है. डोंट थिंक दैट वे.
2: जो सासुर आप पे पड़ा है थोड़ी देर के लिए उसको लेके चलो, तो बस वैसे ही थोड़ा सा कहा कि उसका इतना वो कोई अहमियत ही नहीं होती. साथ रह के आपके साथ ये गलत फहमी हुई है, इसके अलावा भी कई गलत फहमियां दूसरों को होंगी जो आपको पता भी नहीं चल अगर वो जिक्र ना करे तो.
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हमें पता ही नहीं चलते. लेकिन क्या जब एक आदमी कोई भी नया पहली बार आता है तो उसे अपना एक अच्छा इम्प्रेशन डालना चाहिए, या आपने ये भी देखा होगा कुछ लोग झूठा इम्प्रेशन डालते हैं? झूठा इम्प्रेशन ये कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, या वो बहुत ज़्यादा दे आर समबडी यू नो, और बाद में वो पता चलता है अरे ये तो ऐसे ही है, मतलब कुछ भी नहीं है. तो क्या झूठे इम्प्रेशन भी लोग बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ एप्रिसिएशन एंड ऑल दैट?
2: मैं कहता हूँ कि ना को अगर किसी के

0: साथ मुखलिस गाना हो सके
1: हाँ।
0: तो जरूर मुखलिस हो, ये मैंने एक मतलब पहले भी कहा था यार, बंदे को पता होता है मैं क्या हूँ
1: हाँ।
0: तो इसी तरह ना कुछ इम्प्रेशन बनावटी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर ले लो। अब मैं आपके सामने अच्छा बनूंगा, बड़ा डिसेंट है, बड़ा एजुकेटेड है, अब मैं एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया भाई अपने ऊपर, उसकी मुलाकात होगी ना तो इससे भी ज्यादा अच्छा फील करा रहा है। तीसरी मुलाकात होगी तो एजुकेटेड भी जोक रहना, इंग्लिश के चार वर्ड भी याद करने हैं, कहीं पूछ ना ले यार तो नहीं यार बेसिकली मैं कहता हूँ अपने साथ खेल रहे हैं, लाइफ आसान रखें
1: हाँ।
0: और मैं बताऊँ आपको, चलो मजे की बात बताता
1: हूँ।
0: अब मैं हूँ ना, मैं फेस से या ऐसे बैठने से जिस मुलाकात होगी आपसे, किससे मुलाकात हो मेरी तो मतलब ऐसे लगेगा यार भाई को ज्ञान दे दो जितना हो सके, ये सुनने के लिए बैठा है। हालांकि मैं यकीन माने मेरे सुन भी नहीं रहा था तो मेरे प्रेशर समझ रही है कि जब किसी से मिलाऊं तो उसका दिल करता है यार ये तो बड़ा ना बेचारा तालबे इलम है, इसको सुन इसको इसको सिखा दो आज ही जो सिखाना है यार और कंट्रोल भी नहीं रहता आजकल लोगों में, कितना सिखाना है भाई।
1: हाँ सही कह रहे हैं, ये इम्प्रेशन होता है, लोग अपना झाड़ना शुरू करते हैं कि चलो इसको जितना बता सकते हो आज सबके सब सारे सवाल यहीं से।
0: यार आपके साथ हुआ है कभी कसम से बदर अंदर इधर हाथ रहा होता है यार बस करो
1: लेकिन बहुत अच्छा आपने बोला कि आपके बारे में लोगों का ये इम्प्रेशन और आप हंस रहे हैं, देखिए इस चीज को आप एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं दिल में,
0: करना भी नहीं
1: तो आप उनको करेक्ट नहीं करते कि आई नो ऑल दिस, आप इतना क्यों बता रहे हैं मुझे
0: ना ना ना।
1: अच्छा
0: अरे भाई
1: एंजॉय करते रहते हैं,
0: चेक करना चाहिए कितनी देर भाई साहब रिलैक्स होंगे और कितनी देर बाद सुकून करेंगे।
1: नाइस, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात बोली
0: आपने, आप अपने आप के साथ जरा परेशानी नादानी चल रही होती है कि आपके अंदर इतना ज्यादा वो गुबार आया होता है ना
1: हाँ।
0: यार बड़ी ही अजीब बात, मेरे मुनीर था मेरे दोस्त थे और मैं कहता हूँ यंग एज में चले गए, नहीं तो वो अदीबों के अदीब होने थे, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुनीर मेरा दोस्त थे, 33 या 34 ईयर की एज में डेथ हो गई, मुझे मतलब बड़ी चीज उन्होंने सिखाई और बड़ा बचपन गुजरा है उनके साथ, मैंने उनका जिक्र पहले भी किया था, तो वो सूफी जैसे आपने सुना होगा ना सूफी लोग जैसे ना, वो जैसा सूफी था तो यार वो एक बात ना उस टाइम पे कहता था जब समझ नहीं आती होती थी कि और नसीब मुझसे जरा एज का डिफरेंस था, टीचर बड़े थे नमाज वगैरह उन्हीं की वजह से शुरू की या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, हाँ चाहिए क्योंकि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा, वो एक बात कहते थे आलिया, मैं आज उस चीज को फील कर रहा हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ वो कहते थे यार नसीब दुनिया है ना ये स्पेशली पाकिस्तान इसमें ऊपर लेके नीचे तक वो लोग काबज है ना जो फ्रस्ट्रेट हैं यार, मैं सोचा यार क्या ये क्या बात कह रहा है, फिर वो बताता था कि यार फ्रस्ट्रेट इतने हैं जैसे कि अपना क्रिकेट का इंटरेस्ट है आपका
1: थोड़ा बहुत, बहुत हल्का हल्का
0: थोड़ा बहुत फिर समझ आएंगे
1: जी।
0: अब क्लब छोटे क्लबों को भी जो ऑन कर रहे हैं जो कोच कर रहे हैं भला कैसे लोग हैं, और जूनियर को ये नहीं कहेंगे यार ऐसे अच्छा ये करना वेरी गुड, उसको दिन अपने वाकया सुनाने में गुजार देंगे।
1: सही
0: आप अल्लाह करे मेरी बात आप तक पहुंच जाए।
1: हाँ नहीं आपने बहुत सही कहा,
0: अपने वाकया, अरे भाई आपका भाई अपने दौर में बड़ा ही पालर था, अपने दौर में मैंने ऐसे अरे बस कहते तेरा दौर खत्म हो गया भाई माफ कर दे, अगर कुछ तो था किसी और को कहने दे। ये ना इसको आप पूरी दुनिया में पूरी दूसरी फील्ड में भी आप कर सकते हैं, तो मैं 15 साल बाद जब रिटायर्ड हो जाऊंगा ना
1: जी।
0: तो मैं नए बच्चों की जिंदगी अजाब कर दूंगा यार, दिस प्रेशर से मैं कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में, आप इनकी जिंदगी तो अजाब करूंगा, अरे भाई जो मुझे कंप्यूटर चलाना आता था तुम्हें कहाँ आता है।
1: नहीं आपने बहुत अच्छी बात की कि हम जो है यूं ही इस तरह से, और एक लाइन जो आपने स्टार्ट की ना जिससे कि आप अपना एकदम ऑनेस्ट इम्प्रेशन डालें जो आप हैं बस वही, उसमें आप एकदम रिलैक्स रहते हैं ना, आपके ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं, कोई लोड नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आप जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं, वैसे समझ में आ रहे हैं
0: वैसे दिख रहे हैं, और कसम खुदा की लोगों ने एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया
1: ना,
0: अब आपको रहना पड़ेगा ना दिया, अगर आप मेरे सामने एक हाईली पीएचडी इंग्लिश कमेंटेटर इम्प्रेशन डाल दिया आपने फर्स्ट टाइम तो आपको मजबूरी है
1: हाँ।
0: दूसरी मरतबा भी दूसरी मरतबा या उसके बाद भी कभी रिलैक्स रहें जो हैं बल्कि उससे काम भी रहें ज्यादा अच्छा है।

0: हाँ, मैंने आपको बताया ना
1: उससे कम ही
0: सुनने के लिए बैठ जाता हूँ
1: सुनता रहता हूँ, लोग समझते हैं सुनाते रहो, बट मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, आप वाकई बहुत ऑनेस्ट इंसान है और हम सब पे, मुझे इंक्लूडिंग ऑल माय लिसनर्स, हम सब पे आपका यही इंप्रेशन है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं आज की दुनिया में. आज की दुनिया के हिसाब से इतने ऑनेस्ट होते नहीं है लोग जितने आप हैं. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप एकदम क्लियर बात करते हैं, कुछ लगी लिपटी नहीं, कुछ नहीं. सो वी अप्रिशिएट दिस, ऐसे ही रहिए हमेशा. एंड यू आर सच अ नाइस पर्सन, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके. अपना बहुत ख्याल रखिए.
0: थैंक यू, बहुत शुक्रिया.
1: ओके, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज. Alright, दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक और मैं वापस आती हूँ इस टॉपिक पे. हमारा जो डिस्कशन है वो जारी रहेगा.

FM 107. Time check. राइट दोस्तों, वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:04।

0: हाँ जी, वेलकम बैक। और आज सुबह सुबह जो मुद्दा मैंने छेड़ा है वो है आपके फर्स्ट इम्प्रेशन को लेकर, सेकंड इम्प्रेशन के बारे में, लास्ट इम्प्रेशन के बारे में, आपके हमारे एक्सपीरियंस के बारे में। एक्चुअली मैं पूछ ही रही हूँ, क्या इज फर्स्ट इम्प्रेशन ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन, और आर सेकंड इम्प्रेशन मोर इम्पॉर्टेंट? अब आप क्या सोचते हैं, क्या कभी किसी शख्स को आपने तो जज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड देन लेटर ऑन आपको पता चला नहीं ये तो मैंने जो जज किया तो बिल्कुल ही गलत था, या बहुत बाद में पता चलता है कभी किसी के बारे में कह रहे हमने जो राय कायम की थी वो तो बिल्कुल भी सही नहीं थी? तो फिलहाल इसी टॉपिक पर बात हो रही है, मेरे साथ एक यहाँ पर एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? नूर है ना हमारे साथ?
1: जी जी जी।
0: सब कैसी जा रही है आपकी सुबह?
1: आज तो मेरा नहीं होगा, पूरा कतर वाले के सुबह अच्छा जाता होगा, क्योंकि बीचों बीच अगस्त में ऐसा मौसम मैंने 15 सालों में पहली बार देखा, ये बिल्कुल गर्मी नहीं।
0: आज गर्मी नहीं?
1: नहीं, आज तो बहुत अच्छा मौसम है बाहर में।
0: मुझे लगता है आपका दिल का मौसम ज्यादा अच्छा है, कई बार होता ही है। हम खुश हो रहे होते हैं ना तो फिर हमें मौसम कैसा भी अच्छा बहुत लगता है, और अगर हम परेशान है तो बारिश भी कितनी भी अच्छी हो रही है हमें उससे भी चिढ़ हो रही है।
1: आज शायद में बहुत अच्छा मौसम है।
0: अच्छा,
1: सही बोल रहा हूँ?
0: चलिए नाइस। अरे वाह, ओहो, मैं भी अभी थोड़ी देर, अभी तो नहीं 9 बजे बाद मैं भी बाहर टहल के आके देखती हूँ कैसा मौसम है। अच्छा, मुझे कुछ बताएंगे फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में, किसी शख्स के बारे में आपने जो पहली राय अपनी कायम की, देन लेटर ऑन आपको पता चला गया ये तो मैंने बिल्कुल गलत सोच लिया, वो कोई शख्स, उसका नाम भी अगर आप मुझे बताएं, और कैसे आपने पहली राय उनके बारे में कायम की और फिर कैसे आपने खुद को सही किया?
1: मैंने किसी को सलाह दिया कुछ मशवरा।
0: अच्छा।
1: जैसे मैंने उसको जज करना चाहा तो उस आदमी ने मुझे कहा, ये उंगली जो मेरे ऊपर दिखा रहे हो, एक उंगली मेरे ऊपर है, चार उंगली तुम्हारे ऊपर है, पहले खुद को पहले जज करना सीखो फिर दूसरे को जज करो। यही बात है, जब मैं खुद को अपने आप को नहीं जज कर पाया हूँ कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ, तो फिर दूसरे को जज करना पड़ता है मेरे बच्चे में। जिनसे मैं सोचा किसी को जज करना, उसका दिल में क्या है, जज करने का मतलब क्या है कि आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, गलत है सही है, तो वो कैसे मैं परख सकता हूँ? इसलिए मैं बोले खुद को पहले मैं जज कर लूँ, जिस दिन कर लूंगा उस दिन मैं दूसरे के ऊपर मैं गलत और सही का फैसला नहीं करूंगा कि तुम गलत हो या सही।
0: अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, आपके कहने से नूर जी मेरे जहन में आया कि जो लोग अच्छे होते हैं ना, जो दिल के साफ सच्चे अच्छे लोग, वो सामने वालों को भी अच्छा समझते हैं, उनको इनिशियली समझ में नहीं आता शुरू शुरू में कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या बहुत ज़्यादा चलाकियाँ कर सकता है, उसे लगता है कि नहीं जैसा मैं हूँ वैसे सारी दुनिया है, है ना? ये भी एक इम्प्रेशन बन जाता है कि अगर मैं सीधा साधा हूँ, मैं सिंपल सा हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे ही लगेंगे, है ना? ऐसा होता है क्या आपके?
1: मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं जो अपनी राय देता हूँ, मेरा पार्ट, मैं दूसरे के ऊपर एक्सपेक्ट बहुत जल्द कर लेता हूँ, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। पर जब मैं उसके ऊपर मैं बोलता कि तू मेरे ऊपर टच करो, तो उतना ही मतलब कि यकीन नहीं करता जितना मतलब एक दूसरे से इंसान नफरत करता है, मतलब मैं जितना जज करता हूँ इंसान को, मैं इसके ऊपर इतना टच करता हूँ, ये मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहा है, इसमें क्या था, मेरे में क्या बुराई है, मैं कभी कभी ये सोचता रहता हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला, उसने उसको दिया, वो मैंने उससे मांगा वो नहीं दिया, मैंने उसको बोला देखो तुम जो सोच रहे हो ना कि मैंने इसको मतलब इस चलाकी से कोई ठक लिया कुछ, ये तो ऐसा दोबारा मत करना, ये तुम्हारा नुकसान है, अभी मैं दिया बाद में तुम्हें तुमसे मांगा तुम नहीं दिया तो फिर तुम दोबारा मांगे हो, इसमें तुम्हारा नुकसान है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता उससे दोबारा, ये मत सोचो कि मैंने उसको मैं ठक लिया हूँ, ये कभी भी मत ऐसा दिमाग में रखना, ये तुम्हारी वजह से दूसरे आदमी को भी टेस्ट कर जाता है। मैं बहुत जल्द हर इंसान के ऊपर मैं टेस्ट कर लेता हूँ, ये चलो यार अच्छा मेरे जैसा होगा, सीधा साधा भोला वाला।
0: सही कहा, बहुत सही, बिल्कुल बहुत ही वैलिड बात है और सही बात की आपने, जबरदस्त।
1: टेस्ट करना चाहिए, हमें तो एक ही बात है बस, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है जितना उतना यूज करो, जितना चल रहा है वो टेस्ट करना जरूरी है, अल्लाह ताला हम लोग को इतना टेस्ट कर रहा है कि चलो हमारा बंदा है, इतना गुनाह करने के बावजूद भी हम लोग तौबा कर दे तो इतना तो क्या है ना कि अल्लाह ताला माफ कर देता होगा, इसी हिसाब से हम लोग भी बस दूसरे के ऊपर अपना वो करते हैं।
0: आप तो देखिए कितना तो अच्छा बोलते हैं, ऐसे कैसे कहते हैं आपका बोलने का तजुर्बा नहीं, और आपने अपना एग्जांपल देके बताई बात, तो दैट्स नाइस। और आपकी एक बात जो मेरी बहुत समझ में आई कि हम जैसे हैं अक्सर हम दूसरों को भी उस तरह का सोच लेते हैं, मान लेते हैं, ये चीज भी बन जाती है हमारे जहन में। सो थैंक यू वंस अगेन
1: जी। नेपाल जा रहा हूँ।
0: अरे तो आपका पैसा है, आप क्यों नहीं मांगेंगे भाई, ये कौन लोग हैं?
1: इसीलिए तो कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि खुद का पैसा एक भिखारी के जैसे मांगना पड़ रहा है। हाँ। और क्या, देने के लिए एक बार में मैंने दे दिया, मांगने के लिए 10 बार जाना पड़ता है, तो दूसरे के ऊपर सर मेरे को बिल्कुल उखर गया है, फिर भी कर लेता हूँ। चलो क्योंकि
0: नहीं, आप मांगते रहिए, आप बोलिए कि मुझे टिकट लेना है, मुझे तो जाना है, आप मांगते ही रहिए। अभी 10 सितंबर में टाइम है, मांगते रहिए, अच्छा लगे कि बुरा लगे मांगते रहिएगा, ठीक है, जब तक आपको मिलना रहेगा। हाँ भाई, आपकी मेहनत का पैसा है भाई, ऑफ कोर्स। और जब आपने दिया किसी को, उनकी मजबूरी को समझ के उनकी हेल्प की, तो अब आपकी मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे टिकट लेने हैं, मुझे चीजें खरीदनी है फैमिली के लिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मांगते रहिएगा, ठीक है? हाँ, वो मेहनत का सारा मिल जाए, फिर ऊपर से आप भी उधार मांगे लोगों से। क्या मैं चाह रहा हूँ, मुझे दो, मुझे भी पैसा चाहिए।
1: मेरा साथ मांगने का आदमी मौका ही नहीं देता है उधार, वो मेरे से पहले मांग लेता है।
0: अरे देखो, आप बहुत ज्यादा सीधे हैं। आपका इम्प्रेशन लोगों पे ऐसे पड़ा है कि उधार हमेशा ही देगा, जब मांगो ही पैसे दे देगा।
1: की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने पहले मुझे बहुत ऐसा, एक बार मैं आपके साथ एक टॉपिक बयान किया था, मुझे अल्लाह ताला ने अब मांगने वाला नहीं बनाया था, पहले मांगने वाला बनाया था और अभी देने वाला बनाया। मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है,
0: ये बहुत अच्छा काम आपने, सही। चलिए, अल्लाह ताला आपको हमेशा देने वाला ही रखे, ये हमारी दुआ आपके साथ है।

0: अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े. ओके ओके, अल्लाह हाफिज. ओके दोस्तों, यहाँ पर चल रही है बात फर्स्ट इम्प्रेशन को लेके. एक सेंटेंस जो आपने हमेशा ही सुना है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, क्या वाकई आपके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन, या सेकेंड और थर्ड इम्प्रेशंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, या कुछ और इस टॉपिक इस स्टेटमेंट के साथ कुछ आप ऐड करना चाहें, कुछ बताना चाहें, कोई आपका एक्सपीरियंस है तो ज़रूर जुड़िए 6622107 पर, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 4434377 पर. एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
1: हाँ जी,
0: अ वेरी गुड मॉर्निंग गावा जी, कैसे हैं आप?
1: वेरी वेल, एक्सीलेंट मैडम.
0: खूब दावते उड़ाए आपने हाँ वीकेंड्स पर.
1: सरवर मिर्जा ने किया था जी इनवाइट मेरे को.
0: ये तो हो ही नहीं सकता, फिर तो कोई दावत नहीं हुई आपकी.
1: तो वही है मैडम, आप देखिए अभी मेरे सामने दो तीन सिनेरियो आ गए.
0: अच्छा,
1: अभी मैं अगर सरवर मिर्जा को देखता हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन, तो बंदा डेफिनेटली फर्स्ट टाइम इम्प्रेस हो जाता है उनको देख के, उनकी बातें सुन के.
0: अच्छा
1: हाँ, उसके बाद में वो ऐसे धार लगाते हैं ना, ओए
0: फिर आदमी का फर्स्ट इम्प्रेशन गुस्से में बदलना पड़ता है कि नहीं अब हम ये चेंज करेंगे. ये तो है जब फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना उनका, तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये बंदा तो देखो कितना जॉली नेचर का, इतना फ्रेंडली और फन लविंग पर्सन है, और ये जो है मतलब सबके साथ बहुत आसानी से मिंगल करेगा सारी चीज़ें. बट फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि ओहो इसके पीछे भी इनकी कोई स्ट्रैटेजी चल रही है मकसद के तहत, तो फिर आपका अपना इम्प्रेशन.
1: वो आज आ तो गए होंगे, कल वो उनसे मिठाई के बारे में जरूर पूछना मैडम अगर मुलाकात हुई तो.
0: अरे आई बेट आपको अगर मिल जाए कभी. मैं शर्त लगा रही हूँ, मांगते रहिए वो बात अलग है, कभी उन्हें शर्म आ जाए वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ही. इस मामले में आपका इम्प्रेशन जो है ना कि वो खाने पिलाने के शौकीन, वो सिर्फ खाने के हैं, खिलाने के नहीं है, खाने के तो हैं. आप मिठाई दे दें बहुत खुशी खुशी, उनसे कोई मिठाई निकलवा ले, एक पीस एक लड्डू भी निकलवा ले ना उनके फ्रिज से, मैं नाम बदल लूं अपना.
1: चलिए अगर मुलाकात हुई तो जरूर पूछना, मिठाई का पूछना बस, और कुछ नहीं.
0: ठीक है, मैं पूछूंगी, आज ही मिलेंगे, अभी मुझे थोड़ी देर में 9 बजे मिलेंगे तो मैं पूछती हूँ
1: जी. तो नाजिया जी, अच्छा सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कल इंडिपेंडेंस डे था अपना.
0: हाँ यस,
1: 14th को हमारे पाकिस्तान भाइयों का था.
0: जी जी जी.
1: तो मैं जब मैडम कल उठा ना तो मेरे को 2 मैसेज आए हुए थे इंडिपेंडेंस डे के हवाले से.
0: अच्छा.
1: सबसे पहले जो मैसेज थे, और मैडम खुशकिस्मती देखिए वो दोनों बंदे पाकिस्तानी.
0: अरे देखिए, और यही मेरे साथ भी हुआ
1: जी. एक तौफीक भाई, एक वो अपने दूसरे बाजवा जी. सबसे जो पहले मैसेजेस थे इन दोनों के ही थे.
0: देखिए कितनी अच्छी बात है माशाल्लाह
1: जी. और मैं इसी हवाले से दोनों कंट्रीज को बिलेटेड यौमे आजादी और हैप्पी स्वतंत्रता दिवस कहना चाहता हूँ एक बार दोबारा से मैडम.
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी, बिल्कुल. और ये दिन वाकई कहीं ना कहीं हमें और आपको याद दिलाते हैं किस तरह से हमारी कंट्रीज जो हैं वो आज़ादी मिली, और कितनी इम्पोर्टेंट है कि उस आज़ादी को उसी तरह से उसके ओरिजिनल फॉर्म में इंटैक्ट रखा जाए,
1: उसके
0: उस वैल्यूज को कहीं भी किसी भी तरह से डिमिनिश ना होने दिया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. खैर ये तो ऐसा टॉपिक, इस पे बात हम ना ही
1: सेंसिटिव हो सकते. चलिए मैं अभी आता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन वाले टॉपिक पे.
0: जी जी.
1: अच्छा नाजिया मैडम जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है.
0: हाँ बताइए.
1: आपके हिसाब से, आप मेंटलिस्ट साइकोलॉजिस्ट इनको छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई ऐसी मशीन बनी है जो बंदे का दिमाग रीड कर सके?
0: नहीं, नहीं कर सकते.
1: नहीं बनी
0: है ना,
1: और ना ही ये पॉसिबल होगा मैडम.
0: हाँ बिल्कुल, आप नहीं रीड कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है ना, उसके हैंड जेस्चर्स हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, या जिस तरह के वो वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, फर्स्ट टाइम कर रहा है नहीं, जिस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करता है. जैसे नफीस जी ने बहुत अच्छा कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये मैं मानते ही नहीं हूँ, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन में हो सकता है कि आप गलत हो. देखिए कितनी शादियाँ हो जाती हैं, लोग फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट देते हैं, बाद में पता चलता है कि तो बिल्कुल वैसे नहीं थे, है ना.
1: मैं वही आपको बताता हूँ मैडम, फर्स्ट इम्प्रेशन कभी भी नहीं हो सकता मैडम, लास्ट इम्प्रेशन.
0: सही.
1: हमारे ना मैडम वहाँ पे पंजाब में ना, ये आज से 20-25 साल की बात है,

0: बहुत सारे लोग आते थे गांव में, वो क्या बोलते थे घर की जो बुजुर्ग फीमेल्स थी स्पेशली, उनका टारगेट वही रहती थी। वो उनको बोलते थे जो आपका गोल्ड है ना पुराना गोल्ड, हम उसको अच्छी तरह से पॉलिश करके चमका के देंगे। तो फीमेल्स मैडम इंप्रेस हो जाती थी उनकी बातों से कि हमारे गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, साफ सफाई का भी खर्चा बच जाएगा। तो वो जब मैडम साफ करवाती थी फर्स्ट इम्प्रेशन के झांसे में आके, तो बस उनको बाद में ही पता चलता था भी उनके साथ में चूना लग गया,
1: निकाल लिया थोड़ा सा।
0: जी बिल्कुल,
1: ये तो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। वो तो बेचारी बहुत ही सीधे सीधे लोग हैं, अभी तो सब समझते हैं, बड़ी कॉमन प्रैक्टिस। अब कुछ तो मैंने देखा ज्वेलर्स कह भी देते हैं, बता मुंह पे कहते हैं कि देखिए थोड़ा वजन कम हो जाएगा, हम इसका सफाई फाई करेंगे, दैट मींस वो थोड़ा सा निकाल लेंगे उतार लेंगे।
0: नहीं नहीं ऐसा इतना भी नहीं मैडम, नाजिया जी चलता।
1: अच्छा उधर पंजाब में नहीं चलता, हमारी साइड तो बोल देते हैं ज्वेलर्स
0: चलता है, इतना ज्यादा थोड़ा चलता है मैडम। वो तो ऑब्वियस है ना, जब आप पुराना गोल्ड लेके जाओगे उसमें थोड़ी बहुत ही मैल वगैरह ये चीज तो होती है ना मैडम, वो तो कहीं से भी आप करवाओगे। अच्छा मैडम, तो दूसरी एग्जांपल ये है कि आप नहीं मैडम किसी को नहीं जज कर सकते फर्स्ट इम्प्रेशन में। सपोज आप ट्रेवल कर रहे हो किसी रोडवेज की बस में और वो पूरी खचाखच भरी हुई है, और अगर आप उसके कंडक्टर से बात करोगे वो आपको पता है कैसे रिप्लाई आएगा आगे से, शॉर्ट और बहुत जबरदस्त।
1: सही।
0: और इसी सिनेरियो में अगर आप देखोगे मैडम, आप इंडियन रेलवे की रेलवे में ट्रेवल कर रहे हो, आपने सीट कंफर्म है आपकी, तो वही आपके पास टीसी आएगा, कोट पैंट डाला होगा उसने, वो बड़े प्यार से आपसे बात करेगा, भाई अपनी टिकट दिखाइए मेरे को। तो उस टाइम भी आप नहीं जज कर सकते मैडम बंदे को फर्स्ट इम्प्रेशन से।
1: सही कहा, ये बात तो है। अच्छा एक और भी चीज मुझे लगी कि हम कुछ ही लोगों का इम्प्रेशन जो है वो अपने जहन में रखना चाहते हैं, ये भी होता है
0: मैडम,
1: जिनका हम रखना चाहते हैं उनका ही रखना चाहते हैं। अब जैसे आपने कहा बस कंडक्टर का, हो सकता है मैं इम्प्रेशन रखना ही नहीं चाहूँ, मैं उसको नोटिस ही ना करूँ, हो सकता है टीटी को मैंने उतना नोटिस ही नहीं करना क्योंकि मुझे इसका इम्प्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ मुझे जो है गाबा जी के इम्प्रेशन से लेना देना है, इसलिए मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ।
0: बस बात तो वही है ना मैडम, हम लोगों को जितनी नीड है ना, जितना हमारी डिजाइनिंग जिस हिसाब से हम लोगों ने कर रखी है अपने माइंड की,
1: सही
0: तो बिल्कुल ऑब्वियस वही बात है मैडम।
1: हाँ ये तो बात सही कही आपने कि हमें जैसी जरूरत है हम वैसा सोचते हैं, और एक्चुअली हम जैसे हैं ना, जैसा हम सोचना चाहते हैं ना किसी के बारे में वैसे ही सोच लेते हैं, वो राय हम कायम करते हो। कई बार आप देखिए कितना भी आप एक्सप्लेन कर ले, अगर उस बंदे की आपको लेकर राय अच्छी नहीं है तो वो बहुत लंबे अरसे तक नहीं रहेगी, भले से आप बहुत बीच बीच में अपने आप को क्लैरिफाई भी कर रहे हो एक्सप्लेन भी कर रहे हो, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वो वैसे ही राय के साथ चलता है।
0: एक्चुअली नाजिया जी चक्कर पता क्या है, मैं ना अपनी सहूलत के हिसाब से राय बनाता हूँ अपने दिमाग में भी।
1: हाँ ये पॉइंट बहुत ही सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत सही।
0: और मैडम एक बात और याद आ गई,
1: हाँ।
0: कभी भी मैडम किसी को किसी के आज के टाइम पे देख के उसको कभी भी कम मत समझो, भी बंदा आगे आने वाले समय में ऐसा ही रहेगा। मैं मैडम एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप सर्च जरूर करना, जो सरसों का पेड़ होता है ना मैडम
1: जी,
0: और बरगद के पेड़ को बेनियन ट्री बोलते हैं ना,
1: हाँ।
0: जब आप उसका बीज देखोगे ना, बिल्कुल मैडम सेम सेम होता है, इवन बरगद के ट्री का पेड़ थोड़ा सा छोटा होता है सरसों के पेड़ से। तो वही मैडम आगे देखिए जाके कितना बड़ा बनता है और कितने लंबे सालों तक चलता है। वही है बंदे का आज का समय देख के किसी को भी जज मत करो, भाई ये बंदा कमजोर है, इसका आगे आने वाला फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, नहीं कभी नहीं मैडम, कुछ भी हो सकता है, हर चीज की पॉसिबिलिटी है दुनिया में।
1: बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही, जबरदस्त बात कही, जो एक लाइन आपने कही ना, जैसा हमने सोचना है जो दिमाग में रहता है ना, हम उस तरह की राय कायम कर ही लेते हैं। तो ये बात आपके 100% अपनी सहूलियत के हिसाब से हम किसी के बारे में कोई राय कायम करते हैं। सो दिस इज
0: जी बिल्कुल मैडम,
1: वेरी नाइस, बहुत ही गहरी बात। थैंक यू सो मच गाबा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े, और हमेशा ही आप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से जो है ना टॉपिक पे बात करते हैं, कोई फिलोसफिकल वे में नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल रखते हैं। सो दिस इज समथिंग आई रियली अप्रिशिएट।
0: मेरे को फिलोसफी अच्छी नहीं लगती ज्यादा, कर सकता हूँ मगर अच्छी नहीं लगती मैडम।
1: हाँ
0: बस अपना अपना नेचर है हर बंदे का, बाकी आपके सारे मैडम कॉलर सारे लिसनर लाजवाब है, बहुत कुछ मिला है सीखने को।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू जी, थैंक यू वंस अगेन,
0: ओके टेक केयर,
1: ओके यू टू, बाय। दोस्तों फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये टॉपिक आज का हमारा जारी है। यहाँ पर मैंडेटरी ब्रेक मुझे लेना ही लेना है, म्यूजिकल ब्रेक मुझे लेना ही लेना है, वापस आऊँगी तो इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। आप सोच के रखिए आपके साथ कभी ऐसा हुआ, किसी ने आपके बारे

रखने में, कोई ऐसी राय कायम कर ली, बाद में आपको पता चला कि ओह लोग ये मेरे बारे में सोचते हैं, ये इस तरह का इंप्रेशन मेरा इन लोगों के ऊपर बना हुआ है, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, और फिर आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं एंड देन यू नो एंडेड अप सेइंग कि जाने दो, जिसको जो सोचना है सोचो, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। या कुछ और आपने किया अपने आप को एक्सप्लेन करने के हवाले से, या आपने किसी के बारे में कोई राय कायम की एंड देयर लाइज इट्स लाइक अ बिग शॉक फॉर यू, क्या हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हो सकता है, इस बात को भी सोचिए, मुझे बताइए 666-22-107 पर, या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर। हाँ जी, और अभी के लिए यो योहानी सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाज में एंजॉय कीजिए अमेजिंग सा धासु वाला ट्रैक एंड स्टे हुक टू FM 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
1: Guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूँ नाजिया आपके साथ. और एक छोटा सा नन्ना सा ब्रेक ले लें और फिर आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर फर्दर डिस्कशन जारी रखते हैं.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: तो एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम खुशामदीद. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ. फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज अ लास्ट इंप्रेशन. आपको लगता है कि नहीं लगता है, क्या आपका टेक है, बस आज इसी टॉपिक पे बात हो रही है. तो मेरे साथ यहाँ पे एक कॉलर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
3: सलाम अलैकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. रईस जी कहाँ थे इतनी देर से?
3: मैं असल में थोड़ा सा मतलब हमारी मैडम थोड़ा सा मतलब ट्रेन के उसमें सफर में थी, तो मैं उनके उसमें थोड़ा बात करने में ट्रेन आई नहीं आई वो थोड़ा उस तरफ मैं समझ लो मेरा अटेंशन
1: अच्छा,
3: उस तरफ चला गया.
1: अच्छा,
3: तो मैं फारिग हुआ तो देखा, फिर मैं बोला रे आज तो मुझे बात भी करना है. थोड़ा सा बाबा जी का थोड़ा बात सुना बात में, फिर मैं थोड़ा बिजी था तो ये किस उस पे आज टॉपिक पे आज उर्दू में.
1: हाँ, मैं उर्दू में आपको बताती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शख्स से पहली मुलाकात करते हैं और उनके बारे में एक पहली राय कायम कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जो राय हमने कायम की वो तो गलत थी. ये शख्स या ये बंदी

0: ऐसी नहीं है, वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा. हो सकता है हमने बहुत अच्छा सोचा वो अच्छा नहीं निकला, हो सकता है बुरा सोचा तो बुरा नहीं निकला.
1: ज्यादा दूर की बात नहीं, अपने घर की फैमिली में
0: अच्छा
1: हम जो जज कर लेते हैं ना कि मतलब ये बिल्कुल नाकारा निकलेगा, इसका कोई ये नहीं है लाइफ, तो यही पे हमको मतलब आगे फ्यूचर में वो कुछ मतलब और हो जाता है, कुदरत उसको कहीं से कहीं लेके चला जाता है. वो उसका कोई जरूरी नहीं है. जिस तरीके से तारे जमीन पर उसने मूवी बनाया आमिर खान ने, कि बंदे को हर उससे जज नहीं करना चाहिए कि मतलब हाँ बस ये बिल्कुल ये कुछ नहीं कर सकता. मान लो एक एक एक फील्ड में या एक टॉपिक पे ये बंदे के अंदर मतलब वो बिहेवियर नहीं है तो ये बंदा मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है. वो बंदे का कब लाइफ का मतलब कब हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला ये कितना भी हो तो अलग अलग क्वालिटी करके रखा हुआ है अल्लाह ताला ने. उसके अंदर अलग अलग क्वालिटी है. वो कोई जरूरी नहीं है कि आपके राय के हिसाब से आपके माइंड के हिसाब से वो बंदा उस पे ही रहे. खासकर हम अपने बच्चों को अपने हिसाब से हम नहीं ढाल सकते. जिस तरह हम पुराने हिसाब से थोड़ा सा मतलब कि हम लोगों ने बड़ी तकलीफ उठा के पढ़ाइयाँ की और अगर हम उस तरीके से उनको पढ़ाना चाहें, एक बच्चा भी स्कूल में नहीं टिकेगा, भाग के आके घर पे बैठेगा. हाँ तो ये सब चीजें मतलब हमें जज करने से पहले थोड़ा सा ये करना चाहिए और फौरी फैसला नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा उसको मौका देना चाहिए. और ये कोई जरूरी नहीं है उससे लेन देन कहते ना कि कोई बंदे को हम बहुत मुखलिस समझते हैं, ये करते हैं, तो कहा गया है कि उसे लेन देन करके देखो या सफर करके देखो, फिर आपको आइडिया लगेगा वो बंदा मतलब किस कितने मतलब उस पर खरा उतरता है. मैं और ज्यादा गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं नॉर्मली इस्तेमाल करूंगी. जो आदमी को फिर जज करता है कि मतलब हाँ कहीं थोड़ा तकलीफ में मुश्किल वक्त में और ये सब बातें हमारे जावेद साहब माशाल्लाह उनको सलाम और आदाब मैं पेश करूंगा. बहुत बेहतरीन वो आज वो मतलब बात नहीं हुआ, मैं उनके व्हाट्सएप का जवाब भी नहीं दे पाया हूँ अभी फिलहाल, थोड़ा मैं बिजी था दूसरी तरफ.
0: अच्छा,
1: तो वो बड़े बेहतरीन बेहतरीन बातें मतलब ये सब के उस पर वो भी शेयर करते रहते हैं उसी इसी सब के हवाले से कि किसी बंदे को मतलब ये नहीं ये करना चाहिए या किसी को इतना ज्यादा अपना मतलब मुखलिस मान के एकदम आंख बंद करके यकीन नहीं कर लेना चाहिए. वो कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई उस उसका रहे.
0: सही बात है, कुछ लोग झूठा इंप्रेशन बनाते हैं पैसा लूटने के लिए. रिश्तों में देखिए कितना मैंने देखा कि लोग झूठा इंप्रेशन बनाते हैं, रिश्ते हो जाते हैं, बाद में खुलती है हकीकत कि ये तो बिल्कुल ऑपोजिट निकले.
1: मैंने बहुत धोखा खाया है, मैंने नाजिया जी मैंने बहुत धोखा खाया लोगों पर यकीन करके.
0: बिल्कुल,
1: लोगों ने मतलब मैंने उनका बहुत लेकिन फिर भी मैंने सब्र किया. ज्यादा मतलब तमाशा और ये सब नहीं बनाया कि मतलब यार जाने दो बंदे को, हम अपने हिसाब से हर चीज को ये करना चाहें, फिर नेकी करके आप उसके साथ में उससे बदला लेने का. मेरे फिर दिल में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आ जाता है कि भाई उस बंदे से मतलब तुम अगर अदला बदली हो जाएगा ना, अगर उसी हिसाब से तुम अगर ये करना चाहोगे तो अदला बदली दुनिया में ही तुमको ये हो जाएगा. फिर अगर तुम अल्लाह से उसको उम्मीद रखते हो तो फिर सब्र करो. और तकलीफ जब पहुंचे कोई चीज किसी बंदे ने आपको उस हिसाब से उसका बिहेवियर या उसका रिएक्ट आपके अपने हिसाब से आपके सोच के हिसाब से अगर नहीं है तो ये भी चीज मैंने मतलब पढ़ा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से हर चीज होए. और आपका हो सकता है कि आप उसके साथ पॉजिटिव करें वो निगेटिव आपके साथ में करें. और फिर हमको ये भी मैंने पढ़ा कि वो कबूलियत का है, मतलब ये वो है कि आपका वो कबूल हुआ वो आपका अमल तकरीबन. अगर वो आपके साथ में कोई जरूरी नहीं कि गैर मुखलिस होके अगर वो आपके साथ में कर रहा है तो ऐसा ना सोचे कि अल्लाह से अल्लाह ने हमारे उस यार इस बंदे ने मतलब कोई फायदा नहीं किसी के साथ नेकी मत करो. हम लोग फौरन फैसला ले लेते हैं यार नेकी करके फायदा नहीं है, बंदे के साथ नेकी करो वो बंदा हमारे साथ में मतलब बदी करता है, इससे अच्छा है कि उसके करीब मत. नहीं नहीं नहीं नहीं, इंसान का ये दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको हमको एक मतलब हाकिम बना के कुछ वक्त के लिए भेजा है हमको अजमाने के लिए कि हम किस तरीके से अपने उसको ये करते हैं. और सब्र किसी उसका मतलब नाम नहीं है. सब्र यही कि जब तुमको तकलीफ पहुंचे कोई परेशानी में किसी बंदे ने आपको मतलब हट किया तो उस बंदे वहाँ पे आप सब्र किए और वहाँ पे मतलब उससे अल्लाह से उम्मीद रख के ये किए तो अल्लाह ताला आपके उसको आसानी करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है. और मैंने खुद अपने लाइफ में भी आजमाया कि ऐसा कुछ नहीं. और वो बंदे खुद मतलब थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं आगे चल के थोड़े वक्त के लिए वो. और ये एक मूवी से मैंने ये मतलब डायलॉग सुना था कि बंदा कामयाबी के बाद में उसको मैनेज नहीं कर पाता है. कुछ बंदे रहते हैं थोड़ी कामयाबी मिलने के बाद में अपने आप को खो देते हैं, अपने आपा अपने अपने तौर तरीके को. अगर वो मैनेज कर लिए अपने कामयाबी को तो जान लो वो बंदा आगे चल के कुछ कर सकता है, और अगर वो फौरन मतलब एकदम ये हो गया तो फिर वो थोड़ी दिन में फिर उसका तमाशा बन जाएगा, ये अच्छी बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही, जबरदस्त।
1: गहरी मतलब ये करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और किसी को मतलब जज करके और फौरन फैसला नहीं लेना चाहिए,
0: नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात कही आपने, एंड थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ जुड़े।
1: अस्सलाम वालेकुम, और तमाम हमारे भाइयों को जितने हमारे जानने वाले हैं, सलीम भाई हो गए, सुफेल भाई और सारे जितने भाई भी हैं, सब लोगों को मेरे तरफ से सलाम हुआ था।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और हमारे गावा बाजी भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनको भी मेरे तरफ से बहुत सलाम आदाब और बहुत थैंक्स, बड़ा अच्छी बात है, मुझसे सीखने को मिलती है बहुत।
0: हाँ,
1: मतलब शुक्रिया अदा करूंगा जी।
0: चलिए जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वंस अगेन, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, आज हमारी बात चल रही है फर्स्ट इम्प्रेशन पे, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑलवेज अ लास्ट इम्प्रेशन, क्या लगता है आपको, हाँ कि ना? एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आरिफ जी, आप खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए।
0: अब आपकी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व हो गई?
2: बस अल्हम्दुलिल्लाह,
0: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई है जान के। तो आज हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट इम्प्रेशन को लेकर है, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप?
2: नहीं, इससे तो बहुत है, फर्स्ट इम्प्रेशन के मैंने इंटरव्यू के हवाले से भी।
0: अच्छा, प्लीज बताइए कुछ।
2: बस ऐसे ही बंदा होता है ना, सो रहा होता है और उठ के चला जाता है।
0: अच्छा।
2: मैंने ऐसे इंटरव्यू भी जाके दिए हैं और मैंने क्रैक किया इंटरव्यू, पर एक इंटरव्यू था,
0: ऐसे सोते से चले गए और आप?
2: हाँ, मैंने क्रैक किया उस इंटरव्यू, मैं सो रहा था, फिर मेरे को डायरेक्ट
0: क्रैक। सोने के लिए जॉब तो नहीं थी कि भैया बंदा एक चाहिए कहाँ से सोने के लिए? ये बहुत ही आइडियल कैंडिडेट है, आएगा सोएगा फर्स्ट क्लास, सोता रहेगा। ये ऐसी जॉब के लिए रखा होगे, सोता ही रहे तो हमारे लिए फायदा है।
2: नहीं, उसमें क्या था ना, उनको एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए था, ड्राइविंग का मेरे पास था,
0: अच्छा
2: चाहिए था मेरे पास था।
0: हाँ, ये इम्प्रेशन तो आपने ही डाला कि मैं सोते आंख बंद करके भी चला लूंगा गाड़ी।
2: नहीं ऐसा नहीं, अभी उतना
0: एक्सपीरियंस नहीं हुआ है उनको, ये बात तो सच है।
2: और एक इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत ट्राई किया था, बहुत मेहनत की थी, पर वो नहीं हो पाया। नेपाल एम्बेसी में ड्राइवर का एक जॉब था।
0: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, सिलेक्शन हुआ था मेरा, मतलब 16 बंदों को उन्होंने सिलेक्शन किया था पूरे कतर में जितने अप्लाई किए थे।
0: हाँ,
2: मैं 16 में आ गया था, उसके बाद फॉर्म बस अब गवर्नमेंट का होता है तो
0: चलिए कोई नहीं, फिर भी इतना बड़ा आपके लिए ये भी बड़ा अचीवमेंट है कि आप एटलीस्ट 16 में शॉर्टलिस्ट तो हुए, ये भी बड़ा अचीवमेंट है।
2: उधर तक आ गया, उसके बाद सोच चाहिए था जो मेरे पास नहीं था।
0: अच्छा, किसी शख्स के बारे में आपने कोई इम्प्रेशन बनाया और बाद में आपको यू नो एक धक्का लगा कि ये वो वैसा शख्स नहीं है, मैं इसको तो ऐसा सोच रहा था हमेशा से, ऐसा कुछ हुआ कभी?
2: मैंने तो वैसे किसी को अभी तक जज नहीं किया। हाँ,
0: अच्छा,
2: एक शख्स ने मेरे को ऐसे जज किया था जब ये मेरी अरेंज मैरिज थी।
0: अच्छा अच्छा।
2: उसके बाद बीबी से मैंने अपने उनसे पूछा था कि आपको जब शादी हुआ था तो आप मैं कैसा इंसान लगा था, उस टाइम पे मेरा थोड़ा वेट भी ज्यादा था, 75 था, उससे मोटा था। और एक होता है ना, हम लोगों ने कभी बात भी नहीं की थी, एक बार बस फोन पे माँ उनको देखने गए थे ना, तो एक बार बस सलाम हुआ था फोन पे बस। और उसके बाद ना कभी कभी नहीं देखा, कभी उनके घर भी कभी नहीं गया था। और डायरेक्ट गया शादी हो, मतलब एक महीने में शादी हो गई ना, उनके घर वालों ने कभी मेरे को देखा था, बचपन में देखा था, रिलेशन का है तो उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा है, मतलब किधर शादी हो गया। फिर बाद में उनको जब धीरे धीरे मेरे बारे में पता चला, कहाँ टाइम हम लोगों ने गुजारा था।
0: चलिए, एंड अच्छा हुआ, जो भी इम्प्रेशन था बाद में आई एम श्योर एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन आप दोनों के बीच बना है और ये रिश्ते की शक्ल में बना रहेगा।
2: मेरी मेरी मामी उनके घर की, उनके मतलब बुआ लगेंगे, क्या था कि जितने मेरे मामा के बेटे बेटी हैं उन्होंने पूरा उनको बता दिया था कि बहुत ही गुस्से है।
0: अरे ये तो रिश्ता तोड़वाने वाली बात थी आपकी, रिश्ता बनने से पहले हम
2: इसलिए वो डरी हुई थी कि इतना डिटेल आपकी शादी हो गया कैसे करके आपने आपने गुस्सा भी
0: आपने उनको गलत साबित किया सबको। आपका जो इम्प्रेशन बढ़ा हुआ है लोगों के ऊपर कि आप बहुत गुस्सा करते हैं, तो आप गलत साबित कर पाए बात के नहीं, या सच में गुस्सा करते हैं।
2: मेरे को क्या समझ गया, सबसे ज्यादा घर में मेरे से डरते हैं, मालूम नहीं है क्यों। वो मेरे घर में क्या बोलते हैं, हम मेरे माँ बाबा मेरे भाई सब
0: बहुत स्ट्रैटेजिकली आपने बना तो नहीं रखी अपनी इमेज बहुत ही प्लानिंग के तहत कि भाई ये वाली इमेज मेरा इससे बड़ा फायदा है तो चलो ये बना के रखो। ये है तो नहीं मुझे समझ में आ रहा है, आपने जान बूझ के इस तरह की अपनी इमेज तैयार की है, बट आपको देख के आपसे बात करके तो मुझे कभी नहीं लगा कि आप गुस्से वाले हैं। ये इम्प्रेशन तो मुझे भी नहीं लगा आज तक।
2: वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं किसी के किसी है, सब घर के ये आदमी बोलते हैं गुस्सा करता है इसका गुस्सा। और मैं देखता हूँ, अच्छा मैं मान लिया, मैं अभी देख रहा हूँ मेरा जो लड़का है मेरे से डबल है वो।
0: वाह, ये आता है सामने अपने जैसी करनी वैसी भरने वाला हाल है।
2: पर मैं इसको अभी कम भी कर रहा हूँ।
0: नहीं मुझे नहीं लगता कि आपको गुस्सा है, ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज है क्योंकि बहुत अरसे से हम और आप एक दूसरे जुड़े हैं, बात भी करते हैं, तो मुझे नहीं आइडिया लगता, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आपको गुस्सा आता है। इनफैक्ट आप तो बहुत ही यू नो हंसमुख लगते हैं, हंसना अच्छे से बात करना आपका बहुत ही अच्छा नेचर
2: है।
0: लेकिन घर वालों को जो इम्प्रेशन है उसको प्लीज रेक्टिफाई कीजिए, उनको सही करवाइए अपना इम्प्रेशन कि नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं।
2: एक होता है ना कि जिद और गुस्सा दिखाई भी किस पे, जो अपने हैं उसमें पे दिखाया जाता है।
0: तो सारे गुस्सा यहाँ से कलेक्ट करके वहाँ ले जाते हैं घर। हाँ अच्छा चलिए,
2: जिद से भी ज्यादा थोड़ा गुस्सा से भी ज्यादा थोड़ा जिद, मतलब
0: जिद्दी है। चलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ अच्छी चीज़ों में ही आप जिद करेंगे और आपके लिए भी बेहतर हो, आपकी फैमिली के लिए भी बेहतर हो, बस उतना ही गुस्सा और उतनी ही जिद हो, है ना। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है।
2: मैंने बहुत 3-4 इंटरव्यू में ऐसे ही मैंने क्रैक किया बिना 100% मैंने अपना दिए, जैसे मैं चप्पल में चला गया इंटरव्यू में वो भी मैंने क्रैक किया है।
0: कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं ऑनेस्टी के, जो बंदा जैसा है वैसा आ रहा है उसमें खुद में दम है, दिखावे में नहीं है।
2: हाँ,
0: ये भी एक लोगों की सोच हो जाती है,
2: वो नहीं हो भाई।
0: हाँ। वही चीज जो एक जो नफीस जी ने कहा ना, आरिफ जी नफीस जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप जो है वही दिखाइए, क्योंकि लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, कई बार हम फंस जाते हैं नहीं समझ पाते, बट फिर भी इंटेलिजेंट हैं, आपको समझ लेते हैं लोग, तो बस जैसे हैं वैसे ही रहना और अपना ऑनेस्ट इम्प्रेशन ही पढ़ना चाहिए, वही हमारा फर्स्ट और लास्ट रहे इम्प्रेशन हमेशा सब पे, ये बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी आपकी फैमिली से ज़रूर बात करके कहूँगा कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छे और बड़े हंसमुख और बड़े लाइवली पर्सन है, इनको सब नहीं आता है आरिफ जी को, आप लोग अपना जो इम्प्रेशन है प्लीज़ चेंज करें, ये परसेप्शन चेंज करें,
2: खत्म कर दिया लगभग लगभग।
0: हाँ नाइस,
2: बीवी को तो यकीन हो गया कि इतना गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं कब, जब कोई गलत बात हो या उसके तो ज्यादा गुस्सा करता है।
0: चलो वो तो नॉर्मल है, वो तो सभी को आता है जब कुछ गलत होता है ना, नहीं वैसे आप इतना गुस्सा नहीं करते, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त, थैंक यू सो मच आरिफ जी, थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और गुस्सा कभी मत करिए, ठीक है ओके। कभी कभी कभी कभी करिए, हाँ ये बात, थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह
2: हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, यहाँ पर फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज अ लास्ट इम्प्रेशन, इस टॉपिक पे बात चल रही है। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हेलो,
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
3: अहमद
0: जी, हाँ कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो मुझे कहना चाहिए कि आप टाइम निकालते हैं और आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। थैंक यू.
3: तो आपका टॉपिक जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, राइट?
0: या या
3: मैं इसमें टोटली बिलीव नहीं करता हूँ.
0: अच्छा, ओके.
3: क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं और जो लोग ये इम्प्रेशन जैसा आपने इसको बोला कि वो फर्स्ट इम्प्रेस करने के लिए आपके सामने ऐसा बनावटी चेहरा अपने आपको इस तरीके से पेश करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाए, वो इस ये इरादे से यानी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं. चाहे वो आप थोड़ा सा इंटरव्यू के दौरान अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो या अगर मैरिज प्रपोजल्स में भी बहुत सारी जगह पर देखा गया कि ऐसे ऐसे इम्प्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, बाद में पता चलता है कि यार इट वॉज टोटली अपोजिट. लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं काफी लोग, मैं भी गुजर चुका हूँ, आप भी गुजर चुके होंगे. पहले आपने अंदाजा लगाया अरे यार ये तो ऐसा है वैसा है, और बाद में पता चला नहीं ये वैसा नहीं है.
0: बिल्कुल सही कहा.
3: आई वुड टोटली डिसएग्री विद दैट.
0: सही कहा आपने कि मतलब आपके हिसाब से एक चैप्टर जो है वो कैसे पूरी किताब को डिफाइन कर सकता है और हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या लिखा है इसमें. सो दैट्स ट्रू.
3: जो भी बंदा होता है वो इस प्रिपरेशन से ही अपने आप को पेश करता है कि मुझे फ्रंट पर्सन को इम्प्रेस करना है. वो इम्प्रेशन का माइंड उसके दिमाग में होता ही है.
0: पर्पस
3: फिर उसके बाद उसके पता चलती है कुछ वक्त बाद, चाहे वो आप क्या बोलेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो जाए, आपकी फैमिली लाइफ में हो जाए, रिलेटिव्स भी हो जाए उसमें, कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब आप इस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल नहीं अग्री करते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज अ लास्ट इम्प्रेशन. यू ऑलवेज वांटेड टू गिव.
3: आप खुद इस बारे में गौर करें ना कि आपके भी कॉर्पोरेट लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा कोई बंदा या बंदी होगी जिसने अपने आप को जिस तरीके से, अभी आजकल का दौर ऐसा है ना कि अगर कोई बंदा आपके, अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट्स सी कि किसी का मैरिज प्रपोजल आया. मैं एक लड़का हूँ, मैं एक जेंट्स हूँ, मैं जेंट्स के पर्सपेक्टिव से बोलूंगा. लेट्स से मैं किसी के घर पर गया और मैंने वहां पर लड़की वालों को अपनी बुराइयां बताई. देखिए मैं शराब पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं जुआ भी खेलता हूँ, मैं ड्रग भी लेता हूँ, मैं ये भी करता हूँ. क्या वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? क्या उस रिश्ते को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे?
0: कभी भी नहीं करेंगे.
3: उसी जगह पे अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, अगर आपने अपनी वीकनेस, वीक पॉइंट्स जो भी जॉब से रिलेटेड है, अगर आपने उसको बता दी कि देखिए सर मेरे में ये वीक पॉइंट है, इत्तेफाकन अगर कोई अच्छा बॉस होगा तो शायद उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, बट 99% वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, आई डोंट वांट यू, आई हैव अनदर कैंडिडेट व्हिच इज बेटर देन यू.
0: ये बात तो सच है.
3: ये तो दो एग्जांपल्स हो गए. फिर आप अपने रिश्तेदारों में देख ले, आप अगर अपने कोई दोस्त है उसके पास भी आप बिल्कुल बिल्कुल यानी आप सच बोल रहे हो तो आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा. तो ये लोग क्या करते हैं, हर कोई फिर अपने आप को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है.
0: ये बहुत आपने अच्छा कहा, इम्प्रेस करने के लिए इम्प्रेशंस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं. हाँ, नाइस, बहुत ही जबरदस्त लाइन. थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू कि आप जुड़ते हैं हमारे साथ. और बहुत ही अच्छी, बिल्कुल एकदम प्रिसाइज लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक अवे, बहुत जबरदस्त. थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे, अपना ख्याल रखिए. यू टू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. बहुत ही अच्छी लाइन कही, इम्प्रेस करने के लिए इम्प्रेशंस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं और वो हमेशा सच नहीं होते, या ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो सच नहीं होते, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं. तो जब नेचुरल नहीं है, जब ऑनेस्ट नहीं है, कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, फैब्रिकेशंस भी हो सकता है, और फिर हो सकता है कि वो बहुत वक्ती हो, बहुत टेम्परेरी हो. तो वो कैसे लास्टिंग इंप्रेशन आपके लिए बन सकता है? सो राइट, बहुत ही अच्छी बात. और नाउ वी आर कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जावेद बाजवा जी हमारे साथ, आपको तो दो लोग याद करके चले भी गए.
4: अच्छा, बहुत से लोग पता नहीं कैसे कैसे याद करते हैं, इंप्रेशन मुझ पर डालते
0: हैं. कैसा इंप्रेशन है? नहीं नहीं, आपका मुझे लगता है सब पे, हम सब पे बहुत अच्छा इंप्रेशन है.
4: ये सबकी मोहब्बत है और मैं सबका दिल से शुक्रगुजार. और गाबा भाई का भी मुझे मैसेज आया, रईस भाई का भी आया, और मैं बीच में सबकी माशाल्लाह कॉल सुनता रहा. लेकिन सबसे पहले तो मेरी जानिब से जितने भी लोग हैं उनको 14 एंड 15 अगस्त की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत
0: मुबारक. यू टू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी तरफ से भी विशेस आपको.
4: थैंक यू. और दूसरा शहजादा सलीम भाई ने तौफीक भाई का, उनके वालिद मरहूम का जिक्र किया, तो वो भी मतलब वो बात पूरी उन्होंने कर दी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पैगाम दिया था उन्होंने. और उसके साथ देखिए अभी आरिफ भाई, नफीस भाई, नफीस भाई तो खैर बड़े माशाल्लाह नफीस आदमी हैं, आजकल मेरे वो हाथ नहीं आ रहे बिल्कुल,
0: हाथ नहीं आ रहे। अच्छा, वो अपने ऑनेस्ट ओपिनियन रखते हैं, चाहे जैसा जिसको जो लगे, ये भी अच्छी बात है कि वो मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट है, जो दिल में है वही जबान पे है, सोच भी नहीं, सोच के नहीं, जो है बस बोल।
4: उन्होंने जो अपना इम्प्रेशन

0: करिए कि हमारा इम्प्रेशन सही पड़ा है कि हम गलत इम्प्रेशन को लेके चल रहे हैं।
1: देखिए इम्प्रेशन तो माशाल्लाह, बात यह है कि हम दूसरे के लिए जज बनने की कोशिश करते हैं, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। हम जो जज कर रहे हैं दूसरे के बारे में, हम अपने आप की अपनी जात में भी देखें, कामिल जात तो रब की है, हर इंसान में खूबियां और खामियां दोनों मौजूद रहती हैं। हर देखिए एक ही घर में एक ही वालदैन की औलाद की सोचों में, पसंद नापसंद में, खाने पीने में, उठने बैठने में, बात करने के सलीका तरीका, उसमें भी तजाद है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो हाँ, तो बहरहाल जिस जो इम्प्रेशन इम्प्रेशन तो मेरी नजर में जो आप हैं, मतलब आप जिस तरह के सादे और जितना सादा और जितने दरवेश किस्म का आदमी होगा ना, वही पेश करना चाहिए, बनावट नहीं होनी चाहिए।
0: अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ, थोड़ा बहुत 19-20 तो चलिए हो सकता है और वो एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी के बारे में किसी ने वाकई अपना बड़ा ही झूठा इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट किया और फिर बाद में आपको एक बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा है, दे यू कम टू नो कि ये बंदा ये बंदी तो बिल्कुल वैसा नहीं है और इसने मेरे साथ बहुत ही झूठा इम्प्रेशन अच्छे होने का नाटक किया और अच्छा अपने आप को पोर्ट्रेट किया।
1: मैंने आपसे मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि 3 साल, क्योंकि ओनर ऐसी बात है, अगर आप किसी के साथ एक ही करते हैं ना तो उसको कहते हैं ना कि दाएं हाथ से करो तो बाएं को पता ना चले। लेकिन जब आपको किसी का बचाव करना होता है, किसी को बचाना होता है, तो फिर आपको बताना भी पड़ता है कि यार इन कामों से, इन चीजों से बचो।
0: बिल्कुल
1: वही बात होगी कि 3 साल मैंने जो टोटली एक जिम्मेदारी ली हुई थी, तो बस मेरा एक या दो दफा पूछना, हल्फन ये बात कर रहा हूँ, सिर्फ पूछना, इतना बड़ा गुनाह कबीरा हो गया कि जो मुझे आप करके बुलाते थे वो मुझे तुम कहना शुरू हो गए, तुम कौन हो हमें पूछने वाले। हाँ ये तो रिसेंटली बात करूँ, 1-1.5 माह पहले की बात करूँ, लेकिन इससे पहले भी जिंदगी में बहुत से एक्सपीरियंसेस चलते रहे हुए भी हैं, चलते भी हैं, और फिर एक वक्त में ना नाजिया जी, इंसान उस चीज का आदि, उस चीज को वो केयर ही नहीं करता। अगर किसी ने बुरा कर भी दिया है, आई डोंट केयर, मुझे इतना पता है कि मैंने अपनी खालसतन नियत के साथ जो परवरदिगार का हुक्म है उसके मुताबिक, हुक्म के मुताबिक मैंने तामील करने की अधूरी कोशिश की है, उसका सिला देगा मुझे।
0: बिल्कुल बेशक, चलिए बहुत ही अच्छी आपने बात कही और ये लाइन आपकी बेस्ट टेक अवे है आज के इस टॉपिक की कि हम दूसरों के इम्प्रेशंस की तो बात करते हैं कि उनका इम्प्रेशन है, अपने लिए भी तो सोच के रखना जरूरी है हम किस तरह का इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, और ऑनेस्ट इम्प्रेशन ही लास्टिंग इम्प्रेशन है, ये तो सच।
1: एग्जैक्टली, देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स बट लास्टिंग इम्प्रेशन बिल्ट ओवर टाइम।
0: हाँ ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जो पहला इम्प्रेशन है वो एक शायद ट्रेलर की तरह है और बाकी जो सेकंड थर्ड बाकी जो इम्प्रेशंस हैं वो एक्चुअल में किसी भी मूवी को है डिफाइन करते हैं कि ये मूवी इस तरह की है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन के चक्कर में हमेशा बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए।
1: पता लग जाता है, देखिए फॉर एग्जांपल हम जब किसी की जात से मिलते हैं, एक बंदा जो बेचारा अगर घर से बाहर नहीं गया, उसको आइडिया नहीं है, तो उसके अंदर इतनी शायद अवेयरनेस ना हो, लेकिन आज का जो दौर है, वेरी नेक्स्ट टू यू जो आपके साथ गुफ्तगु कर रहा है, जो आपके साथ सिटिंग कर रहा है, मतलब आपसे बातचीत कर रहा है, आपको उतने में अंदाजा हो जाएगा कि इसकी आदत या मेरी आदत क्या है।
0: ये तो है,
1: ठीक है, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते ना हमें कुछ चेंज कर सकते हैं। हाँ, अच्छी आदत को हम लेके अच्छा इंप्रेशन हम दे सकते हैं।
0: दिस
1: इज व्हाट आई मीन।
0: बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इट्स अ काइंड ऑफ अ कंक्लूजन आल्सो। बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच कि आप लोग टाइम निकालते हैं एंड छुड़ते हैं। आई रियली कांट थैंक यू ऑल इनफ फॉर दिस। बहुत शुक्रिया जी।
1: बहुत शुक्रिया आपको।
0: अपना ख्याल रखिएगा।
1: आपको भी बहुत शुक्रिया।
0: अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बात हमारे लिसनर्स कर रहे हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, एंड ऑफकोर्स आप भी और मैं भी, हम दोनों इस बात के साथ इतफाक रखते हैं कि हमें फर्स्ट इम्प्रेशन के बेसिस पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेने चाहिए। That's really, really important. क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन हो वो हमेशा सही इम्प्रेशन हो या वो लास्टिंग हो या वो आपके लिए या किसी के लिए भी फ्रूटफुल हो। तो ये इम्पोर्टेंट टेक अवे है। यहाँ एक और कॉलर मेरे साथ है एंड आई थिंक थोड़ी देर में से कंक्लूड भी हम करेंगे। हेलो,
2: सलाम अलैकुम।
0: हाय, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शिमोन आप?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। एंड हाउ

0: morning going? अच्छी जा रही है?
1: Morning is always alhamdulillah excellent.
0: Excellent. Okay, nice. Okay, so what's your take?
1: जी?
0: What's your take on today's topic? क्या कहेंगे?
1: हाँ, अच्छा ये है. Sorry. First impression and the last impression. आप देखिए, मुझे लगता है जो आपके जो काफी सारे callers हैं और मेरे ख्याल से बात यही है कि first impression cannot be the last impression. But at the same time, we cannot ignore the first impression also.
0: हाँ, ये तो कोई भूला, चलिए finally. ये मुझे बोलना था, बोल रहे, लेकिन प्लीज गो अहेड. हाँ हाँ, सही.
1: उसका उसका रीजन है एक्चुअली. देखिए, जो जो अभी आपके सारे कॉलर्स ने बात की है, तो मैं उसको कोशिश करूंगा. बात तो वही है, मैं उसको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर सकें, कर सकूंगा घर में इफ पॉसिबल. देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट कैनॉट बी द लास्ट इम्प्रेशन. एंड यू कैनॉट मेक अ जजमेंट बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन. और उसमें होता क्या है कि देखिए, इसको इसको ना एक ये एक साइकिल है एक्चुअली. साइकिल क्या है ये कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो एक हाइपोथेसिस की तरह काम करता है आपके लिए. ठीक है, फिर देन यू गैदर एविडेंस ऑन दैट हाइपोथेसिस, देन यू रीच अ कंक्लूजन. तो अगर आपके पास हाइपोथेसिस ही नहीं होगी, तो आप एविडेंस किस चीज के ऊपर गैदर करेंगे? ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी इंसान के बारे में कोई इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन ही बना लिया, ये इंसान बहुत अच्छा है, तो ये हाइपोथेसिस तो चाहिए ना आपको, बेसलाइन.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है.
1: इसी के बेसिस पे फिर आप एविडेंस गैदर करेंगे. अब फर्क सिर्फ ये आता है यहाँ पर कि आपको ये जो फर्स्ट जो हाइपोथेसिस है इसको कंक्लूजन मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रॉब्लम.
0: ये बहुत बहुत ही पावरफुल टेक अवे. कंक्लूजन नहीं आपको मानना चाहिए.
1: हाँ, तो असल में होता क्या ना, ये हमारा जहन जो है ना, इसमें एक थ्योरी काम करती है, हेलो इफेक्ट करके बोलते हैं उसको. तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी इंसान के बारे में कोई चीज पहली बार देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आप वैसा एक उसके बारे में एक पिक्चर बनाते हैं उसके बारे में. लेकिन ये जरूरी नहीं है, और हमारा जहन जो है ना उसी तरीके से सोचने पे मजबूर करता है. जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी इंसान से मैं मिला और लगा कि बहुत कॉन्फिडेंट है. ठीक है, वो ठीक है. तो अब जहन जो है ना इसका दूसरा जो वो है पहलू, उस पे सोचना चाहिए कि क्योंकि कॉन्फिडेंट है तो ये कॉम्पिटेंट भी होगा. विच इज नॉट नेसेसरी.
0: जरूरी नहीं है, बिल्कुल बहुत सही.
1: इसी तरीके से कोई इंसान अगर मिला, क्या यार तो बहुत रूड है, तो हमारा जहन अब ये कंक्लूजन बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये रूड है तो ये खराब इंसान भी होगा. विच इज अगेन नॉट नेसेसरी. तो अब हमें ये देखना होता है, ये देखना चाहिए कि जैसे जब भी हम किसी इंसान से देखिए, जैसे कि आपने एक बात कही टीटी है या बस कंडक्टर है, ऑल दोस्त उनके आपके इंप्रेशन से उन्हें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, दे डोंट मैटर इन योर डे टू डे लाइफ. लेकिन जिन लोगों के इंप्रेशन से हमें मतलब होता है, तो फिर अब हम उनके बारे में एविडेंस गैदर करना शुरू करना चाहिए.
0: कर देते हैं, बिल्कुल सही. कहीं ना कहीं बेस चाहिए है, उसके बिना पे हम जो है ना फिर कोशिश करते हैं कि अपने एविडेंस गैदर करें और फिर एक कॉन्क्रीट हमारा जो है ना परसेप्शन डेवलप होना शुरू होता है.
1: Exactly. और आप अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में उनके बिहेवियर को देखिए. कोई इंसान जो है पहली बार में आपसे बहुत अच्छे से बात करी, उसने बहुत रीजनेबल बात करी, बहुत अच्छा था. ठीक है, अब उस टाइम आप भी अच्छे मूड में थी मिसाल के तौर. नेक्स्ट टाइम आप खराब मूड में थी. अब
0: yes.
1: तो उसमें उसने किस तरीके से बात करी, या कोई ऐसी चीज थी कि वो अब वो इंसान जो है वो उस जो हालात हैं वो उसके फेवर में नहीं है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो फेवर में है तो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है.
0: राइट,
1: आपको अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में ये एविडेंस गैदर करने पड़ेंगे.
0: सही.
1: जब आपके आपके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाए, आप इधर जाना चाह रहे हैं वो उधर जाना चाह रहा है, अब वो किस तरीके से बिहेव करता है वो इंसान, then you make all those assumptions बनाते हैं भैया.
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि first impression वाकई matter करता है, लेकिन वो आपका conclusion नहीं होना चाहिए. आप उस शख्सियत को उस फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे कंप्लीटली जज नहीं कर सकते. हाँ, बेस आपके लिए तैयार होता है, उसके पीछे आप सोचते हैं कि हो सकता है ऐसा हो सकता है, यू योरसेल्फ आर नॉट क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये ऐसा ही है, है ना. हमारी अजम्पशन ही थ्योरीज होती है ना, वी जस्ट अज्यूम हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा बिकॉज ये रोड चलता है या ये प्राउड ही हो सकता है. जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि लोगों को लगता था, तो होता है कि लोग बना लेते हैं. अब हो सकता है कि मैं थोड़ा सा इंट्रो हूँ और मैं उतना ज़्यादा मिंगल करना नहीं पसंद करती या उतना मैं चिटचैट नहीं कर पाती, बट लोगों को लगता है कि आई एम रूड, डू आई एम नॉट, है ना.
1: विच इज़ ट्रू, आई मीन यू आर नॉट रूड बट यू जस्ट हैव दिस पर्सनालिटी ट्रैट जिसमें कि आप इंट्रोवर्ट हैं.
0: या
1: इसकी इसकी इसकी एक पूरी सीक्वेंस है एक्चुअली, राइट. कि आप यू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन, देन देयर इज रिपीटेड बिहेवियर.
0: सही.
1: ओके, फिर वो जो रिपीटेड बिहेवियर है वो डिफरेंट सिचुएशंस में कैसा है,
0: कैसा है, सही.
1: फिर वो अलग अलग प्रेशर में, अलग कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में वो तब किस तरीके से वो बिहेव करते हैं लोग. तो इस तरीके से आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो है वो इंसान को जज नहीं करना चाहिए बल्कि पैटर्न को जज करना चाहिए.
0: ओह वाओ, कितना अच्छा बोला आपने, जबरदस्त. पैटर्न को जज करना चाहिए, नाइस.
1: इंसान को, हाँ इंसान तो देखिए क्या है, इंसान अलग अलग, जैसे कि हमारी बात हुई,
0: हम इमोशन से ड्रिवन होते हैं. जैसे आपने भी कहा अभी अभी हम परेशान है तो हो सकता है हम उस तरह का इंप्रेशन हमारा ना दिखे जैसे हम जैसे हैं भी नहीं बट थोड़ा सा अलग ही दिखेगा. तो इमोशन
1: अब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, सब परेशान हैं, कोई भी हो मतलब कोई भी फॉर इंस्टेंस, अब आपने उसमें उसके दौरान आपने उस इंसान से बात की और उसको जज करने की कोशिश की, तो वो हो सकता है उस टाइम आपसे इस तरीके से ना पेश आए जैसा कि वो नॉर्मल है.
0: वेरी नाइस.
1: तो ये जो है, मुझे
0: ग्लैड शिमोन कि आप लास्ट में जुड़े और आपने आई थिंक बहुत अच्छा कंक्लूड कर दिया और मैं इससे अच्छा कंक्लूड कर ही नहीं सकती थी. आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उस टॉपिक को कंक्लूड किया और आपका हमेशा से बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन था, आज भी वो इम्प्रेशन कायम भरपूर तरीके से, जबरदस्त.
1: नहीं असल में, नहीं देखिए मैंने कोई बात अलग नहीं कही है, बात वही है जो सब हमारे कही है, कोई भी इसमें डिफरेंट बात नहीं है. तो बस जस्ट ये है कि हाँ इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो वो करने की कोशिश की थी बस.
0: इट्स अ वेरी पावरफुल
1: लोगों को मिलेगा वो मैं लाया हूँ वो यूं
0: घर पे दूंगा वो खराब हो जाता बाहर फ्रिज में पता नहीं कितनी कितनी कहानियां. तो बस आप वो गोली खाते रहिए, मिठाई तो मिली जाएगी कभी ना कभी. चलिए,
1: मैं सिर्फ उम्मीद और विश कर सकता हूँ.
0: हाँ, नहीं मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं तो कोशिश कर रही हूँ गाबा जी को मिल जाए, उनको तो मिल जाए, मैं तो लाइन में हुई ही नहीं, मैं कैंडिडेट ही नहीं हूँ लेने के.
1: ये भी अच्छा है कि आपको पता है कि भाई कहाँ क्या हो सकता है.
0: मैं कंक्लूजन की तरफ पहले से बढ़ चुकी हूँ और ये मैं बहुत गुड ऑब्जर्वेशन के बाद बड़ी हूँ कंक्लूजन. नहीं मैं मजाक कर रही हूँ भाई, सर्वर भाई बाहर से मुझे खड़े होकर घूर रहे हैं, क्या तरह ये क्या तरीका है. नहीं आप देंगे सबको मिठाई देंगे, डोंट वरी, वो देंगे, वो कह रहे हैं मैं दूंगा. चलिए इंशाल्लाह. चलिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए.
1: ओके,
0: यू टू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम. ऑलराइट, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक और वापस आते हैं. तो इस टॉपिक को कंक्लूड तो कर ही चुके हैं, बस एक दो लाइन और एंड देन मूव करेंगे अपने गेम सेगमेंट की तरफ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: انا بحر علي وانت يا دار مديرك بعيده ما نبكي عليك لا سهر لا ميمون العبوس في

0: हाँ जी, फिलहाल आपने शाश्वत सचदेव की आवाज में ये बहुत ही जबरदस्त ट्रैक धुरंधर मूवी से एंजॉय किया. और अभी आप सबको मैं वेलकम कहना चाहूंगी. 8:15 on the clock और इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट ये वो टाइम है जब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे हैं. बट आई थिंक बिफोर दैट एक कॉलर शायद हमसे इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं. बहुत देर से कॉल मुझे आ रही है, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं जल्दी से. हेलो,
1: कुछ तो लोग लोगों का काम है कहना. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: मतलब
1: आपकी कॉल कंक्लूजन पे हम ही लाते हैं. आप ये चीज की जो है गांठ बांध लें, आप हम बता रहे हैं आपको.
0: नहीं, बांध चुके हैं. हमें पता है कि जब हम कंक्लूड कर रहे होते हैं तभी आप आते हैं. ये आपका इंप्रेशन है, लास्ट नॉट द लीस्ट. यही मजा है.
1: फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा जो है ना वो झूठा होता है मैडम जी, इसके लिए हम आखिरी में आते हैं.
0: आप लास्ट इम्प्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं. फर्स्ट में तो मैं यकीन रखते ही नहीं, मैं तो लास्ट वाला इम्प्रेशन क्रिएट करूंगा. वैसे आपके बारे में लोगों का क्या इम्प्रेशन है?
1: जो है वो दिल से. मेरा मेरे में लोगों का इम्प्रेशन मैं खुद अपने मुंह से बताऊंगा तो फिर क्या फायदा. मतलब अपना टप्पा अपन ही बजा रहे हैं जैसी बात हो जाएगी.
0: इसका मतलब अच्छा नहीं है, बताना नहीं चाह रहे आप. हाँ, ये बात है.
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है. देखिए अच्छा? मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मिजाज होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, मुख्तलिफ हालात होते हैं. उस हिसाब से सब अपना अपना एक जजमेंट क्रिएट करते हैं और जो है अपनी राय दे देते हैं. तो किसी के लिए मैं अच्छा हूँ, किसी के लिए मैं बुरा हूँ, किसी के लिए खराब हूँ, किसी के लिए बहुत ही खराब हूँ, किसी के लिए बहुत ही प्यारा हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, किसी के लिए बहुत बिंदास हूँ. तो अलग अलग मशवरे, अलग अलग तरीके, अलग अलग नजरिया. यही
0: तो हम सब समझ रही, ये तो हम सब में है. हम सब किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे हैं, किसी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत बुरा नहीं होना चाहिए. ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करूँगी.
1: नहीं, वही तो बता रहा हूँ ना मैं कि हर इंसान अपने हालात के हिसाब से जज करता है.
0: हाँ,
1: तो अभी एक जजिंग में मैं आपको एक, चलिए बाप ने जो एक अच्छी बात कह दी थी तो ये इसके ऊपर एक छोटा सा वाक्य करके हम जो है कॉल को क्लोज करते हैं.
0: जी जी.
1: तो आपके पास में भी वक्त नहीं है
0: जी,
1: तो मैं ये कहना चाहूंगा.
0: हाँ.
1: एक क्या कहते हैं, अपने एक पेशेंट थे. हाँ. उनके बेटे, मतलब आई मीन पेरेंट्स रहते हैं, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत डेडली वाला एकदम. वो हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वहां पर जो है सर्जन नहीं मिलते हैं और डॉक्टर आई मीन. तो वो डॉक्टर का वेट करते हैं, कॉल करते हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, ऐसे कुछ चलता है. तो डॉक्टर आते हैं फाइनली, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. डॉक्टर आते हैं फाइनली, उसके बाद में फिर ऑपरेशन हो जाता है, सब चीज हो जाता है. तो डॉक्टर कुछ बात नहीं करते, बिल्कुल रिलैक्स और खामोश होते हैं, जबकि डॉक्टर का पहला इंप्रेशन है राइट. ये कुछ नहीं देखे, वो कुछ नहीं जाने नहीं कि बस एक बेस्ट सर्जन है, बेस्ट डॉक्टर है, उनको यही पता था. तो वो सारे लोग ना डॉक्टर पे चिल्लाने शुरू हो जाते हैं कि तुमने इतनी देर क्यों की, हमारे बच्चे की जान चले जाती तो एक्स वाई जेड वे. खैर ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन सब लोग वो डॉक्टर पे भड़क जाते हैं. तो वो डॉक्टर फिर भी कुछ नहीं बोलते, चले जाते हैं. वहां पर जो नर्स होती है खड़ी हुई, वो नर्स से पूछते हैं कि भाई ये कितना एरोगेंट है, ये कितना पागल है, मतलब इतना घुमंड इंसान को ऐसे भी होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए. वो तो बोलते हैं कि आपको पता है वो अपने बेटे का फ्यूनरल छोड़कर आए हैं, अभी जाकर वो बच्चे को दफनाएंगे. आपके बच्चे की जान बचाने के लिए वो अपने बच्चे का फ्यूनरल छोड़ के आए. तो ये दुनिया है मैडम जी, इसीलिए मैंने कॉल के शुरू में कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आप लोगों को किस तरीके से जज कर रहे हैं वो चीज आपके ऊपर जो है ज्यादा फोकस होना चाहिए.
0: बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने आज, तो वाकई आपने वाकई बहुत अच्छी बात कही. देखिए इंसान के अपने भी सिनेरियो सिचुएशन होती है, परेशानी में है, हो सकता है वो वैसा अच्छा इंप्रेशन ना डाल सके, तो लोग उसे जज तो कर लेते. जैसे आपने कहा ये बात तो सच है, इसीलिए कभी भी हमें
1: यहाँ पर ना क्या कहते हैं, कौवा खीर खाता है और कबूतर को दाने मिलते हैं, वाले ऐसा चुनना पड़ता है. ऐसे ही है. तो खैर बहरहाल अब कंक्लूजन पे आ चुके हैं आपका कॉल, तो मजीद आपका वक्त नहीं लूंगा मैं.
0: बहुत ही अच्छी बात की, I'm so impressed. बहुत अच्छा एग्जांपल दिया
1: आपके पास में. मेरा इंप्रेशन क्या चल रहा है वो जो तो बता दें.
0: नहीं नहीं, आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन है. क्यों भैया ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आपका इंप्रेशन अच्छा है, क्यों आपको डाउट है अपने इंप्रेशन पे? आपने तो अच्छा ही डाला है. बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका बड़ा जो होता है ना कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला शख्स, एकदम सामने बात बोल देता है
1: जो है वो है.
0: हाँ, तो उस तरह का आपका नफीस जी का है. पता नहीं आप कितना सही है कितना गलत है, बट इनिशियली मैं ये कह सकती हूँ जितना भी मेरी आपसे बात हुई ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से हम आप बात कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ ये मुझे इस तरह का इंप्रेशन ऐसा लगता है. आई डोंट नो कितना सही है, बट ऐसा मुझे लगता है कि यू गाइस आर वेरी ऑनेस्ट. ऐसा नहीं कि बाकी लोग ऑनेस्ट नहीं है, सभी उतने ऑनेस्ट है, बट आपका थोड़ा सा अंदाज ऐसा है कि बेधड़क वाला, यू नो, एकदम से बोल दिया जो भी आ रहा है मुंह में,
1: बोल तो देते हैं लेकिन इस चीज का जरूर ख्याल रखते हैं कि हमारे अल्फाज से किसी को तकलीफ ना हो।
0: हाँ, ये तो
1: ये मैं बहुत ज्यादा मोहताज होता हूँ इस चीज में, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि जो है ना अल्फाज बहुत खतरनाक चीज होती है दुनिया में, जो जानवरों में जहर पाया जाता है ना उससे कहीं ज्यादा जहर अल्फाजों में होता है, तो उससे बेहतर है कि अल्फाजों को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए। बट आखिरी बात वही खुल के खत्म करूंगा कि हमने ना इतना मतलब 50 साल के हो गए, 60 साल के हो चुके होते हैं, लेकिन कब कहाँ क्या बात करना हमें नहीं पता होता है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी जो डॉक्टर साहब थे ना आपको जो थ्योरी बता रहे थे, देखिए पिछली कॉल पे, हाँ वो भी बड़े अच्छे थे, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको, जज़ाकअल्लाह बोलिए वो डॉक्टर साहब को।
0: वो डॉक्टर तो नहीं है, आप ही उन्हें डॉक्टर बना
1: रहे हैं। वैसे ही मजाक से बोल रहा हूँ भाई मैं।
0: लेकिन हाँ उनका इम्प्रेशन वैसे ही वाले डॉक्टर का, पीएचडी वाले डॉक्टर।
1: हाँ बिल्कुल एकदम, मैं बोला भाई ये तो थेरेपी हो गई है मेरी आज सुबह कॉल में।
0: नहीं नहीं बहुत ही अच्छा बोला, आई थिंक वो सारी पॉइंट्स जो मैंने सोच रखे थे वो तो सारे उन्होंने बोल ही दिए एक तरह से,
1: जो सा पार्ट लेकिन बंदे ने
0: बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नाइस Nice. And so do you. आपने भी बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझाया हमारे लिसनर्स को, so thank you for that. बहुत शुक्रिया।
1: सिंपल सिंपल वाली चीजों में समझा देता हूँ, हाइपोथेटिकली एंड ऑल।
0: नहीं नहीं आप हमेशा हर टॉपिक पे अच्छे से बात करते
1: हैं। हम हमारे क्या इंप्रेशन ही डाल पाएंगे, जो भी है अपनी जुबान में बात कर लो, सीधी सीधी खत्म, अपना ये मानना।
0: बस अच्छी बात होनी चाहिए और वो दिल को लगती भी है, पता है आपको सच्ची बात वाकई दिल तक पहुँचती है। अपना ख्याल रखिएगा एंड खुश रहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, तो इतने प्यारे प्यारे मेरे साथ कॉलर्स जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर किसी ने अपने हिसाब से इस टॉपिक पे बात की और ज़्यादातर मेजॉरिटी ने यही कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन कभी भी लास्ट इम्प्रेशन नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं जो इंसान को उस वक्त डोमिनेट कर रहे होते होंगे। और एक चीज़ आपने सुन रखी होगी शायद, या हो सकता नहीं सुना, एक वर्ड है थिन स्लाइसिंग। थिन स्लाइसिंग एक तरह की साइकोलॉजी है जिसके मुताबिक हमारा ब्रेन जो है वो कुछ सेकेंड्स में लोगों के बारे में अजम्पशंस बनाता है, ठीक है, उसमें रियलिटी नहीं होती, अजम्पशंस बनाता है और उन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पर हम कोई किसी तरह का कोई जजमेंट पास करने लगते हैं। यहाँ पर डिसीजन नहीं है, जजमेंट है। अब हमारे दिमाग में किसी शख्स की अपीयरेंस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी आवाज़ है या फिर उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसे कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें फौरन ही एक इमेज या एक स्टोरी जो है वो क्रिएट करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसके बारे में कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं, जो कि हमारे साथ जो हमारे लिसनर जुड़े शिमोन उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल उस बात को सेकंड करूंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब हम किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन को क्रिएट करता है, वो कहीं ना कहीं मौका देता है कि लोग इनिशिएट करें आपसे। जैसे मैंने अपना बताया, इनिशियली मैं ही नहीं बहुत ज़्यादा इंट्रैक्ट करते थे, तो लोग मुझसे बिल्कुल भी नहीं इंट्रैक्ट करते थे। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन आपका पड़ा कि भाई तो बहुत रूड है या बहुत प्राउडी है या व्हाटएवर जो भी, तो कम से कम ऐसा बेसिक आपका रिएक्शन हो जहां थोड़ा सा लोग कंफर्टेबल हो, एफेबल हो, आपसे कनेक्ट कर सकें। लेकिन वापस मैं कहूंगी कि अपीयरेंस कैरेक्टर का कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं होता। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम किसी से पहली मुलाकात करते हैं उसे उस हिसाब से अज्यूम करते हैं, जज कर लेते हैं, फिर वो सिर्फ चीज़ें वही चीज़ें हम देखते हैं और वही चीज़ें हम सोचते हैं जो हम चाहते हैं, और ये चीज़ पता है क्या कहलाती है, कन्फर्मेशन बायस। ये कन्फर्मेशन बायस एक और नया शो मैं कर रही हूँ स्मार्ट मनी, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से फाइनेंशियल डिसीजंस में कन्फर्मेशन बायस काम करता है, लेकिन वो लाइन मुझे यहाँ पे भी याद आ गई। ये साइकोलॉजी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि जो हमने सोचा है, जो हमारी ओपिनियन है, उसे हम ऑटोमेटिकली सही प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। इमोशनल एंगल इसमें इन्वॉल्व होगा और बहुत सारे एंगल्स जो है इन्वॉल्व होंगे, लेकिन पावरफुल इम्पॉर्टेंट बात जो हमें और आपको समझनी और याद रखनी है कि वो सिर्फ हमारी असम्पशन थ्योरीज को ही सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज नेवर अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, दैट्स नेवर अ कंक्लूजन। कंक्लूजन किसी का हम नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। एक किताब को आप उसके कवर को देखते हो, उससे आपको उस किताब के बारे में एक इंप्रेशन तो हल्का सा पड़ता है कि वो ये बुक इस तरह की होगी, या फॉर एग्जांपल द साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो आपको समझ आया अच्छा मनी किस तरह से बनाना है, ये उस पर होगी। बट अगेन देन इतनी सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होती, जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी है, ओ ये भी इंटरेस्टिंग है. तो मैं यही कहूंगी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन को, फर्स्ट इंप्रेशन को इंफॉर्मेशन समझिए, कंक्लूजन नहीं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर इंसान को समझने के लिए टाइम दीजिए, कन्वर्सेशन होनी चाहिए, आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व करें और ओपन माइंडेड रहिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. बस यही कहा जा सकता है कि डोंट बी टू क्विक टू जज समवन. बस थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी अपनी बना के रखिए, बी काइंड टू एवरीवन. लेकिन इन सारी चीज़ों को इम्प्रेशन बनाने के लिए और लास्टिंग इम्प्रेशन बनाने के लिए टाइम लगता है. तो चलिए बस यहाँ पे इस टॉपिक को कंक्लूड कर रही हूँ. वापस आऊँगी तो गेम सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ जुड़ना है आपको. अच्छा, आज भी मैंने सोचा है कि चलो गाने वाने आप लोग को ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बाकी चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट होती चली जाती हैं, तो बस आज भी गाने का, इस वीक भी, ठीक है यूसुफ जी, इस वीक भी हम लोग जो हैं वो गाने वाले गेम को ही कंटिन्यू करेंगे. गाना बीच से मैं आपको सुनाऊंगी और आपको 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे, गाना आपको पहचानना है. यहाँ पे भी मैंने थोड़े से पुराने ही रखे हैं, ऐसे रखे हैं जो शायद आसान पड़े, आई थिंक, आई होप, ऐसा मैं सोच रही हूँ. बहुत सारे लोग 90s के बहुत डाई हार्ट फैन है, तो वो गाने ही मैंने रखे हैं जो 90s के हैं, जिससे आपको उन्हें पहचाना आसान हो. सारे के सारे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स हैं. सो बस आपको करना यह है कि कॉल करना है मुझे 4436377 पर. ऐसे तो मुझे बहुत सारी कॉल आ रही होती है, बट हाँ जैसे ही मैं गेम की बात करती हूँ बस एकदम चुप. नहीं तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको मुझे कॉल करना है या फिर आप मुझे मैसेज कीजिए 666-22-107. हाय हेलो भी करेंगे ना, तो मैं डायरेक्टली आपको गेम के लिए ले ही लूँगी. तो मतलब ये मान के चलिएगा हाय हेलो का मतलब है गेम इज़ ऑन.

जी गाइस वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नासिया आपके साथ 8:32 ऑन द क्लॉक. एंड यस अब आपके कुछ मैसेजेस इधर भी आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस तो मैं ले ही नहीं पाती. अच्छा यूसुफ जी ने बहुत ज़्यादा बड़ा वाला हैरान वाला मुँह बना के भेजा कि ये क्या बात हुई फिर से आपने सॉन्ग्स. अरे तो मैंने सोचा ना आपका ही इसमें फ़ायदा आप लोगों का जिनकी अच्छी वाली नॉलेज है ना सॉन्ग्स की तो

0: फिर वो सॉन्ग्स पहचानने वाला ही रखा है यूसुफ जी, इसलिए कि अच्छा है ना, आप खेलेंगे, आप जीतेंगे, एंड यू नो आप लोग कह, आप लोगों को ठीक भी लग रहा है, तो फिर क्यों नहीं रखे, बताइए मुझे जरा क्या रीज़न हो सकता है ना करने का. तो मुझे लगा चलिए यही वाला कंटिन्यू करते हैं. यू कैन कॉल मी, राज जी कह रहे हैं कि आप मुझे कॉल कर सकती हैं. नाइस, ये बात मुझे राज के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा बंदा ना ट्राई ज़रूर कर लेता है कि चलो जो है सो है, मैं ट्राई तो कर ही लेता हूँ, खेल तो लेता हूँ. बाकी लोग जो है वो खेलने के नाम पर भागना शुरू करते हैं पीछे की तरफ कि नहीं मैं तो खेलूँगा नहीं. ट्राई करना चाहिए हम सबको, कभी ना कभी हर चीज़ ट्राई कीजिए. देखिए टॉपिक पे तो हम बात करते ही करते बड़ा मज़ा आता है, बट इस तरह के गेम्स में भी जो है ना अपनी मेमोरी को, अपनी स्किल्स को ट्राई करना, यू नेवर नो कि आप जो है बहुत अच्छी मेमोरी रखते हो और आपको पता ही नहीं चलता है, आप रिकॉल एकदम कर लेते हैं चीज़ें, तो ट्राई करना चाहिए उसके लिए. ठीक है, तो मेरे साथ यहाँ पे कॉलर जुड़ गए हैं. हेलो
1: हेलो, सलाम वालेकुम. हम जुड़ जाते हैं, जीतना जीते कॉल करने से करना क्या,
0: पता है जीत जाते हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि खेलते हैं.
1: नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बेले बैठे रहते पूरे दिन, हम बात करते रहे, कोई मसला नहीं. खाली आप जैसे आरजे मुझे मिलते रहे, अच्छी अच्छी बातें बताते रहे, सिखाते रहे, बस हम तो हमारा टाइम पास होते रहता
0: है. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. क्या
1: बात है यार, जिंदगी का हिस्सा है ये गेम और ये सब, थोड़ा बातचीत करना गप सप. अब मैं आप लोगों के टॉपिक से शायद हो सकता है हटके बात किया हूँ, क्योंकि मैंने आज थोड़ा सुना.
0: हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई. ओके, मैं चाहूंगी कि वापस प्लीज कॉल करिए. हेलो राज हमारे साथ
2: है. मैडम
0: जी जी जी जी, कैसे हैं आप? और रईस जी की कॉल ड्रॉप हुई. रईस जी मैं आपको भी वापस से मिलाती हूँ. तो पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो लोग इतनी हिम्मत करते हैं गेम खेलने की, क्योंकि गेम खेलने के टाइम ना सारे लोग जब पीछे पीछे हट जाते हैं, पीछे भागते हैं उल्टा, लेकिन आप चलिए इस डायरेक्शन में भागते हैं और आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं. सो नाइस, खेलें आपके साथ गेम. हमने वही वाला रखा जो लास्ट वीक था कि लेट्स सी, थोड़ा सा इसे एस्टैब्लिश कर लेते हैं. तो बीच से गाना चलेगा, आपको पहचानना है गाने को कि है कौन सा. ठीक है, सो चलिए ऑल द वे बेस्ट. और आपके पास एग्जैक्टली 30 सेकंड्स होंगे और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. क्या बात है, सही. हाँ, ये तो मैं खुद नहीं पहचान पाई. बिल्कुल सही.
3: लबों का जैसा ये शरारत करे न माने, कहना न माने जरा सा.
0: क्या बात है,
3: मुखड़े को आके चूमती है चांदनी.
0: ओए हे, क्या खाते हैं आप बताइए मुझे. क्या बात है भाई, 5 मैंने चलाए और सच पूछिए तो पहला तो मुझे नहीं याद आ रहा था कि था कौन सा. आपने पहचान लिया बिंदिया चमके, फिर मैंने देखा हाँ ये तो वही था. इतने मुश्किल थे सारे के सारे, आप कैसे कैसे पहचान पाए सारे भाई.
1: गाना थोड़ा दिमाग में चला लेने का तो ऑटोमेटिक आ जाए.
0: हार्ट सॉन्ग, इंटेलिजेंट है आप. आप बहुत इंटेलिजेंट है.
1: आई कीप हियरिंग ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग कीप्स.
0: क्योंकि ये बहुत टफ और चैलेंजिंग होता है, बीच से चले और कोई पहचान पाए. सो इट्स दैट वे. बट हैट्स ऑफ, यू आर रियल चैंपियन. बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा खेला. टाइम ही 30 सेकेंड्स पे 5 चल पाए और 5 के 5 आपने अटेम्प्ट किया, 5ों सही. क्या बात है, आई एम सो इम्प्रेस. राज यू आर रियली अ चैंपियन. और इस बात के लिए और भी चैंपियन कि आप जो है ना खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, अब जुड़ते हैं. थैंक यू जी, हैव अ ग्रेट डे. अपना ख्याल रखिएगा. ओके बाय. सो दोस्तों यहाँ पे राज हमारे साथ जुड़े जिन्होंने 5 का स्कोर कर लिया है. एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो
1: भैया, हम वापस आ गए हारने के लिए. हमारे राज भाई को कंग्रेचुलेट करते हैं. जितने गाने आपने चलाए तो शायद मैं एक को बता पाता, बाकी एक भी नहीं बता पाता अगर मेरे साथ में. क्योंकि यार बड़ा बेहतरीन, उनका मतलब ये है कि बीच में से गाना पकड़ना,
0: ये
1: गाने की बोल को सुने रहते हैं उसको, लेकिन वो जहन में नहीं आता यार स्टार्टिंग वाला बोल कौन सा है, कैसे है वो. हाँ वो, बल्कि सलीम भाई नहीं मतलब जो कहा था कि थोड़ा 80 के 85 के चलाओ तो उसमें तकरीबन मैं ज्यादा पकड़ लेता था, लेकिन ये 90 वाले में थोड़ा मैं थोड़ा वीक, और गाने होने पे थोड़ा सा इतना जहन में रह नहीं जाता है, बात ये
0: हाँ ये तो है, पर चलिए अच्छी बात है, इसे आप कम से कम जोड़ते तो हैं, आप तो ट्राई तो कर लेते हैं,
1: थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, आवाज सुन लेते हैं, सुना देते हैं, बस इतना,
0: ये इम्पोर्टेंट है, ट्राई करना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। चलिए ट्राई करते हैं आपके साथ, 5 इज हाईएस्ट, कोशिश कीजिए, एक हाथ तो आप पहचान लिए, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद, पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, अब ठीक है कल कर लेंगे, कल ऐसा कर लेंगे, तो अभी तो मैं क्योंकि एडिट कर चुकी हूँ सॉन्ग्स, तो इसलिए अब तो टाइम नहीं है, कल कर लेंगे
1: जी जी, आप फॉर्मेट जो है उसका गेम का उसी हिसाब से टाइम रहे आप।
0: ओह सो नाइस, चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करती हूँ, 30 सेकेंड्स एग्जैक्टली आपके पास है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।

0: मस्कलंदर करके कुछ गाने का ऐसे बोल है वो दमा दम मस्कलंदर करके कुछ इस गाने को मैंने सुना है
1: कितने अच्छे इंसान है
0: दमा दम मस्कलंदर नहीं मतलब उसी के तर्ज पे है
1: ये तो सही कहा उसी से मिलता जुलता गाना है
0: वो आवाज वो नहीं है थोड़ा सा हटके है लेकिन अच्छा गाना है सुनने में अच्छा लगता है बड़ा मजा आता है
1: देखा कितना अच्छा पॉपुलर गाना था बट आपने पिक नहीं किया बता तो सकती थी लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी थोड़ा टाइम है और कोई जुड़े तो शायद उनसे मैं ये पूछ लूँ तो इसलिए अभी मैं रिवील नहीं कर रही हूँ बट आपने एटलीस्ट एक तो पहचाना है तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने कुछ भी स्कोर नहीं किया नाइस कोशिश की और एक स्कोर किया ही किया आपने ट्राई करेंगे
0: बात हो गई हो गया चलो इंशाल्लाह करते रहेंगे हम नहीं हारेंगे हर दिन हाँ हारते भी रहेंगे तो भी हम जुड़ते रहेंगे
1: अरे आप कभी भी नहीं हारते हैं आप सीखते रहते हैं एक दो गाने आपको नए पता चल जाते हैं हमेशा सीख रहे हैं हमेशा कुछ ना स्कोर करें हार कहाँ रहे हार तो तब कुछ भी नहीं आ रहा है
0: आप लोग आपका ये शो जो आता है दो तीन घंटा हम लोग को इतने बेहतरीन तरीके से गुजर जाता है ना पता भी नहीं चलता
1: बहुत अच्छा वाकई कहाँ निकल जाते हैं समझ में नहीं आता
0: और हमें अंदाजा नहीं लगता यार आपके जाने का टाइम हो गया इतना जल्दी ये
1: तो है चलिए
0: इंशाल्लाह
1: ओके वालेकुम अस्सलाम तो यहाँ पर अभी मैं कहूंगी कि 5-1 दो स्कोर दो चैंपियंस मेरे साथ जुड़े दोनों का अलग स्कोर है मैं चाहूंगी कि आप लोग भी जरूर मेरे साथ जुड़िए नंबर है 443-443-77 अगर आपको ऐसा लगता है देखो राज जी ने गाना पहचान लिया वहां से इतने मुश्किल सॉन्ग यूसुफ जी कह रहे हैं क्या हुआ है लेकिन हैट्स ऑफ बोलते हैं राज इस चैंपियन जी जी और आप भी आइए आप भी तो चैंपियन है ट्राई तो कीजिए मैम हमको फ़ोन लगा लो अच्छा ठीक है हम आपको फ़ोन लगा लेते हैं ये आई थिंक सरफराज आलम जी का है मैसेज लेकिन उसके पहले एक और कॉलर खुद यहाँ पर जुड़ रहे हैं सो लेट्स गेट कनेक्टेड हेलो वही ना तो आज आप बाजीगर बनेंगे जीत के ट्राई कीजिए हाँ ये बात है अच्छी लगी मुझे कि ट्राई करना चाहिए तो 30 सेकेंड्स आपके पास टाइम है अगर नहीं पहचान रहे नहीं समझ में आ रहा कोई गाना तो आप मुझे पास बोल सकते हैं तो फिर मैं दूसरा जल्दी सुनाऊं नहीं तो 30 सेकेंड्स जल्दी से निकल जाते हैं
2: वो तो 107 का वो तो पहला डायलॉग है बस पास बोलने
1: चलिए ठीक है आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं ऑल द वेरी बेस्ट आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कौन सा गाना
2: हम तुम एक कमरे में बंद हो
1: अरे नहीं ये नहीं है फिर दूसरा सुनिए

0: ఇవాళ నీ ప్రసాదం అసే ఈ కోట ఫైనలీ ఏ లడ్కి బహుత్ యాద్ ఆతీ హై యే గానా ఆప్నే సహీ పెహచాన్ లియా क्या आपने पहचान लिया मुझे खुशी है कि एटलीस्ट आपने ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ भी नहीं पहचाना ये फाइनली आपने सॉन्ग पहचाना कोई बात नहीं
1: जो पांच का पांच तीन किया ना बेटा मैं तीन गाना तो ऐसे में पहचान गया फर्स्ट गाना में भी मेरे को भी कंफ्यूज हो गया
0: अच्छा
1: पर ये दिलासी गाना का
0: कोई गाना कहीं से भी चला दो सुन ले बता देते हैं बताओ
1: नहीं इसको बोलो कभी भी जान बुझ के हार जाओ किसी का तो मौका
0: जीत लेगा वो तो बेचारे बहुत पहले ही आ जाते हैं उसके बाद भरपूर ऑप्शन है कि और लोग आए ट्राई करें और जीते बट लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते ना ये बड़ा प्रॉब्लम है हाँ अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो विन कैसे करोगे तो ये इम्पोर्टेंट ट्राई तो करो है ना जैसे आपने ट्राई किया नेक्स्ट कलर को कॉल करती हूँ चलिए ओके अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का अल्लाह हाफिज ऑल राइट दोस्तों मैं सोच रही हूँ एक दो गाने और मैं यहाँ पर एडिट वाले इधर कर लेती हूँ तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं वापस आएंगे तो सरफराज जी को कॉल करेंगे और इनकेस अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है खेलने के लिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 4436376377 पर

0: Alright guys, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नासिया आपके साथ 8:47 ऑन द क्लॉक और एक और हमारे साथ चैंपियन यहाँ पर जुड़ रहा है, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सरफराज आप, खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है मैम आपका?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। पहले तो अपनी आप पीठ थपथपाइए, ड्राइव तो नहीं कर रहे? इसलिए क्योंकि लोग जो है ना गेम में थोड़ा सा डरते घबराते हैं, बट आपने ऐसे बिंदास तरीके से लिख के भेजा कि आप मुझे कॉल कर लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो, कुछ लोग हैं जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तैयार हैं, है ना?
1: ठीक है, हारेंगे जीतेंगे, कोई नहीं।
0: अरे नहीं हारते हैं, हारता कोई भी नहीं है, बस या तो जीतते हैं या सीखते हैं, बस यही चल रहा है। हम लोग हार तो रहे ही नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर रहा
1: है।
0: ये बात कही आपने, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये हम सब के लिए यही नहीं और जगह भी जरूरी है।
1: हमारे दोस्त समीर भाई कॉल करने से बहुत डरते, तो मैं बोला लगाओ यार, मैं बाजू में बैठा हूँ, लगाओ आप कॉन्फिडेंस आ गया उनको भी।
0: हाँ, ये चीज अच्छी हुई, चलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो भी आपके साथ जुड़ते हैं और आप भी आज फाइनली खेल रहे हैं हमारे साथ। तो 30 सेकंड्स आपके पास टाइम है, कुछ समझ में ना आए जल्दी से पास बोलिएगा तो मैं आपके लिए झटपट से दूसरा प्ले कर दूंगी, ठीक है? चलिए आप तैयार है तो हम आपके साथ गेम का आगाज करते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बिल्कुल सही।

0: गाना है।
1: वाह बिल्कुल सही, हर कर्म अपना करेंगे, बिल्कुल सही पहचाना।
2: यूं तो हम तुम मिलने को मिलते
1: कोई मिल गया इज द राइट आंसर। इस तरह से आपने समंदर पहचान लिया, जादू जादू पहचाना है, हर कर्म अपना करेंगे, कोई मिल गया, 4 का स्कोर। क्या बात है भाई, क्या बात है सरफराज जी, फाइनली सेकंड हाईएस्ट स्कोर है आपका, बहुत अच्छा आपने पहचाना। चलिए देखिए, आपने ट्राई किया तो आपने 4 का किया, एक बस आप चूके, बस एक ही आपने पहचान पाए बीच में, अदरवाइज देखिए कितना अच्छा आपने पहचान लिया। तो यही है कि ट्राई तो करना पड़ता है ना, तो बस ये इम्पोर्टेंट लेसन है।
0: हमारे राज भाई ने उनको चैंपियन रहना चाहिए, उनके काम से ज्यादा उनको है इस मामले में।
1: नहीं वो खुद कह रहे हैं प्लीज कोई और ट्राई करो, मुझे थोड़ा और चैलेंज करो, सो दैट आई विल गो फॉर 7-8, मैं उसके आगे भी बढ़ूं। ठीक है,
0: कोई बात नहीं, हमारे भाई एक ही बात है, बस ये गाना यही कर्मा वाला चला दीजिएगा, हर कर्म अपना करेंगे।
1: तो हमें पूछना पड़ता है, तो अभी तक हमें पता नहीं चला कि उसे चलाना है कि नहीं चलाना, टाइम एंड हो रहा था, तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट यही मैं प्ले कर देती हूँ कार्ट में, एडिटिंग में, सो दैट्स हाउ, ये एक है प्रोसीजर, आई होप आप समझ सकेंगे। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने फ्रेंड समीर उनको भी मेरी तरफ से हाय कहिए, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू हिम एज़ वेल।
0: और मेरा मेरा एक दोस्त है फिलिपिनो है, जेरार, कैन से समथिंग जेरार।
3: हेलो राजा,
1: हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग?
3: गुड, यू हैव अ गुड वॉइस।
1: Oh really? Thank you so much. Thank you so much. I'm glad that you guys are connected with each other and to my show, of course. Thank you. Thank you for that.
4: Assalamu alaikum.
1: Waalaikum assalam. Kaise hain aap?
4: मैं अच्छा।
1: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लगा कि आज आप नहीं खेले बट सरफराज जी खेले हमारे साथ, और कितना अच्छा उन्होंने स्कोर किया। So nice. हाँ,
4: अब मैं कुछ दिन आपको सुनूंगा, उसके बाद फिर खेलूंगा।
1: चलिए नहीं, हाँ देखिए पीछे सही बोलो, कल इंशाल्लाह कल खेल रहे हैं आपको, ठीक है?
4: बिल्कुल,
1: ओके, अपना ख्याल रखिए आप सब, अल्लाह हाफिज़, बाय, बाय, अल्लाह हाफिज़। सो यहाँ पर अभी देखा जाए तो हाईएस्ट अभी भी राज का ही स्कोर है 5, हालांकि सरफराज ने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने 4 का स्कोर किया, बट हाँ थोड़ी सी चूक हुई है। कुछ और मैसेजेस हैं, यूसुफ जी कल आपको भी खेलना है, यूसुफ जी बिल्कुल कल आपको खेलना है, ऐसे हैड्स ऑफ करके तालियां बजा के काम नहीं चलेगा, कल ट्राई करना है। यहाँ पे मुबीन बुखारी बगदादी जी हमारे साथ, एंड दैट टू आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग, इतने टाइम के बाद सभी लिसनर्स को सलाम कहते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप खैरियत से होंगी, अपना हाल चाल बताइए, अगर हो सके तो जुड़िए हमारे साथ,

शिराज है हमारे साथ, गुड मॉर्निंग कहते हैं. नाइस टॉपिक, थैंक यू सो मच कादिर अब्दुल हादी. और आपने जो कहा बहुत सही, बिल्कुल सही. आप सब का मानना यही है कि फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा लास्ट इम्प्रेशन हो ही नहीं सकता. और आप लकी हैं कि आपके बॉस ने बुलाकर आपको करेक्ट करने का मौका दिया, अदरवाइज सम पीपल ऑल्सो. इतना वर्स्ट मेरे साथ सीवी जी, कुछ तो ख्याल कीजिए, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं. मोहम्मद इब्राहिम जी हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग कहते हैं, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको. अमजद इकबाल जी हमारे साथ और सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग. एंड यहाँ पर आरिफ अंसारी जी, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है. चलिए इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब भी हम जैसे ही ढूंढेंगे, सबसे पहले हम ही आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे. फिलहाल दोस्तों अब वक्त हो गया है कि आपसे इजाज़त ली जाए, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल वापस सुबह 6 बजे आपकी और हमारी मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, आसपास अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, और हाँ सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

हुआ झुमका। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामीन किराम, जिंदगी को मुअत्तर करने वाली रूह परवर सुन्नतों में एक अहम सुन्नत ये भी है कि लोगों के दरमियान सुलह कराना। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि ताल्लुकात का दीन भी सिखाता है। इंसानों के दरमियान मोहब्बत, उखुव्वत और भाईचारा कायम रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी मकसद के लिए इस्लाहे ज़ातुल बैन को सबसे अफजल अमाल में शुमार किया गया है। हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त उक्बा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराता है और इस मकसद के लिए भलाई की बात पहुंचाता है या अच्छी बात कहता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक अजीम उसूल बयान फरमाया। वैसे आम हालात में तो झूठ गुनाह है, मगर अगर मकसद सिर्फ सुलह कराना और दिलों को जोड़ना हो तो ये झूठ नहीं बल्कि नेकी है। इस हदीस से हमें ये बात समझ में आती है कि अगर हर मुसलमान नफरत बुझाने और प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने में लगा रहे तो हमारा मुआशरा किस कदर पुरसकून और खुशहाल हो सकता है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ़ ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है। आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। बात करेंगे कतर के एक उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ी के बारे में जिनका नाम है अय्यूब अलवी। या दोस्तों, अय्यूब अलवी कतर के एक यंग फुटबॉलर हैं और इन्हें अभी रिसेंटली 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था। उन्होंने छोटी सी उम्र से ही फुटबॉल के साथ लगाव रखा और लोकल एकेडमीज में ट्रेनिंग हासिल करके अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया। उनका खेलने का स्टाइल एनर्जेटिक और मॉडर्न फुटबॉल के मुताबिक माना जाता है, जहां वो मिडफील्ड या अटैकिंग एरियाज में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अय्यूब की सबसे बड़ी खासियत उनकी फिटनेस, स्पीड और बॉल कंट्रोल है। वो प्रेशर सिचुएशंस में भी काम रहते हैं और टीम के लिए बेहतर डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, और उनकी पासिंग एबिलिटी और ऑफ द बॉल मूवमेंट उन्हें एक वर्सेटाइल प्लेयर बनाती है जो मुख्तलिफ पोजीशंस में अडाप्ट कर सकते हैं। कतर के डोमेस्टिक फुटबॉल स्ट्रक्चर में ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को डेवलप करने पर बहुत तवज्जो दी जा रही है और अय्यूब अलवी उन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कोचेज का भरोसा जीता है। उनका फोकस ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट पर रहता है जो उनकी ग्रोथ को मुस्तकबिल में और बेहतर बना सकता है। दोस्तों, अगर वो इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन को मेंटेन रखें तो आने वाले सालों में अय्यूब अलवी कतर की नेशनल टीम का मुस्तकबिल हिस्सा बन सकते हैं। उनका सफर अभी इब्तदाई मरहले में है, लेकिन उनमें पोटेंशियल वाजे नजर आता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगली बार एक और कतरी स्टार्स और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि सेहतमंद खाना पकाने के मुख्तलिफ तरीकों की और जानेंगे कि एक ही गिज़ा, एक ही खुराक मुख्तलिफ अंदाज से पकाने पर हमारी सेहत पर मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। हम में से अक्सर अफराद सिर्फ इस बात पर तवज्जो देते हैं कि क्या खाना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि खाना किस तरीके से पकाया जाए या ये देखना है कि किस तरीके से खाना पकाया गया है। यही तरीका उसकी गजाइत, कैलोरीज, फैट्स और सेहत पर असरात को बदल देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम आलू को उबालकर खाते हैं तो वो निस्बतन कम फैट्स वाला होता है, लेकिन अगर उसी पोटैटो, उसी आलू को गहरे कढ़ाई में तल लिया जाए तो इसमें कैलोरीज और जो फैट्स हैं कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह चिकन है, फिश है या सब्जियां हैं, अगर उसे स्टीम में पकाया जाए या बेक की जाए तो उसमें मौजूद विटामिंस और मादनियात ज़्यादा देर तक महफूज रहते हैं, जबकि ज़्यादातर जो है जब हम ज़्यादा देर तक पकाते हैं या जो टेम्परेचर पर उसे फ्राई किया जाता है तो उसके कई गज़ाई अज्जा जो हैं ज़ाया हो जाते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कभी सोचा है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, जिनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी,
3: आसान हो जाएगी।
2: सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ख्वातीनो हजरात, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ उनकी डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी डालेंगे। सामईन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम इल्मकार के बारे में जो इस्लाम की तारीख का एक रोशनी से भरा हिस्सा है और जिनका इल्म दुनिया भर में मशहूर है। आज हम बात करेंगे अबू यूसुफ याकूब इब्न इशाक अल किंदी की। अल किंदी के बारे में हम जानेंगे जो एक मशहूर अरब साइंटिस्ट, फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अल किंदी का असल नाम अबू यूसुफ याकूब इब्न इशाक था और उनका लकब अल किंदी था, जो उनके खानदान या ट्राइब से लिया गया था। उनकी असल जिंदगी सन 801 से लेकर 873 तक की थी और वो उन लोगों में

एलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रेयर लाइटिंग का काम करना, रेयर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड। इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कैरेवन्स या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरेवन्स का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरेवन्स की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों, अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो अलकिंदी का नाम उस दौर के बड़े इल्मकार के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में भी अपना कीमती हिस्सा डाला। उनका काम सितारों और उनके मूवमेंट्स के मुताले में था। उन्होंने एक ऐसे साइंटिफिक मॉडल को डेवलप किया जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को समझने में मददगार साबित हुआ। उन्होंने अपने साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए इख्तलाफात को एक्सप्लोर किया जो बाद में और भी साइंटिस्ट के लिए रास्ता बने। वो पहले साइंटिस्ट थे अपने टाइम के सबसे एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करने वाले और उनको बेहतर बनाने वाले। दोस्तों, अबू यूसुफ याकूब इब्न इशाक अलकिंदी का इल्म और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस सिर्फ उनके जमाने तक महदूद नहीं रहीं। उनका इल्म दुनिया भर के इल्मकारों में गुजरते हुए आज भी जिंदा है। उनकी फिलॉसफी और साइंटिफिक अप्रोच ने ना सिर्फ अरब्स को बल्कि पूरे यूरोप और बाकी कल्चर्स को भी इन्फ्लुएंस किया। उनका काम इस्लामिक गोल्डन एज का हिस्सा है और इस दौर में उन्होंने एक ब्रिज का काम किया जो ग्रीक और अरबिक नॉलेज को जोड़ता है। उनका काम ना सिर्फ उनकी जिंदगी में कद्र किया गया बल्कि उनका असर आज भी वेरियस फील्ड्स में यूज होता है। जो सोच अलकिंदी से मुतासिर थी उसमें हम एक कोशिश देख सकते हैं जो गैर फलसफे को मुसलमान तहजीब के तारीखी तरक्की से हम आहंग करने की कोशिश करती है। ये एक खास नुक्ता है जिसको हम किंडियन रिवायत कह सकते हैं, एक इल्मी लहर जो 10वीं सदी तक चलती रही, जो खास तौर पर अलकिंदी के पहले और दूसरी नस्लों तक तालिब इल्म से वाजे हुई। इसमें सबसे ज्यादा मशहूर शख्सियत अल अमरी हैं, जो एक जाने पहचाने नियो प्लेटोनिस्ट सोच रखते थे और अलकिंदी का दूसरा नस्ली तालिब इल्म था। ये रिश्ता अलकिंदी के तालिब इल्म अबू जैद अल बालखी के जरिए था। अलकिंदी से मुतासिर होने वालों में जुएश फलसफी इसाक इजराइली, जिसे अल्तमन और सैटन 1958 ने स्टडी किया है, और दूसरी तरफ 10वीं सदी के इल्मी मिसकवे भी शामिल हैं। इसके बरक्स अलकिंदी लैटिन वाले दौर के फलसफियों के लिए एक बड़ी शख्सियत थे। उनका काफी असर एस्ट्रोलॉजी पर था, जैसे कि बर्नेट 1999 में देखा गया है, लेकिन उनका काम जैसे ऑन द इंटेलेक्ट भी तर्जुमा हुआ था।

था और जैसे पहले कहा गया कुछ काम जो किंडियन कॉर्पस में हैं सिर्फ लैटिन में ही मौजूद हैं। इनमें से एक ऑनरेज को गाइल्स ऑफ रोम के जरिए एक पॉलेमिक का शिकार बनाया गया। भाई इस पर हम ये भी कह सकते हैं कि फलसफे का इस्लामिक दुनिया में जो वसी विरसा था वो भी अलकिंदी की मेहनत का नतीजा था और ये दो तौर पर था। पहला जो तर्जुमे किंडी सर्किल ने किए वो सदियों तक स्टैंडर्ड फलसफी किताबें बन गए, खास तौर पर उनके एरिस्टोटेलियन कामों के तर्जुमे जैसे कि मेटाफिजिक्स और प्लॉटिनस का काम जो थियोलॉजी और एरिस्टोटल में मौजूद था। दूसरा जबकि ऐसे लेखक जैसे कि अलफराबी और एविरोइस अलकिंदी का ज्यादा जिक्र नहीं करते, अलफराबी ने तो कभी नहीं किया और एविरोस सिर्फ उनकी फार्माकोलॉजिकल थ्योरी को तनकीद करते हैं, लेकिन वो उसकी फिलहेलेनिक मनहज को आगे बढ़ाते हैं जिसमें फलसफे का अमल ग्रीक फलसफी कामों से वो मुस्कुराता ताल्लुक रखता है। दोस्तों बात करें अलकिंदी के अखलाक और अमली फलसफे की तो ज्यादा जिक्र एक रिसाले फी अल हिलाली दफ अल अहजन गम को दूर करने का फन में होता है जो कि उसकी असलियत पे शक है। फहमी जदाइन 1968 के का कहना है कि अलकिंदी पर स्टोइक रिवायत का गहरा असर था, खासतौर पर एपिक्टेटस के ख्यालात का जो इस वक्त इस्लामी दुनिया में सीरियक क्रिश्चियन उलेमा के जरिए मालूमात में आया था। अगर ये स्पेसिफिक मदन के जरिए नहीं हुआ तो एपिक्टेटस ने दुनिया से आजादी और इंसान के इख्तियार को बढ़ावा दिया था जो अपनी आखिरी आजादी के जरिए अपनी खुशी का जिम्मेदार होता है और दूसरों से आजाद होता है। उसका आखिरी लॉजिक ये था कि अगर जिंदगी जीने के लायक ना हो तो खुदकुशी की इजाजत है। ये बात अलकिंदी में नहीं मिलती। एस्टोइक के लिखे हुए रिसालों की तरह अलकिंदी का ये रिसाला जो कि फलसफे की तस्फीये के किस्म का है कारियों को जहन और रूह की जिंदगी पर तवज्जो की हिदायत देता है ना कि जिस्म की। अलकिंदी कहते हैं कि इंसान अपनी असल शख्सियत रूह में होता है, जिस्म में नहीं, और फिर वो दुनिया में नजर आने वाली चीजों की आदम मुमकिनियत पर कहते हैं कि जो इंसान वो चाहता है जो फितरत में नहीं, वो उस चीज की तमन्ना करता है जो मौजूद नहीं। इस रिसाले में अलकिंदी अपने अंदर का इत्मीनान कायम करने की बात करते हैं जो इंसान के अपने अंदर की आजादी के जरिए मुमकिन होता है। अगर दुनिया के माल और दौलत की फिक्र हो और फिर वो खो जाए या नुकसान हो जाए तो ये इंसान के जहनी सुकून को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए FM 107। दोस्तों ट्रैफिक साइन का ख्याल करने से सड़क की हिफाजत बढ़ती है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक साइंस को समझना और उन पर अमल करना सड़क पर सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बना देता है। ये साइंस हमें स्पीड, रास्ता और खतरे के बारे में आगाही देते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अगर हम इन निशानियों का एहतमाम करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ट्रैफिक साइंस का इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे सफर को आसान बनाता है बल्कि ये हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करता है। हर साइन का अपना एक मकसद होता है जैसे कि स्पीड लिमिट, नो एंट्री या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है। अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा कम कर सकते हैं।
यह सफर को ना

0: सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किलात से बचाने वाला बना देता है। हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। स्टोइक के ख्यालात जो दुनिया की चीजों की वक्त गुजर और नापायदारियत को समझते हैं। अलकिंदी कहते हैं कि इंसान को अपनी मनपसंद दुनिया की चीजों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और प्लूटार्च के ऑन मोरल वर्च्यू से एक मिसाल देते हैं। इस कहानी में नेरो को एक खूबसूरत शिकार क्रिस्टल का टेंट दिया जाता है जिसमें वो काफी मोहित होता है। वहाँ एक फिलोसफर जो मौजूद होता है उसे ये कहकर नसीहत करता है कि वो ऑलरेडी अपनी चाहती हुई चीज के लिए फकर का शिकार हो गया है। अगर नेरो को ये चीज खो जाए तो वो दुख भुगतने वाला है क्योंकि ये चीज ना मिलने वाली है। बाद में जब ये चीज समुंदर में खो जाती है तो नेरो पूरी तरह से उदास हो जाता है। इल्मी लोगों का कहना है कि ये रिसाला एक अजीम हिकमत और हेलेनिस्टिक सोच का इख्तिलाफ है जो कि किसी भी किस्म का किंडियन ख्याल नहीं दिखाता। इब्न मिसकाविया अपने अखलाक पर लिखी हुई ट्रेटाइज तहदीब अल अखलाक में अलकिंदी के ख्यालात का हवाला देते हैं। कुछ अखलाकी गुफ्तगु दूसरे रिसालों में भी मिलती है। रिसाला जो डेफिनेशंस पर है उसमें हिकमत, हिम्मत और वसत का जिक्र है। हर एक वर्च्यू जो रूह में मौजूद होती है जिस्म में भी उसकी अक्साम नजर आती हैं। वर्च्यू दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक मरकज है। दोस्तों, अलकिंदी के ख्यालात का असर बाद में भी 12th सेंचुरी क्रिश्चियन लैटिन वेस्ट में देखने को मिला क्योंकि उनके कुछ रिसाले स्कॉलिस्टिक्स के जरिए लैटिन में तर्जुमा किए गए, खासतौर पर डी इंटेलेक्टू ऑन द इंटेलेक्ट। 13th सेंचुरी में गाइल्स ऑफ रोम ने अलकिंडस को दूसरे फलसफियों के साथ अपने काम एरोरस फिलोसफिरम में तनकीद की। अलकिंदी के काम का कुछ हिस्सा ही जिंदा है इसलिए उसका जायजा मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन अलकिंदी का असर वेस्टर्न इस्लामी रिवायात में ईस्टर्न के मुकाबले में ज्यादा लंबे वक्त तक जिंदा रहा। जैसे कि 12th सेंचुरी के मिस्टिक इब्न अल अरबी के लिखे हुए मकालत में अलकिंदी के साथ ही जो के रीजन को मुकद्दस दीन के हवाले से समझने की कोशिश करते थे। इस्लामी फलसफे की रिवायत का आगाज होता है जो बाद में इब्न सीना और इब्न रुश्द के काम के साथ जारी है। तो दोस्तों, आज हमने अबू यूसुफ याकूब इब्न इशाक अलकिंदी की इल्म और साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस पर रोशनी डाली। उन्होंने जो इल्म और सोच का उसूल दिया वो आज भी हमारे लिए एक गाइड है। उनकी जिंदगी और उनके काम हमें ये सिखाते हैं कि इल्म सिर्फ एक दौर तक नहीं महदूद होता बल्कि हर दौर में इसकी अहमियत और ताकत होती है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अलकिंदी के बारे में मालूमात मिलकर अच्छा लगा होगा। आपसे गुजारिश है कि अपने आसपास के इल्म की कदर करें और हर दौर में इल्म की राह पर चलने की कोशिश करें। इसी के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे अरबी साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें सोशल मीडिया में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो अगली मुलाकात तक के लिए साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को दीजिए इजाजत। सुनते और देखते रहिए FM 107। दिल से।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ। फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन एफएम 107। दिल से देसी। दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं एफएम 107।
4: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथियों, इस वक्त एफएम 107 की घड़ी बजा रही है 11:01, और जब तक मैं आपसे बात करूंगी मतलब अगले 5 सेकंड में हो जाएंगे 11:02, और टाइम हो चला है सफा के साथ। देखें हमारे सरव भाई ने आज हमें डिच कर दिया है, तो टाइम हो चला है सफा के साथ सुनने का।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अरे कबीर भाई क्या किया आपने, भांडा फोड़ दिया। मैं कह रही थी, मैं भी बोलती हूँ कि सरवर भाई जो हैं वो नहीं आए।
2: देखिए जब एकदम से कोई चीज होती है ना लाइफ में तो वो हो जाती है, आज आपके साथ भी वो चीज हो गई।
1: बहुत बुरा किया सरवर भाई कबीर भाई ने बोलकर,
2: आज आपके साथ भी वो चीज हो गई है। तो मैं एकदम से कहते ना कि प्रकट हो गया हूँ इस वक्त, और बहरहाल
1: मैंने तो ये सोचा था मैं तो अभी ऑडियंस को चिढ़ाऊंगी क्योंकि इतने सारे लोग आपका बैठे हुए इंतजार कर, वो छोड़े मैंने तो सरवर भाई को ना
2: खड़े होकर इंतजार क्यों नहीं किया लोगों ने मेरा।
1: मैंने सरवर भाई को 2 हफ्ते पहले मैसेज करना शुरू कर दिया था कि सरवर भाई देखो आपके बीवी बच्चे आपको इतना याद ना कर रहे होंगे जितना आपको ऑन एयर याद किया जा रहा है, जितना मैं याद कर रही हूं कि आगे शो साथ कर लो भाई।
2: भाई उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, और कैसे हैं सब लोग। मैंने सभी को बहुत मिस किया, और नहीं सच्ची बात कह रहा हूं यार, काम से दूर और दिल से दूर और नजरों से दूर वाली बात जो है
1: वो हजम नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही सरवर भाई।
2: नहीं ये हकीकत है सफा, और जैसे कि ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ था, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम और आप ये पूरे सेशन में अब जाके मिले, जबकि प्रोग्राम असाइन हुआ था दोनों को शुरू से ही। जब शुरू में मैं आया तो आप छुट्टी पे थी, आप आई तो मैं छुट्टी पे चला गया, और अब जाकर हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं भाई।
1: सभी को सलाम कहते हैं, किनारों जैसे हो गए थे हम तो,
2: मगर मिल तो गए। चलिए कम से कम जाते जाते सही, 2 हफ्ते का टाइम ही सही, एक और खुलासा करते चले आज शुरुआत से ही कि 2 हफ्ते का ही टाइम है।
1: देखो ज्यादा खुशी अच्छी नहीं होती,
2: हम दोनों को एक साथ 2 हफ्ते के लिए ही आप सुन पाएंगे। तो भाई 2 हफ्ते जितनी भी बातें हैं जितनी एंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ कर लीजिए, और प्रोग्राम तो आपको मालूम ही है सिलसिला के पूरे 2 घंटे मैं और सफा आपके साथ मौजूद हैं। उन सभी लोगों के लिए जो हमें अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन करेंगे या पहली बार ज्वाइन करेंगे आज,

0: क्योंकि भाई ऐसा होता है कि लोग छुट्टियों से वापस आ रहे हैं ना,
1: जैसे कि मैं समझ नहीं आ रहा था,
0: कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे मुझे आज समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, बट हल्के हल्के चीजें अपनी जगह आ जाती हैं। काफी प्लानिंग ऐसी भी होती है कि जो लोग छुट्टी से वापस आ रहे होते हैं वो अपने साथ मेहमानान को लेकर आ रहे होते हैं, भले ही वो वालदेन हो, बहन भाई हो, या कुछ ऐसे लोग हों जो पहली बार नए आ रहे हों, तो उन सभी के लिए बता दें कि आपकी फैमिली के अलावा आपकी दूसरी फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है FM 107, और जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं। नंबर हमारे आप लोगों को पता ही है, फिर भी बता देता हूँ मैं खुद भी, मुझे याद करने की जरूरत है, 2 महीना हो गए, तो 666-22-107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके जरिए से इसके सिलसिले से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वहीं 443-443-77 आप कॉल कर सकते हैं, मेरी खैरियत ले सकते हैं, हाल अहवाल पूछ सकते हैं और अपना हाल अहवाल भी बता सकते हैं, बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। बाकी तो सफा ने आप लोगों को बहुत खुश रखा इस बीच, जैसा कि
1: आपकी फैन फॉलोइंग अलग है भाई,
0: अरे सफा आप
1: भारी लोगों की भारी फैन फॉलोइंग होती है,
0: आप हमसे भाई सीनियर हैं।
1: अब ये नहीं समझ में आया मुझे, जो कि उम्र में कि एक्सपीरियंस में, दोनों में ही मैच नहीं कर रहे सरवर भाई।
0: चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे, और जितने भी लोग वापस आ रहे हैं अब छुट्टियों से और अपने अच्छे से हिसाब किताब के जरिए जुड़ेंगे, अपनी अपनी जगह ले लेंगे, जैसे कि मैंने भी आज अपनी जगह ले ली है। फिलहाल गर्मी स्टूडियो में भी हो रही है या सिर्फ बाहर ही हो रही है?
1: ये बात मैं ऑडियंस को बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि सरवर भाई और मेरी टसल इतनी बुरी रहती है ना एसी पर,
0: मगर मैं बता दूं कि ये हार चुकी है बहुत पहले, इनको मैंने एक रजाई, एक जैकेट मोटी वाली
1: और कनाडा वाली जैकेट,
0: एक नए तरीके का फिर यंत्र लेकर आई है, एक चटाई सी लाई, उसके अंदर भाई कुछ रोडे सी लगी हुई है,
1: हीटर, मैंने कहा
0: हीटर। मैं कहा ये क्या भाई, तो पता चला वो चार्ज कर रही है उसको बेचारी हीटर, मतलब रजाई हीटर वाली, यार ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। तो भैया इतनी ठंड किसी को लगती है, मुझे तो नहीं मालूम,
1: तो वो मैं हूं,
0: और वो इस माहौल में इस गर्मी में, तो वो सफा है, मगर फिर भी मैं ही जीता यहाँ पर और इनको मजबूर किया कि ये रजाई और चादर
1: पे रखा हुआ है उन्होंने टेम्परेचर,
0: और मुझे गर्मी लग रही है, देखिए आप पसीने आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि शायद वेदर बाहर ही ज्यादा गर्म नहीं अंदर भी गर्म है, तो
1: कौन सी चक्की का आटा खाते हो भाई, कौन सी चक्की, ब्रांड नेम बाद में बताना मुझे।
0: वेदर का हाल अहवाल जान लेते हैं,
1: वेदर का हाल अहवाल ये है कि आज जो है टेम्परेचर जाएगा मैक्सिमम 45 पर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगस्त के मिड तक जो है ना, अगस्त के एंड तक कुछ ऐसा सिलसिला हो जाएगा कि टेम्परेचर काबू में आना शुरू हो जाएगा, अल्लाह ताला का करम है। तो भाई आज टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस तक, और अभी का अगर टेम्परेचर बोला जाए तो भाई मैं आपको बता दूं कि 44 डिग्री सेल्सियस अभी का टेम्परेचर हो रहा है, हवाओं की अगर रफ्तार देखी जाए तो मेरी रफ्तार से कम ही चल रही है, मतलब ये कि 10 से 11 किलोमीटर
0: आपको कौन बीट कर सकता है, आपको कौन
1: 10 से 11 किलोमीटर पर आर के हिसाब से रफ्तार चल रही है हवा की, जो कि गर्मी के मौसम में सही है।
0: अब ह्यूमिडिटी जो है वो असर असली डालती है, और अब जो वेदर आने वाला है वो ह्यूमिडिटी का आने वाला है, उसमें हम सब ने तैयारी रखनी है, और इस वक्त 30% है ह्यूमिडिटी, इस वक्त
1: 24 से 30 के दरमियान,
0: तो आपने जो बताया वेदर है तो 44 बट फील्स लाइक इज 48 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ।
1: अरे अच्छा, अक्सर औकात पता है क्या होता है, मैं टेम्परेचर बता रही थी 43-45, लोगों की गाड़ी में देखो टेम्परेचर पता नहीं कहाँ पहुंचा होता है। अच्छा मजे की एक बात बताऊं सर भाई, मजे की बात, यहाँ पर टेम्परेचर 43 दिखा रहा है, ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी में टेम्परेचर देखा क्या, सोचें
0: 50
1: नहीं
0: और ज्यादा
1: 36
0: अजी हाँ
1: मेरी गाड़ी का मीटर कुछ और ही दिखा रहा है, कुछ और ही, मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया से आया मेरी गाड़ी का टेम्परेचर, लेकिन क्योंकि वो मेरी गाड़ी है तो मैं खुश हूँ उसके अंदर,
0: जबकि गाड़ियाँ जो हैं ज्यादा दिखाती है भाई,
1: लोग भेज रहे थे ना 50-48 लोग भेज रहे थे पहले पिछले एक हफ्ते में, तो मैं देखूं मैंने कहा ये 50 वाले कौन है,
0: एक्चुअली 36 आपकी गाड़ी आपको अच्छी तरह समझ चुकी है और वो अपना दिमाग उसी हिसाब से चला रही है सफा, इसीलिए वो बता रही है,
1: मतलब इतनी ज्यादा कोई लो चले जाना कि मुझे ऐसा लगे कि भाई बाहर का मौसम आ गया, अरे वाह बाहर का मौसम आ गया,
0: नहीं बाहर का मौसम वाकई तो इस वक्त हमारे ममालिक में हुआ हुआ भाई, रिमझिम बारिश हो रही है, मॉनसून आया हुआ है, ये मैंने कुछ वीडियोस बीच में देखे, मुझे नहीं मालूम कि कितनी हकीकत थी, बट सोर्स सही था उसका, और मैंने देखा भाई कि कतर में बारिश हो रही है आउटर पे, मगर दोहा में नहीं, फिर मुझे पता चला
1: कि जो शुमाल में रहते हैं, जो इस साइड पे रहते हैं ना,
0: शानिया में बारिश भाई, और इसी तरीके की और भी दूसरी जगहों पे, फिर दोहा की बात आई तो फिर मैंने कहा कि क्योंकि शायद सफा इस वक्त, मैंने देखा कि कतर में 11 बज रहे होंगे, तो मैंने देखा सफा इस वक्त स्टूडियो में, तो शायद इसलिए बारिश नहीं हो रही।

0: होती है, तो लिहाजा
1: भाई अभी आपने अभी निपटना है कि ऑफर होने के बाद निपटना है,
0: लिहाजा आप थोड़ा सा शमाल और शानिया की तरफ चली जाएं ताकि वो बादल इस तरफ
1: मैं कह रही हूँ मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर शुमाल की साइड पे अब जाने लगी, क्योंकि जब देखो शुमाल वालों को अच्छा वेदर मिलता है।
0: वाकई यार ये बात तो है, और यहाँ तक सनहिया में भी हो जाती है बारिश, यहाँ तक नहीं आ पाती। जाने क्या बात है,
1: पापी लोग रहते हैं, पापी आप जैसे।
0: नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि वजू वगैरह करके बैठा करें ज्यादा।
1: मैंने तो इज्तिमाई दुआएं कराई थी रेडियो पर, मैंने चलो चलो हाथ उठाओ इज्तिमाई दुआ मांगो, इज्तिमाई दुआ मांगो।
0: कहीं ना कहीं तो बारिश हो जाए भाई, यही हम लोग इंतजार में हैं, और अल्लाह से दुआ भी करें कि इंशाल्लाह ताला। क्या कहती है सफा, ब्रेक पे जाने से पहले कॉल ले लेते हैं यार, सलाम दुआ तो कर ही लेते हैं।
1: सलाम दुआ कर लें, क्योंकि कॉलें धड़ाधड़ आपके नाम पे कॉलें आना शुरू हो गई इस टाइम पर। चले भाई सरवर भाई से कॉन्टेक्ट करने के लिए ये रहे हमारे पहले कॉलर।
0: हाँ जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आइए जी, कौन है हमारे साथ भाई? देखो अब ज्यादा मुझे इल्जाम मत देना, क्योंकि नसीम भाई हमारे साथ, क्या बात है
1: नसीम भाई, नसीम भाई ऐसा, नसीम भाई ना ऐसा लगता है किसी और जोन में रहते हैं।
0: हाँ किसी और जोन में रहते हैं बोलते
1: नसीम भाई, नसीम भाई ये जो आपका टैलेंट है बात का, कन्वर्सेशन का स्टाइल है, जो ये कहाँ से आया है? बस दादी अम्मा, बस गए, बस एक लफ्ज बोला गए।
0: आवाज भी इतनी दूर से आ रही है। नसीम भाई कैसे हैं, खैरियत से? मेरी खैरियत तो पूछिए यार
1: जबरदस्ती पूछिए,
0: कोई तो पूछो। क्या बोले
2: भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ बोलने का
1: कौन तो ठाली बोलने तो दो
0: जी, फरमाइए जी। नसीम भाई शेर के साथ शुरुआत होगी लग रहा है।
2: हम तो पलके बिछाए तेरे इंतजार में,
0: अब तो पलके बिछाए तेरे इंतजार में,
2: तेरे इंतजार में था।
0: हाँ
2: हाँ देर करते आते आते,
0: नहीं समझ में आया दूसरा
1: मुकर्रर मुकर्रर, तुम ही ने देर कर दी आते आते, हम तो पलके बिछाए बैठे थे तेरे इंतजार में, तुम ही ने देर कर दी आते
0: बहुत
1: आते।
0: देर की मेहरबान आते आते, क्या बात है
1: नसीम भाई है, मैं आपको बता रही हूँ ये आप चले जाएं इंडियाज गॉट टैलेंट में जीत कर आएंगे वो टैलेंट है आपके पास
0: नहीं क्योंकि इतना तो बोल देते हैं, मैं कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ ये है इनका असली लाइन जो है, कहते मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहरहाल जी भाई,
2: बर्तन धोने में
0: यार, बर्तन इतनी दिन में थोड़ी धुलते हैं, मैं तो काफी कुछ जितनी भी सर्दियों के सामान थे, रजाई, गद्दे, तकिए, जैकेटें, जितनी भी चीजें थी, धो के, धूप लगा के और संदूक में रख के, और संदूक को भी जगह पे ठिकाने लगा के फिर वापस आया। खाली बर्तन से क्या मतलब है यार, हैं के गए नसीम भाई, हो के गए
1: नसीम भाई, चले हम चलते हैं,
0: झूठ चले
1: नसीम भाई, आप चांद, मुझे लगता है चांद गाड़ी पकड़ के ऊपर गए।
0: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और पहली कॉल आपने करी आज, इंशाल्लाह ताला आगे भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नसीम भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे नसीम भाई, और शुरुआत हुई उनसे, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर तो आपको पता ही है 4434377, सही बोल रहा हूँ ना नंबर में?
1: हाँ,
0: हाँ बिना देखे
1: देखिए उर्दू में नहीं बोला करें, मेरा दिल जो ना धक धक करता है, मेरा दिल धक धक धक करता है।
0: 4434377 इज द नंबर, और
1: एक और कॉलर आज के दिन में कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सर्वर भाई।
0: नहीं बिल्कुल आज
1: चले भाई।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: नसीम भाई की सारी एनर्जी इन पर शिफ्ट हो गई
0: है। वबरकातुहू, अहलन व सहलन, कैसे हैं?
3: फाइनली गर्मी खत्म हो गई सरवर भाई।
0: अजी हाँ,
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सुनाए खैर खबर, कैसे हैं आप, कैसी रही आपकी छुट्टियाँ?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, और बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बट यही है कि जितना गुजरा उतना कम लगा। इंशाल्लाह ताला अब दोबारा से वो वक्त आए, इसी इंतजार में अब फिर आप लोगों के साथ जुड़ गए आके। उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। मगर गर्मियां तो अभी बाकी हैं,
1: मैं भी यही पूछने लगी थी कि
3: पता चलेगा सर भाई, अब और नहीं पता चलेगी अल्हम्दुलिल्लाह।
1: हाँ वैसे
3: तो अब ये भी निकल जाएगा।
1: वैसे इन्होंने बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि हमने 50 तक की ऑलमोस्ट गर्मी देख ली, तो वो अब नीचे आ रहा है टेम्परेचर।

0: मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक वो एक सितारा था, इसकी मैंने बात की थी, अब नाम भी भूल गई हूँ मैं उसका,
1: तो
0: वो नजर आता है,
1: नाम तो शायद
2: हमारी गजनी का नाम भी भूल गई है
0: वो हाँ ये मेरे साथ है मामला, मैंने अपने आपको गजनी करार दे दी है, मैंने अपना टाइटल रखा
2: है, भूलने की आदत है, अगर इनको ये किया जाए गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज करा दीजिए सर्वर भाई।
1: अच्छा, सबसे ज्यादा भूलने वाली।
0: अरे भाई बचपन में टीचर्स कहा करते थे वो ताना देने के लिए ना कि हाँ होमवर्क करना भूले, खाना खाना तो नहीं भूलते, आज वही टीचर मेरे सामने लेकर आओ मैं कहूंगी मुझे ये नहीं पता कि मैंने दोपहर को नाश्ता किया था, मतलब सुबह को नाश्ता किया था कि नहीं किया
1: मैं
0: था?
1: मैं समझ गया कि सही कह रहे हैं, बिल्कुल नाम लिखवाना पड़ेगा
0: लंच और ब्रेकफास्ट में और फर्क ना रह गया
1: बस सब, सब खैर रही साहब अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त गुजर गया अपनों के साथ और छुट्टी जरूरी होती है, मैं कहता हूँ कि जो छुट्टी नहीं लेते हैं उनको बहुत ज्यादा मैं इस बात की तारीफ करूंगा, बहुत लोग हैं ऐसे जो छुट्टी कम लेते हैं, लेते नहीं है, ले नहीं पाते तो
0: उनके घर में बेगमें होती होंगी ना वो वाली।
1: अच्छा ऐसा भी
0: जो कहती होंगी कि वो कहती होंगी हमें ऑफिस में ज्यादा सुकून मिलता है, बेगम की चिक-चिक से कौन वास्ता पड़े किसका।
1: चलिए
2: मेरे कुछ फ्रेंड है वो लोग इसी वजह से छुट्टी नहीं लेते हैं।
0: देखा मैंने कहा था ना,
1: तो इस वजह से छुट्टी तो लेनी चाहिए भाई,
2: अगर कोई तो वीकेंड में आके ड्यूटी कर रहे हैं, बोल रहा है कि मैं ड्यूटी पे ही ठीक हूँ
0: भाई मैं कहती हूँ आफरीन है उन लोगों के ऊपर, उन आदमियों को एक तमगा इम्तियाज पहनाना चाहिए जो बीवी के होते हुए छुट्टी लेते हैं।
1: उनका क्या जिनकी बीवी का नाम ही आफरीन है
0: फिर तो डबल डबल आफरीन डबल लाइक्स।
1: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और अल्लाह ताला खुश रखे, इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला अब जारी और सारी रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।
2: बिल्कुल
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज
0: मुझे ना करके गए अल्लाह हाफिज।
1: हाँ नहीं मतलब हम दोनों के लिए यही था, और
0: मेरा आज किडनी बेचने वाले मोबाइल की कीमत चल रही है आपकी हफ्ता रुक जाओ सब नीचे आ जाएगा, ये घर में जो नया भाती आता है।
1: जाहिर बात है वो तो है ही यार, खैरियत मैं भी लेना चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कि सब अपनों की खैरियत पता चल जाए। तो साहब इस वक्त सन एंड साउंड पे सर्वर और सफा आपके साथ हैं, इंशाल्लाह ताला 1 बजे तक हमारा आपके साथ रहने वाला है। फिलहाल आइए पहला गाना सुन लेते हैं और
0: थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और सौरभ भाई के बाकी सवालों का जवाब जो मैं ऑन एयर ना दे पाई वो अभी दूंगी ब्रेक में। सौरभ भाई आ जाओ जरा मैदान में, सुनते रहे FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफा एंड सर्वर, दिल से देसी।

0: गरम मसाला
1: सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
0: गरम मसाला किस किस चीज में डलता है सर भाई
2: यार कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसमें गरम मसाला ना डाले मतलब हंडिया की बात हो रही है अब जाहिर बात है अगर आप कस्टर्ड में गरम मसाला डाल देंगी

0: तो वो फिर कुछ और ही बन जाएगा भाई, उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पर इसी हिसाब से जो गर्मी चल रही है और गर्म मसाले की अगर हम हटाते हुए बात करें, तो मैंने सुना सभा बॉडी आपने ड्रिंक्स वगैरह बना के पिलाई है कतर वालों को नई नई तरीके की।
1: क्या आप तक भी ये बात पहुंच गई? अच्छा खाने पीने की बात हो, सभा भाई तक ना पहुंचे?
0: नहीं, मैंने सुना कि भाई सभा बहुत खतरनाक ड्रिंक, खतरनाक से मेरा मतलब अच्छी वाली, वैसे खतरनाक नहीं, मतलब बनने के बाद खतरनाक नहीं।
1: कल मुझे खतरनाक ड्रिंक पिलाई गई।
0: जी हाँ,
1: पूछे क्या
0: क्या?
1: अब मैं बोलूं, शरबत मोहब्बत।
0: आए हाय हाय हाय हाय, मोहब्बत का शरबत पिलाया गया।
1: अच्छा,
0: तो अब मैं ये पूछूं किसने पिलाया, तो ये तो सही नहीं होगा। मगर आपने पिया मोहब्बत का शरबत, ये पूछना बेहतर है।
1: मैंने बहुत डरते डरते पिया था, लेकिन आउट। अच्छा मजे की बात,
0: क्योंकि मोहब्बत होना जाए एक्चुअली।
1: नहीं, क्योंकि अब मोहब्बत के नाम से डर लगता है ना, एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे है कि मोहब्बत के नाम से डर लगने
0: लगा। समझ गया,
1: जिस चीज से मोहब्बत आती है ना, हम उससे दूर भागते हैं, उम्र हो गई है हमारी।
0: मैं समझ गया, मगर वो तो यार बड़ी मशहूर चीज है, और अगर हम कराची की बात करें तो
1: नहीं नहीं, ऐसा कोई शरबत वाकई में है नहीं। मैं आपको बताती हूँ मामला क्या हुआ।
0: यार मोहब्बत का और नफरत का दोनों ही शरबत कराची से निकले हैं और हमारे यहाँ तक आए, आप क्या बात कर रही हैं?
1: मुझे कुछ अजीब सा पिलाया गया। अब देखिए,
0: एक
1: आप
0: पीला और एक स्ट्रॉबेरी, मतलब पिंक।
1: हाँ,
0: मोहब्बत इज पिंक एंड नफरत इज पीला।
1: हाँ, नफरत भी मुझे तो कहा जाता था दोस्ती का रंग पीला होता है।
0: हाँ, तो वो नफरत ही हो गई ना, एक ही बात है ना।
1: दोस्तों को तमीज से बात कौन करता है, नफरत ही हो गई। अच्छा मामला पता है क्या, अब दुनिया में दो टाइप के मर्द हजरात होते हैं। एक वो जो किचन में जाते हैं, जिनको शौक होता है खाना बनाने का, खाना खिलाने का, ठीक है आपकी तरह। एक वो होते हैं जिनको ये तक नहीं पता कि चीनी किस किस सेक्शन में रखी हुई और कहाँ रखी हुई है। हमारे पास घर में ये मामला है कि भाई ये तक नहीं पता कि चमचा किस साइड पर रखा हुआ है, किस दराज में रखा हुआ है। उसके लिए भी काए काए कौए की तरह आवाज आती है।
0: इससे मैं यहाँ रोकूंगा, एक बात याद आ गई, अगर कोई हंडिया कभी, हंडिया से मेरा मतलब हमारे यहाँ नॉर्मल खाना जो बनता है उसको कहते हैं, तो कभी कोई खाना गलत अगर आपने बना दिया तो उसमें एक अच्छा आइडिया एकदम अभी बैठे बैठे आ गया, तो आप किचन में भेज दिया करिए साहब को, कहिए कि भाई जरा सा नमक जो है डाल दो, नमक की जगह वो कुछ और डाल दीजिए।
1: हमारे वाले तो इतने मासूम हैं, इतने मासूम हैं कि उसके ऊपर भी चूना करेंगे। बिल्कुल अल्लाह में की गाय पकड़ गई, अल्लाह में की गाय खरीदी है हमने।
0: ओके,
1: अच्छा फिर क्या हुआ कि मुझे ये चैलेंज दिया गया, नहीं मुझे ये चैलेंज कर दिया गया कि आई नो हाउ टू कुक और हाउ टू मेक ड्रिंक्स। मैंने कहा अच्छा आज तो हो जाए सफा, दो दो हाथ हो जाए। मैंने कहा अच्छा आज किचन आपका हुआ, खाना तो बनाना नहीं था, खाना तो बनाओ था, हमने कोफ्ते शोफ्ते बनाए थे।
0: ये बताना जरूरी था तो बीच में जबरदस्ती।
1: मैंने एक दफा पहले
0: शरबत की बात हो रही थी यार,
1: मैंने खिचड़ी का बताया था।
0: टाइम देखो क्या हो रहा, 11:30, भूख जाग जाएगी इस वक्त।
1: मैंने पिछली दफा खिचड़ी का बताया था, मेरी खिचड़ी पे नजर लग गई थी, उसके बाद मुझे एक दिन छुट्टी करनी पड़ गई थी ऑफिस से। फिर जो है ना, फिर क्या हुआ भाई, अच्छा खाना तो बना था, अब शरबत की बारी आई,
0: मोहब्बत का। वो भी
1: मोहब्बत, अच्छा उसका नाम मोहब्बत का शरबत नहीं था, वो खुद रख दिया गया क्योंकि कवर अप लेना था ना। अच्छा फिर पहले क्या हुआ, अच्छा मेरा एक प्रॉब्लम, मुझे OCD होता है किचन में कोई चला जाए ना, तो मुझे होता है मेरा फैला कर आओगे ना आप किचन मेरा पूरा, तो भाई मैं देख रही हूँ दूर खड़ी हुई और मेरी नाखून चबाने वाली हालत हुई, जैसे मैं कोई थ्रिलर हॉरर मूवी देख रही हूँ। तो पहले निकला दूध, दूध एक 1 लीटर दूध निकला, फिर उसके अंदर डाला गया वाटरमेलन, क्यूब्स काट के छोटी छोटी डाली गई। मैंने कहा वाटरमेलन दूध के साथ कौन, फिर उसके अंदर वो लाल रंग का शरबत डाला गया, फिर उसके अंदर तुख मलंगा डाला गया, और फिर जो है ना उसको हिलाकर मुझे पकड़ा दिया गया कि लो पियो। अब मैं जो हूँ ना, मैं डरे चले जाऊं। मैंने कहा इसको, अभी तो पिछले दिनों मेरा पेट का हाल बरपा हुआ था, अब क्या होगा मेरे साथ। अब पीना भी जरूरी था क्योंकि,
0: नहीं मगर सही लगा होगा, ऐसी बात नहीं है, मैं बता दूं।
1: अरे भाई वो मैंने पिया, बड़ा जबरदस्त था,
0: इसलिए देखिए उसका नाम ये है।
1: लेकिन मैंने
0: कुछ नहीं, उसके अंदर
1: ढेर सारी बर्फ, वो वाटरमेलन, मतलब उसके अंदर किसी चीज का हिसाब नहीं था। अपना ये था कि आप जो ना उसके अंदर अपनी पसंद से जो चीज डाल दो उसके अंदर।
0: देखिए नाम उसका इसी मारे है कि जब आप मतलब मोहब्बत का शरबत है तो आप उसके अंदर कुछ भी कर दीजिए, वो अच्छा ही लगेगा। कुछ भी कर दीजिए, मेरा मतलब कुछ भी आप, मेरी बात सही, उसके अंदर आप कुछ भी, हाँ समझ जाए, मतलब इसको करेक्ट करना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।
1: मामला पता है क्या था, मैंने कहा अच्छा ये है क्या, मैंने कहा कहीं तो पकड़ू, मैंने कहा कहाँ से रेसिपी देखी क्या है। अब सामने वाले कह रहे थे कि हमारी कोई वो की जा रहा है तारीफ वारीफ, मेरे मुंह से तारीफ निकले ना, लेकिन अच्छा था। तो भाई इत्तेफाक से गेस्ट आए हुए थे, वीकेंड था तो गेस्ट आए हुए थे,
0: सबको बुलाया,
1: तो सबको बुलाया भाई, सबको अच्छा लगा,
0: अच्छा ही लगा।
1: कोई एक ऐसा नहीं जिसको अच्छा ना लगा हो। और मैंने सोचा कि भाई टांग थोड़ी सी लेग पुलिंग की जाए, लेकिन लेग पुलिंग का मुझे मौका है। मैंने कहा अच्छा बताओ उसका नाम क्या है, कहाँ से आई है रेसिपी, ये वो। तो मेरी शक्ल देख देख के कहते

0: तुम्हारे लिए शरबते मोहब्बत। मैंने कहा ये क्या था।
1: तो उन्होंने मैच किया कहीं ना कहीं से। तो अब आप लोग को भी पता चल गया भाई कि गर्मी को अगर आपने दूर भगाना है तो
0: दूध लें, वाटरमेलन डालें, लाल पीला शरबत डालें, रोज वाटर डालें, घुमाएं और पिला दें।
1: शरबत सफा आप बना सकते हैं। आज इसका नाम ऐसे भी रख लेते हैं।
0: एक भाई है हमारे रोयल भाई, उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ है ना सफा नूर। मेरा मार्केट में नया नाम आया है सफा नूर।
1: क्यों, कोई वजह होगी इसके पीछे?
0: पता नहीं, वो हमारे फैन हैं, पंखे हैं
1: उनका, क्या कोई इस नाम से होगा मेरे ख्याल में, या फिर शायद आपकी बाहर से उनके नूर जो हैं वो।
0: सरवर भाई मैसेज पढ़े, मैसेज अब इससे ज्यादा ना
1: मिल ले रहा। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कितने वक्त से आपका इंतजार था, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, मेरी बात हो रही होगी गालबन, सफा तो यहाँ मौजूद थी। यूसुफ भाई आ गए मार्केट में, कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, गुड मॉर्निंग सफा जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों, होप वेल, वेलकम टू सन एंड साउंड। दिल से देसी यूसुफ भाई कहते हैं हैप्पी संडे मॉर्निंग, कैसा रहा आप दोनों का वीकेंड, होप गुड। यूसुफ भाई वेलकम बैक, सरवर भाई कैसे रही छुट्टियां, होप एंजॉयड वेल, वी ऑल आर मिसिंग यू कहते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल अच्छी रही यूसुफ भाई, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे, मतलब आपके घर वाले और आप लोग भी। अब इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात और बात डेली ही होगी। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, वेलकम बैक भाई, वेलकम बैक आई, ये खुद भी वेलकम बैक हैं क्या, मोहम्मद अशफाक हैं हमारे साथ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक भाई।
0: तो बहुत सारे लोग वेलकम बैक होंगे।
1: सरो भाई को बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सरोर भाई आपको देखना है, अस्सलाम वालेकुम, पिक्चर भेज दो। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,
0: पूरे नाएंगे फ्रेम
1: में। अच्छा मैं कुछ और करने वाला था। देखना है यार FM 107 की वेबसाइट पर आप जाकर हम सबको देख सकते हैं साथ।
0: भाई एक दो लोगों ने पूछा था वेबसाइट पर आपको देखा था, तो मुझे कहते हैं आप बड़ी दुबली पतली सी। मैंने कहा मेरे आगे देखो कौन खड़ा हुआ। अच्छा, भाई खड़े
1: आसपास ही खड़े हैं।
0: आप आगे खड़े थे, मैं पीछे खड़ी थी। मैंने कहा सरवर भाई के पीछे मुझे खड़ा कर दिया तो मैंने दुबला ही लगना है।
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, आप दुबली हैं भी यार, ऐसी बात नहीं है सफा।
0: नहीं सर भाई, नहीं
1: आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ये इन्होंने फोटो भेजा है हमें और टेम्परेचर दिखा रहे हैं। गालबन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सरवर भाई, इसमें क्या है यार, टेम्परेचर देखूं या क्या देखूं, समझ में नहीं आ रही मेरी बात।
0: हाँ टेम्परेचर के लिए भेजी होगी इन्होंने, कि हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे ना, तो अक्सर औकात मेरी गाड़ी में 36 डिग्री दिखा रहा था।
1: 48 दिखा रहा है यहाँ पे शायद।
0: अच्छा हमारे पास 44 चल रहा था।
1: अदील भाई हमारे साथ। ओके आगे बढ़ते हैं। खादिर अब्दुल हादी अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और सफा जी, गोभी के फूलों। अच्छा ये आपका, हाँ ओके सरवर भाई आप आ गए और बरसात का मौसम भी तकरीबन आने वाला है इंशाल्लाह। ठंडी का मौसम दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आपने तो ठंडी मौसम की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सरवर भाई जब मैं कार में एसी ऑन किया तो आपका आवाज रेडियो में सुनकर एसी भी बहुत खुश होकर अपने आप ठंडा करने लगा बगैर थर्मोस्टेट के।
0: अरे पैसे दिए थे इनको?
1: मेरा भाई अब्दुल खादिर
0: कितने पैसे दिए थे? चलिए कंटेंट
1: कहते हैं आओ सफा नूर कैसी हो आप,
0: बस
1: आओ
0: ये रोहल भाई होंगे
1: ये सलाम कर रहे हैं एक्चुअली, मगर शक्ति कपूर मैं बन गया हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत टाइम बाद, कैसे हो सर, छुट्टी अच्छी तरह गुजरी, हमने आपको बहुत मिस किया। 20 बरस की उम्र में लोगों ने मोहब्बत का शरबत इतना पिलाया
0: कि अब फिर अब हमें एलर्जी हो गई है।
1: फिर हंसकर वही जाम हमसे वापस ले लिया। ओ हो हो,
0: दिल जले,
1: ये तो शेर हो गया। और सर ये मोहब्बत के नाम ये शेर, अच्छा बिल्कुल सही भाई, कौन है ये, अरबाज खान, क्या बात है भाई, सलमान खान के छोटे भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, वेलकम बैक, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। हैदर अली कैसे हैं हैदर भाई, खैरियत से। नसीम भाई का शेर यहाँ पर आ गया, हमने ऑलरेडी सुबह उनसे खुद ही सुन लिया था। इश्क के रंग, इश्क का रंग गुलाबी होता है, पीला तो इश्क में
0: खराबी होता है,
1: होने के बाद होता है।
0: पीला तो इश्क में खराबी होता है।
1: ओ माय गॉड, कौन है ये?
0: जब हम मोहब्बत को फ्रेंड जोन में ले जाते हैं ना तो पीला हो जाता है।
1: नाम नहीं है इनका भाई का यहाँ पे यार, आपने शेर इतना प्यारा, कौन है ये, जुबैर है शायद। हाँ ओके जुबैर भाई, क्या बात है यार।
0: अस्सलाम वालेकुम, बहुत चोट खाए हुए लग रहे हैं।
1: हाँ बहुत
0: लगता है जिंदगी का एक्सपीरियंस है आपके पास,
1: इतनी चोटे खाई है कि पीले हो गए।
0: यार कान होंगे।
1: ओके बढ़ते हैं।

0: आगे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई। सफा नूर को छोड़ के कहाँ गए थे, मोहब्बत की शरबत का हमें भी इंतजार है। क्या बात है यार, शेख इरफान अल कासमी साहब यहाँ पर, तो इनको भी शरबत मोहब्बत पिलाना है कासिम भाई को। अच्छा, देखने में माशाल्लाह से बिल्कुल मौलाना तारिक जमील लग रहे हैं, मगर बातें इनकी दूसरी तरफ जा रही है।
1: I would refrain from commenting.
0: चलिए साहब, तो अब मैसेजेस का सिलसिला जारी है, कॉल का भी सिलसिला जारी है, बट क्योंकि अब छोटा सा ब्रेक लेना है अजान की तरफ बढ़ना है, तो इंशाल्लाह ताला वापस आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अजान सुनते हैं, और वापस आने के बाद मेरी और सफा की बातचीत आपसे जारी रहेगी। सुनते रहिए FM 107 दिल से
1: देसी।

0: डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं, उन्हें आसानी से अपने जरूरी कामों को अंजाम देने का मौका मिले। ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल उनके लिए अननेसेसरी मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन और अमन पसंद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें ताकि सबको बराबर के हुकूक मिल सकें और किसी को भी अपने हक से महरूम ना होना पड़े। FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
3: आप सुन रहे हैं Sun and Sound, RJ Sarwar Mirza और RJ Safa के साथ.

0: तो भाई वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सर्वर एंड सफा।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सर्वर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: तो भाई साथियों वेलकम बैक। गोभी दिया फूल लो, आ जाओ जरा खुशबू लगा के सर्वर भाई से बातचीत कर लो।
2: इससे बड़ा गोभी का फूल और आपको क्या मिलेगा, ये होता है
0: आज हम कितना ट्रिपल एक्सएल साइज का गोभी का फूल लेकर आए हैं अपने साथ।
2: भाई यहाँ पर मैसेज का सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं और उसके बाद अपने फन फैक्ट की तरफ आएंगे।
0: हाँ, लेकिन एक दफा नंबर शंबर रिपीट कर लें।
2: हाँ, बिल्कुल कर दें। मुझे याद करना
0: पड़ा ना। चले भाई आपको ये बताती चलूं कि अगर आपने हमारे साथ जुड़ना है तो दो तरीके कार हैं। आप या तो फिर हमें मैसेज कर सकते हैं या तो फिर कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए नंबर है 4433774347 और हम साथ साथ हैं। और इसके बरक्स अगर आपने मैसेज करना है, आपका दिल नहीं कर रहा कि भाई सर्वर भाई सफा की से हमसे गुफ्तगू ना हो पाएगी, हम बिजी चल रहे हैं, हम बहुत बहुत वांटेड हैं हम, तो आप हम मैसेज भी कर सकते हैं। हम गरीब लोगों को मैसेज ही कर दें, हम उसी में खुश हो जाएंगे, है कि नहीं सर्वर भाई?
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: साइलेंट लिसनर्स होते हैं ना, ये चुपचाप सुनते हैं, ये कॉल शॉल नहीं करते। चलो भाई मैसेज ही कर दो, हम उसी में खुश। आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत मैटर करती है। 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज, 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज। और अब आते हैं मैसेजेस की तरफ।
2: कहते हैं कि घर में कुछ छोड़कर आए, सब खाकर आए,
0: सारा राशन, 3 महीने का राशन खत्म कर आए बच्चा। 3 महीने घर वाले कह रहे हैं कि अब हमें 3 महीने हम माइनस में चल रहे हैं।
2: वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा नसीम भाई ने अपना शेर एक और रह गया था हमारे साथ।
0: शेर
2: कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आरजे सरूर भाई और सफा बहन कैसे हैं आप, वापसी मुबारक हो, आपको बहुत मिस किया, खुदा हमेशा आपको खुश रखे, आमीन। मोहम्मद फयाज अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज भाई, जजाकल्लाह खैरन। कहते हैं कहाँ से, कहते हैं यहाँ से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरूर, बहुत टाइम बाद, कैसे हो सर, छुट्टियां अच्छी तरह गुजरी, हमने आपको बहुत मिस किया। अच्छा ये वाले तो मैसेज मैंने पढ़ दिए थे, ये आया कहता और सर सफा मैम को भी हमारी तरफ से सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
2: तो वो आप तक सलाम नहीं पहुंचा था।
0: किसी एक ने भी सर्वर भाई को ये ना कहा, देखो ये इतने गंदे गंदे बच्चे बैठे हैं हमारी क्लास में, किसी एक ने भी ये ना कहा सर्वर भाई आप नहीं थे तो टेंशन ना ले, सफा ने शो को हैंडल कर लिया था।
2: नहीं नहीं ये तो भाई सभी का कहना है कि कमी महसूस नहीं हुई। चलिए मैं कह देता हूँ
0: बहुत बुरे चल रहे हैं।
2: कहते सर्वर भाई इंडिया से आम लेके आए, मैं खास लेके आया यार। एहतराम भाई आम का क्या करेंगे, आप खास लीजिए मेरे साथ जब भी मुलाकात करें।
0: आम को देखो, आम जो है ना पेटियों में डाले जरूर जाते हैं लेकर आने के लिए, लेकिन वो आते आते गुम हो जाते हैं।
2: अदनान मिकरानी साहब ने यहाँ पर एक लिंक भेजा है तो देखेंगे हम कि भाई क्या है, बाद में देखेंगे, अभी तो पता नहीं खोला कुछ और निकला और कॉल आ रही है तो पहले

0: उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: अरे भाई ये क्या हुआ, मैंने कॉल उठाई, कॉल से ये क्या मौत को चुगे से वापस ये क्या हुआ,
0: फाइजल थे क्या? कहते हैं सलाम सलाम टू बोथ ऑफ यू।
1: फिर कॉल आ गई।

0: अरे मोहम्मद आरिफ भाई, इतने इतने सदियों बाद कॉल किया, कैसे? नहीं,
1: आवाज तो अब साफ हो गई है। वैसे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी पहले कहीं पार्क कर लीजिए और उसके बाद हमसे बात करिए।
0: देखिए, आप पब्लिक सर्विस मैसेज सर्वर भाई एमओआई वाले से बात कर रहे हैं।
1: और अगर आप पार्क कर ली है तो ठीक है, वरना हम वेट करेंगे, ऐसी बात नहीं है।
2: नहीं, मुश्किल नहीं है, मेरे को कुछ पूछने का था।
0: हाँ जी, पूछे पूछे, बस ये ध्यान में रखकर पूछिएगा, रेडियो पे पूछ रहे हैं,
2: मुश्किल नहीं है।
1: वरना मैसेज भी कर सकते हैं।
0: हाँ जी,
2: क्या पूछने का था? जब बहुत पहले वो गेम हो रहा था ना,
0: हाँ जी,
2: और साउंड पहचानने का ऐसा कुछ था,
0: हाँ जी,
2: जीता था, अभी तक मेरा को गिफ्ट नहीं मिला।
1: अरे तो यही तो गेम था, आपके साथ गेम हो गया। अरे भाई, हाँ, साउंड पहचानने का था, कि कब की बात हो रही है?
0: अरे भाई, ये तो एक बात बताएं, ये हमारे शो की बात कर रहे हैं?
2: हाँ, रेडियो, इसी यही रेडियो पे, पर बहुत पहले, आई थिंक हो गया 4-5 महीने का, आई थिंक हो गया
0: 4-5 महीने। ये आप कब की बात कर रहे हैं? ईद शीद की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? अच्छा, फुटबॉल वाले। अच्छा आरिफ भाई, इस बारे में ना मैं आप लोगों को बहुत तफसील से 2-3 दफा बता चुकी हूँ, और मामला ये है कि देखिए, हमारे पास से बजट नहीं आता, बजट बैक ऑफिस से आता है, ठीक है? तो वो मामला सिर्फ आपका नहीं है, मैंने ये पहले ही बताया था बहुत तफसील से कि माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट रुका हुआ है, लेकिन वो हमारी तरफ से नहीं है। हम खुद एडमिन से हमने बात की थी, उन्होंने हमसे कहा था कि ये इत्तला दे दें कि जैसे ही हमारे पास आएगा माल मवाद, तिजोरी खुलेगी, सबको उनका माल पहुंचा दिया जाएगा। अभी फिलहाल बैक ऑफिस से ही प्रोसेसिंग नहीं आई है, तो वो आपका इनाम कहीं नहीं जाएगा, मुझे पता है, बहुत देर हो गई है, मुझे पता है।
1: नहीं, काफी लोगों का मिल गया, मुझे याद है, मेरे जाने से पहले पहले भी काफी रह भी गए हैं,
0: काफी रह गए,
1: और जैसे जैसे आता है वैसे वैसे कॉल भी जाती है, और काफी लोगों को पहुंच भी गया है, तो इंशाल्लाह ताला भाई आपको भी कॉल आएगी जरूर, देर ही सही मगर आएगी
2: इंशाल्लाह।
1: अच्छा किया आपने, और इंशाल्लाह ताला आपको कांटेक्ट किया
0: जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि जिन लोगों को कांटेक्ट के बावजूद जवाब मौसूल नहीं हो रहा, क्योंकि बैक ऑफिस मतलब जो एडमिन है वो भी बैक ऑफिस से जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तभी वो आपको जवाब नहीं दे पा रहे कि लोग पूछ रहे हैं कब आएगा कब आएगा। अब वो कब का आंसर वो भी नहीं दे सकते एडमिन वाले, क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं पता कब आएगा, उनको भी नहीं पता कब आएगा।
2: ऐसा कुछ लोकेशन होगा तो आप दीजिए, आप दे सकते तो मैं जाकर उधर पता करेगा, क्योंकि कोई अभी तक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं उसके आप लोग का उधर।
0: जब जब एडमिन वालों के पास जवाब आएगा तो वो आप लोगों को मैसेज कर देंगे खुद ही कि भाई आप लोगों का इनाम आके आप कलेक्ट कर लें, ठीक है?
1: इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा,
0: इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
1: ठीक है अरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत का आपकी, थैंक यू सो मच। तो भाई बढ़ते हैं आगे, और मैसेजेस का जो सिलसिला है वो चल रहा है यहाँ पर अभी। सलाम टू बोथ ऑफ यू, दिस पोएट्री डेडिकेटेड टू यू सरवर भाई, आज तफसील नहीं, बस इतना सुनो, कसम से बहुत याद आते हो।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, खंजर लेकर सीना चाक कर दिया सरवर भाई।
1: Welcome back to you, प्यारे सरवर भाई, आपका भी, आपका भाई मुदस्सर खान, ओहो, मंसूरा से मेरे पड़ोसी, क्या बात है। यहाँ पर बड़ा अच्छा सा स्टीकर भेजा है हमें सलाम का, और पूरा सलाम लिखा हुआ उसमें।
0: जज्बाती सरवर भाई, कॉल आ रही है फिर से।
1: शाम भाई, बिल्कुल ले लेते हैं।
0: अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज मुझी को,
1: हाँ, और ये
0: पलट पलट के वापस आ रही है, पलट पलट के। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन है हमारे साथ?
3: मैं मोहम्मद आलम।
0: मोहम्मद आलम, अरे वाह, मोहम्मद आलम।
1: आलम भाई अभी अभी उठे, क्या सो गए?
3: ड्यूटी है।
1: अरे
0: ड्यूटी है।
1: अच्छा
0: आलम भाई, लो चल रहे हैं, बैटरी लो चल रही है।
1: हाँ, बहुत सुबह से फजर से लगे हुए क्या?
3: जी सर, पहला कॉल लगाने के बाद।
0: अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आलम भाई बात ही ऐसे करते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसे स्लो मोशन। आलम भाई, जूस जूस पिए थोड़ा, ORS जूस, लेमनेड, कुछ चलेगा?
1: मोहब्बत का शरबत पिलाया अभी तो पहले, फिर भी आवाज नहीं निकल रही आपकी, कैसे हैं? खैरियत से हैं?
3: मोहब्बत का शरबत
0: मोहब्बत का शरबत सुन के आंखें खुल गई आलम भाई की।
1: जी तो क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल
0: बढ़िया है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। आवाज हल्की निकल रही है आपकी, तो जरा फिक्र हो गई, हमने कहा हंसी मजाक करके आवाज तो निकलवाई।

0: जाए।
1: अच्छा आलम भाई आपसे एक सवाल पूछें, एक सवाल पूछती हूँ आपसे, आपने कभी जहाज में खाना खाया है? जहाज में खाना खाया ना आपने, तो मुझे बताएं जहाज का खाना अच्छा लगता है आपको?
2: जी सही लगता है, पर घर के साथ सही लगता है।
1: घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है कि जहाज का खाना ज्यादा अच्छा लगता है?
2: जी घर का अच्छा लगता है।
1: मुझे तो हॉस्पिटल का अच्छा लगता है। मैं इसके चले, मैंने सवाल पता है क्यों पूछा, इस सवाल को पूछने के पीछे भी एक हमारा इन्फॉर्मेटिव क्राइटेरिया है, वो हम आपकी कॉल के बाद बताएंगे सबको। लेकिन ये बताएं कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है? सरव भाई को जरा बताएं, सरव भाई देखने में तरफ और कह रहे हैं कि अब भूख।
0: कहाँ के हैं आलम भाई?
2: जी हम बिहार के हैं।
1: अरे वाह,
0: बिहार से किधर?
2: सीतामढ़ी।
0: अच्छा चलिए यार, ये तो अच्छी बात है। बिहार में तो बड़े अच्छे अच्छे खाने बनते हैं और बड़े मशहूर खाने बनते हैं। यहाँ के यहाँ तक के पाकिस्तान में भी है ना एक एरिया, क्या नाम है वहाँ पे, बिहार से बहुत लोग हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त, मगर काफ़ी लोग हैं वहाँ बिहार से। चलिए साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आलम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंशाल्लाह ताला फिर बात होगी आपसे।
2: सर मैं एक बात पूछना चाहता।
0: दो पूछिए।
2: तो ये एक मसला आ गया है, मतलब कि जैसे बकरीद में हम लोग कुर्बानी करते हैं ना सर।
0: हाँ
2: तो
1: बकरा ईद का गोश्त बांटना था, रह गया है।
0: अगर कुछ दीनी सवाल है आपका आलम भाई, तो वो आप इंशाल्लाह ताला, हमारा प्रोग्राम होता है खुसूसी नूरे इस्लाम, उसके अंदर आप अपना सवाल रख सकते हैं और आपको इंशाल्लाह वहाँ पे मौलाना होंगे बाकायदा, वो आपको उस चीज का सही सही इंशाल्लाह ताला जवाब देंगे। तो आप फ्राइडे में इंशाल्लाह ताला जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो वहाँ आप ये सवाल जरूर करिएगा इंशाल्लाह ताला। फिलहाल यहाँ हम जवाब नहीं दे पाएंगे फिलहाल। ठीक है,
2: ठीक है जी।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो भैया थे आलम भाई, और सभी की मालूमात के लिए बता दें कि जब भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है, दीनी एतबार से कोई सवाल जवाब दिल में होते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा खुसूसी प्रोग्राम है नूरे इस्लाम, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग मेरे ख्याल में 4 बजे है शाम से, तो उसमें आप कनेक्ट होके, अगर मैं सही टाइम बता रहा हूँ, मुझे शायद कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो सही टाइम भी आपको पता चल जाएगा। वो कैसे, आप हमारे वेब एड्रेस पर जा सकते हैं और तमाम प्रोग्राम जो FM 107 से नशर होते हैं, जो जाते हैं, जो आप सुन सकते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं www.urduradio.qa पे कौन से RJ किस वक्त कौन सा प्रोग्राम दे रहे हैं। मज़ीद ये कि जो दूसरे प्रोग्राम हैं अपार्ट फ्रॉम लाइव प्रोग्राम्स, आप जितने भी एपिसोड्स गए हैं उसके, जो आपसे मिस हो गए, छूट गए, वो भी आप हमारे वेब एड्रेस पर जाकर समाप्त फरमा सकते हैं, सुन सकते हैं। तो एक ये भी आप लोगों के लिए सर्विस वहाँ पर अंजाम दी जा रही है।
1: सही भाई। अच्छा सरवर भाई एक मिनट रुकिएगा, जरा हम अपना टाइम क्लॉक सही कर लें, जरा हमें थोड़ी सी देर हो गई क्लॉक।
0: कोई बात नहीं, आप जिंगल सुना दीजिए सबको,
1: वापस आते हैं 2 मिनट के अंदर।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें

0: marketing@qmc.qa.
1: FM 107, time check.
2: साथियों वेलकम बैक. इस वक्त एफएम 107 पे बज रहे हैं 12:05 और आप सुन रहे हैं सफा और सरवर के साथ.
3: क्या सुन रहे भाई? सन एंड साउंड एसएस वहां पे भी और सफा और सरवर एसएस यहां पे भी, तो मतलब चार पांच. क्या बात है
2: सरवर भाई. वैसे एक बात है,
3: हम नहीं कुछ बात कर रहे थे, हम वहां से शुरुआत करें. क्या बात कर रहे थे?
2: खाना प्लेन में आपको पसंद है? वैसे आपको खाना हर जगह का ही पसंद है, कहीं कभी खिला दो माशाल्लाह, बस हलाल हो खा लेंगे. लेकिन आपने कभी नोट किया कि जब हम जहाज में ट्रेवल करते हैं तो हमें बनिस्बत घर के या किसी और रेस्टोरेंट के किसी भी एक्सपायर हमें खाना थोड़ा सा फनी सा लगता है. फनी इन द सेंस नहीं, बेहतर, इतना अच्छा नहीं लगता
3: यार. वो तो जाहिर बात है, देखिए जहाँ पे माहौल, मतलब खाने के साथ माहौल जरूरी होता है.
2: माहौल जरूरी है,
3: वहाँ पे माहौल ही नहीं है.
2: वहाँ पे माहौल चाहिए.
3: अब वहाँ कहाँ तंदूर में से रोटी आ सकती है, वहाँ पे नहीं आ सकती है. कोरमा बिरयानी मिल सकता है आपको,
2: इतना महंगा टिकट करा कर 7-star की सर्विस ना मिले. देखो अगर इससे बेहतर था मैं लोकल रेस्टोरेंट में चला जाता.
3: नहीं वैसे इसके पीछे कोई वजह होगी जो आप.
2: अच्छा, इसके पीछे जो वजह है ना, देखिए मैं आपको आज का फन ट्रिविया बताती हूँ. आज का फन ट्रिविया ये कि आपने कभी ये नोटिस किया है कि प्लेन में खाना जमीन के मुकाबले में टेस्टी नहीं लगता? इसकी वजह सिर्फ कुकिंग नहीं होती कि किसी होता है ना, लोग कहते हैं कि अंडा हो गया, ऑमलेट वगैरह हो गया, वो पाउडर्ड एग बनाते हैं और उसका टेस्ट अलग होता है, वो एक वजह अलग है. लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आप 30,000 feet की हाइट पर होते हैं भाई, या उससे भी ज्यादा. ठीक है, कभी कभी प्लेन के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है. प्लेन जो है वो तकरीबन 12% ह्यूमिडिटी पर अंदर होती है ह्यूमिडिटी, जो कि अक्सर डेजर्ट से भी ना ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट होता है. कभी नोट किया आपने? वो जो एसी वगैरह चलाते हैं जूम करके आवाज़ आ रही होती है. अच्छा मज़े की बात ये, इसी के साथ कैबिन का कॉन्स्टेंट जो नॉइज़ होता है ना, वो जो एसी चल रहा होता है, ये दोनों चीज़ें मिलकर ना हमारे दिमाग का लस्सी बना देती हैं. तो होता ये कि दिमाग जो ना कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में होता है, उसकी वजह से हमारे स्वीट और सॉल्टी टेस्ट बड्स जो होते हैं ना, उनकी सेंसिटिविटी तकरीबन 30%
3: हो जाता है.
2: क्योंकि दिमाग हमारा स्ट्रेस आउट होता है ना, बिल्कुल वो वाली बात है कि कोई इंसान अगर एंजाइटी या डिप्रेशन में होगा तो उसको खाना पीना कहते हैं या उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है. तो हमारा दिमाग कंटिन्यूस स्ट्रेस में होता है, जबकि हमें
3: खाऊं तो यही खाऊं और ये मिला तो इसी को खाऊं.
2: 30% तक लगभग हमारी परसेंटेज कम हो जाती है सेंसिटिविटी की. ठीक है, ये टेस्ट
3: जब भी खाऊं मुझे भूख क्यों नहीं लगती, दो दो का खाने के बाद.
2: हाँ मतलब ये कि आस पड़ोस बच्चों का भी लेकर खाना खा लेते हो, लेकिन हाँ बस वो चलेंगे, समझ गई. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ फ्लेवर्स ऐसे होते हैं जो फिर भी बच जाते हैं, और उनके से कुछ फ्लेवर्स में पता है क्या चीज होती है? कभी जहाज में टोमेटो जूस लेकर पीना.
3: अच्छा,
2: आपको टोमेटो जूस नहीं पसंद होगा, आपको फिर भी पसंद आएगा.
3: अजी हाँ, तो फिर अपने साथ ही लेके जाए.
2: तो भाई ये इसीलिए होता है.
3: तो मैं मंगा लूंगा बकायदा, कहूंगा भाई वो सफा ने कहा जरा टोमेटो का जूस हो जाए भाई.
2: टोमेटो जूस प्लीज.
3: अच्छा ऐसे ऐसे कहना भी पड़ेगा, ये भी मुश्किल होता है.
2: टोमेटो जूस, टोमेटो, ये मुंह टेढ़ा वेढ़ा करके ना,
3: पता चला कुछ और लाके दे दिया उन्होंने कि ये पीजिए यार. भैया टमाटे हमारे हैदराबादी भाई कहते हैं ना, टमाटे का जूस लाइए, टमाटे का जूस.
2: अरे भाई मुझे हैदराबादी एक्सेंट बड़ा अच्छा लगता है. मैं मूवीज वगैरह वैसे नहीं देखती, लेकिन मुझे कभी कभी हंसना होता है ना और एंजॉय करना होता है जिंदगी को, तो मैं कभी कभी ना हैदराबादी मूवीज वो कॉमेडी उठाकर देखती
3: हूं.
2: ओ भाई मतलब
3: अरे जवाब नहीं भाई उनका,
2: वो आप पेट पकड़ के हंसो, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे.
3: वो और एक से एक कलाकार भाई उसके अंदर.
2: भाई हमें कॉल आ रही है, कॉल करने के लिए नंबर है 4344377 is the number to call, or चाहें तो message कर सकते हैं 666-22-107 पर. और भाई आज का मुद्दा ही बता देते हैं, caller से बात करते हैं, मुद्दा बता देते हैं. Hello, assalam alaikum.
4: सलाम जनाब, की हाल चाल है जी? तो
3: ओ दिस इज गाबा भाई. गाबा भाई कैसे हैं गाबा भाई?
4: सरवर भाई हाल कुछ इस हिसाब से है, जैसे सफा जी की बनाई हुई कोफ्ते की सब्जी में ना.
2: कोफ्ते की सब्जी नहीं थी भाई, मटन के कोफ्ते थे भाई.
3: कोफ्ते की सब्जी,
2: कोफ्ते की सब्जी बना दी.
3: तो वो वेजिटेरियन है ना, तो वो वेज कोफ्ते खाते हैं.
2: ओके ओके ओके.
4: जी जो भी था उसके बाद सर्वर भाई ने जो ऊपर से गरम मसाला डाला है ना,
3: हाय हाय हाय
4: हाय, डिलीशियस यमी.
2: देखो गाबा भाई कसम खा के बोल रही हूँ, मेरे पेट में से गुड़गुड़ हो रही है, ना करो, मुझे इस वक्त बहुत शदीद भूख लगी हुई है. मुझे ना वो बचा हुआ सालन, वो होता है ना, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बचा हुआ सालन फ्रेश सालन से ज्यादा याद आ रहा होता है?
3: क्योंकि वो अच्छा टेस्ट होता है एक्चुअली.
4: जो साग होता है ना साग,
2: ओ भाई एक दिन पुराना दो दिन पुराना साग खाओ आप, मतलब आप रोटी भूल जाओगे, आप चमचे से हाथ से खाओगे.
3: अच्छा ऐसा है क्या?
2: बिरयानी का आलू और सरसों का या कोई भी साग होता है ना, वो आप एक से दो दिन पुराना

0: मुझे बहुत पसंद है, मगर पुराना यार आज नई नई टमाटर का जूस, सरसों का साग, पुराना नई नई चीजें वापस आने के बाद मिल रही है। भारत गाबा भाई कैसे हैं? और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे।
1: जी ऑल गुड। सफा जी से एक छोटा सा सवाल है पहले,
2: जी जी
1: फिर मैं बाद में बात। सफा जी, ये जो सर्वर भाई इंडिया से मिठाई लेके आए हैं अलग अलग तरीके की,
0: वाह
1: तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना, कैसी लगी आपको?
2: मैं आपको एक बात बताऊं,
1: सबसे अच्छी वाली कौन सी?
2: सर्वर भाई वो शख्स है जो अपना बुखार ना दे तो मिठाई कहाँ से देंगे। इनसे मैंने जब ज्वाइन किया था, जिस दिन उस दिन कहा था भाई दावत दे दो दावत, वो हो गए मुझे 4 से 5 साल ज्वाइन किए हुए। मतलब ये कि लोगों के बच्चे जवान होकर उनकी शादियां हो गई, लेकिन सर्वर भाई की दावत ना मिली। सर्वर भाई था एक ही होता, कहते कहते इंशाल्लाह।
0: वो याद है वो बारबेक्यू चला था 4 साल खिला खिला के भी मेरे लोग कह रहे हैं कि नहीं मिला मुझे अभी तक।
2: सर भाई मेरी बात
0: अच्छी लगी, इसने अच्छी अच्छी तरीके से खाई, आधा किलो मिठाई खाई है सफा ने जो मैं लेके आया था।
2: वो जो हवाई मिठाई थी ना वो बहुत अच्छी लगी मुझे, ख्याली पुलाव और हवाई मिठाई।
0: चलिए
2: बस
0: अब मुझसे क्या सवाल था अगावा भाई, उसके बाद पूछो
1: भाई। ये अच्छा वो ना सफा जी अभी जिक्र कर रहे थे एरोप्लेन का,
2: हाँ जी,
1: तो मेरे भी दिमाग में कुछ आया, मैंने कहा चलो आपके साथ एक बात शेयर करूंगा, बाकी
2: हाँ।
1: तो 2-3 और हैं।
0: अच्छा
1: आपने देखा होगा सफा जी या सर्वर भाई, मैंने भी नोटिस किया है जब हम लोग जहाज में जाते हैं ना, तो आपको पता है स्मोकिंग तो अलाउड नहीं है जहाज में,
0: सही?
1: ये पूरा सख्त रूल है किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में। तो फिर भी मैडम जहाज के अगर आप लेबोरेटरी में देखोगे ना, तो डोर के पीछे एस्ट्रेस दिया होता है उन्होंने,
2: हाँ।
1: तो वो हर प्लेन में ही होता है तकरीबन। तो आपने नोट किया कभी?
0: नहीं, मसला ये है कि
2: नहीं नहीं मैंने नहीं नोट किया, क्योंकि मैं भाई मैं वाटर प्रूफ हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीती। हम ऐसे सस्ते वाले नशे नहीं करते कि जिनको खरीद के अपनी अपनी जान पे ना अजाब दिया जाए।
0: नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली, उन चीजों से दूर रहना चाहिए। बट मसला ये है कि भाई जहाज के अंदर चीजें तो सारी होती है ना, इमरजेंसी का कुछ नहीं मालूम किसी,
2: लाजमी थोड़ी कि स्मोक जो है ना वो सिर्फ उसकी हो, स्मोक तो किसी
0: नहीं। और ये आप आपकी बात कर रहे हैं, अगर आप अभी से 30 साल पहले जाएंगे तो अलाउड था एक्चुअली।
2: हाँ हाँ, मुझे याद पड़ता है, मैं
1: वही बात करने लगा।
0: एग्जैक्टली, जी जी जी,
1: जब सर्वर भाई अलाउड था ना प्लेन में, तो एकदम से तो नहीं बंद हुआ। तो आप सर्वर भाई अगर नेट पे आप सर्च करोगे ना तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट इस सिगरेट की वजह में हुआ है प्लेन में। तो प्लेन क्रैश हो गया था मैडम फ्रांस के पास, तो उसमें 120 कैजुअल्टीज हुई थी।
2: ये चीज तो मुझे नहीं पता चली आज, मैंने कहा
0: काफी हादसा, ये तो प्लेन की बात कर रहे हैं, काफी हादसा होते हैं, काफी एक्सीडेंट होते हैं गाड़ी में चलते हुए, इतने हादसा होते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तो जाहिर बात है अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवॉइड क्या बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसी कोई ख्वाहिश किसी की होती है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, तो खासतौर पे फैमिली दोस्त और पब्लिक प्लेसेस में इसका बहुत ज्यादा एहतराम भी करना चाहिए,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और ख्याल भी करना चाहिए। और गावा भाई,
2: आपसे सवाल है ठीक है। सवाल ये कि मुझे बताएं, अगर जिंदगी में अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, ठीक है, उन दो ऑप्शन में ये है, एक ऑप्शन ये है कि आपके पास, एक ऑप्शन ये है कि आप जो भी वीडियोस देखें, क्योंकि भाई सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो हम वीडियोस देख रहे होते हैं, जो भी वीडियोस देखें ना वो ऑटोमेटिकली 2 times पर चली जाएं, स्पीड पर, मतलब नॉर्मल स्पीड आपको मिलेगी नहीं। मतलब ये कि अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हर बार जब आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने लगे, अभी स्टार्ट कर रहे हो आप कोई, और एकदम से लाइफ में कोई 30 सेकंड का अनस्किपेबल एड जलना शुरू हो जाए, क्या करोगे भाई? होता ना
1: सिचुएशन, आपने एक ही दी है ना, ये
2: दो सिचुएशंस हैं,
1: एक तो ये भाई आप वीडियो को प्रेफरेंस दोगे अगर वो 2 की स्पीड में चले,
2: हाँ, या दूसरी चीज आप क्या सेलेक्ट करोगे? दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन ये, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, दूसरा दूसरी चीज ये कि या तो फिर वीडियो है, या तो फिर ये है कि आप जब भी किसी से कोई बात करने की कोशिश करो ना, तो बीच में गोता मार दे 30 सेकंड का, 40 सेकंड का एड।
1: जहां तक सफा जी मेरे को लगता है, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे होगे ना और बीच में एड आ जाए, वो चीज ज्यादा तकलीफ देगी।
2: दिल करता है मोबाइल तोड़ दो अपना,
1: मोबाइल तोड़ दो, क्योंकि आप देखिए मैडम, मैं आपको रियल कंडीशन बताता हूँ। अगर हमने सपोज बच्चे को कोई पोएम लगा के दिया है ना, और उस टाइम कंडीशन ऐसी है भी बच्चे को बिल्कुल नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना,
2: क्या तो रिलेटेबल बात कही है इन्होंने,
1: तो मैडम उस टाइम तो इतना गुस्सा आता है ना बंदे को।

0: और खास तौर पर बच्चे को जब खाना खिलाने लगो ना किसी बच्चे को कि भाई ये किसी तरह से खाना खा ले, बस ये खा ले खाना, और उस टाइम पर उसके जो है ना उसकी राइम्स के बीच में ना कोई एड चल पड़े और वो बजाय खाने के लिए मुंह खोले वो रोने के लिए मुंह खोलना शुरू कर दे, तो ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी फेल हो गई है।
1: जी उस टाइम हम लोग मुंह भर के ऐसा बोलते हैं ना, मैं अभी आपको बोल नहीं सकता पंजाबी।
0: मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ भाई, मैं समझ सकती हूँ, मैं आपके दिल के जज्बात बिल्कुल समझ सकती हूँ। तो आप क्या चूज करेंगे, वो फास्ट फॉरवर्ड चूज कर लेंगे, वो ज्यादा बेहतर
2: है। कुछ तो दिख रहा है उसके अंदर,
0: ठीक है भाई,
2: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई गाबा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इंशाल्लाह ताला अब ये रब्ता कायम रहना चाहिए, आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके जी शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: सर भाई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपको गेम शेम खेल रहे हो कुछ कर रहे हो?
2: मैं, बीच में मुझे आदत हो गई एक्चुअली, क्योंकि मुझे वो फ्री वाली चीजें बहुत लेनी होती हैं तो वो बिना वीडियो के नहीं मिलती। ये बात अलग है कि मैं देखता नहीं हूँ, मैं साइड में रख देता हूँ उठा के मोबाइल को, और जब वो पूरा हो जाता है
0: भाई मेरे पास नहीं है इतना तहम्मुल, मैं तो वो ऐप उठा के डिलीट कर देती हूँ।
2: खरीदनी पड़ेगी सारी चीजें, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा?
0: मैं तभी मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करती ना, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
0: अरे फैजान, मेरे यूनिवर्सिटी में एक दोस्त थे बहुत अच्छे भाई मेरे, और उनका नाम था फैजान भाई।
2: वही है
0: ये वही वाला फैजान है। हाँ छोटे फैजान कैसे हो, हमसे कहते छोटा फैजान।
3: मैं वही हूँ, और लास्ट टाइम भी जब मेरी आपसे बात हुई थी दिसंबर में,
0: हाँ जी,
3: तो तब भी आपने मुझे यही बात बताई।
0: अरे बताई थी मैंने आपको बात,
2: तो दिसंबर में 8 महीने बाद आए, अब सोचो अब की फिर सुनाए तो कितने दिन बाद आएंगे।
3: नहीं नहीं नहीं, वो 8 महीने का ऐसे नहीं, क्योंकि ना सफा जी से तो मेरी बात ही नहीं हुई। उस टाइम पे मैंने इनको बताया था कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बेटी पैदा होगी, मैं उसका नाम भी सफा रखूंगा।
0: अरे वाह,
3: तो फिर 15 जनवरी को मेरी बेटी पैदा हुई कतर में, मैंने उसका नाम सफा रखा।
2: क्या बात है
0: भाई, अब क्या रुलाओगे भाई, अब क्या मतलब, देखो ये जो है ना अब ये इतनी फैन फॉलोइंग सर्वर भाई कोई हो सकता है।
2: वाह,
0: अरे भाई,
3: और बाकी क्या कहते हैं सर्वर भाई, वेलकम बैक,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं छुट्टी गया हुआ था जी, मुझे भेजा गया था,
0: मुझे भेजा गया था जबरदस्ती। मैं बेगम से डर के छुट्टी पे नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे भेजा गया
2: जी।
3: बड़े अरसे के बाद सुना मैंने आपको, मैं समझा।
2: हाँ तो मैं छुट्टी गया हुआ था भाई, अल्लाह का शुक्र है वापस आ गए खैरियत से। आप ठीक हैं और सब खैरियत है घर पे?
3: जी जी मैं ठीक हूँ,
2: काम वगैरह सही चल रहा है?
3: काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है मालिक।
2: चलिए साहब अल्लाह ताला खुश रखे, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते भी रहे, बहुत बहुत शुक्रिया
0: फैजान भाई। ये बात बताएं कि आज का मुद्दा ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपको फास्ट फॉरवर्ड वाली वीडियो चलेगी
2: या फिर एड देख के,
0: या फिर एड देखकर आप जो है ना चार बातें सुनाएंगे और फिर भी मुतमईन रहेंगे?
2: मजबूरी जैसे मेरे साथ है भाई, क्या करें।
3: मैं जस्ट ना ऑफिस से निकला था तो रेडियो मैंने ऑन नहीं किया, मैं कॉल पर था। अभी मैंने मतलब इसको ट्यून ऑन किया तो मैंने जो है कॉल मिला रही, पर मुझे नहीं मतलब समझ आ रही कि आपने कॉन्टेक्ट किया है।
0: अच्छा चले आपको आपको समझा देते हैं, हम जो ना हर शो में एक सवाल लेकर आते हैं बहुत ही रैंडम सा, क्योंकि हमारा बड़ा लाइट मोड का शो है ना, तो हम आपसे आपका ओपिनियन ले रहे हैं कि आप जरा बताएं कि लाइफ में आपको क्या डिफिकल्ट लगता है, 2x स्पीड पर वीडियो देखना या आपकी कोई मोबाइल ऐप है, कोई गेम है, कोई कुछ भी है उसके अंदर बीच बीच में एड आना?
3: मुझे क्या बुरा लगता है?
0: हाँ
2: क्या बुरा लगता है?
0: वही बात हो गई।
3: मुझे क्या बुरा लगता है वो यही है कि जो बीच में वीडियोस आ जाती है ना,
0: ये मेरी पार्टी के
3: मुझे बड़ा ही इस चीज से जो है ना अनोइंग होता है। और अच्छा मुझे समझ नहीं आती ये जो यूट्यूब वाले हैं ये कितने चालाक हैं, बाकी लोगों से पैसे लेते हैं कि हम आपकी एड दिखाएंगे और हमें वो कहते हैं कि पैसे से हम आपकी एड रिमूव कर देंगे।
0: भाई ये जो ना ये मार्केटिंग का ये मार्केट मैंने ना बिजनेस मार्केटिंग पढ़ी है ना, ये मार्केटिंग का एक तरीका होता है कि आप हर किसी की जेब से हर चीज निकाल लो। वो हर जगह से पैसा कमा रहे भाई।
3: जी जी जी, वो कहते हैं ना कपड़े भी उतार लो जो कस्टमर आए उसके बाद, वही वही बात है। देसी देसी अल्फाज में
0: कुछ ऐसी
2: ज्यादा देर बात होती रही तो हमारे साथ भी यही होने वाला
0: है। मैंने फौरन बात कर लेते हैं,
2: ज्यादातर ऐसी बात हुई अगर आपकी और फैजान भाई की तो हमारे साथ भी यही होने वाला
0: है। बस समझ जाए फैजान भाई, ज्यादा डिटेल में ना जाएंगे, देखिए हम

0: चलिए भाई फैजान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।
1: आप दोनों को सलाम और
0: जितने सलाम।
2: चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी अपनी प्यारी सी अपनी अपनी वाली प्यारी सी सफा का भी बहुत ख्याल रखिएगा।
1: मैं आपको फोटो भेजता हूँ व्हाट्सएप पे।
2: चले ठीक है भाई, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। अल्लाह हाफिज। अच्छा क्या कहते हैं अपने सरवर भाई, मजे की बात ये कि अगर कोई मुझसे बोले ना मेरे साथ आप दो मिनट मोबाइल के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं तभी जो हूँ वो मूवीज मेरे साथ कोई देखकर नहीं बैठ सकता, सीरीज बैठकर कोई नहीं देख सकता मेरे साथ। मेरा यहाँ तक कि अगर मैं कोई मोबाइल पे के अंदर मैसेज भी है ना, कोई वॉइस मैसेज वगैरह आते हैं तो अगर कोई मेरे साथ बैठा ना वो डिस्टर्ब होता है, वो उसको चिढ़ आ जाती है क्योंकि मैं हर चीज टाइम्स टू पर सुनती हूँ। मतलब मेरे जो स्पाउस साथ में बैठे होंगे वो कहेंगे ये क्या, तुम्हें क्या समझ में क्या आया अगले ने क्या बोला। अब मेरी अम्मा करती है मैसेजेस भाई, वो पांच पांच छह छह मिनट के, दस दस मिनट के, मैं टाइम्स टू पर सुनती हूँ उसे, और मुझे वर्ड टू वर्ड उनकी बात समझ में आ रही होती है। और अच्छा मेरे साथ मूवीज का भी यही सिलसिला है ना, मुझे ना वो अब देखो साथ वाले का ये होगा कि भाई मैं मूवी तफसील से बैठ के देखूं।
0: आ भाई यहाँ तो
2: मुझे वो तफसील नहीं समझ में आ रही,
0: भी चाहिए वीडियो भी चाहिए और यहाँ उसमें फिर ये भी है टेक्स्ट भी चाहिए साथ में।
2: मैं कसम ना मुझे ना वो नहीं समझ में आ रहा था, ये जो सस्पेंस हो रहा होता है ना बीच में के ढंडन ढंडन ढंडन,
0: तो उसका फायदा ही नहीं है, वो फायदा ही नहीं है,
2: नहीं देख सकती मैं,
0: देख ही नहीं सकती
2: मैं। मेरा प्रॉब्लम ये कि वो जो 15 मिनट होते हैं ना शुरू के 15 मिनट के अंदर, मैं आपको बता दूंगी कि ये फलाना ये चोर निकलेगा ये वो होगा, मेरा प्रॉब्लम ये मुझे पता चल जाता है। और फिर मेरे लिए ना वो पूरी मूवी देखना
0: बरादरी का पता रहता है असल में क्या
2: ये बस एक काम करते हैं ब्रेक लेते हैं, इसका ना इस बात का जवाब मैं सरवर भाई को जरा ब्रेक पे जाने के बाद देती हूँ कि बरादरी ठीक है सरवर भाई।
0: नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये आपस वाले समझ जाते हैं ना एक दूसरे को।
2: नहीं सरवर भाई मैं आपको हकीकत से आशना करवाती हूँ, अभी एक हकीकत ये सुनेंगे एक हकीकत आप सुनेंगे। चले भाई
0: आवारापन
2: की टू की ना जो मार्केटिंग हुई है ना जो बहुत गलत हुई है। चलो भाई इमरान हाशमी से मुझे अफसोस हुआ,
0: मैं समझ गया।
2: चले भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखे, हम वापस आए कहीं जाए नहीं। आप सुन रहे हैं सफा और सरवर के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107 दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक जी गोभी दया पुल्लो, वेलकम बैक। मेरी आवाज मुझी को ज्यादा लग रही है या मतलब मैं वैसे मुझे पता है मैं वैसे
2: नहीं, अपने को ज्यादा लगनी भी चाहिए ताकि दूसरे वाले को पूरी पहुंचे। ये तो
1: नहीं सर भाई, मेरा तो रिकॉर्ड है, मुझे तो बचपन से सब ये कहते हैं कि सफा तुम्हें तो माइक की भी जरूरत नहीं, तुम इतना ऊंचा बोलती
2: हो। दोनों ही से हैं एक्चुअली,
1: और अक्सर घर में डांट पड़ जाती, आहिस्ता तो बोलो पड़ोसी सुन लेंगे।
2: और अब मेरे यहाँ भी आगे ऐसे ही सिलसिला जो है इसको मैंने कायम दायम रखा हुआ है एक्चुअली, तो मोहल्ले में सबसे ज्यादा
1: आवाजें
2: जिस घर से आ रही हूँ, तो आपको पते की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए कि ये हमारा ही घर है।
1: अच्छा भाई साथियों, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा एंड सर्वर, और हमारा और आपका साथ रहेगा एक बजे तक, और इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 12:33।
2: भाई जायद भाई का कहना है, इन्होंने वॉइस नोट भेजा है जो हम सुना नहीं सकते, आपकी खैरियत पूछ रहे हैं, मेरी भी खैरियत पूछ रहे हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: और कहते हैं कि अच्छा रहा होगा सफर मेरी छुट्टी से, तो कुछ मैसेजेस और हैं वो शेयर करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो हमारा सेशन चल रहा है वो जारी रहेगा। कॉल है तो
1: जी हाँ, कॉल ले लेते हैं,
2: एक कॉल फिर दो मैसेज फिर एक कॉल फिर तीन मैसेज।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
1: कौन अजू भाई है? अजू भाई, अजू भाई से बात करते हैं। यस अजू भाई, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन सबा, हाउ आर यू?
1: अजू भाई आज कुछ कुछ मामला ऐसा लग रहा है, अभी अजू भाई ना सोने जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। Either you had your food and you came back, and either you are about to go to have some lunch or something.
3: Just now I finished my lunch.
1: हाँ, ये जो लंच के बाद वाली आवाज होती है ना, ये कुछ और ही होती है जो भाई, ये ऐसा होता है कि बस तकिया दो और मैं सो जाऊँ।
2: और हमें मिला नहीं है अभी तक, तो हमें कितनी चढ़न हो रही है इस बात से।
3: नहीं, टुडे मॉर्निंग 3:00 मेरा एक कॉल था।
1: अरे
2: अरे अजू भाई क्या केरला से है क्या?
3: नहीं, तमिलनाडु।
1: तमिलनाडु से?
2: हाँ, मतलब ओके, मैं इसलिए, अच्छा अब मैं समझा, मैंने कहा शायद बात गुस्से में कर रहे हैं, मगर अब मैं समझ में आया ये तो बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी उर्दू बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है तमिलनाडु होने के साथ साथ

0: साल। तो कुछ कह रहे थे जो भाई आपकी बात काट दी मैंने जी।
1: उर्दू अंडरस्टैंड करता हूँ।
0: हाँ ये तो कमाल की बात है।
2: अनजू भाई रिगार्डिंग टू द प्लेस यू आर फ्रॉम, आप उसके लिहाज से उर्दू बात भी बहुत अच्छी करते हैं।
0: वही मैंने कहा ना,
2: इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर मुझे कोई कहे ना कि तमिलनाडु की कोई लैंग्वेज, मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है,
0: तमिल actually.
2: तमिल तो मुझे कोई कहे ना, बिकॉज तमिल आई बिलीव इज वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से
1: ओल्डेस्ट लैंग्वेज,
2: ओल्डेस्ट भी और कुछ कुछ कह लें कि कुछ भारी भरकम लैंग्वेज भी है, कि इट्स नॉट इजी टू लर्न।
1: इतना भारी नहीं है, आप तमिलनाडु में रहेगा तो
0: इतना भारी नहीं है,
2: भारी नहीं है।
0: मलिक भाई मैं भी चंदू नहीं है, मुझे कंपनी याद आ गई इस वक्त। अज्जू भाई से बात करते थे जी।
1: मैं अब्दुल रऊफ भाई के साथ 7 years कंप्लीटेड है।
2: सही।
0: ओके।
1: तो इसके वजह से मेरा उर्दू समझने के लिए आता है।
2: क्या
0: बात है यार, और बड़ा अच्छा लगा।
2: हम इंग्लिश पे काम चला लेते हैं अज्जू भाई।
0: नहीं नहीं बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं यार, उस हिसाब से देखा जाए।
1: कंपनी फॉर कंपनी आई विल गो फॉर इंग्लिश from this other.
0: So you have friends from UP or somewhere else? I mean, who speaks Urdu well?
1: Yeah. There is so many friends in UP, Bihar.
0: Aiyah.
2: Nice.
0: Company में तो होंगे ना?
1: Sorry?
0: नहीं मैं बोल रहा हूँ company में तो होंगे ना from UP, Bihar. अच्छा Bombay से भी हैं बता रहे हैं?
1: हाँ exactly. Our company is multinational MNC company, so all over the world, even German, Spanish people also working together.
0: हम्म, तो हमें कितने दिनों से सुन रहे हैं आप, कितना टाइम हो गया कनेक्टेड?
2: काफी टाइम से सुन रहे हैं दुबई।
1: Almost 3 years.
0: माशाल्लाह क्या बात है यार। Most welcome अज्जू भाई, most welcome, thank you so much कि आपने कॉल किया।
2: अच्छा अज्जू भाई आपसे सवाल करते हैं। If you have a choice between having 2x speed of a video, would you choose that or you would go for ad breaks, 30-40 seconds की जो ad breaks आती है ना बीच में, what would you choose?
1: I will reject both.
2: No, there is no third option.
0: Then वो क्या prefer करते हैं?
1: Two minutes video like ba ba ba ba ba ba ba.
2: I can do that.
0: हाँ वही तो.
1: Okay, for visual, so you are seeing the video, so you can understand. But for what the conversation, you cannot.
0: Obviously, we cannot.
2: हाँ यार मैं कोई रेयर हूँ,
0: इंसानों के लिए नहीं है। मैंने बताया ना वो इन द व्हाट्सएप वी हैव दिस फंक्शन ना और 2x स्पीड, तो उसमें क्या समझ में आता। हाँ कोई अगर आपका बिल्कुल करीबी है, स्पाउसेस हैं, भाई बहन हैं, अम्मा अब्बा हैं, जिनको आप समझ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, वरना जैसे कि अज्जू भाई ने भी करके बताया कि बाबा बाबा बाबा बाबा कैसा हो जाए।
2: अज्जू भाई दिस इज अ थिंग, इवन द पीपल आई डोंट नो, आई कैन नॉट पुट इट ऑन normal speed, I have to listen to it on 2x.
0: And so actually you are not normal na Safa, that's why Ajju bhai ye baat janta hai achhi tarah, kyunki wo bhi chandu nahi hai. Okay chaliye bhai, bahut bahut shukriya Ajju bhai. Ha kuch aur bhi keh rahe
1: bhai, it's like a teams meeting hai to main mute dal ke aise baithega.
2: Lo
0: mute dal ke
2: baithenge.
0: Kya baat
2: wah hai.
0: चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉल अज्जू भाई।
1: या थैंक यू
0: सर जी। तो ये थे अज्जू भाई भाई, और
2: अच्छा अज्जू भाई से अभी आप बात करते ना वो इसकी मोटर्स की और इंजन के बारे में बात करते ना, he's very good at it.
0: हाँ नहीं जाहिर बात है भाई,
2: he loves cars and stuff like that.
0: चलिए साहब तो बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर हीरो। क्या बात है सफा, मुझे हीरो कह दिया KM खान साहब ने, और खुद हीरो लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखिए
2: माशाल्लाह माशाल्लाह
0: देख रहे हैं, बात ही अलग है।
2: चॉकलेट फैक्ट्री
0: जैकेट पहने हुए भाई, चॉकलेट फैक्ट्री में जाने कर क्या रहे हैं।
2: चॉकलेट खा रहे थे कि बना रहे थे, या जेबों में डाल रहे थे?
0: मैं कुछ कहने वाला था एक्चुअली, इसलिए मैंने कहा कि आगे बढ़ जाऊं। जसविंदर सिंह हमारे साथ, हां जी वेलकम जी कहते हैं, थैंक यू सो मच। हां जी उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा भाई यहां पर सरो भाई, मेरा भी रह गया है प्राइज कप विनिंग का, और इनको मैसेज भी आया देखिए। तो
2: अच्छा मैं बोल रही हूँ लोगों को, बता रही हूँ, मैं काफी कंटिन्यूसली 4-6 दफा बता चुकी हूँ ये बात, कि देखिए हर चीज का एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, हम सिस्टम का आखिरी एंड नहीं है, चीज आएगी

0: आप लोगों को मिल जाएगी।
1: अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, वेलकम बैक। कुछ स्वीट्स लेकर आया है। कैसी रही छुट्टी? इंडिया में सब ने शुक्र किया होगा कि आप वापस जा रहे हैं। समीर अहमद यार हो गई यार समीर, अच्छे मैंने कहा अच्छा मैसेज पढ़ रहा हूँ कुछ। समीर भाई ये क्या कर दे आखिर में। अस्सलाम वालेकुम, बोथ ऑफ यू डूइंग गुड जॉब, वेलकम बैक आवर लिटिल चैंप सरवर भाई।
0: लिटिल चैंप, आए हाय सरवर भाई तो खुश हो गए। सरवर भाई की आवाज बंद हो गई पता है, इतने खुश हो गए।
1: शक्ल देखो
0: वो एक वाचा नॉर्थ में तो एक साउथ में, इतने बड़ी मुस्कुराहट आ गई। लिटिल चैंप
1: क्या बात है यार,
0: एंगल से लिटिल लग रही है आपको।
1: कौन ये मकसूद भाई, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सर भाई का कान भी लिटल ना होगा अगर मैं साथ लगाऊं तो। सर भाई आपके कान में पूरा अमेरिका समा जाए, इतना इतना बड़ा कान नक्शा पूरा ही हूँ।
1: कहते हैं ये कहते हैं सफा, अच्छा सफा का फोटो भेजा फैजान ने।
0: हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह लाख वत लवलत। देखा मैं भी बचपन में ऐसी थी बिल्कुल।
1: नहीं यार प्लीज सॉरी यार, मतलब आई एम रियली वेरी सॉरी सफा
0: इस बात में। मैं वो तस्वीर लाके दिखाऊंगी, मैं बहुत प्यारी थी बचपन में, अच्छा अभी भी हूँ।
1: वैसे मुझे जरूरत नहीं है, मैंने बचपन देखा, आंखों देखा कौन झूठ ला सकता।
0: मजे की बात ये सरवर भाई ने मेरे बचपन का वो फेस देखा है जिसके अंदर आप नाक सुड़कते हुए आ रहे होते हो, आपकी नाक बह रही होती है, आपको खांसियां लगी हुई होती है और आप हाथों से अपना नाक यूं सुड़क कर यूं सर तक लेकर जा रहे हो।
1: यार प्लीज यार फिर से मत दिखाओ, तो मैं जब भी देखना मुश्किल था मुझे। ओके कहते हैं सर ये सैड सॉन्ग मत लगाया करो, हमारा दिल पहले से टूटा हुआ है फिर याद आ जाती है।
0: मैं चाहती हूँ कि
1: सुनो तो आगे
0: फिर याद आ जाती है,
1: फिर याद आ जाती है ना किसी के, और आगे दिल में क्रैक वाला इमोजी है। सैड सॉन्ग सुनकर सर स्पीड खुद
0: बहुत
1: 140-150 पर चली जाती। ओहो मतलब गाड़ी में, ओहो वेरी बैड वेरी बैड, ऐसा बिल्कुल ना करें।
0: दिल की स्पीड के बारे में बात कर रहे होंगे वो।
1: ये सही मैच किया।
0: हम जो है ना वो खुद दिल के मरीज लोग हैं पैल्पिटेशन के, तो हमें पता है किस वाली स्पीड के बारे में बात हो रही है।
1: अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्ला।
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।
1: काफिल छुट्टी मंजूर कर दी। अच्छा कफील ने छुट्टी मंजूर कर दी है
0: भाई, ढोल बताशे का है।
1: वापस आने का इरादा मेरे को नहीं, मैडम बोला वापस आ जा, 2 साल तक मेरे को कोई फिकर नहीं।
0: ये मुबीन भाई तो नहीं है कहीं MBB
1: डर है? अच्छा ओके हबीबुल्ला साहब हैं।
0: अरे हबीबुल्ला भाई हैं। ओके
1: सैड हैं एक्चुअली, FM में मेरी बातें सुनूंगा रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा वहां कह रहे हैं कि जाने के बाद भी। अरे यार हबीबुल्ला भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे आप जहां भी रहें, और अगर रुक रहे हैं तो फिर हम आपके साथ हैं, और आप अगर अपने मुल्क भी जा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: तो
0: एक बात हमेशा याद रखिए, मैं इस थोड़ा सा वैसे तो हम लाइट मोड पे बात करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा सीरियस ले लेना तो लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये नजरिया रखते हैं कि जिंदगी अब इसके बाद खत्म हो गई, और कुछ लोग ये नजरिया रखते हैं कि यहाँ से जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो हमेशा वो उन लोगों में से बने कि जो अगर पॉज ले रहे हैं या चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हैं ना, तो उसको ऐसे नहीं लें कि एक चैप्टर क्लोज हो गया, उसको ऐसे लें कि अब से न्यू बिगिनिंग शुरू होगी। अप एंड डाउन हर किसी की जिंदगी में आता है भाई,
1: क्या
0: हर किसी की जिंदगी में
1: आया सफा आपने।
0: बस इसी शेर के साथ रोर करते हुए गल सुन। तो भाई इसकी बात भी सुन लेते हैं अपनी, हमने बहुत बोल ली। आप सुन रहे हैं सफा और सरवर के साथ सर इन साउंड 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी, वेलकम बैक, हेलन वसहलन, खुश आमदीद। बिल्कुल, और अब खुश आमदीद के साथ साथ अलविदा लेने का भी टाइम आ गया, वक्त रह गया बहुत कम और पता ही नहीं चला बातों बातों में। तो पर यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं वो शेयर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। भाई कॉल्स आपकी आ रही हैं, बट अब क्योंकि माजरत मैसेजेस इसने सारे थे कि आज कॉल ज्यादा नहीं ले पाए, इंशाल्लाह ताला अब ये सिलसिला कायम रहना है। और अभी तो हमारे पास दो हफ्ते हैं पूरे। कहते हैं सरवर भाई अस्सलाम वालेकुम, सरवर भाई की आवाज कहाँ चली गई, बहुत टाइम हो गया पुराने सरवर भाई को सुने हुए। अच्छा, सुनने का दिल कर रहा है। आवारा बन टू वर्ल्ड वाइड फर्स्ट डे। अच्छा, इन्होंने बताया कितनी चल गई सफा बाजी के लिए। कहते हैं इमरान को याद करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना तस्वीर जैसा बना सकती है साथ देने के लिए। वही हैं हमारे साथ शेख इरफान भाई, जिनको हमने कहा था आपने, तो खुश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हमारे कमेंट से बढ़ जाते हैं आगे। कहते हैं सरवर भाई दिन बना दिया आपने, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला, मेरी तरफ से सलाम ले लीजिए, मुश्ता अशफाक भाई हैं। अच्छा, और क्या है नसीम भाई, कहते हैं शेर सुनाओ, सफा ने आपको 15 शेर सुनाए इस बीच। कहते हैं सलाम अलैकुम सरवर भाई, वेलकम बैक, कब आया छुट्टी से, उम्मीद करता हूँ घर में सब खैरियत से होंगे। जितना भी सुनने वाले हैं सबको मेरे तरफ से सलाम, सबको एक ही दरख्वास्त है, हिम्मत मत हारना, चाहे हालात जैसे भी हों इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएंगे। हालात, क्या बात है यार, कौन है ये हमारे साथ। और सरताज भाई का भी यहाँ पर वॉइस नोट है, तो वॉइस नोट, ये गरीब भाई थे जिनका मैसेज था, वॉइस नोट हम सुनेंगे इंशाल्लाह ताला अभी यहाँ से जाने के बाद। फिलहाल अब वक्त हो गया कि आपसे इजाजत ले लें, क्योंकि अब से थोड़ी सी देर में आप हाँ अमीन भाई को समाप्त फरमाएंगे दुनिया भर के खेल की खबरों के साथ साथ। और क्या कहती है सफा, इजाजत ले ली जाए
2: भाई, इजाजत ले ली जाए। साथियों अब जो है ना, हम मंडे के दिन मुलाकात करेंगे। मंडे ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं कब आने वाला है, कल मतलब कल
1: मुझे भी कंफ्यूज कर दिया थोड़ी देर के लिए।
2: मंडे के दिन मिलेंगे, वो अगले साल मिलेंगे।
1: मैंने कहा शायद आज थर्सडे तो नहीं है, मैंने थर्सडे में ज्वाइन किया, दो दिन की छुट्टी फिर मिलेगी, कुछ कर दिया।
2: तो भाई इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, याद रखें चाहे जिंदगी 2 टाइम्स पे चल रही हो या बीच में प्रमोशंस आ रहे हो, कुछ भी हो, हिम्मत नहीं हारनी, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई हम तो जिंदगी दूसरों के लिए जी रहे हैं, हमने तो संभालना है जिम्मेदारियां, वो बड़े भाई जान है तो जान है, खुद को संभालोगे तभी दूसरों को संभाल पाओगे। अपना ख्याल रखो ताकि दूसरों का भी ख्याल रख सको। और हमें दीजिए इजाजत अपना ढेर सारा ख्याल रखते हुए, हम भी जाने लगे, ऑफ रोड होने लगे, साइन आउट कर रहे हैं। चलो भाई सर भाई, वैसे ही झूम रहे हैं ये लो सर भाई, इस गाने पे झूमो।
1: अच्छा गाना लगाया आपने, जाते जाते। चलिए भाई आज के लिए इजाजत, सुनते रहिए एफएम 107 दिल से
2: देसी।

0: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समर स्पोर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और एक महीने के बाद ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया उसके बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। और ये समर स्पोर्ट्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि समर स्पोर्ट्स आप लोगों को पता है, आई मीन इट्स नॉट अ न्यू शो। इसमें करंट स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में मैं शेयर करता हूँ, और होने वाले जो इवेंट्स होने जा रहे हैं कतर में और दुनिया भर में उसके बारे में भी आप लोगों से शेयर करता हूँ मैं। और ये प्रोग्राम हर इतवार और मंगल को FM 107 की जानिब पेश करता हूँ। अभी स्टूडियो की घड़ी पर 1:02 मैं जुड़ चुका हूँ आप लोगों के साथ। क्या आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं? तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो 6622107 जो कि FM 107 का व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और हमारे साथ बन सकते हैं। और यू कैन शेयर योर इनपुट्स और यू कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट इन अ क्विज प्रोग्राम, आई मीन प्रोग्राम नहीं, ये क्विज का सवाल जो मैं हमेशा पूछता आता हूँ, उस सवाल को आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और सुन भी दीजिए क्योंकि आप जुड़ी गए हैं जब। तो ये आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर का नाम आपको बताना है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि 6622107 ये तो बहुत ही पॉपुलर व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों के लिए, तो इस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं इन खिलाड़ी का नाम और पाकिस्तान क्या इस बॉलर के नाम जिनके नाम पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। दोबारा दोहरा देता हूँ, 6622107 हमारा व्हाट्सअप नंबर है और इस पर आप जुड़ सकते हैं विथ योर इनपुट्स एंड ओपिनियंस ऑन स्पोर्ट्स। और आप शुरू करते हैं मेजर हाईलाइट्स के साथ। दोस्तों बताता चलूं कि हाईलाइट शुरू तो कर ही रहूंगा मैं, लेकिन उससे आज जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्रिकेट में और इम्पोर्टेंट एक स्टोरी, एक न्यूज़ हमें देखने को मिला, वो है बांग्लादेश क्रिकेट। और बांग्लादेश क्रिकेट की जानिब एक ज़बरदस्त जीत, और आज वो जीत एक तारीखी जीत मैं कहूँगा, क्योंकि बांग्लादेश ने किसी और को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड कायम किया है, और 9 विकेट से। और आज मैच का चौथा दिन था और इस चौथे दिन में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को अपने ही घर, उनके ही घर पर बिल्कुल यू नो डाउन एंड आउट, आई मीन नॉकआउट कर दिया है। और ये ज़बरदस्त जीत है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, और बांग्लादेश क्रिकेट से मुराद मैं तो कहूँगा कि साउथ एशियन क्रिकेट के लिए एक ज़बरदस्त जीत रहा है ये। एंड इस जीत के पीछे कई ऐसे प्लेयर्स जो इसमें आई वुड से कि उनका काफ़ी यू नो रिस्पेक्टेबल जो स्कोर्स रहा है या उनका जो किरदार रहा है, उनमें से तंजीद एक बल्लेबाज हैं और वो तंजीद साहब ने इस सेंचुरी स्कोर की, और ये ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्कोर अ सेंचुरी। दिस इज़ वन ऑफ द रिकॉर्ड्स दैट वाज सेट बाय तंजीद, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक विक्ट्री है फॉर बांग्लादेश। और अगर बॉलर की बात करूं तो हसन महमूद बांग्लादेश के, जिन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट्स हासिल किए इन द फर्स्ट इनिंग्स। और ये सुन लीजिए कि शुरू से लेकर आखिर तक बांग्लादेश वॉज ऑन द टॉप, कोई ऐसा फ्लूक की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम काफ़ी कैचेस ड्रॉप करने में बड़े ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया इस मैच में, और इस पर काफ़ी कुछ तनकीदें जो हैं वो दिखने को, पढ़ने को, सुनने को हमें आ रहा है कि वाई बांग्लादेश

वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड और ये मैच खेला गया था डरविन शहर में. सो बांग्लादेश वन अप इन द टू मैच टेस्ट सीरीज और आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग नॉट टेस्ट रैंकिंग बल्कि जो डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो रैंकिंग है वहाँ बांग्लादेश के थोड़े से रैंकिंग जबरदस्त एक ही पल में ऊपर बांग्लादेश हैज गॉन अप. सो बेस्ट ऑफ लक टू बांग्लादेश क्रिकेट टीम ऑन द नेक्स्ट मैच एंड बेस्ट ऑफ लक टू द साउथ एशियन क्रिकेट. अच्छा आप नजर डालते हैं कि अब श्रीलंका वर्सेस इंडिया का जो मैच कल शुरू होना था उसमें क्या हुआ है हम देख लेते हैं. इंडिया वर्सेस श्रीलंका जबकि बारिश ही बारिश ये थोड़ा सा आज सेकेंड डे है. कल का मैच जो था ये मैच जो था फर्स्ट डे वाज टोटली वॉश्ड आउट बिकॉज ऑफ द रेन और इंडियन इनिंग्स जो है अभी फिलहाल जारी है और इसमें इंडियन बैट्समैन काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी का इन्होंने शो किया है. चार विकेट के नुकसान पर 340 रन बना चुके हैं एंड इंडिया चूज टू बैट यानी इंडिया टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. और देखने को मिल रहा है कि केएल राहुल हैज़ टॉप स्कोर नॉट टॉप स्कोर बल्कि गुड ओपनिंग स्टैंड विथ यशस्वी जायसवाल 82 रन की पारी स्कोर करके वो आउट हो गए. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्कोर जो आज है वो है देवदत्त पाटीकाल का. देवदत्त पाटीकाल नॉट आउट है 163. हो सकता है कि डबल सेंचुरी भी स्कोर कर ले और साथ ही साथ अगर देखूं तो थोड़ा बहुत आउट ऑफ फॉर्म मुझे लगा शुभमन गिल जो कि कप्तान है 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्य की गेंद पर आउट हो चुके हैं. ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं 39 रन 62 गेंदों पर और केशारा नुआनथा के गेंद पर ये आउट हो गए हैं. अभी फिलहाल जो है बैटिंग कर रहे हैं वो ध्रुव जुरेल एंड केएल राहुल. सो दोस्तों अभी ये मैच जारी है पता नहीं आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट्स होगा. और गोल एक शानदार खूबसूरत एक क्रिकेट स्टेडियम है गोल में ये मैच है और बारिश तो बताइए अभी मौसम जो है इन दिनों इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका या नेपाल यहाँ पे अभी जो है मॉनसून जो है काफ़ी यू नो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. सो एनीवे ये टेस्ट मैचेस हैं दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ है. अगला टेस्ट मैच जो है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का वो 23 से 27 अगस्त में खेला जाएगा. लेट्स कम बैक टू द कतर न्यूज़. अब कतर न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है. 27 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट मैच है वो भी मैच जो है वो है बास्केटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स यानी फीबा वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है अगले साल कतर में होने जा रहा है दोस्तों दोहा में होने जा रहा है और चाइना के साथ यानी चीन के साथ ये इम्पॉर्टेंट एक क्वालिफिकेशन मैच है विद द कतरी नेशनल टीम और ये मैच जो है 27 अगस्त को होगा अल जनूब अरीना में. सो अल जनूब अरीना में अगर किसी को जाना है ये मैच देखना है कतर को सपोर्ट करना है आप लोग मौजूद रह सकते हैं. लॉट ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग एंड आप लोगों को थोड़ा सा जोश दिखाना है क्योंकि अब ये जो सीज़न शुरू होने जा रहा है एंड ये सीज़न जो है स्पोर्ट्स सीज़न कतर में स्पोर्ट्स सीज़न जो है इसका आगाज हो चुका है होगा अब धीरे धीरे होने जा रहा है. जैसे कि 20 तारीख से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20 तारीख से QSL यानी कतर स्टार्स लीग की माफ़ कीजिएगा 20 तारीख हाँ सही बोल रहा हूँ मैं 20 तारीख से कतर स्टार्स लीग यानी कतर फुटबॉल लीग का जो पहला गेम है पहला मैच है वो खेला जाएगा बिटवीन अल वखरा एंड कतर स्पोर्ट्स क्लब और उसी दिन एक और मैच में अल रायहान और लुसेल फर्स्ट टाइम लुसेल जो है एक क्लब के तौर पर लुसेल स्टेडियम नहीं लुसेल क्लब के तौर पर दे हैव क्वालिफाइड फॉर द कतर स्टार्स लीग जो कि टॉप टीयर फुटबॉल लीग है यहाँ पे कतर में. तो अल रायहान और लुसेल के दरमियान ये दोनों मैचेज फर्स्ट डे ऑन 20 अगस्त 23 अगस्त को QSL 2 यानी कतर स्टार्स लीग 2 जिसको पहले कतर फुटबॉल लीग सेकंड डिवीजन हम कहते थे अब वो चेंज हो गया है अब उसको QSL 2 के नाम से जाना जा रहा है और ये मैच भी उस 23 तारीख को शुरू होने जा रहा है. मीन्स लीग यानी प्रॉपर लीग है सेकंड डिवीजन लीग और इसी लीग को चलते QFA कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने QSL के साथ मिलकर अभी कई ऐसे कतर में मॉल्स हैं जहाँ पे एक्टिवेशन प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू कर दिए बेसिकली प्रमोशनल प्रोग्राम है प्रमोशनल कैंपेन है टू पॉपुलराइज द लीग दैट इज द कतर स्टार्स लीग. दोस्तों कतर स्टार्स लीग में मौजूदा चैंपियन है असद क्लब और देखना है ये है कि असद क्लब इस साल क्या अपना परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाएगा या नहीं. और देर आर लॉट ऑफ अदर इवेंट्स दैट इज गोइंग टू हैपन और बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको मैं शेयर करूंगा आपसे शेयर करूंगा लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एक गाना सुनिए उसके बाद आप लोगों से मैं जुड़ता हूँ. लेकिन एक क्वेश्चन जो था जो सवाल था आप लोगों के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उस खिलाड़ी
उन बॉलर का नाम आपको बताना है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड, अभी तक वो रिकॉर्ड उनके नाम है। आपको उसे बताना है नाम और टेक्स्ट करना है 6622107 पर। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स एंड स्टे ट्यून्ड टू FM 107। वी टेक अ ब्रेक अवे।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: वेलकम बैक टू समर स्पोर्ट्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और ब्रेक्स जाने से पहले एक सवाल पूछा था, बहुत ही आसान सवाल है, जो भी क्रिकेट के फैंस हैं उनको पता होना चाहिए लाजमी। और ये सवाल था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाला खिलाड़ी, उनका नाम आपको बताना है। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर में जोश काफ़ी है क्रिकेट को लेकर और स्पोर्ट्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के, जितने भी जवाब हैं वो मेरे पास पहुँच रहे हैं ऑन द व्हाट्सएप। आई कैन सी ऑन द स्क्रीन लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ लिसनर्स ऑफ FM 107 मैसेज कर रहे हैं मुझे, बहुत अच्छी बात है। मुझे पसंद है वो लोग जो स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, स्पेशली क्रिकेट को लेकर बात करें और फुटबॉल को लेकर भी, बिकॉज कतर का नंबर वन गेम तो फुटबॉल ही है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो कतर के बारे में मैं बता रहा था कि कतर स्पोर्ट्स में क्या क्या होने जा रहा है, और कतर स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने ब्रेक से पहले बताया था कि यहाँ पे एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफायर मैच है, क्वालिफाइंग मैच है बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, और ये चीन के अगेंस्ट में है 27 अगस्त में। और वहीं अगर मैं और भी बात करूँ कि कतर किस किस जगहों पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और किस किस यू नो इवेंट्स पर, किस किस स्पोर्ट्स पर, वो मैं बता दूं कि फीबा आई मीन तो आपको बता दिया था कि वो बास्केटबॉल है, FIVB यानी वॉलीबॉल के अंडर 17 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि दोहा में होने जा रहा है 19 अगस्त से 29 अगस्त, इसमें कतर की टीम जो है वो पूल ए में है टूनिशिया, फ्रांस और वेनेजुएला के अगेंस्ट में। और ये इंपॉर्टेंट इवेंट माना जा रहा है बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की अहमियत आप सबको पता है, जब फीफा वर्ल्ड कप हो या कुछ भी वर्ल्ड कप कह लीजिए, कतर इज रेडी टू होस्ट। एंड ये फीबा वर्ल्ड कप जो कि 2027 में होने जा रहा है, अभी अंडर 17 वॉलीबॉल वर्ल्ड कप, वॉलीबॉल बहुत ही एक तेज तरीन स्पोर्ट्स है जहाँ पे हमेशा पंचेस, हमेशा जो स्मैशेस हैं वो आपको देखने को मिलता है, जस्ट सेम लाइक बास्केटबॉल। फुटबॉल तो नहीं, डेफिनेटली फुटबॉल में आप पैरों से मारते हैं गेंद को और यहाँ पर आप हाथों से बॉलों को चपेट लगाते हैं, एंड वॉलीबॉल देखने में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अगर बीच वॉलीबॉल हो तो मज़ा आ जाए। तो दोस्तों ये टूर्नामेंट जो है अंडर 17 FIVB वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 17 जो कि दोहा में होने जा रहा है 19 से 29, आप लोग देख सकते हैं, पहुंच सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज गेट टू नो मोर अबाउट ऑन दिस इवेंट हमारे स्पोर्ट्स प्रोग्राम में। मैं स्पोर्ट्स न्यूज़ मॉर्निंग न्यूज़ में भी मैं शेयर करता हूं आप लोगों से, उसमें भी आप लोग सुन सकते हैं। एस्पायर स्पोर्ट्स हॉल और अल अरबी स्पोर्ट्स क्लब हॉल में ये मैचेस होंगे, और ये मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंडर 17 वॉलीबॉल वर्ल्ड कप देखना बनता है, नॉट जस्ट कि सीनियर्स के बारे में हम बात करें। अच्छा जब हम वॉलीबॉल के बारे में बात कर रहे हैं एंड बास्केटबॉल के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो अंडर 17 का ही वर्ल्ड कप फुटबॉल दोबारा पिछले साल के माफिक इस बार भी कतर में होने जा रहा है, और ये कतर के साथ एक मुआहदा हुआ था इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन जिसको हम फीफा कहते हैं, फीफा नॉट फीबा, फीफा के साथ एक मुआहदा होता है कि 5 साल तक कतर विल होस्ट द अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल, और ये टूर्नामेंट जो है कतर में दोहा में दोबारा होने जा रहा है। एंड इसमें इस बार जो तकरीबन मैचेस होंगे वो 100 से ज़्यादा ही हैं, और 19 नवंबर से ये शुरू होने जा रहा है, और आप लोगों को पता है मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन, मोस्ट पॉपुलर फुटबॉल के लिए ओपन ग्राउंड जो है एस्पायर, जो फुटबॉल के जो मैदान हैं एस्पायर एकेडमी के साथ लगा हुआ, जो छोटे तो नहीं है, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल के ही साइज़ के ही ग्राउंड्स हैं, तो यहाँ पे ओपन स्काई में ये मैचेस होंगे, ओपन अंडर द स्काई है, सो ये बहुत अच्छी बात है, मौसम भी सही हो जाएगा बाय द टाइम 19 नवंबर से शुरू है। एंड दिस इज़ मुसलसल दूसरी मरतबा कतर इज़ गोइंग टू द कतर फुटबॉल फेडरेशन, एंड स्टेट ऑफ कतर विल होस्ट दिस मेगा इवेंट दैट इज़ नोन एज अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप। दोस्तों देखना बनता है, मैं हमेशा जोर देता हूँ उस बात पर जहाँ पे नौजवान और यंगस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपको फ्यूचर स्टार्स नज़र आ जाते हैं कि किन में क्या सलाहियतें हैं, किन में क्या वो खूबी है, स्किल्स को लेकर, आर्ट को लेकर, जो वो चीज़ें हमें बचपन में ही देखने को मिल जाते हैं, तो वो कोचेज आते हैं वहाँ पे स्पॉट करने के लिए, टैलेंट हंट करने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं ये सब टूर्नामेंट्स में, सो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल, ये सब आप लोगों को पहले से मैं बता रहा हूँ कि यू शुड नॉट मिस दिस टूर्नामेंट। और भी एक इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको हम बताएंगे कि यू नो QSFA launches a new round of fitness contest in Altaqira. QSFA यानी Qatar Sports for All Federation एक fitness contest का इन्होंने आगाज किया है, और ये tournament तो नहीं है, एक competition है, और यहाँ पे छोटे बच्चे Altaqira Youth Center में यहाँ पे उन्होंने participate किया 3-11 के age में, और 12-15 और 16-18। और ये एक important event इसलिए कि fitness को लेकर Qatar State of Qatar और Qatar Football Association, Qatar के ओलंपिक कमेटी कह लीजिए, सब लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बच्चों के ऊपर थोड़ा तवज्जो दी जाए, कि फिटनेस को लेकर पेरेंट्स जो हैं थोड़ा सा फोकस रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ के लाइफस्टाइल आप लोगों को पता है, हर कोई यू नो मोबाइल एडिक्टेड है, या तो फिजिकल स्पोर्ट के साथ बहुत दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तो इसीलिए कतर गवर्नमेंट की जो ये एफर्ट है, जो कैंपेन्स हैं थ्रू द वेरियस यू नो एजेंसीज, जैसे कि कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन हैं, कतर ओलंपिक कमेटी है, इनके जरिए जितने भी इवेंट्स किए जा रहे हैं, आपने नोट किया होगा ज़्यादातर टारगेटेड एज ग्रुप है छोटे बच्चे, बिकॉज ओबेसिटी यानी मोटापा फिजिकल एक्टिविटीज ना होने का एक बहुत बड़ा एक मेजर रीजन रहा है, और यहाँ पे हर कोई यहाँ पे अफेक्टेड है, हर कोई, देसी लोग भी और सब लोग। तो यहाँ पे इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ के थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस तरह के फिटनेस कंटेस्ट रखा जाता है, और साथ साथ इवेंट्स तो बरकरार है। इवेंट्स की बात करें तो कतर आई थिंक ऑलवेज स्टेज अहेड ऑफ द अदर GCC कंट्रीज, जहाँ पे इवेंट्स ही इवेंट्स हैं, और स्पोर्ट्स इवेंट्स इतना ज़रूरी है आज की तारीख में। अगर देखें आज की तारीख में अगर बात करें, स्पोर्ट्स इवेंट इज समथिंग दैट आपको यू नो एक मोटिवेशन के तौर पर भी हेल्प्स यू अलॉट। सो ये सारे इवेंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इंटरनेशनल के हवाले, इंटरनेशनल स्पोर्ट न्यूज़ के हवाले से एक आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि अर्जेंटीना वर्सेस यू नो अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन के जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था, उस फाइनल में जिस खिलाड़ी ने गोल किया था, शायद आप लोगों को पता हो या नहीं भी हो, भूल गए होंगे आप लोग, ऑलमोस्ट 1 month होने जा रहा है, एक महीने के बाद इस खिलाड़ी यानी फेरान टोरेस ने PSG के लिए साइन कर लिया है। फेरान टोरेस वही स्पेनिश फॉरवर्ड है जिन्होंने आखिरी मोमेंट में यानी 101 मिनट में अर्जेंटीना को हराने में सबसे बड़ा अहम रोल जो अदा किया था फेरान टोरेस, एंड बार्सिलोना से अब वो PSG खतर का ही क्लब है, पेरिस सेंट जर्मेन, और उस क्लब में 2031 तक ही हैज साइन द कॉन्ट्रैक्ट की वहीं पे नंबर 9 शर्ट पहन के खेलेंगे। और यहीं पे एक सबसे बड़ा यू नो इम्पॉर्टेंट बात है कि PSG, वाई PSG, क्योंकि PSG यूरोपियन चैम्पियन है, यू नो UEFA चैम्पियंस लीग मुसलसल दूसरे बार जीतने का एक रिकॉर्ड कायम किया था, और यहाँ पर आज की डेट पे अगर बात करूँ तो लोग बात बार्सिलोना की नहीं करते हैं, लोग रियल मद्रिद की नहीं करते, बल्कि PSG के करते हैं। और PSG क्लब के जो एक सडन बूम हुआ है उसके पीछे अगेन स्टेट ऑफ कतर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पढ़िएगा, आप लोगों के पास अगर कोई गुजरिया हो आप पढ़ लीजिएगा कि वाई PSG, जब PSG कतर ने एक्वायर किया था यानी ओन किया था, तब PSG के मार्केट वैल्यू वॉज वेरी लो, अब आज PSG मार्केट वैल्यू इज सो हाई जस्ट बिकॉज कतर हैज इन्वेस्टेड इन द राइट क्लब। और आज PSG क्लब का जो टारगेट था कि यूरोपियन चैंपियन बनना है, और मुसलसल दूसरे मरतबा जीत कर PSG ने ये साबित कर दिया कि वी आर हियर टू स्टे। अच्छा, टेनिस में क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि टेनिस में बेन शेल्टन और यिगा स्वांतेक ने मॉन्ट्रियल और टोरंटो मास्टर्स में अपने अपने टाइटल्स जीतकर ये साबित किया कि वी आर इन द ग्रूव, यानी दे विल बी यू नो गोइंग फॉर मेजर इवेंट्स लाइक US ओपन होने जा रहा है सितंबर में, तो US ओपन के लिए तैयारी एक तरह से देखा जाइए, जो ATP और WTA जो टूर्नामेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, इसमें जीतने का मतलब ये होता है कि यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। अच्छा, अब चलते हैं आखिरी राउंड पर और आखिरी सेगमेंट पर, और यहाँ पे आप लोगों से मैं जो सवाल पूछा था कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो नाम, जो रिकॉर्ड है, वो किस खिलाड़ी के नाम है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने, तहे दिल से शुक्रिया इसलिए अदा करूँ कि आप लोगों ने भर भर के आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम में, स्पोर्ट्स के इस क्वेश्चन में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो ओनली वन एंड ओनली वो खिलाड़ी आज भी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में हमें देखने को मिल जाता है वासिम अकरम। एंड वासिम अकरम को कौन नहीं जानता है। वासिम अकरम साहब जबरदस्त खिलाड़ी रह चुके हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इन जिन्होंने इन्होंने जितने भी विकेट्स लिए हैं उनमें से ऑलमोस्ट हाफ विकेट्स जिन्होंने इन्होंने जो लिए हैं दैट अंडर द इन्फ्लुएंस डायबिटिक पेशेंट के तौर पर। सो ही इज अ नॉट अ माइनर डायबिटिक बट कि हाईली हाईली जो कि कोई भी कह देगा कि बस हमसे नहीं हो पा रहा है, मैं खेल छोड़ दूं, मैं कुछ भी छोड़ दूं, बट वसीम अकरम साहब ने डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद शॉट्स लिए, इंजेक्शंस लिए, इन्होंने सारे कुछ किए। एंड अब लोगों को पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके रफ्तार वो थक जाते हैं, और उन्होंने ये भी किया कि अपने बॉलिंग रनअप को छोटा किया, बॉलिंग रनअप को छोटा करने के बाद भी क्या इफेक्ट लाया अपनी बॉलिंग में। एंड आज भी वसीम अकरम को वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के तौर पे हम जानते हैं, और ही इज़ नाउ 60 ईयर ओल्ड एंड ही इज़ वन ऑफ द ट्रूली ट्रूली लेजेंड ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो है ही है, और वर्ल्ड क्रिकेट में वसीम अकरम एक immensely popular name hai jinko hum sultan of swing ke naam se bhi jante hain, and Wasim Akram is one of the devastating fast bowlers during his time. Unhone aakhri test match khela tha 2002 mein, aur unka test debut hua tha 25 january 1985 against New Zealand, aur us time wo kafi young the, and dheere dheere Wasim Akram became a very very destructive bowler along with वकार यूनुस, एंड वकार यूनुस के साथ एक पार्टनरशिप था इन टैंडम पाकिस्तान को, वो बॉलिंग अटैक वाह क्या बात। लास्ट वनडे अगेंस्ट जिम्बाब्वे 4 मार्च 2003, और वनडे टीम में जब वो खेलते थे तो जर्सी नंबर उनका था 3। सो आपको बता रहा हूँ 104 मैचेस में उन्होंने रन स्कोर किए 2898 और उन्होंने ODI में रन स्कोर किया 3717, और ODI खेले ज़्यादा 356, और जैसे कि आप लोगों ने सही बताया कि हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान, और दिस इज व्हाट इज इमेंसली अक्रेडिटेबल रिकॉर्ड 414 विकेट्स दोस्तों, और ODI में 502, तो ओवरऑल दोनों फॉर्मेट को मिला के 900 से ज़्यादा विकेट। अच्छा जिन साहब ने जिन लोगों ने जिन लिसनर्स ने हमें मैसेज दिया है उनका नाम पढ़ देता हूँ। खान साहब, KM खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वसीम अकरम सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हरजिंदर साहब ने भी सही कहा है, और उन्होंने मेंशन भी किया है 414 विकेट्स, और नाम क्या है मकसूद साहब ने भी सही लिखा है, वसीम अकरम बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर रह चुके हैं। वैस अहमद ने कहा है वसीम अकरम गलत ही नहीं हो सकता कोई। इरफान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जवाब के लिए। एंड वसीम अकरम जी, वो अकरम साहब को कौन भूल सकता है। वसीम अकरम मुदस्सिर बंगश, और इन्होंने भी सही जवाब दिया है, और एक और सही जवाब शाहीन, लेकिन शाहीन ने कुछ लिखा नहीं, जस्ट गुड मॉर्निंग मैसेज है, जबकि गुड आफ्टरनून है एनीवे। और पाकिस्तान से एक मैसेज था, पाकिस्तान से डायरेक्ट खान साहब कोई हैं, तो उन्होंने सही जवाब दिया है, माफ़ कीजिएगा वसीम अकरम साहब। वसीम अकरम इज़ अ लेजेंड, आज भी बात होती रहती है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग स्विंग बॉलिंग हो तो वसीम अकरम, और वसीम अकरम को देख के कई ऐसे बॉलर्स मुतासिर हुए, यंग बॉलर्स मुतासिर हुए, जैसे चामिन नवाज ऑफ श्रीलंका उस ज़माने में, और उसके साथ साथ इरफान पठान जो इंडिया के थे, उन्होंने भी काफ़ी इनको आइडल माना, और लेफ्ट आर्म दोनों ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स थे, और ना जाने कितने फास्ट बॉलर्स जो कि लेफ्ट आर्म बॉल करते हैं वो वसीम अकरम को देखकर ही अपने आप को सजाया, अपने आप को निखारा है कि आई वॉन्ट टू बी लाइक वसीम अकरम। तो दोस्तों आज का ये प्रोग्राम, आज का ये शो जो है यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस क्विज में, मैं उम्मीद करता हूँ मंगल को जब मैं मिलूँगा तब भी आप इसी स्पोर्टिंग फीलिंग के साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है, शो का नाम है द समर स्पोर्ट्स। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन, तब तक के लिए अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए, और अल्लाह हाफिज़, और खेलों की दुनिया से जुड़े रहिए। कीप लिसनिंग टू फिल्म अनुसार।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक, टाइम
3: चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:30, यानी ये वक्त हो चला है।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107, दिल से दी।
3: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और हमारा जो वीक का पहला दिन है, क्या बात है। तो कैसे हैं आप सब ऑन FM 107 जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, है कि नहीं। I'm very sure कि आप सब मजे में होंगे। और ये जो दिन होता है ना, पहला हफ्ते का पहला दिन, I'm very certain थोड़ा सा हेक्टिक वाला होता है, बट ये दिन तो अभी दिन है, शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है, है कि नहीं। सो एस्केप रूम में आप सभी का वेलकम है। और हफ्ते की नई शुरुआत, नया चैलेंज क्या होने वाला है। और मैं हूँ आपकी एफ और अमिता। और आज मैंने सोचा कि हम अलग अलग जगहों पे जाके कैद हो जाते हैं और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं। क्या हो कि हम किसी एक ही जगह पर हों और वक्त थम जाए, वक्त रुक जाए। मतलब टाइम मशीन वाला किस्सा तो हम कर चुके हैं, बट यहाँ टाइम मशीन का सीन नहीं है, यहाँ पर वक्त रुक गया है। इस रुके हुए वक्त को हमें मतलब चलाना पड़ेगा, वरना जिंदगी में बड़ी मुश्किलात होने वाली है कि नहीं। तो आज का चैलेंज क्या होगा, एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपको पता चलेगा। पर अभी के लिए 6622107, 6622107 ये हमारा नंबर है, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके जरिए हमारी बातचीत कंटिन्यूसली चलने वाली है। और अभी के लिए क्या करना है, आप भाई एस्केप रूम में थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है। तो बेनी दयाल है, शालमली है, ओहो हो क्या कॉम्बिनेशन है। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। दिल से देसी।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो।
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। जनाब इस वक्त एस्केप रूम का चैलेंज शुरू होने वाला है। आप अभी अपनी पलकें न जाने कितने बार झपक चुके होंगे, लेकिन अभी रुकिए, पलकें मत झपकिए, क्योंकि आपने कभी सोचा कि जब आप पलकें झपकते हैं तो आप वक्त का एक छोटा सा हिस्सा खो देते हैं। आपके लिए तो सिर्फ वो एक पल है, लेकिन वो सेकंड्स कहीं ना कहीं तो जाते होंगे। राइट नाउ हम उसी कहीं में खींच लिए गए हैं। सो वेलकम टू द रूम ऑफ मिसिंग सेकंड्स। ये एक ऐसी जगह है जहां वक्त थम गया है। जरा आसपास देखिए, खिड़की के बाहर वो चिड़िया जो हवा में उड़ रही थी वो वहीं जमी हुई है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किसी शख्स का जो पसीना है उसके माथे से बस यूं गिरने ही वाला था, वो बूंद गिरने ही वाली थी, वहीं फ्रीज हो गई। अब हम दो धड़कनों के बीच की इस खामोशी में कैद हो चुके हैं। अगर हमने दुनिया की घड़ी को फिर से स्टार्ट नहीं किया तो हम हमेशा के लिए यहीं जम जाएंगे और बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी। अब दिक्कत यह है कि यहां पर क्लॉक टिक टॉक नहीं कर रही है। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, उन चीजों को ढूंढना जो वक्त की रफ्तार को बरकरार रखती है। उस कोने में देखो, हाँ वहां रखी उस पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक को देखो। क्या दिख रहा है? इसका भारी सोने का वेट बिल्कुल रुका हुआ है। ये ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट। हमें इसे एक धक्का देना होगा, और ये धक्का कैसे देंगे? जब हम क्लू नंबर वन सॉल्व करेंगे और सही जवाब हमारी जुबान से निकलेगा। सो क्लू नंबर वन आपके लिए ये है, मैं एक ऊंची लकड़ी की घड़ी में रखा एक भारी वजन हूं। रिदम बनाए रखने के लिए मैं आगे पीछे बाएं से दाएं झूलता हूं। मेरा नाम इंग्लिश वर्ड ड्रम के साथ राइम करता है। बताइए मैं क्या हूं? Come on, think about it. कि एक बड़ी सी घड़ी में ऐसी कौन सी चीज है जो लेफ्ट राइट झूलती है? क्या बोलते हैं उसको? आपके पास जवाब है, आई नो इट, बस उसे लिखना है। तो सही जवाब हमें लिख के भेजिए अपने नाम के साथ 666-22-107 पर 666-22-107, एंड लेट मी सी कि पहला पड़ाव कैसे हम निकाल पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो वक्त ही रुक गया है। इस रुके हुए वक्त को चलाना बहुत और बेहद ज़रूरी है। सो क्लू नंबर वन एक बार फिर से दोहराऊंगी कि मैं एक ऊंची लकड़ी की घड़ी में रखा एक भारी वजन हूँ। रिदम बनाए रखने के लिए मैं आगे पीछे बाएं से दाएं झूलता हूँ। मेरा नाम इंग्लिश वर्ड ड्रम के साथ राइम करता है, तो बताइए मैं क्या हूँ? कम ऑन थिंक और सही जवाब मुझे दीजिए, एंड लेट मी सी कि आज ये पहला पड़ाव कौन पार कर पाता है। और अभी एक शानदार से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ रुख करते हैं, फिर आपकी मेरी मुलाकात होगी। तो स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: Yes, and now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी A for Amita. और आज हम एस्केप रूम में कहाँ फंसे हैं? आज हम फंसे हैं द रूम ऑफ मिसिंग सेकंड्स में. ये वो जगह है जहाँ वक्त बिल्कुल थम सा गया है. जहाँ भी हमारी नज़रें जा रही हैं, हर चीज़ आधी अधूरी सी नज़र आ रही है. उफ, जैसे कोई काम पूरा होना था लेकिन वक्त की चपेट ने समहाउ हर चीज़ को रोक दिया है. वक्त ही रुक गया है. इस रुके हुए वक्त को हमें शुरू करना है, ठीक है, वरना हालत बड़ी ख़राब होने वाली है. सो क्लू नंबर वन हमारे लिए आया और वो ये था कि मैं एक ऊंची लकड़ी की घड़ी में रखा एक भारी वज़न हूँ. ठीक है, रिदम बनाए रखने के लिए मैं आगे पीछे बाएं से दाएं झूलता हूँ. मेरा नाम इंग्लिश वर्ड ड्रम के साथ राइम करता है. बताइए मैं क्या हूँ? है तो बहुत आसान, लेकिन फिर भी हमारे कुछ लिसनर्स कंफ्यूज हो गए. कुछ ने लिखा क्लॉक, कुछ ने लिखा अलार्म, ठीक है, कुछ ने लिखा वो जो बर्ड नहीं आती थी, अपनी बर्ड जैसी बर्ड आती थी और फिर टाइम बताते थे, तो वो पुराने ज़माने की क्लॉक इस तरह से लिखा है, और कुछ ने लिखा है पेंडुलम. बताएं क्या सही जवाब हो सकता है? सही जवाब भाई, देखो एक ऐसी चीज़ है जो भारी है, वज़न वाली, ठीक है, और लेफ्ट राइट होती है, झूलती है, बड़ी बड़ी घड़ियों में हमने देखा है, उसे पेंडुलम कहते हैं. तो जिन्होंने भी पेंडुलम कहा है भाई, बधाइयाँ, मुबारकबाद, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. सो कंग्रेचुलेशंस, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया. आइए ज़रा देखें जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब देने की कोशिश की. उनके नाम है शब्बीर, आफ्ताब, उस्मान. क्या बात है, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया. और ये है मोहम्मद बशारत, ओके. मुताहिर है हमारे साथ, हिशाम है, हमारे रेगुलर लिसनर मोहम्मद यूसुफ खान है, फातिमा हमारे साथ हैं, और मंदीप, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया. सो गुड जॉब गाइस, क्या बात है. और जैसे ही आपने सही जवाब दिया, क्या हुआ? क्योंकि हम अभी जो वक्त रुका है उसे चलाना चाहते हैं, उसे शुरू करना चाहते हैं किसी तरह, तो जो पेंडुलम हमारे सामने था उसने झूलना शुरू कर दिया. बाहर जो खिड़की में हमने

वक्त बताने के लिए एक लंबी डंडी और सूरज की परछाई का इस्तेमाल करते थे। अब इसका नाम फोन के डायल जैसा सुनाई देता है, ठीक है, लेकिन ये सन का इस्तेमाल करता है। इस पुरानी घड़ी का नाम क्या है ये आपको मुझे बताना है। इसके लिए मैं आपको तीन ऑप्शंस भी देती हूँ, तो इन तीनों में से एक जवाब सही है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि सन वॉच, सन क्लॉक या सन डायल, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चुने। 666-22-107, 666-22-107 पर अपना सही जवाब अपने नाम के साथ हमसे शेयर करें एंड देखते हैं कि ये क्लू नंबर टू आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं और इस रुके हुए वक्त को क्या थोड़ा सा और धक्का देके चलाएंगे। लेट्स सी, एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी कि घड़ियों और फोन से बहुत पहले लोग वक्त बताने के लिए एक लंबी डंडी और सूरज की परछाई का इस्तेमाल करते थे। इसका नाम फोन के डायल जैसा सुनाई देता है, लेकिन ये सन का इस्तेमाल करता है। इस पुरानी घड़ी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस सन वॉच, सन क्लॉक, सन डायल। नाउ थिंक अबाउट इट, सही जवाब मुझसे शेयर करें 666-22-107 पर। एंड नाउ इट्स टाइम कि एक म्यूजिकल ब्रेक तो हो ही जाए। हाँ, सो ऐश किंग एंड सुनिधि चौहान की आवाज का ग्रेट कॉम्बिनेशन, लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 2:02, दो दो एक लाइन पर, एंड वी नीड टू मेक अ विश। रुका हुआ वक्त है हमारे एस्केप रूम में, आज वो चल पड़े और हम एस्केप कर पाए।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देखे।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। मतलब हमने सोचा था कि एक अलग तरह का चैलेंज होगा, ये चैलेंज ही कुछ अलग तरह का है कि यहाँ वक्त रुका हुआ है। पहले हमें भागते हुए वक्त से बिल्कुल दौड़ लगानी होती थी, वो कॉम्पिटिशन करना होता था, लेकिन यहाँ जब वक्त रुका हुआ है तब मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गई हैं। एक एक करके हमें पड़ाव, तीन पड़ाव को पार करना है। क्लू नंबर वन का सही जवाब था पेंडुलम। क्लू नंबर टू पर हम आए, ठीक है, और वो ये था कि घड़ियों और फोन से बहुत पहले लोग वक्त बताने के लिए एक लंबी डंडी और सूरज की परछाई का इस्तेमाल करते थे। अब इसका नाम फोन के डायल जैसा सुनाई देता है, लेकिन ये सन का इस्तेमाल करता है। इस पुरानी घड़ी का नाम क्या है? तो मैंने आपको तीन ऑप्शंस दिए, सन वॉच, सन क्लॉक एंड सन डायल। तो तीनों ही जवाब हमारे लिसनर्स ने लिखे हैं। कुछ ने लिखा है सन वॉच, कुछ कह रहे हैं सन क्लॉक, कुछ ने लिखा है सन डायल। अब तीनों में से सही जवाब कौन सा होगा? आइए जरा देखते हैं सही जवाब क्या है। सन वॉच गलत जवाब है, सन क्लॉक शायद ये भी गलत जवाब है, एंड सन डायल इज द राइट आंसर। यस जनाब, बड़ी आसानी से मैंने आपको क्लूज में ही बता दिया था, इसका नाम डायल की तरह सुनाई देता है, आप कंफ्यूज हो गए। पर कोई नहीं, जिन्होंने सन डायल हमें सही जवाब लिखा है वो अपनी पीठ को थपथपाएं, और जिन्होंने गलत जवाब लिखा है उन्हें अब पता है कि सही जवाब सन डायल है। तो नाम है आफ्ताब, उस्मान, शब्बीर, नूर और कौन है, आइए ज़रा देखते हैं, मोहम्मद यूसुफ खान, फातिमा ने भी हमें सही जवाब दिया है, मनदीप ने हमें सही जवाब दिया है, दैट्स ग्रेट, और मोहम्मद बशारत ने भी हमको सही जवाब दिया है। सो गुड जॉब गाइज, आपने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। आइए आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। जैसे ही आपने सही जवाब दिया सन डायल, सूरज जो था वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिला, अब हिलना शुरू हो गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो हमारे सर से पसीना टपकने वाला था वो फ्रीज था, अब वो भी टपकना शुरू हो चुका है। मौसम में थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियाँ आ रही है, मतलब हर चीज़ जो रुकी हुई थी वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हो गई है, लेकिन हम आखिरी दीवार से टकरा गए। द लीप सेकेंड गेट, ये वो इनविजिबल लकीर है जो आज को कल से अलग करती है। अगर हमने इसका सही नाम नहीं लिया तो हम आज के एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस सकते हैं, एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह। उफ, ये तो हम नहीं चाहते है कि नहीं। सो क्लू नंबर थ्री आपके लिए है, जरा ध्यान से सुनिए। मैं समुंदर में एक ख्याली लकीर हूं, ठीक है, मैं समुंदर में एक इमेजिनरी लकीर हूं, अगर आप मुझे पार करते हैं तो आप लिटरली मंडे से पीछे संडे में जा सकते हैं, ठीक है, मतलब आज संडे है तो हम सैटरडे में जा सकते हैं, एक दिन हम पीछे जा सकते हैं। मैं आज और कल के बीच का बॉर्डर हूँ, ठीक है, मैं डैश डेट लाइन हूँ, मैं डैश डेट लाइन हूँ। डैश जो आया है ये जो ब्लैंक

आया है इसमें एक वर्ड आएगा, एक शब्द आएगा। पहला शब्द वो है जो सभी देशों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम यहाँ हैं तो हम किसी और देश अगर हमें जाना है तो हम क्या बोलेंगे कि हम कौन सा ट्रैवल कर रहे हैं। यस, वो जो वर्ड है वो इस ब्लैंक में फिट होगा। तो सोचिए क्या जवाब हो सकता है। चलो और आसान कर देती हूँ। अंग्रेजी के अल्फाबेट आई से ये वर्ड शुरू होता है। चलिए क्लू नंबर 3 एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देती हूँ कि मैं समुंदर में एक ख्याली लकीर हूँ, अगर आप मुझे पार करते हैं तो आप लिटरली मंडे से पीछे संडे में जा सकते हैं। मैं आज और कल के बीच का एक बॉर्डर हूँ। मैं डैश डेट लाइन हूँ। आई कैन सी हमारे लिसनर्स ने सही जवाब देने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग कुछ अलग जवाब दे रहे हैं, बट यू कैन डू दैट। ठीक है, ये जो ब्लैंक है उसे फिल करना है और अंग्रेजी का अल्फाबेट आई से ये वर्ड, ये शब्द शुरू होता है। सो थिंक एंड गिव मी द राइट आंसर अपने नाम के साथ 6622107 6622107 पर। और अभी के लिए एक म्यूजिकल ब्रेक बनता है टू कीप आर एनर्जीज अप। हाँ, तो बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: मेरे लिए।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो।
2: यस जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम। एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज एस्केप रूम की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं ना, सीरियस वाली हो गई है, क्योंकि वक्त रुक गया है। लेकिन हमें इस

वक्त को शुरू करना है, हमें चलाना है अपने दिमाग से. यस, तो हमने क्लू नंबर 1 सॉल्व किया, सही जवाब था पेंडुलम. क्लू नंबर 2 भी हमने सॉल्व किया, सही जवाब था सनडायल. और जैसे ही हमने ये दोनों क्लूज सॉल्व किए, जो चीज़ें हमारे आसपास रुकी हुई थी वो हल्की हल्की हिलना डुलना शुरू हो गई. तो जो हमने क्लू नंबर 2 सॉल्व किया सनडायल, तो सूरज थोड़ा सा हिलना शुरू हुआ. जो भी चीज़ रुकी थी, जो चिड़िया थी, वो भी थोड़ा सा उड़ी हल्का सा, ठीक है. लेकिन हम आखिरी दीवार से टकरा गए, द लीप सेकेंड गेट, ठीक है. ये वो इनविजिबल लकीर है जो आज को कल से अलग कर देती है. अगर हमने इसका सही नाम नहीं बताया तो हम आज के एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस जाएंगे, बिल्कुल एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह. एंड डेफिनेटली हम हफ्ते की शुरुआत में यहाँ तो नहीं फंसना चाहते, है ना. हम चाहते हैं कि ये वक्त चल पड़े और हम यहाँ से एस्केप करें. सो क्लू नंबर 3 हमारे लिए था कि मैं समंदर में एक ख्याली लकीर हूँ, अगर आप मुझे पार करते हैं तो आप लिटरली मंडे से पीछे संडे में जा सकते हैं. मैं आज और कल के बीच का बॉर्डर हूँ. तो मैं क्या हूँ? और इसके लिए एक फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, मतलब वो ब्लैंक आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है. सो डैश डेट लाइन हूँ मैं, डैश डेट लाइन हूँ. और पहला जो अल्फाबेट है वो आई से शुरू होता है, अंग्रेजी के अल्फाबेट से, अंग्रेजी के वर्ड से. चलिए, मैं अभी देख रही हूँ जिस तरह से हमारे जो लिसनर्स हैं वो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कुछ का कुछ जवाब दे रहे हैं, तो और आसान कर देती हूँ, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ठीक है. पर उसके पहले क्लू आप फिर से सुने. मैं समुंदर में एक ख्याली लकीर हूँ, अगर आप मुझे पार करते हैं तो आप लिटरली मंडे से पीछे संडे में जा सकते हैं. मैं आज और कल के बीच का बॉर्डर हूँ. मैं डैश डेट लाइन हूँ. अब इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा, इंटरनल, इंटर स्टेट या इंटरनेशनल? सो कम ऑन, थिंक एंड गिव मी द राइट आंसर. अपने नाम के साथ सही जवाब दें, 666-22-107, 666-22-107 पर. इंटरनल, इंटर स्टेट या इंटरनेशनल, इन तीनों में से कौन सा वर्ड इस ब्लैंक में फिट होगा? सोचें और सही जवाब दें. और अभी सोचने के लिए मैं आपको देती हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक, और उम्मीद करती हूँ कि इस म्यूजिकल ब्रेक में आप कुछ ना कुछ सोचकर हमें सही जवाब दे ही देंगे. और अभी थोड़ा माहौल को और भी ज्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं बेनी दयाल का शानदार गाना, लेट्स एंजॉय द सॉन्ग. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.

0: क्या बात है, मतलब ये एनर्जी अगर रहेगी तो जाहिर सी बात है एस्केप रूम की हर सिचुएशन हम पार कर लेंगे. दर्शन रावल की आवाज में ये कमाल का गाना हमने सुना और अब बारी है.
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
0: तो यस माय देसी ऑडियंस, ये वो वक्त है जहां पर हम रुके हुए वक्त को फिर से चलाएंगे. तो आज एस्केप रूम की सिचुएशन क्या थी? आज हम कैद हो गए थे द रूम ऑफ मिसिंग सेकंड्स में. हाँ जी, और क्लू नंबर वन हमने सॉल्व किया, दैट वाज पेंडुलम. क्लू नंबर टू हमने सॉल्व किया, सनडायल सही जवाब था. ये दोनों सही जवाब देने के बाद हम आखिरी मुकाम पर पहुंच गए. ठीक है, हम टकराए द लीप सेकंड गेट पर. अब यहाँ क्लू नंबर थ्री आया कि मैं समुंदर में एक ख्याली लकीर हूँ, अगर आप मुझे पार करते हैं तो आप लिटरली मंडे से पीछे संडे में जा सकते हैं. मैं आज और कल के बीच का एक बॉर्डर हूँ, मैं डैश डेट लाइन हूँ. तो इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द आ सकता था? मैंने आपको उसके भी ऑप्शन दिया, इंटरनल, इंटरस्टेट, इंटरनेशनल. और सही जवाब है नेशनल. तो जोरदार तालियां हमारे सारे उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने कमाल कर दिया. आइए जरा देखें जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की है. वो है नूर, वो है फातिमा, वो है मोहम्मद यूसुफ खान, उस्मान शब्बीर आफ्ताब. वाह, मज़ा आ गया जिस तरह से आपने सही जवाब देने की कोशिश की है. आइए ज़रा और देखें कुछ और भी मैसेजेस हैं जिनकी तरफ हम रुख कर ही लेते हैं. मनदीप ने हमें सही जवाब दिया है और एहतराम ने भी हमें सही जवाब दिया है. दैट्स सो नाइस, फैंटास्टिक. तो आप सब ने सही जवाब दिया और जैसे ही आपने ये जवाब दिया, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो जो गेट बंद था वो थोड़ा सा हिलना शुरू हो गया. अब हमें क्या करना है, सबको साथ मिलकर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू करना है और अपनी नब्ज़ को दुनिया की धड़कन के साथ सिंक करना है. और ये गेट अब खुल गया है, हम आज़ाद हो चुके हैं. क्या बात है भाई, कमाल कर दिया आप सभी ने. सो कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने आज एस्केप रूम के इस रुके हुए वक्त को चला दिया. और आज के लकी विनर कौन है? आज के लकी विनर है मंदीप भाई. मुबारकबाद आपको, कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे लकी विनर बनने के लिए और हमारे सारे लिसनर्स का जो हमारे साथ नॉनस्टॉप जुड़े रहे. भाई देखो, ये एस्केप रूम की सिचुएशंस यूं ही चैलेंजिंग हर दिन होगी, कुछ ना कुछ स्पेशल होगा. तो कल दोपहर 1:30 बजे सुनना ना भूलें इस चैलेंज को. और मीनवाइल आप हमारे एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, अपने आर जमिता को भी ढूंढ सकते हैं. और अभी के लिए जाते जाते कहना तो बनता है, हमें राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. तो कहीं ना जाए, बने रहे एफएम 107 पर दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, स्टूडेंट्स की लाइफ में बुक्स, नोटबुक्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और स्टडी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑनलाइन लर्निंग। पढ़ाई हमारी डेली रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, मैं ये बात मानती हूँ। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी स्टडी हैबिट्स का एनवायरनमेंट पे क्या असर आता है? कितनी नोटबुक्स यूज होती हैं, कितना पेपर वेस्ट होता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर्स और लाइट्स के लिए यूज होती है, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो क्यों ना भाई, हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी आदतें अपनाएं जो नेचर के लिए भी बेहतर हों। तो भाई, आज हम इको स्विच में बात करते हैं इको फ्रेंडली स्टडी हैबिट्स के बारे में, यानी

0: ऐसी पढ़ाई की आदतें जो लर्निंग को भी बेहतर बनाए और एनवायरमेंट को भी अच्छा रखे। तो भाई प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। साथियों एजुकेशन जरूरी है, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन स्टडी के दौरान भी हम बहुत से रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हर असाइनमेंट के लिए ज्यादा पेपर प्रिंट आउट करना, अधूरी नोटबुक्स या अनयूज पेपर्स को फेंक देना, जरूरत से ज्यादा स्टेशनरी खरीदना, स्टडी रूम में लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को बेवजह ऑन रखना। कभी कभी स्टूडेंट्स नए सेमेस्टर के शुरू में ही बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, जबकि घर में पहले ही आइटम्स अवेलेबल होते हैं या रीयूज किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम पढ़ाई करना नहीं है, प्रॉब्लम है रिसोर्सेज को अननेसेसरी वेस्ट करना। अब यहाँ पर सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन ढूंढते हैं भाई, स्टूडेंट्स के लिए कुछ सिंपल इको फ्रेंडली स्टडी हैबिट्स। पहली चीज ये कि पेपर स्मार्टली यूज करें, जहाँ जरूरत हो वहाँ पेपर यूज करें, लेकिन अननेसेसरी प्रिंटिंग से बचने की कोशिश करें। नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिजिटल ऑप्शंस भी अपनाए जा सकते हैं भाई। दूसरी चीज ये कि नोटबुक्स को पूरा पूरा यूज करें ना। देखिए नोटबुक्स में कुछ पेजेस बच जाएं तो उसे फेंकने के बजाय उन्हें कंटिन्यू करें। पुरानी नोटबुक्स के ब्लैंक पेजेस को रफ वर्क के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरी चीज ये कि स्टेशनरी रीयूज करें। नए पेन्स, पेंसिल्स और नोटबुक्स लेने से पहले चेक करें कि घर में पहले से क्या अवेलेबल है। अच्छी क्वालिटी की स्टेशनरी ज्यादा अरसे तक चलती है और आपका खर्चा भी बच जाता है भाई। चौथी चीज है डिजिटल लर्निंग का स्मार्ट यूज। ऑनलाइन नोट्स, ईबुक्स और डिजिटल असाइनमेंट्स पेपर यूज को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन डिवाइसेस का इस्तेमाल भी स्मार्ट तरीके से करें भाई, और जरूरत ना हो तो उन्हें बंद कर दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी सेविंग स्टडी रूटीन। स्टडी करते वक्त सिर्फ जरूरत की वजह से ही लाइट्स वगैरह ऑन करें। दिन के वक्त नेचुरल लाइट का फायदा उठाएं और एनर्जी बचाएं और उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। तो साथियों रियल लाइफ अगर एग्जांपल दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब अपनी स्टडी रूटीन में इको फ्रेंडली चेंजेस ला रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने नोट्स को डिजिटल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ अपनी पुरानी बुक्स डोनेट कर देते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के भी वो काम आ सके, फायदे में आए। कुछ स्कूल्स रिसाइकलिंग ड्राइव्स और पेपर सेविंग कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एक स्टूडेंट अगर अपनी बुक्स का ख्याल रखे तो पेजेस वेस्ट नहीं करता और स्टेशनरी रिस्पॉन्सिबली यूज करें तो वो एनवायरमेंट के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बन जाता है। और भाई सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैबिट्स स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज और रिस्पॉन्सिबल भी बनाती हैं। तो साथियों आज का हमारा इको स्विच चैलेंज ये है स्टूडेंट्स के लिए कि अगले 7 दिन के लिए एक इको फ्रेंडली स्टडी हैबिट चूज करें ना। क्या आप पेपर वेस्ट कम करेंगे, क्या आप पुरानी स्टेशनरी रीयूज करेंगे, या क्या आप अपना स्टडी एरिया एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे? तो भाई इनमें से कोई भी चूज करें और हमें जरूर बताएं कि आप पढ़ाई के लिए ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं, हैंड रिटन नोट्स या डिजिटल नोट्स। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए अच्छी पढ़ाई सिर्फ मार्क्स नहीं देती, अच्छी आदतें भी सिखाती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी RJ माविश खान और आज का टॉपिक है हलाल रिस्क की अहमियत के बारे में। हलाल रिस्क कमाना और उस पे कनात करना इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। जो रिस्क हलाल तरीके से कमाया जाता है उसमें बरकत होती है और सुकून भी मिलता है। अक्सर लोग जल्दी या ज्यादा पाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होता है और अंदर से बेचैनी पैदा करता है। हलाल रिस्क चाहे कम हो लेकिन उसमें बरकत होती है और वो जिंदगी को सुकून देता है। ये सिर्फ एक अर्निंग तक महदूद नहीं बल्कि हर चीज में हलाल और हराम का फर्क समझना भी जरूरी है। आज का अमल ये है कि अपनी कमाई और खर्चों का जायजा लें और कोशिश करें कि सब कुछ हलाल और पाक तरीके से हो। ये था हमारा आज का पैगाम। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पे RJ माविश के साथ।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to
3: 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
4: One Step to 2030.
3: दोस्तों, आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और ये है फ्यूचर ऑफ रिटेल टेक्नोलॉजी। देखिए, रिटेल टेक्नोलॉजी का फ्यूचर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे शॉपिंग एक्सपीरियंस को चेंज कर दिया जाएगा। आने वाले सालों में स्टोर्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, इंटरैक्टिव होंगे और कस्टमर सेंट्रिक होंगे। ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टोर आपसे बात कर रहा है। जी हाँ, आज का कस्टमर सिर्फ शॉपिंग नहीं चाहता, वो कन्वीनियंस चाहता है, एक्सपीरियंस चाहता है और शायद पर्सनलाइज्ड अप्रोच चाहता है। और इसी वजह से ब्रांड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और AR जैसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। फ्यूचर में स्टोर्स कस्टमर के प्रेफरेंसेस को पहले से समझकर पर्सनलाइज्ड रेकमेंडेशंस देंगे। मिसाल के तौर पे, अगर कोई कस्टमर फर्नीचर स्टोर विजिट करता है तो AI उसकी प्रीवियस शॉपिंग हिस्ट्री और लाइफस्टाइल को देखकर सजेस्ट करेंगे कि उनके घर के लिए कौन सा सोफ़ा ठीक है, किस कलर का सोफ़ा होना चाहिए, डाइनिंग टेबल कैसी होनी चाहिए, बेडरूम सेट ज़्यादा कौन सा उन्हें सूट करेगा। इससे कस्टमर का डिसीशन लेना आसान हो जाएगा। ओमनी चैनल्स रिटेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट करेंगे और इन स्टोर परचेज कंप्लीट कर सकेंगे या स्टोर में प्रोडक्ट देखकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। ओमनी चैनल्स जो हैं वो रिटेल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनेंगे। दोनों एक्सपीरियंसेस सीमलेसली कनेक्टेड रहेंगे। वहीं VR AR शॉपिंग को

0: ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा पर हम बनेंगे बेकार मतलब इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद अच्छा फर्नीचर्स और होम डेकोर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मोबाइल ऐप के जरिए ऑटोमेटिकली आपको एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स दिखाते रहेंगे अब इससे रिटर्न्स कम होंगे और कस्टमर का एक काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा वहीं डेटा एनालिटिक्स रिटेलर्स को कस्टमर बिहेवियर समझने में मदद करेंगे कंपनीज ये जान सकेंगी कि कस्टमर्स किस वक्त शॉपिंग करते हैं किस तरह की शॉपिंग ये बंदा करना पसंद करता है क्या प्रोडक्ट इसे पसंद आते हैं और किन प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है अगर फ्यूचर की रिटेल बिजनेस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा जो ब्रांड इनोवेशन को अपनाएगा और कस्टमर कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देगा वो मार्केट में टिक पाएगा वही ज्यादा कामयाब हो पाएगा जी हाँ शॉपिंग फास्टर स्मार्टर और पहले से ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएगी जिससे कस्टमर्स और बिजनेसेस दोनों को भरपूर फायदा होगा तो बस हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में रिटेल टेक्नोलॉजी में एआई और एआर दोनों ही डोमिनेट करेंगे और ऐसे वैसे नहीं भरपूर तरीके से डोमिनेट करेंगे और अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं कि एआई और एआर किस तरह से डोमिनेट करेंगे तो कुछ कंपनीज हैं जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं एआई आपकी प्रीवियस परचेज को सर्च में डाल देता है और ये सब आपकी थिंकिंग पैटर्न्स को एनालाइज करके कुछ प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करते हैं यहाँ से एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आपके सामने आती है वहीं एआई प्रिडिक्ट करता है कि किस सीजन में किस तरह की मदद की डिमांड होगी जैसे कतर में रमदान या फिर ईद से पहले लोग जो है वो कपड़े खरीदना पसंद करते हैं या फर्नीचर्स की शॉपिंग की जाती है या फिर कुछ और होम डेकोर्स हैं तो एआई सेल्स डेटा एनालाइज करके पहले से स्टॉक को प्रिपेयर करने में भी मदद करता है एक मैंने एआई चैटबॉट का भी किया कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए एआई चैटबॉट 24/7 कस्टमर क्वेरीज हैंडल करते रहते हैं कस्टमर टाइम मेरा और कहां तक पहुंचा एआई चैटबॉट फॉरन ट्रैकिंग डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है वहीं पर एआई मार्केट कंडीशंस और डिमांड के मुताबिक भी प्राइसेस एडजस्ट है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसकी वजह से स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी एक सिलसिला बरकरार रहता है वहीं अगर एआर की बात करूं तो वर्चुअल फ्यूचर प्लेसमेंट्स भी ये फर्नीचर इंडस्ट्री की सब वर्चुअल फर्नीचर प्लेसमेंट्स अगर देखा जाए इस कस्टमर मोबाइल फोन की कैमरा स्क्रीन पर देख सा है कि सोफा उसके लिविंग रूम में कैसा लगेगा ये भी खरीदने से पहले इससे होगा ये कि कस्टमर ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और रिटर्न्स कम हो जाएंगे वहीं पर वर्चुअल होम मेकर्स एआर पर रूम का वर्चुअल होम मेकर है पूरा वर्चुअल मेकओवर करता है कस्टमर देख सकते हैं कि नए पर्दे नया कारपेट नए डेकोर हमारे घर में कैसे लग रहे हैं ये सारी चीजें जो है वो आपकी शॉपिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाते हैं स्टोर में कस्टमर अपना मोबाइल किसी प्रोडक्ट पर पॉइंट करे और एआर उसकी डिटेल स्क्रीन पर दिखा दे वहीं पर लार्ज रिटेल स्टोर्स में एआर कस्टमर्स को प्रोडक्ट तक गाइड करते हैं कस्टमर ऐप में सोफा सेक्शन डाले और एआर रोज एरो सब यूज करके उसे वहां तक पहुंचा दे तो आने वाले 5 से 10 सालों में मुमकिन है कि कस्टमर घर बैठकर ही वर्चुअल रियलिटी रूम विजिट करें अपने पूरे घर का डिजिटल मॉडल बनाएं और एआई उसके बजट और स्टाइल के मुताबिक कंप्लीट फर्नीचर कंप्लीट डेकोर और जो भी चीजें वो खरीदना चाहते हैं उन सबको सजेस्ट करें मैं कह सकती हूँ कि फ्यूचर रिटेल सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं होगा एआई कस्टमर्स को समझेगी उसकी नीड्स प्रेडिक्शन करेगी और एआर उन्हें परचेज से पहले प्रोडक्ट का एक रियल एक्सपीरियंस देगी इस कॉम्बिनेशन से शॉपिंग ज्यादा स्मार्ट पर्सनलाइज्ड और इंजॉयबल बनेगी तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कल एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: FM 107. Time check.
1: अरे सुबह से सुन रहा हूँ यार, कोई आदे वजलम का गाना सुना दो यार, टाइम अच्छा हो जाएगा। हबीबी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में 4:01 और आप सुन रहे शो,
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: भाई ये इकलौता ऐसा शो है जहां पर आपको व्हाट्सएप की ज्यादा जरूरत पड़ती है और आपको मोबाइल साइलेंट भी करना पड़ता है। हावी भी इस्तकबाल है आप सभी का। संडे इवनिंग शाम को 4 से लेकर 5 बजे तक ये खास शो होता है आपके लिए, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। वेल, इस रिक्वेस्ट शो में सबसे खास बात, सबसे अजीज दिल के करीब जो बात होती है, वो कि आप अपने मर्जी के गाने चलवा सकते हैं और थीम अगर अच्छी हो तो दिल एकदम खुश हो जाता है। वेल, काफ़ी लंबे वक्त से लो है कहीं ना कहीं आतिफ असलम के बारे में बात कर रहे थे, आतिफ असलम

0: कि गाने प्ले कर दो। तो मैंने सोचा यार कि अगले हफ्ते, यानी कि मैं पिछले हफ्ते ऐसा सोच रहा था कि अगले हफ्ते मैं आतिफ असलम के गाने जो हैं वो लेकर आऊंगा। तो आज तो वैसे नहीं, अगर आज नहीं कब आई, आज दोस्तों आतिफ असलम के गाने अपन लोग सुनने वाले हैं। और आपकी अपने मर्जी के ये गाने आतिफ असलम ने कहीं पर भी किए हों, आपके अपने मुल्क में पाकिस्तान में हिट दिए हों, है ना, दुबई में जाके गा दिया हो, फिर चाहे किसी बॉलीवुड एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए गाया हो, एल्बम में गाया हो, कोई भी ऐसा गाना जो बड़ा हिट रहा हो, तो आज आपका दिन तो बन ही रहा है यार गाना प्ले करने को। नंबर है 666-22-10, 666-22-10। यार आतिफ असलम की बहुत लंबी कहानी है, उन्होंने क्या कुछ यू नो नहीं देखा है, आतिफ असलम की स्टोरी है यहाँ तक पहुँचने की, यू नो अब इतने बेहतरीन गाने उन्होंने गाए हैं, तो उनकी लाइफ के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात जो है हम कर लेंगे, है ना, कि क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में रहा, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा नाम है मोहम्मद आतिफ असलम और ये इंटरनेशनली ज़बरदस्त प्लेबैक सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं और एक्टर भी हैं। एक्टर थोड़ा देर में बने, लेकिन मेरा मानना है कि देखो एक्टिंग में तो वो चल पाया नहीं चल पाया बिल्कुल अलग है, लेकिन भाई की जो लिरिक्स है, भाई का जो गाने का स्टाइल है, वो एकदम ही अलग है। इन्होंने कोक स्टूडियो में एक गाना गाया, वो इतना दिलीप है कि भाई मैं लंबे वक्त तक कई बार जो है वो सुनता रहता हूँ। और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, थोड़ी थोड़ी इनकी जो बात है वो कर लेंगे। जल नाम से इनका एक बैंड हुआ करता था, जब इन्होंने 2003 में प्रोफेशनल म्यूजिक करियर स्टार्ट किया और लीड वोकलिस्ट थे अपने बैंड, इनका बैंड जो था वो उसका नाम था जल। और फिर म्यूजिक सीन में एंट्री हुई और हिट सॉन्ग दिया आदत, उसके बाद से भाई पीछे पलट के नहीं देखे ले, एक से बढ़कर एक गाने हैं। और सोलो इन्होंने गाना गाया था बैंड से अपने हट के, वो था जलपरी, जुलाई में गाया था 2004 में, और इनकी एल्बम थी जलपरी। तो आपस के रीज़न, इसके वजह से इन्होंने अपने बैंड को छोड़ दिया था। होता ही है यार कहीं ना कहीं, अरे ये बंदा लीड में इतना ज़्यादा कैसे नाम कमा रहा है, हम लोग का नाम नहीं हो रहा। उसके अलावा छोटी छोटी और भी बहुत सारी बातें होती हैं। उसके अलावा फिर जब ये आए जलपरी अपने एल्बम लेकर, तो भाई ने धमाल ही मचा दिया। फिर उसके बाद तो बहुत सी और भी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें अपन कर लेंगे। लेकिन अभी आपके मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और आपका मैसेज आना चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-10 पे।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी वकील साहब, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: मतलब पर्सनली मुझे इनके गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, इनकी लाइफ के बारे में माना बहुत ज़्यादा, तो ऐसा डिटेल में अपन नहीं जाते। ए, किसी की लाइफ में क्यों, काहे के लिए मोहल्ले की आंटी बन जाऊँ मैं। तो थोड़ा थोड़ा पता है कि हाँ वो उनके ऐसा करते हैं, उनकी बिटिया यहाँ पढ़ते हैं, उनका भाई जो है ये करता है, बस ये पता है ना। वो ये वाला हिसाब नहीं है कि उनका फला दोस्त कहाँ है, ये कौन है, वो कौन है, यार कौन जानकारी का, सासू माँ थोड़ी बन जाएंगे अपन। लेकिन हाँ ये कि थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है वो आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, गुड इवनिंग, वेलकम बैक FM 107 फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। है लॉन्ग टाइम, दो दिन की तो छुट्टी रही, दो दिन में कहूँगा लॉन्ग टाइम हुआ, फ्राइडे सैटरडे बस दो दिन होता है मेरा भाई। आदत तो चला दे, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। अरसलान बुखारी ने कहा आदत गाना जो है इनका चला दे। देखो यार दो है, एक तो पुराना वाला भी है, नया वाला देखता हूँ मैं, जो सही मिल जाए। दिलबर कहते हैं वालेकुम कैसे हो, सॉन्ग नेम तू जाने ना, दिलबर अली भाई ने भी क्या रिक्वेस्ट कर दी यार आते ही। फिर फैजान साहब ने कहा तेरे बिन आतिफ का सॉन्ग, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, ओ तेरे बिन, ये इनका गाना है यार, हाई नोट ना है, देखता हूँ मैं अगर इन्होंने गाया तो बिल्कुल। बाकी एक और मैसेज है मुबीन भाई का, और ये गाना सुनना चाहते हैं आदत। तो आदत दो लोग सुनना चाहते हैं, एक तो मुबीन भाई हैं और फिर अरसलान बुखारी। ठीक है, तो आप दोनों के लिए आदत में ढूंढ प्ले करूंगा। ये दिल आशिकाना फजू भाई, ये प्ले कर दो। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, बिल्कुल मैं प्ले कर दूंगा KM खान। लेकिन ये तीन गाने जो है ना अभी हमारे लिस्ट में आ गए हैं, तो मैं देखता हूँ आदत, ये दो गाने मिल जाएंगे मुझे। आतिफ भाई वाला किधर है, आदत से इतने गाने हैं।

कि क्या बताऊं। आतिब भाई किधर है? आतिब भाई को ढूंढना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, 2005 का गाया हुआ आतिफ असलम का ये गाना है, और सबसे पहले ये गाना अपन प्ले कर रहे हैं FM 107 एंजॉय कर लोग, और रिमिक्स भी है। रिमिक्स नहीं प्ले कर रहा मैं, कि कर दूँ रिमिक्स, सुने रिमिक्स है। अच्छा होगा, लेकिन मेरा मानना यार कि ज्यादा बेहतरीन जो है वो मतलब ये नहीं होगा, यही वाला होगा। हाय हाय भैया, याद आ गई स्कूल की याद आ गई। 2005 में मैं स्कूल में था, इस तरह से आतिफ भाई जो है गाया करते थे। मेरे स्कूल के बाद छुट्टी हो जाया करती थी तो आतिफ के गाने प्ले होते, तो चूरन बैठा करता था। चूरन चूरन से लेकर कई चीजें याद आ गई। टेकन 3 गेम चलता था तो आदत जो है गाना वहां पर बहुत प्ले किया जाता था। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करें, बैक टू बैक आतिफ असलम के गाने आएंगे FM 107 पे। बाकी जो नए लोग हैं 666-22107, ये है आपकी खिड़की, आ जाओ, कूद आओ यार खिड़की से, छलांग मार दो, देखी जाएगी यार। बाकी हथकड़ी जो बनाने में टाइम लग रहा है यार, वो कुछ सिस्टम नहीं मिल पा रहा, कुछ चिप नहीं मिल पा रही। जिस दिन ये मिल गया तो मैं बताऊंगा फिर। जितने लोग नहीं सुन रहे ना, हथकड़ी ऐसे लोगों के लिए है फिर। एंजॉय दिस सॉन्ग FM 107 दिल से देसी।

क्या बात है, आतिफ असलम की आवाज। ब्यूटीफुल ट्रैक FM 107 पे, और जिस भाई ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, लाजवाब भाई, तुम्हारा गाने में टेस्ट मैं मानता हूँ है तो लाजवाब। तेरे महीने की आखिर में जब पैसे ना हो, और जब फिर 30 तारीख को या 1 तारीख को पेमेंट आ जाए, सैलरी आ जाए, तो फिर दिल सैलरी से कहता है इमेजिन हाउस हेल्प अगर छुट्टी पर चला जाए और 1 महीने सिर्फ आपको काम करना पड़े, लेकिन जब हाउस हेल्प आ जाए तो दिल

जल्दी जल्दी ऑफिस निकल जाओ, चाय नहीं पिया, ब्रेड नहीं खाया, शवरमा नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, लेकिन घर आने के बाद चाय को देखकर दिल कहता है एक आखिरी कार खराब हो जाए, कैब करके ऑफिस जाना पड़े, सारा काम सारा दिन जो है 3-4 दिन तक खराब रहता, लेकिन कार जब आ जाए अपनी वाली तो उसको देखकर दिल कहता है बाबू और एक अच्छा रहे तो छोड़ो, नहीं छोड़ो, और भी गाना प्ले करना है। अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 पे इस्तकबाल है, 4:25 हमारे स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल, और बाकी लोगों के मैसेज जो हैं वो आ रहे हैं। आतिफ असलम के गाने प्ले कर लिए, पहला जो गाना अपन प्ले करने वाले हैं वो है कुछ इस तरह तेरी पलके मेरी पलकों से मिला दे। आय हाय, इस गाने को मेरी आवाज मत सुनना, नहीं चाहता यार कान से खून आ जाए। हैं डॉक्टर कहेगा अरे इतने सारे पेशेंट एकदम से कैसे आ रहे हैं लोगों, अरे फजील भाई ने गाना गा दिया था फिर वो कहेंगे अरे भाई स्पॉन्सर करना है एक तुम्हारी आवाज में गाना जो है हर महीने चलाना है, उनकी भी सैलरी आ जाएगी बाबू ओके okay, आगे बढ़ेंगे। और ये जो गाना कहा है मुझसे प्ले करने को, ये किस भाई ने कहा है, नाम देख लेता हूँ, सैम है, अहमद सैम इनका नाम है। तो अहमद सैम की रिक्वेस्ट पे कुछ इस तरह सबसे पहला गाना फिर पहली नज़र में ये गाना मैं प्ले करने वाला हूँ। और सुबह भाई की रिक्वेस्ट पे सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं आलि खान का बर्थडे, यार बात तो सही मैं प्ले करने वाला था लेकिन फिर मेरा ये हुआ यार आतिफ असलम की बात जो है वो रह जाएगी, तो मैंने कहा सैफ वाले भाई को छोड़ देते हैं, उनके गाने हमने बहुत वैसे भी प्ले कर लिए थे कुछ दिन पहले। पहली नज़र में ये गाना सुनना चाहते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में यूसुफ भाई, तो ये गाना फिर उसके बाद एक ओरिजिनल साउंड ट्रैक है आतिफ असलम का संगमा, और ये है भाई का नाम किधर गया, काशिफ इनका नाम है ओके, काशिफ भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना प्ले करेंगे। और लिखा है दिस सॉन्ग एवरीवन विल लव इट, इट्स अ ब्यूटीफुल पाकिस्तान ड्रामा सॉन्ग बाय आतिफ असलम, प्लीज प्ले इट यू विल रियली एंजॉय इट। हाँ ठीक है भाई समझ गया मैं आपके पास तो ये 3 गाने बैक टू बैक आ रहे हैं, लेकिन बाकी भी हम देख लेते हैं। भाई प्लीज स्टॉप ऐसी बात है कि तुझको चाहे सॉन्ग आतिफ असलम, कैसे बताएं कि तुझको चाहे यार ये गाना है तू जाने, ये गाना मैंने प्ले कर लिया। आसिफ भाई कोई और गाना अगर रिक्वेस्ट करना है तो बताओ। एक भाई ने मुझे कहा है नहीं इतनी बुरी आवाज़ नहीं है, अच्छी आवाज़ है आतिफ असलम जैसी अपने गाने प्ले करने हो तो देखो क्या करना पड़ता है कैसे पता चलता है कि कोई ऑनलाइन है, मोहब्बत है या जो वालेकुम अस्सलाम मुबीन भाई, बाकी बातें जो है अभी आपकी पढ़ते हैं हम किस गली जा रहे हैं हम किस

अपना कोई ठिकाना नहीं, हम किस गली, देखो आप किस गली जा रहे हैं पता नहीं, हो सकता आपके पास कोऑर्डिनेट सही ना हो, व्हाट्सएप पर लोकेशन मंगवा लो यार। हम किस गली जा रहे हैं, ये गाना मुझे मिल गया कहीं तो था भी, इतने सारे गाने आ जाते हैं आतिफ असलम के गाने, हाँ सिर्फ तो आलम के ही हैं, तो छोटा वर्जन अपन जो है वो प्ले करने की कोशिश करते हैं। एक तो गाना मिल गया, किस गली जा रहे हैं, ये कहा है मुझसे हमजा ने, हमजा की रिक्वेस्ट पे आ रहा है ये गाना, लेकिन थोड़ा सा टाइम है अभी, ठीक है हमजा, और फिर बाकी लोगों की रिक्वेस्ट मुझे लगता है शायद देर लग जाएगी, क्योंकि तब तक पहचान कौन का वक्त हो जाएगा। फिलहाल इन्जॉय करते हैं सबसे पहला गाना बाय आतिफ असलम कॉल्ड कुछ इस तरह।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे या के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QNC now.
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त खुद से मिलने का। आज ये फॉर्म लेकर आ रही हैं एक सफर मेरी जान बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक या लेकर सुकून तक। ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं।

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। एफ और अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैको, मेरी पहचान। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। ये हर वेंसडे सुबह 10 बजे से हर फ्राइडे 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

आवाज में ये खूबसूरत सा ट्रैक एफएम 101 इस्तकबाल है आप सभी का। और 4:47 कब ये वक्त निकल जाता है पता नहीं चलता। और वक्त आगे पहचान पाउन गेम खेलने का, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज माजरा जिनके गाने मैं नहीं कर पाया, बाकी मैसेज है थैंक यू फॉर आप सही टाइम तरीके से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आफरीन वो बातें फ्रॉम जहर और जीना जीना। देखिए बहुत देर हो गई है इस वजह से आफरीन मैं नहीं प्ले कर सकता हूँ। बाकी अस्सलाम वालेकुम भाई, हम उवैस खान एक सॉन्ग दूरी कहीं जाए ना, ये वाला गाना दूरी सही जाए ये कहीं जाए ज़्यादा फ्लो पढ़ देता हूँ। भाई परिंदे आ गए आपकी आवाज़ सुन के, नहीं भाई वो परिंदे आए हैं उधर से जहाँ से उन्होंने आवाज़ सुनी होगी, जहाँ वो आए हैं वहाँ आवाज़ मेरी नहीं होगी। बाकी हो सकता है यार कुछ परिंदों के कान में गड़बड़ी हो, मेरी गायती हुई आवाज़ उनको पसंद आ गई हो कि अरे भाई हो सकता है कान में दिक्कत ही हो। बाकी अंसारी भाई क्या कहते हैं, पिया हो रही है भाई, अब आप पानी पीजिए बहुत गर्मी हो रही है। साहेब अंसारी टाइम हो गया है अब नहीं प्ले कर सकते, और उसके अलावा कर दीते हंस वो ये गाना पाक भी लेट हो गया, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले हफ्ते पक्का आतिफ असलम को एक बार फिर से रखूँगा कि, और मुझे लगता है कि यू नो वो इकलौते ऐसे सिंगर होंगे जिनको हम रिपीट कर रहे हैं। इन 3 महीनों में कोई भी सिंगर रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन आतिफ असलम को दिया है अल्लाह, कोशिश पूरी करो, मैं बैक ब्रो। अरे दानिश भाई बहुत लेट हो गई, लेकिन तुम सही टाइम पे आए क्योंकि तुम्हारा गेम जो है वो अब शुरू होने वाला है। सो गेम है पहचान कौन, जहाँ पर जो गाने हैं वो मैं यहाँ पर तय करके रख लेता हूँ और आपको नाम बताना होता है, बेसिकली हुक जो है वो आपको बताना होता है गाने का नाम क्या होता है। नंबर है 666-22-07, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आपने तो बस आपको गाना सुनना है, ये बीच से लिरिक्स में जो है वो निकाल लेता हूँ और फिर यहाँ पर प्ले कर देते हैं, देखते हैं। आमतौर पे जाए तो लोग मतलब 80% 95% कह सकते हैं, कभी 85% लोग ऐसा होता है कि दो सही जवाब देते हैं, यू नो कभी कभार एक ही सही जवाब आते हैं, लेकिन 5-10% लोग ऐसे हैं, 15% से हैं जिनके 3 के 3 जवाब सही आते हैं। अगर आप भी उनमें हो गए शामिल तो क्या बात क्या बात क्या। तो पहला सॉन्ग आ रहा है जो आपको पहचानना है, और पहला सॉन्ग है ये।

बस और नहीं, यहाँ पर ही लोग पहचान जाएंगे नाम क्या है। आपको जवाब देना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6221107, जहाँ पर आप हमें बता सकते हैं। और सबसे पहले जवाब आ गया शाहजाद। दानिश भाई बात बताओ यार, तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहता, दिन भर तुम यही गाना सुनते ही रहते, मतलब कैसे यार आपको इतना आइडिया है? मैं दिन भर गाना ही चला गया, एक लिरिक्स सुन रहे हो तो पता है भाई कैसे हो जाता है। बाकी यूसुफ भाई ने भी बिल्कुल सही बताया है, और में कौन है ये भी बता दिया हुसैन भाई ने, क्या बात है हुसैन भाई, टर्रे खिलाड़ी है। आतिफ आलम ने आसिफ नाम है, ओके, लेकिन आपने प्रोफाइल में आतिफ क्यों लिखा, अच्छा सॉरी आसिफ लिखा है, मैं ही अंधा हो गया हूँ भाई, सॉरी आंखों में जो है मोतियाबिंद हो गया मेरे, सामने लिखा नहीं पढ़ पा रहा हूँ बताओ। फिर उसके बाद भाई असलम का सॉन्ग है, बिल्कुल सही बात है दानिश, आप जीत गए। इनका नाम है फजी शेख, ओ फजील भाई, फजील अहमद शेख का मैसेज पढ़ रहे हैं, क्या बात है। लेकिन आपने गलत जवाब दिया है फजील भाई, बताइए क्या फजील भाई, फजील ही कहें फजील भाई को के गलत जवाब दिया, क्या बात है। होता है कभी कभी, हाँ आसिफ भाई ये गलतियां जो हैं देख कर भी गलत पढ़ देना, ये होता है कभी कभी। ये वही वाली बात कि चीटिंग करने के बाद भी जो है फजील भाई फेल हो गए, फेल हो गए, हाँ अल्लाह कहीं सामने वाले का देख के करा था वो जो है पास हो गया, मैं फेल हो गया भाई। वारिस अली ने भी बिल्कुल सही बताया है, और गाना मैंने प्ले किया है, इस गाने का नाम है जिंदगी हूं मैं।

0: यकीन मानो बहुत ही आसान है ये वाला बताना, और इसलिए भी आसान है क्योंकि इसमें एक म्यूजिक है, वो सुनो।
1: ना मैं जाने, ना तू जाने,
0: ये वाला है बस। वैसे लिरिक्स से भी काफी कुछ पता चल गया होगा, लेकिन जो म्यूजिक है ना थोड़ा सा वो उससे आपको पता चल गया होगा कि गाने का असली नाम क्या है। नंबर है 666-22107, 666-22107, गाने का नाम बताइए और मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। दानिश आजाद अभी भी टाइप कर रहे हैं, लिख दिया वैसे तो उन्होंने, यूसुफ भाई क्या हो गया आप अभी टाइप कर रहे हैं। फिर उसके बाद अजीज शेख ने बताया है बहुत ही उमदा, फिर गाने का असली नाम नहीं बताया आसिफ भाई, वैसे ये गाना भी नहीं है गैस, ठीक है। फिर आफरीन ने बिल्कुल सही बताया है, हुसैन के मूवी फलाना है। बिल्कुल सही बताया है वैसे हुसैन, आपका जो थिंक है वो मेरा थिंक नहीं है। बाकी वारिस अली ने बिल्कुल सही बताया है, तू जाने ना मकसूद साहब, मैं यहाँ पर तू तो नहीं लगाऊंगा लेकिन ये कह सकता हूँ कि आप जाने ना। ये गाना आप गाने का नाम आपने गलत लिखा है। बाकी आतिफ असलम सॉन्ग की बीट पे लगा सकते हैं, मैं पहचान लूंगा। अरे भाई आप तो वैसे भी बड़े खिलाड़ी आदमी है, पहली लाइन भूल गए, पहली लाइन ही भूल गए, फिल्म भी बता रहे हैं सब बता रहे हैं लेकिन गाने का नाम यूसुफ भाई नहीं बता पा रहे। कैसे चलेगा यूसुफ भाई, आपका रौला जो है ना वो धीरे धीरे कम पड़ रहा है यूसुफ भाई, भार जो है मजा नहीं आया, ऐसे नहीं चल पाएगा। बाकी ओवैस अहमद ने बिल्कुल सही बता, देखो मोस्टली लोग सही बता रहे हैं। फिर के बाद एक मैसेज किस भाई का है, ट्रिपल एस एस एस लिखा हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा। अरे कोई बात नहीं है भाई, मैंने कौन सा छुरा रख दिया, ठीक है आगे आपकी इच्छा है भाई। सी बी भाई ने बिल्कुल सही बताया है, और फिर उसके बाद कुणाल खेमू हीरो था इस मूवी में, ठीक है इतना तो डिटेल मांगा भी नहीं भाई। आसिफ ने को सही बताया है, और नाम है एमडी हुसैन, उन्होंने सही बताया है। फिर उसके बाद बिल्कुल सही जवाब यूसुफ भाई ने फाइनली बता दिया, गाने का नाम ये सॉरी ये नहीं है।

क्या बात है, क्या बात है, वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने। होता ना वो ग्रुप स्टडीज करेंगे सारे, लेकिन असल कोई ग्रुप स्टडीज नहीं हो रही होती, वीडियो गेम हो रहा होता है। तो दोस्त आपस में बात करते हैं, लाइन यही बोलते हैं कि क्या। चलो तीसरे गाने पर आ जाते हैं जल्दी से।

बताओ गाने का नाम क्या है, बताओ 666-2107 पे, 666-2107 पे। बाकी मैसेज जो है वो आना शुरू हो गए हैं, और ये मैसेज इस भाई का है, यूसुफ भाई ने सही बताया है, दानिश ने भी सही बताया है, फिर उसके बाद एक और भाई है, वारिस अली ने भी बिल्कुल सही बताया है, बोल दिया किसने बोला है, आसिफ ने भी सही बता दिया, बहुत ही उम्दा। फिर दूसरे वाले आसिफ के केसी वाले हैं, ये भी सही बता गए हैं, हुसैन ने कहा हम पे मरने लगा हूँ, अरे नहीं थैंक यू ओके सही बताया हुसैन भाई, आफरी ने भी सही बताया है, अब्दुल अलीम ने सही बताया है, और है MD, बिल्कुल सही, बहुत आसान है गाय का नाम।

0: गाने को, और कल शाम 4 बजे मुलाकात होगी। मजा ना आया, पैसे वापस।
1: कल भी कोई खास है
0: हमारे थीम सुन रहे FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ua।
1: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कैप्टन कबीर बात कर रहा हूँ। दोहा से दोहा की दूरी हम दो घंटे में पूरी रहेंगे। बंटी एयरलाइंस में आप सबका स्वागत है। दो घंटे लगातार जहाज में टर्बुलेंस रहेगा, इसलिए आप सीट पकड़ सकते हैं, खिड़कियां पकड़ें। सीट बेल्ट का खर्चा हम नहीं कर पाए, उसके लिए माजरा हूँ। और कुछ देर में जलपान की सेवा शुरू कर जाएगी। कृपया अपने व्हाट्सएप निकालिए और मैसेज करना शुरू कर सकते हैं। जहाज उड़ान के लिए तैयार है। टिंग टिंग टिंग।

पता नहीं बहुत बड़ी चीज हुई आज बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिर हूँ आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है भाई साहब। 974 में दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे कुछ मैसेजेस अभी तक मेरे पास आ चुके हैं। मैं जरा कुछ बता देना चाहता हूँ, टर्बुलेंस सच में आया है, पूरे ऑफिस में टर्बुलेंस आ गया क्योंकि मैंने अपना लुक बदल लिया है। तो जितने लोगों को मुझे बंडाना में देखने की आदत थी वो सबके सब हिल चुके हैं राइट फ्रॉम द एंट्री। जो हमारे गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे एंट्री पे से वो गाड़ी लेके आया बंदा। तो पहले तो बोले सलाम वालेकुम, ग्लिच कर गया बंदा भाई, सिर्फ हैंगर गया उसका। कह रहे हैं तुम कौन हो, जॉब आईडी दो अपनी, कहाँ गया इस गाड़ी का ओनर। तो आज मैंने हर जगह जो है सबको क्या कर दिया, शॉक कर दिया भाई, कति शॉक दे दिया सबको। और अभी तक मैंने फोटो रिवील भी नहीं करी है, सो अभी किसी को पता नहीं है, बट लोग हैं बड़े परेशान हैं हमारे ऑफिस में, तो सब परेशान हैं। ये कौन है? एक तो हमारी है साथ में रुमना, वो तो कितने बजी भाई, वो किसी को हंसा भी नहीं हो रहा, ये क्या हुआ। Anyway, अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम से बोल, कुछ मैसेज मेरे पास आए उधर पढ़ देता हूँ मैं। आसिफ भाई कह रहे हैं कबीर भाई हाजिरी कबूल करो वरना हम चले जाएंगे। भाई कैसे चले जाओगे आसिफ भाई, बांधेंगे पकड़ के। सैयद फिरोज साहब कह रहे हैं हमारा पर टू देखिए, ऑफकोर्स देखिए मेरे भाई, देखो मुझे बहुत पसंद है ये हमारा। आई नो लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट लाइक इट क्योंकि वो फैन नहीं है या कुछ दिक्कत है, मगर ये है कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो फैन है भाई, हम सपोर्ट करेंगे, अच्छा हो रहा हो, हमें तो बहुत अच्छे लगे इमरान हाशमी, खा गया अपना लोंडा और ढोल बजा देंगे क्रम साहब, नो प्रॉब्लम। एक मैसेज और है, लुक तो शो कराओ कबीर भाई, कराएंगे भाई। मलिक साहब कैसे मेरे भाई, गुड इवनिंग। अब्दुल करीम साहब वालेकुम अस्सलाम, अगर रैम का मसला होगा, रैम का ही मसला था भाई। वालेकुम अस्सलाम उमेश भाई, लिखते हैं 2 दिन 2 साल लगते हैं कबीर भाई, फ्राइडे सब खुश सदा खुश रहें कैप्टन कबीर, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार भाई को। इनके बाद फिरोज भाई, फयाज भाई ने मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम फयाज भाई। एंड क्या है, जहाज़ का टिकट बहुत महंगा भाई, बंटी एयरलाइंस का टिकट एकदम सस्ता है मोहम्मद भाई, कैसी बात कर रहे हो आप, अरे आप फ्री बैठ जाओ, आपसे ज़्यादा है क्या। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम जुमेरा 3 साल, लिखते हैं सलाम कैप्टन कबीर, कैप्टन कबीर भाई सुपर बेंट्री, तब उस समय लिखते हैं पता है आज बहुत ट्रेवलेंस होने वाला है, हमारा अपन रिव्यू बाई पायलट कबीर। नहीं मैं तो देखो मुझे बहुत पसंद आई भाई, लास्ट शो देखने गया था, कति मज़ा आया मुझे तो बहुत मज़ा आया। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम खैरी मौलाना कबीर सर, मूवी ने गलत असर कर दिया है आप पर, और सर आपने कहा था मैंने आज स्टाइल चेंज करना है, तो फोटो तो आपने अपलोड नहीं की, मैंने नहीं की अपलोड, मुझे थोड़ा नर्वसनेस होती है ना भाई, बस अभी मैं थोड़ा शाय बच्चा हूँ अरबाज भाई, मेरे को शर्म आती है यार। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम फलक भाई, एंड देन वालेकुम अस्सलाम कैप्टन साहब, हाँ जी कैप्टन जी क्या हाल है, ये KM साहब ने मैसेज किया है, और हमारे दोरे मैसेज किया है हिशाम भाई ने, हिशाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुबह कह रहे हैं अच्छा न्यू लुक, फोटो तो भेजिए हम भी देखें कबीर कैसे लगते हैं। अगर तारीफ नहीं की ना भाई कति दौड़ा दूंगा, बता रहा हूँ मैं, यूसुफ भाई को तो भेज, यूसुफ भाई तो अच्छा आदमी है, भेज दूंगा मैं। अली फ्रॉम हरियाणा, अरे मेरा भाई सीधा हरियाणा थे, वालेकुम अस्सलाम अली भाई। और एक मैसेज, कबीर भाई गुड इवनिंग, आई वाज रियली वेटिंग फॉर यू एंड वंडरिंग व्हेन यू विल कम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लेट अस नो यू फाउंड ओआरओपन 2 एंड हाउ द मूवी वॉज, गिव अस योर ऑनेस्ट रिव्यू सो दैट वी कैन ऑल्सो गो एंड वॉच इट भाई। अच्छा दो बातें काशिप भाई, जो लोग आवारा पंटू अभी तक नहीं देख पाए हैं, मैं एक दो सजेशन दूंगा, अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं और आपने आवारा पंटू 1 देखी है पहली वाली, आप जाइए मजा आएगा आपको, ऐसा कुछ ये नहीं होगा कि अरे भाई क्या कर दिया ब्लॉकबस्टर हो गई, तो वो वाली चीज भी नहीं आएगी, लेकिन मूवी थैंकफुली खराब नहीं है, एज अ फैन आई लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, इमरान हाशमी के लुक से लेकर उनकी इंटेंस एक्टिंग से लेकर हर एक चीज। एक चीज जो मुझे बॉदर कर रही थी वो थी दिशा पाटनी, वो पूरी मूवी के अंदर फर्नीचर का काम कर रही थी, शी वॉज डूइंग नथिंग एट ऑल। एक मैसेज, जल्दी से फोटो सेंड कर दीजिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और एक मैसेज है, वालेकुम सलाम करीम भाई, भाई भाई क्या बाहर देख लिया और पंटू। एक मैसेज आया, कबीर आर डूइंग ग्रेट, मैक्स अमीनी शो कब है? मैक्स अमीनी शो भी आने वाला है, उसकी शायद टिकट्स के अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। कह रहे बच्चा क्यों नहीं रो रहा, बच्चा घर पे है इसलिए नहीं रो रहा। और आप कैसे मेरे भाई, प्रेजेंट कबीर सर, थैंक यू सो मच इकरम भाई, और कबीर फिल्म वारा पंटू के अच्छे रिव्यू हैं और फर्स्ट डे फॉक्स ऑफिस, भाई मुझे तो बहुत पसंद आई। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं थोड़ा तो बायस रहूँगा भाई, आई एम अ फैन, मैं वो वाला फैन नहीं हूँ जो जरा सी मूवी इधर उधर हो जाए तो मैं बोलूँ ये ख़राब थी ये थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई। और ये ढोल जो है मेरे नए लुक और आवारापन के लिए, वेलकम पब्लिक, काम आज शुरू होता है भाई। 5:07 हो लिए, हाँ अब एक और बात बता दूं, अब इतनी सारी चीजें हो ही चुकी हैं, तो ये 11:02 के बाद आज सीधा कहानी है, और आज एविएशन की स्टोरी है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा वो जहाज़ की कहानी है, मगर जो कहानी है वो थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती है, और आज की कहानी काफ़ी लंबी भी है, तो जो लोग

0: लंबी कहानी नहीं पसंद करते भाई, आई एम रियली सॉरी, आज लंबी कहानी है। दूसरी बात, कहानी को मैं बहुत देसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं जहाज़ की वो समझ में आ सके, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अशफाक भाई वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं कबीर भाई अच्छी लगी, हम सबको अच्छी लगी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक में से कबीर भाई अच्छी लगी, पब्लिक तो अच्छी लगी, भाई जिसको नहीं लगी वो भैंस चरा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मजा आया साथ में। अब्दुल नवीद भाई मेरे साथ में थे, नवीद भाई और मैंने साथ में की साइड वाली सीट पर थे। नवीद भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द पिक एज वेल। तब उसमें लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, सोशल मीडिया पर टर्बुलेंस दीजिए कबीर भाई, वेटिंग फॉर द न्यू लुक। बस बहन बस थोड़ी सी देर में देता हूँ। और एक और मैसेज है, प्लीज सेंड न्यू लुक, दो दिन पहले देख ली मैंने भाई, सबसे पहले फर्स्ट डे देखी है। मैं एक फोटो भेजूँ आप, फिर हम दोनों का वीज़ा कैंसिल होगा। मैं एक फोटो भेजूँ भेजो भेजो भेजो रेहान भाई, देखूं कितना है दम। मिलते हैं 11 मिनट 2 सेकंड के बाद, सीधा कहानी आएगी एविएशन की। जाना आपने ही नहीं, पता ही है आपको, बेस्ट जगह पर हो, स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल

काशीपुरी में लेके एक भाई कह रहे हैं भाई सिक्योरिटी ने गेट बटन रोका, भाई लिटरली गेट पे रोका उसने मजाक से हटके। भाई बोले एक सेकंड, वो सलाम का जवाब देते देते रुक गए, वो कह रहे वालेकुम अस्सलाम। हमारे यासर भाई वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं बढ़िया, आप सुनाइए क्या हाल है। और ये कह रहे हैं कौन है सर, अरे मैं हूँ मैं हूँ भाई, कह रहे कौन है मैं आप फोटो डालने का वक्त आ गया भाई। और एक मैसेज है अब अली भाई, थैंक यू सो मच भाई, मेरा भाई कबीर, थैंक यू सो मच मेरे भाई, हरियाणा रिप्रेजेंट मेरा भाई, क्या हाल है, बहुत टाइम बाद जब मुझे कोई भी दिल्ली हरियाणा का मिलता है मुझे लगता है सच में मैं घर वालों के लिए शो कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार। और यूसुफ भाई थैंक यू सो मच, वो भी तारीफ करेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आपको भी दिख रहा है अब तो अच्छा भेज रहा हूँ। तो आज की कहानी के ऊपर भी जरा बातचीत कर लें हम, थोड़ा सा है थोड़ी सी कहानी बात कर लें, नहीं करें तो आज की जो स्टोरी है एविएशन की कहानी है। मैं जानता हूँ कि कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो हो सकता है आप बोलेंगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल कंटेंट है समझने के लिए, बट मैं कोशिश करूँगा कि उसे जितना आसान कर सकते हैं उतना आसान कर दिया जाए। तो मैं जब आपको ये जहाज़ की कहानी सुनाऊँगा तो आप एक तो मेरे साथ रहिए क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड कहानी है, तो मुझे थोड़ा स्लो स्लो सुनानी पड़ेगी, पर एक एक चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि तोड़ तोड़ के बिल्कुल देसी तरीके से आपको समझा सकूँ जितना भी हो सकेगा। तो अगर कोई मसला आए, कुछ समझने में दिक्कत आए तो भाई मैं माजरा चाहता हूँ, बट मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगा कि आपके कहानी पल्ले पड़ जाए बस भाई, दैट इज़ माय मेन गोल, ठीक है। तो आप अगर मेरे साथ हैं और लाइव सुनने वाले कहानी तो मुझे बताइएगा 666-22-107 पर, आई विल वेट फॉर इट। बाकी कुछ मैसेज आ रहे हैं क्या, एक मजे की बात बताऊं, मैं डिलीवरी कंपनी में काम करता हूं और हमेशा सोचता हूं कि हम डिस्टेंस का ऑर्डर मिले तो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, मगर स्टोरी के टाइम ये सोचता हूं कि खूब ज़्यादा डिस्टेंस वाला ऑर्डर मिले ताकि पूरी स्टोरी सुन सकूं। भाई आपकी मोहब्बत है इशफाक भाई, थैंक यू सो मच फॉर बिंग सो नाइस भाई, इतनी

0: इतनी इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक भाई, अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे, बरकत दे आपके हमें। मुदस्सिर भाई ने मिस किया, मुदस्सिर भाई सॉरी मुदस्सिर भाई, थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई। मुदस्सिर रेहान नाम है आपका, मुदस्सिर भाई थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह ताला आपको ऐसी खुश रखे मेरे भाई, आपके काम में बरकत दे, आमीन। एंड एक मैसेज है, इस पिक में तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं ना, बच्चा लग रहा हूँ ना। रेजान भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैसेज आ रहे हैं, आमिर सुल्तान साहब ने मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई। फिर आमिर भाई ने मैसेज किया मसईद से, और नियाज भाई वालेकुम अस्सलाम नियाज भाई, क्या हाल है भाई के, और हाई ब्रदर, हाई हेलो ब्रदर ब्रदर आलम सिद्दीकी, थैंक यू सो मच। लॉन्ग डिस्टेंस वाली डिलीवरी मिल जाए कबीर भाई, भाई थैंक यू सो मच भाई। ये सारे डिलीवरी वाले भाई ना मेरे मुझे बहुत बहुत प्यार लगते हैं। बिलाल भाई थैंक यू सो मच, बिलाल भाई बहुत सारा प्यार। यार एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वो यासिफ भाई, यूसुफ भाई थैंक यू सो मच। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोहम्मद भाई ने मैसेज किया। ऑलराइट, सो कहानी के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अपने व्हाट्सएप का बटन दबा के मुझे मैसेज कर दीजिएगा। एक भाई कह रहे हैं अपना फोटो भाई लड़की को मत भेजना। टिंग टिंग क्लास शुरू हो गई जी भाई, क्लास शुरू हो गई मेरा भाई। क्या है भाई, 15 को किधर थे आप? मैं 15 को क्या कर रहा था यार, मुझे खुद को याद नहीं आ रहा है 15 को कहाँ था। 15 को आई डोंट थिंक मैं कहीं गया हूँ, गया था क्या मैं कहीं? नहीं, 14 तारीख को तो मैंने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे पे मैंने देखी थी मूवी देर रात को, और उसके बाद आई डोंट 15 तारीख को विश कर रहे थे भाई एक दूसरे को हम, यही चल रहा था भाई। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम दीपेंद्र जी, कह रहे हैं भाई हाँ ओनली टुडे ओनली डिलीवरी, थैंक यू सो मच भाई बहुत प्यार। और एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेडी सर, हाउ इज़ द जोश? हाय एकदम हाय, हाजिर जनाब। वालेकुम अस्सलाम कामरान अब्बास भाई, तो ठीक है, उम्मीद है कि आप कहानी के लिए तैयार हैं। This is going to be one crazy story, और मेरे लिए कुछ ज़्यादा पढ़ाई हुई है इस स्टोरी में, तो जब मैं इसको बताऊँगा there are tons and tons of details to gather and tell you, तो भाई please एक मेरे साथ रहिएगा। और जो लंबी कहानी नहीं सुनना चाहते हैं वो कृपया करके इससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, क्योंकि लंबी कहानी है भाई ये, एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक सम टाइम। ठीक है, एक छोटा सा प्रोमो और उसके बाद मिल रहे हैं, ये रहा प्रोमो हमारे सरू भाई की आवाज़ में।
1: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैत्राश 2 ऐप के जरिए अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स जूद ना हो। तीसरा, पार्टीज सेलर और बायर का मित्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्टे हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो शिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: हाँ जी, तो इस बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के बाद अब एक बहुत ही ज़रूरी कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी की वजह से बहुत कुछ हुआ भी है, इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी बट इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो तैयार हो जाइए इस बहुत बड़ी कहानी के लिए, क्योंकि इसने बहुत कुछ किया है। लंबी कहानी है, पहले बोल रहा हूँ, बाद में नहीं कहना अरे बहुत लंबी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दूंगा, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रमोट नहीं करती है, फिर उन्हें सेवन किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इट्स एन एविएशन स्टोरी। लेट्स बिगिन। तो जो आज का किस्सा है इसे सुनाने के लिए मैं काफी वक्त में पीछे जाने वाला हूं आपको, जरा चलते हैं 1977 में। ठीक है, 12 अप्रैल की तारीख और रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे, 12 बजे से बस यूं समझ लीजिए थोड़ा सा पहले। जगह थी सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक जहाज बहुत ही

शानदार चमकता हुआ डेल्टा एयरलाइंस का L-1011 तैयार हो रहा था एक ओवरनाइट जर्नी के लिए। ये जो सफर करने वाला था, ये सफर सैन डिएगो से अटलांटा और बीच ओवर आने वाले थे लॉस एंजलिस, एलिस और न्यू ऑर्लियंस। तो काफी अच्छा खासा लंबा सफर टॉप ओवर को मिला के। ये जो फ्लाइट डेल्टा की, ये फ्लाइट थी 1080, अच्छा खासा बड़ा जेट था जिसमें तकरीबन 300 लोगों की जगह है, 300 पैसेंजर्स आराम से इसमें सवार हो सकते हैं। पर क्योंकि अभी सैन डिएगो से सिर्फ लॉस एंजलिस जाना था तो ज्यादा सवारी इसमें थी नहीं। इसमें अभी महज 41, सिर्फ और सिर्फ 41 पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड, जबकि जगह 300 के, तो यू कैन इमेजिन के आधे से कहीं गुना ज्यादा जहाज खाली था। और इन 41 पैसेंजर्स का ख्याल रखने के लिए 8 केबिन क्रू मेंबर्स थे। अब जरा कॉकपिट की तरफ चलते हैं इस जहाज की। यहां पर 3 अटलांटा के फ्लाइट क्रू मेंबर्स थे। पायलट इन कमांड बहुत एक्सपीरियंस, 56 साल के, 56 ईयर्स ओल्ड। इनका ये जो कैप्टन थे, इनका नाम था कैप्टन जैक मैकमन। कैप्टन जैक के अलावा बहुत सारे लोग इस जहाज की ऑफकोर्स जांच कर रहे थे मैकेनिक्स, लेकिन कैप्टन जैक का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। अब आप सुन के समझ जाएंगे, 36 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के लगाए थे जहाज उड़ाने में, 36 ईयर्स। उन्होंने बाई प्लेन्स भी उड़ाए, उन्होंने फिर US मरीन कॉर्प्स के लिए भी काम किया और वर्ल्ड वॉर टू में भी सर्व किया, और इसके बाद जाके वो डेल्टा एयरलाइंस से जुड़े। तो कितने क्वालिफाइड हैं आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। इनफैक्ट वो 12 अलग अलग किस्म के जहाज उड़ाने की काबिलियत रखते थे, और उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट्स में उनका नाम था। वो बोइंग 727 हो, चाहे वो किसी भी और किस्म का जहाज हो, या फिर बोइंग 747, 727 हो, सब उड़ा लेते थे वो। और 1959 में उन्होंने कमर्शियल पायलट बनने का फैसला किया था। तो कैप्टन जैक के पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस था। अब इनके साथ जो पायलट फर्स्ट ऑफिसर थे वो भी कम एक्सपीरियंस नहीं थे, ये 42 साल के थे, 42 ईयर्स ओल्ड। इनका नाम था विल्बर रेडफोर्ड। इनका करियर शुरू हुआ था जॉर्जिया नेशनल गार्ड से, और उसके बाद ये डेल्टा एयरलाइंस से जुड़ गए थे, और 11 साल इंजीनियरिंग करी थी इन्होंने। तो उसके बाद यहाँ पर आए, 10,000 से ज़्यादा घंटे उड़ाने का इनको एक्सपीरियंस था, और इस जहाज पे जिसमें ये आज उड़ान भरने वाले थे इस पे 1500 घंटों का एक्सपीरियंस था इन्हें। और एक और क्रू मेंबर थे, फाइनल क्रू मेंबर, ये 30 साल के थे, यंगर दोनों के मुकाबले। ये फ्लाइट इंजीनियर थे, इनका नाम था स्टीवन हाइट। और स्टीवन जो थे वो पहली बार इस जहाज में बैठे थे, हालांकि 15 साल की उम्र से वो जहाज उड़ा रहे थे, फिर इंस्ट्रक्टर बने US एयरफोर्स में, और उसके बाद डेल्टा एयरलाइन से जुड़े। ये मैंने तीनों के बारे में बता दिया आपको कि आपको अंदाजा हो जाए कि कॉकपिट में कितना सारा एक्सपीरियंस बैठा हुआ है। अब सब कुछ चेक किया जा रहा था जहाज के इर्द गिर्द, कोई मसला तो नहीं है, सब कुछ बढ़िया तो है, एंड एवरीथिंग वॉज लुकिंग परफेक्ट। 11:30 बजे जो है तकरीबन डोर्स बंद हुए और डेल्टा फ्लाइट 1080 को पुश बैक मिला, और फिर वहां से ये जहाज रनवे की तरफ बढ़ने लगा धीरे धीरे। कैप्टन फ्लाइंग, जो कैप्टन जैक थे, वो इस जहाज को उड़ाने वाले थे, फर्स्ट ऑफिसर, रेडियो और पेपर वर्क संभालेंगे। 3 इंजन इस जहाज के स्टार्ट किए गए और टैक्सिंग करते हुए सैन डिएगो से निकलने को ये जहाज तैयार हुआ रनवे 27 से। मगर इस बीच इन तीनों के बीच में एक अजीब सी बात हुई। तीनों के तीनों पायलट एक दूसरे से बात कर रहे थे पिछले 2 हादसों के बारे में कि भाई 2 जहाज जो थे, एक जहाज में तो 580 लोग मारे गए, फिर उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 72 लोग मारे गए। और एविएशन में एक बहुत बड़ी कहावत मशहूर है कि जब भी हादसे होते हैं तो 3 के जोड़े में होते हैं, 3 होंगे बैक टू बैक। तो ये लोग डर रहे थे, यार 2 तो हो चुके हैं, और मजाक मजाक में बोल भी रहे थे तीसरा हमारे ना हो जाए, और फिर हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे। प्लेन जो था, ये जो जहाज था, ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस था, काफी जबरदस्त जहाज था और उस जमाने के एडवांस प्लेन्स में आता था। फिर 11:53 टेक ऑफ के लिए ATC ने क्लियरेंस दिया और रनवे 27 पर से मौसम की जांच करते हुए ये जहाज उड़ने को तैयार हुआ। मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं था, बताया गया कि बादल हैं, काफ़ी थिक क्लाउड हैं, और 800 फीट टू 9000 फीट विजिबिलिटी मतलब बिल्कुल ख़त्म है

पर फिर भी उड़ान भरने को ये लोग तैयार थे। अब जहाज की स्पीड बढ़ी 80 knots, 123 knots रनवे पर। अब जब इतनी स्पीड हो जाती है तो जहाज जो है फिर गाड़ी की तरह नहीं है कि ब्रेक मारे और रुक गया, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब जहाज को अब रोका नहीं जा सकता है, अब आपको हवा में इसे लेना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इंजन भी फेल हो सकता है अगर रिस्क लिया तो, या फिर जहाज क्रैश हो जाएगा। और सब कुछ सारी चीजें चेक की गई, कंट्रोल कॉलम जो पायलट्स के राइट हैंड साइड पे होता है, मतलब जो फ्लाइंग कैप्टन होगा उसके राइट हैंड साइड पे पूरा अपने लीवर जैसा होता है, वो उसने चेक किया, काम करा ठीक है। कैप्टन ने पुल बैक किया और उनके पुल बैक करने से पहले, मतलब कि जहाज को उड़ाने से पहले, जहाज में एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। अपने आप उसकी जो नोज होती है जहाज की आगे की, वो अपने आप ऊपर की तरफ हो गई। और पायलट डर गया, अरे ये क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसकी नोज को ऊपर किया नहीं था, लीवर पर उनका हाथ था, वो खींचने ही जा रहे थे, पर इतने में एयरक्राफ्ट अपने आप ऊपर की तरफ उसकी नोज हो गई। इतनी ज्यादा ऊपर हो रही थी, ऐसा लगा कि पीछे की जो टेल होती है, जो पूंछ होती है जहाज की, वो जमीन से टकराने वाली है। कैप्टन ने फौरन जो कंट्रोल कॉलम होता है साइड में, जो लीवर होता है, उसको पूरी तरह से आगे की तरफ कर दिया, मतलब नोज को आगे झुकाने के लिए। लेकिन उन्होंने वो किया नीचे लाने के लिए, मगर कुछ भी नहीं हुआ। और कैप्टन एकदम से हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, प्लेन जो था वो ऊपर की तरफ 15 डिग्री तक पहुंच गया, पूरी नोक उसकी ऊपर होने की तरफ जा रही थी। कैप्टन ने देखा हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर। अब ये क्या होता है मैं बताता हूं, ये जो स्टेबिलाइजर होते हैं अमूमन जहाज के पीछे लगे होते हैं, ठीक है, इनका एंगल बदला जाता है उड़ाने के लिए और वापस लैंडिंग के टाइम पर। उन्होंने चेक किया कि भाई ये ठीक तो है, जैसे गाड़ी पे स्पॉइलर लगते हैं वैसे होते हैं ये, तो देखा एकदम ठीक है, इनफैक्ट नॉर्मल है, 3.5 degrees पर है, तो ये तो वजह नहीं है। अब क्या करें, अभी सही करने का टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जहाज को हवा में लेना ही पड़ेगा। इन्होंने जहाज को जमीन से उठाया और आसमान की तरफ ले गए। लैंडिंग गियर जो था इन्होंने वापस अंदर खींचा और लैंडिंग लाइट्स को बंद किया। फर्स्ट ऑफिसर ने सारे काम किए, नो स्मोकिंग साइन को भी बंद कर दिया। प्लेन अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। कैप्टन ने वो जो कंट्रोल कॉलम था उनके राइट हैंड साइड पर लीवर, उसको आगे ही रखा, क्योंकि प्लेन जो था वो हवा में होने के बावजूद भी उसकी जो नोज होती है, नाक होती है, वो ऊपर की तरफ जाए जा रही थी धीरे धीरे इसी, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल था, जैसे अपने आप चल रहा हो। जब 400 फीट की ऊंचाई पर ये पहुंचा तो जहाज की जो स्पीड थी वो बढ़ने लगी और एंगल उसका और ऊपर की तरफ होने लगा, 15 degrees, 18 degrees। कैप्टन ने कंट्रोल कॉलम को और भी ज्यादा पुश किया कि ये हो क्या रहा है, पर ये काम ही नहीं कर रहा था। फिर एक और फंक्शन होता है जहाज में, इलेक्ट्रिक ट्रिम स्विच। उन्होंने सोचा चलो इसे एक बार चेक कर लेता हूं, ये जहाज के भी पीछे लगा होता है, ठीक है, और ये चीज जो होती है ये धीरे धीरे हवा को काटती है कि हवा जहाज के ऊपर से अच्छे से जा सके और जहाज बिल्कुल सीधा सीधा उड़ सके। अब कैप्टन इस मशक्कत में लगे हुए हैं उड़ान भरते के साथ ही, और पैसेंजर्स जो इस जहाज में हैं उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि उनके ही पीछे टेल में हो सकता है कोई दिक्कत हो। उन्होंने देखा पीछे, कुछ सिस्टम जलाए लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और अभी कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस वो भी यहां पर धरा का धरा रह गया। उन्होंने सोचा पीछे जो एक स्पॉइलर जैसा जहाज के लगा होता है वो शायद मैं बंद करना भूल गया या कुछ हो गया, बेध्यानी हो गई, पर वो काम ही नहीं कर रहा और ऐसा लग रहा कि एकदम ठीक है। अब वो पीछे मुड़ के देख नहीं सकते ना, इट इज नॉट विजिबल। ओनली वे ऑफ जजिंग इट कि पीछे क्या चल रहा है वो आपके सिस्टम्स ही आपको बता सकते हैं। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ही दिक्कत हो, तो उन्होंने मैन्युअली जहाज के पीछे के स्पॉइलर को इधर उधर करने की कोशिश करी। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और जहाज की जो नोज थी वो धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। उसके बाद कैप्टन को समझ आया कि नोज डाउन पोजिशन में तो नहीं है पीछे। सब तरीके अपना लिए, कुछ नहीं हो रहा। 800 फीट पे जहाज जब पहुंचा तो यहां एक और मुश्किल पैदा हुई।
800 फीट की ऊंचाई पर जाके बादल छा गए, और ये रात का वक्त है तो सब जगह बादल ही बादल, और जहाज इन बादलों में खो गया। इस वक्त ये जहाज पैसिफिक ओशन में था, तो और भी डरावना डरावना पूरा समा बन गया था। पायलट्स अब पूरी तरह से जहाज के इंस्ट्रूमेंट के भरोसे थे। कैप्टन ने जहाज को जब राइट मुड़ने की कोशिश करी तो उन्हें कुछ चीजों का सामना करना, दरअसल राइट मुड़ने का मकसद था कि उनका वही रूट है उस तरफ से मुड़ने के, और जहाज अपने जगह पर पहुंच जाएगा। इधर चल रही है कोशिश जहाज को काबू करने की, और मेन कैबिन में पैसेंजर्स को कोई आइडिया नहीं है। कुछ लोग अपनी नींद खींचने में लगे हैं, किसी को कॉफी पीनी है, किसी को कुछ चाहिए। और कॉकपिट में कैप्टन जैक और उनके दो लोग, दोनों कलीग्स कोशिश करें। उन्होंने इंजीनियर जो मिस्टर थे हाइट थे, उनसे पूछा कि जरा हाइड्रोलिक सिस्टम जो है जहाज का वो चेक करो। अब इस जहाज के अंदर चार इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, एक तो है प्रेशर देने के लिए, इनसे पावर निकलती है, और ये 3000 PSI पावर देते हैं जहाज के फ्लाइट कंट्रोल सरफेस को, कि एक चीज को यहां से पावर मिलती है, एक तरीके से इंजन का मेन कंपोनेंट सोच लो। और प्रॉगर होगी इसमें तो इन सबको दिख जाएगा, इंस्ट्रूमेंट पे आ जाएगा। कैप्टन ने बार बार ट्रिम सिस्टम को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, जैसे हम करते हैं ना देसी तरीके से, चीज चालू नहीं हो रही थी तो ऑन ऑफ करते रहते हैं, कैप्टन साहब वही करते रहे कैप्टन जैक, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था, कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। प्लेन फिर भी ऊपर की तरफ नोज अप उसकी धीरे धीरे हो रही थी। अब इस बार सिर्फ कैप्टन नहीं, फर्स्ट ऑफिसर ने भी वो जो कंट्रोल कॉलम होता है उसे आगे की तरफ कर दिया, ताकि अब जल्दी से इसकी नोज बस किसी तरीके से बस नीचे आ जाए, कैसे भी करके नीचे आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, जहाज को फर्क ही नहीं पड़ रहा। और कमाल की बात ये थी कि जब कोई खराबी होती है तो जहाज के अंदर वार्निंग लाइट्स होती हैं, वो जल जाती हैं, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही। ये ऐसा था जैसे जहाज के अंदर परेशानी है लेकिन जहाज को भी नहीं पता है कि मसला क्या है। फर्स्ट ऑफिसर ने यह चेक करने के लिए कि लाइटें काम कर रही हैं नहीं कर रही, उन्होंने बटन को ऑन किया कि सारी लाइट्स एक बार डल जाएं, लेकिन पता लगा सारी लाइट्स तो एकदम काम कर रही हैं, सब कुछ ठीक है, जहाज के हिसाब से कोई दिक्कत है ही नहीं। पर जहाज जैसे अनिला है, फ्लाइट इंजीनियर जो बैठे हुए थे पायलट के पीछे, उन्होंने सर्किट ब्रेकर्स को भी चेक करने की कोशिश करी, शायद यहां पर कोई खराबी हो, शायद कोई तार टूट गया हो, शायद कुछ हो गया हो, लेकिन यह भी ठीक। इस टाइम L-1011 सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक, इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी वो काबू जहाज, लेकिन एम कर रहा था और अब पहुंच चुका था 3000 फीट पे। एमरजेंसी के जितने भी हथकंडे इन्हें आते थे पायलट साहब को, उन्होंने सारे के सारे लगा लिए थे, पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि दिक्कत कहां आ रही है। मसले को सॉल्व करने के चक्कर में नए नए सवाल पैदा हो रहे थे। एक और मुसीबत आ गई इतने में, जब उन्होंने जहाज को राइट की तरफ मोड़ने की कोशिश करी तो जब तक पूरा का पूरा राइट नहीं ले लिया पूरी लिमिट तक, तब तक जहाज हिला तक नहीं। ये बिल्कुल वैसा है कि मैं कहूं आपकी गाड़ी की जो स्टीयरिंग है आप पूरी पूरी राइट घुमाओ तब जाके वो जरा सी मुड़ेगी, तो आपको कितनी चिड़ छूटेगी, आप समझ जाओगे कि मेरी स्टीयरिंग में दिक्कत है, मैं तो आराम से एक हाथ से मोड़ता हूं और मुड़ जाती है। बट यही जहाज के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, बिल्कुल आखिर में जाके जब पूरा कॉलम एंड तक, तब जाके जहाज रासा मुड़ा नॉर्मल एंगल पे लाने की कोशिश में, यूजुअली वो टर्न हो जाता था। आप समझ में आया कि जहाज की जो नोज है वो ऊपर जा ही रही है, साथ में जहाज के लेफ्ट और राइट में भी दिक्कत है, जो पिच कंट्रोल होती है यानी कि जो हाइट जा रही है हवा में ऊपर जा रहा है वो स्टेबलाइजर देखते हैं, और एक और चीज लगी होती है हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से जहां पावर मिलती है तो लेफ्ट और राइट दिखता है, लेकिन जहाज के हिसाब से तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। पायलट्स परेशान थे, यार ये कहीं तो अभी हम क्या करें। उन्होंने तुरंत ATC को कांटेक्ट करा सैन डिएगो के, जहां से ये जहां से उड़ान भरी थी, उनसे बातचीत करी, उन्हें अलर्ट किया कि देखो भाई हम इस सिचुएशन में हैं, और कहा कि हमारे साथ फ्रीक्वेंसी पर बने रहिए। ये एक नॉर्मल

परेशानी जो शुरुआत में लग रही थी, जहाज जब उड़ान भर रहा था, अब एक मिस्ट्री बन चुकी थी। समझ के बाहर था कि अभी करना क्या है। एक्सपीरियंस्ड पायलट, 36 सालों वाले एक्सपीरियंस्ड पायलट्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। जहाज एक तो नोज अप हो रही थी, ऊपर से लेफ्ट की तरफ भाग रहा था। 18 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 22 डिग्री। इस वजह से जहाज रैपिडली ऊपर की तरफ, जैसे रॉकेट जाता है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहा था। और ऑल्टीमीटर जो हाइट बताता है जहाज की, वो सामने सिस्टम लगा होता है पायलट्स के, और उसमें आ रहा था 3,500 फीट, 4,000 फीट, 4,500 फीट। और ज्यादा ऊपर जाते हुए जैसे नोज जो थी वो बिल्कुल धीरे धीरे सीधी होती चली जा रही थी। और जैसे जैसे जहाज बिल्कुल सीधा सीधा होता चला जा रहा था, जहाज की स्पीड गिरती चली जा रही थी। अब डर था कि इंजन खराब ना हो जाए। पायलट्स अपने कंट्रोल पैनल को, कॉलम को पूरी तरह से आगे किए हुए थे कि नोज को धक्का दे के कैसे ना कैसे करके आगे करें, बट नॉट वर्किंग। इन्हें पता था अगर कुछ नहीं किया गया तो एरोडायनामिकली ये जो जहाज है ये अपने आप को ही एक डेड वेट बना लेगा। मतलब आप जरा सोचिए कि कोई चीज आप ऊपर की तरफ छोड़ते हैं तो वो नीचे आके गिरती है, राइट? और जहाज अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट एज इन उसकी नोज ऊपर है और टेल नीचे है, तो क्या होगा? एक हद तक ऊपर जाने के बाद वो सीधा डेड वेट की तरह नीचे आकर गिरेगा। पायलट्स को सिखाया जाता है कि पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप जहाज को उड़ाने की कोशिश करते रहें। मगर ये जो परेशानी इनके साथ थी, इट वॉज बिकमिंग इम्पॉसिबल। ऐसा लग रहा था कि जहाज इन्हीं को इजाजत नहीं दे रहा है कि वो कंट्रोल हो सके। और कैप्टन ही सोच रहे थे कि ये हुआ कैसे, अभी क्या करें। ही वॉज इन अ पैनिक मोड। नीचे उन्हें नजर आ रहा था पूरा का पूरा ओशन का काला पानी, क्योंकि देर रात हो रही थी। और फिर उन्हें याद आ रहा था वो थर्ड मेजर क्रैश, मजाक मजाक में ये कहना कि शायद तीसरा एक्सीडेंट हमारा ही होगा। और फिर वो सोच रहे थे कि लोग ये बोलेंगे कि अरे जहाज क्रैश हुआ ना, पायलट की गलती है। फिर वो और सोच रहे थे कि मेरे फैमिली वाले सोचेंगे कि रात को मैंने शायद कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया पी लिया और फिर मैंने इतने लोगों की जानों को रिस्क में डाला। और फिर वो सोच रहे थे पैसेंजर्स के बारे में कि 41 पैसेंजर्स जो इस जहाज में बैठे हुए हैं, जिन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, उन लोगों का क्या होगा। कैप्टन ने अपने माजी में तलाशा, एक एक चीज को ध्यान से सोचने लगे जो भी उन्हें आता है, और अपने आप को वापस कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे। नॉर्मली कंट्रोल कॉलम को आगे करके होता यह है कि अगर साइड में जो राइट में जो लीवर होता है उसे आगे कर दिया जाए तो जहाज की जो नोज होती है वो नीचे हो जाती है, तो सामने से हवा बहुत ईजिली फ्लो करती है और जहाज एकदम सीधा आराम से उड़ता है। पर यही काम नहीं कर रहा तो एक और सोल्यूशन कैप्टन साहब के जहन में आया। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि दोनों विंग्स जो पर रहे हैं जहाज के, उसके नीचे इंजन लगे हुए, अगर उनकी पावर को थोड़ा कम कर दूं तो शायद जहाज जो है वो नीचे की तरफ होने लगे। अब ये करना बहुत रिस्की है क्योंकि प्लेन ऑलरेडी स्लो हो रहा है, उसकी स्पीड वैसे भी जा रही है, अभी नहीं तो अगले मोमेंट, किसी भी आने वाले मोमेंट में जहाज जो है वो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा और बिल्कुल डेड वेट की तरह नीचे गिर जाएगा। और अगर उन्होंने इंजन की स्पीड को, थ्रस्ट को, पावर को थोड़ा कम किया तो भी पॉसिबल है कि जहाज नीचे गिर जाए, मगर अगर बैठ के देखते रहे तो पक्का गिर जाएगा। उन्होंने जल्दी से दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट किया। उन्होंने कहा बैठे नहीं रहूंगा। उन्होंने थ्रॉटल, जो जहाज का होता है जो इंजन को कंट्रोल करता है, इंजन 2 का थ्रॉटल आगे कर दिया नोज को नीचे करने की कोशिश में। एंड हुआ ये कि जब उन्होंने पावर को थोड़ा खींचा तो जहाज की नोज थोड़ी सी नीचे आई, जो भी 20 डिग्री पे थी वो 18 डिग्री पे चली आई। और थोड़ा सा नीचे करने की वजह से जहाज की थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई। कैप्टन ने इंजन 1 और 3 का भी थ्रॉटल जरा सा और बढ़ाया कि थोड़ी सी स्पीड और दे दूं। और कंट्रोल कॉलम जो था नोज को नीचे करने की कोशिश, वो लगातार वो करते रहे, आगे उनका हाथ लगातार रहा। और क्योंकि जहाज लेफ्ट में भी भाग रहा है तो ये भी देखना है कि लेफ्ट में पूरी तरह से ना भागे। स्पीड थोड़ी सी बढ़ी, 150 नॉट्स की तरफ पहुंच चुकी थी, क्रॉस कर चुकी थी। फर्स्ट ऑफिसर ने टेक ऑफ

वाले जो फ्लैप्स होते हैं उनको बंद करा, 10 से 4 डिग्री पे ले आए। जब थोड़ा सा कंट्रोल में आया तो स्पीड में लगी। पहली बार इमरजेंसी जब से शुरू हुई है तब से कर अब तक की पहली बार था जब महसूस हो रहा था कि चलो कुछ तो बाकी है, पर अभी भी मसला हल नहीं हुआ था क्योंकि जहाज की नोज अभी पूरी तरह से नीचे नहीं आई थी। कैबिन क्रू जो थी, फ्लाइट अटेंडेंट, सारे के सारे परेशान थे। उन्होंने कैप्टन साहब का दरवाजा खटखटाया पर उन्हें इंजीनियर से जवाब मिला कि अभी प्रायोरिटी जहाज को संभालने की है तो थोड़ी देर में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफिसर रेडफोर्ड ने कॉन्टेक्ट करा अप्रोच कंट्रोल वालों से, ATC से बातचीत करी और उन्हें कहा कि प्लीज हमें रेडियो बीकन दीजिए। बेसिकली क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी जहाज को दी जाती है, जहाज उस फ्रीक्वेंसी को फॉलो करता है और फॉलो करने के बाद वो जो आने वाला रनवे होता है उससे अलाइन हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। तो आमूमन ये बहुत आसान तरीका होता है लेकिन यहां पर बहुत मुश्किल थी। तो उन्होंने रेडियो बीकन यानी कि फ्रीक्वेंसी मांगी। सील बीच एक फ्रीक्वेंसी उन्हें मिली लॉस एंजलिस की। अब उन लोगों ने कहा कि अगर आपको जहाज उड़ाते रहना है और यहां उतारना है तो 10,000 फीट पे आपको मेंटेन करनी पड़ेगी हाइट। तो सामने सिस्टम में हाइट डाली जाती है, तो उन्होंने वहां पर टाइप किया 10,000 फीट और चल पड़े अचीव करने के लिए। जहाज जैसे तैसे 9,000 फीट तक पहुंचा। अब जहाज बादलों से निकल गया था तो बादलों के ऊपर आ गया था, तो जो अंधेरा था वो छट चुका था। अभी तारे और चांद दोनों नजर आ रहे थे, थोड़ी रोशनी थोड़ी राहत। प्लेन अब 190 नॉट्स की स्पीड पर था। फर्स्ट ऑफिसर ने सारे फ्लैप्स को रिट्रैक्ट कर लिया, बंद कर लिया, पर पायलट्स को एक बात समझ में आ गई थी कि जो ATC वालों ने बोला है 10,000 फीट पर मेंटेन करने को, वो तो नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑफिसर ने पूछा ATC वालों से कि कोई और तरीका है, थोड़ी और हाइट चलेगी? तो उन्होंने बोला हाँ, तो 10,000 से 12,000 के बीच में रखो। अब जब इन्होंने 11,500 फीट क्रॉस कर लिए तो अंदाजा हुआ कि 12,000 पे मेंटेन करना भी मुश्किल है। फिर इनको, इनकी वजह से बाकी जहाजों को कहा गया कि वो गो अराउंड करें, मतलब आसमान इनके लिए खाली कर दिया गया। और ATC वालों ने कहा कि तुम कोई भी ऑल्टीट्यूड किसी भी हाइट पर उड़ाओ, कोई टेंशन नहीं है, आप आइए और यहां पे लैंड कीजिए। कहने को ये बड़ी अच्छी खबर है, आपको भी लग रहा होगा हाँ चलो फाइनली, पर उड़ान पे काबू नहीं है। जहाज ऐसा लग रहा है कि ये लोग उड़ा ही नहीं रहे, वो अपने आप अपनी मर्जी से उड़ रहा है। आप जरा अपने आप को एक गाड़ी में सोचिए जो आपके चलाने से नहीं, वो अपनी मर्जी से लेफ्ट हो रही है, अपनी मर्जी से वो व्हीली मार रही है, आपको कैसा लगेगा? एंड यू स्टक इन इट, यू कैन नॉट इवन जंप। जो लीवर था साइड में कैप्टन साहब के राइट हैंड साइड पे, उसे पूरा आगे कर रखा था, इतना आगे कि सामने जो सिस्टम है उससे उनके हार्ट टकरा रहे थे। पूरी लिमिट तक कंट्रोल कॉलम को आगे किया लेकिन जहाज नहीं मान रहा था। टाइम उनकी तरफ जैसे था ही नहीं। और वो समझ नहीं पा रहे थे क्या किया जाए। कैप्टन ने एक चीज करी, उन्होंने जो थ्रस्ट था इंजन का उसे थोड़ा और पावर दी 1 और 3 पे जो था, और 14,000 फीट तक जहाज को जैसे तैसे पहुंचा के रोकने की कोशिश करी। थोड़ी सी हाइट जो नोज की थी, जो अभी तक ऐसे उड़ रही थी जैसे आप बाइक पे व्हीली मारते हैं वैसा जहाज उड़ रहा था, थोड़ी सी क्लाइम स्लो हुई। अब क्या कर रहे हैं कैप्टन साहब, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। गाड़ी को आप मान लीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप चाबी जो है इग्निशन की ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, ये कर पाएंगे गाड़ी में? अब ये चीज ये जहाज में कर रहे थे, तो जहाज के दोनों इंजन को थ्रस्ट दे रहे थे, बंद कर रहे थे, बस दे रहे थे, बंद कर रहे थे, दे रहे थे, बंद कर रहे थे, जैसे तैसे जहाज की नोज को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन ने जैसे तैसे 9,400 फीट पर जहाज को थोड़ा काबू में किया इस बहुत ही वेयर्ड तकनीक से जो किसी किताब में नहीं लिखा। पिच और पावर दोनों का बैलेंस बिठाते हुए वो इस जहाज को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली 10,400 की फीट पर जहाज थोड़ा सा काबू में आया और अपनी स्किल्स से कैप्टन साहब ने उसे थोड़ा सा काबू कर लिया, जैसे एक बिल्कुल
बेकाबू घोड़ा होता है और उसको चलाने वाला ही जानता है, वही कैप्टन साहब के साथ हो रहा था। अब परेशानी ये थी कि जो सिचुएशन है, जो नोज़ है और जो फ्लैप्स हैं, 2 डिग्री पे होने चाहिए, लेकिन 12 डिग्रीज पे चल रहा था मामला। थ्रॉटल पे लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि काबू किया जाए, पर कैसे किया जाए, कौन बताएगा? अब उन्हें अगर लैंड करना है तो जहाज की स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। 200 से ऊपर गए, नोज ऊपर जा रही है, खत्म हो जाएगा। 119 से अगर स्पीड गिरी नीचे तो मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल जा रहा है। अभी फ्यूल पे भी ध्यान देने का वक्त आ गया, बिकॉज वो नॉर्मली जहाज को नहीं उड़ा पा रहे हैं। एक बहुत गहरा ड्रैग आएगा जिस हिसाब से जहाज उड़ रहा है, हवा में व्हीली मारता हुआ, उसकी हालत बेहद खराब है। उन्होंने वापस जितने भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स किताबें होती हैं जो दी जाती हैं, वो सारी की सारी वापस देखना करी। हर सर्किट ब्रेकर को देखा, सारे सिस्टम को ऑन ऑफ किया, वापस रीस्टार्ट किया, हर इंस्ट्रूमेंट को देखा, पर कुछ नहीं मिला। और अभी भी पैसेंजर्स को एक चीज भी नहीं बताई, पैसेंजर्स वर अनअवेयर ऑफ इट। उन्हें कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, उन्हें बस लगा थी कि थोड़ा सा टर्बुलेंस होगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर कैबिन क्रू को तो पता है ना कि क्या हो रहा है। कैबिन क्रू में से एक मेंबर फ्लाइट अटेंडेंट आई, उन्होंने नॉक किया कॉकपिट के दरवाजे पे और उन्हें पायलट साहब ने एक ऑर्डर दिए। पायलट साहब ने अटेंडेंट को कहा कि जितने भी पैसेंजर्स पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं उन सबको आगे ले आओ। विच वॉज अ वेरी वियर्ड थिंग टू डू। हम सोचते हैं ना अक्सर कि यार ये जहाज में आगे खड़े क्यों नहीं होने देते, सारे के सारे आगे खड़े हो जाए क्या हो जाएगा। कैप्टन ने ठीक वही किया, उन्होंने कहा सारे पैसेंजर्स जो पीछे बैठे हुए हैं, सीट्स खाली हैं, उन सबको आगे ले आओ, ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पुश हो जाए, जहाज की नोज की तरफ सब आ जाएंगे, तो हो सकता है कि वेट की वजह से जहाज की नोज थोड़ी सी नीचे हो जाए। कोशिश तो करके देखें। पर किस्मत ही खराब थी कि 300 की जगह सिर्फ 41 लोग ही थे। कितना ही फर्क पड़ जाएगा जहाज को, झूला थोड़ी है, बट एटलीस्ट ट्राई करने के लिए उन्होंने ये किया। उन्होंने कहा कि सारे पैसेंजर्स को आगे लेके आओ और बहुत सारों को इमरजेंसी गेट्स के पास बिठा दिया जाए। अब इनको लैंडिंग के लिए चूज करना था, क्योंकि ये जहां से उड़े थे सैन डिएगो और लॉस एंजलिस जहां पे जाना है, ये उसके बिल्कुल 50% रस्ते पे थे बीच में। अब सोचना है कि क्या करें, रात का वक्त है, अगर ये जाना चाह रहे हैं लॉस एंजलिस तो मुश्किल होगी, वहां पे बादल है, बिजली है, बारिश हो रही है और जहाज नॉर्मल नहीं है। सैन डिएगो के लिए वापस मुड़ना पड़ेगा, जहाज तो चल ही नहीं रहा, मुड़ेगा कहां से। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा दूर चलते हैं, पर जहां का ये सोच रहे थे वहां पे पहाड़ियां थी, पामडेल एयरफोर्स प्लांट था। अब ये जो एयरफोर्स प्लांट था ये नॉर्मल कमर्शियल रनवे नहीं है, यहां पर जाने का सोचे भी तो मुश्किल है। इसका रनवे हालांकि बहुत लंबा है, पूरी स्पेस शटल उतार दो यहां पे, लेकिन रात का वक्त था, 10 बजे के बाद वहां पे कोई बैठता उठता नहीं है। अब उनको बुलाना और उनका आना, उसमें कितना टाइम लगेगा, वो सोच के जहाज को वहां नहीं ले जाया जा सकता। ऊपर से पहाड़ है, कुछ भी हो सकता है, और तेल जा रहा है जहाज का, फ्यूल इज गेटिंग ओवर। एयरपोर्ट चाहिए था इन्हें, सख्त एयरपोर्ट जहां पर सारे के सारे इमरजेंसी सर्विसेज मिल जाएं। नीचे क्या होगा पता नहीं, अभी भी दे वर नॉट श्योर। मन में आ रहा था कि ये पक्का क्रैश लैंडिंग है, हम में से कोई नहीं बचेगा, पर हम कहां पे ये क्रैश करेंगे वो बहुत बड़ी बात है। एंड दैट्स व्हाट ही वाज थिंकिंग। उन्होंने सोचा लास वेगास फीनिक्स ले जाता हूं, लेकिन फिर डिस्टेंस देखा, क्या वहां तक जहाज जाएगा, कहीं हम शहर पर ना गिर जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। पायलट्स ने फिर सोचा कि ठीक है लॉस एंजलिस ही चलते हैं, आने दो आंधी और तूफान, हम देख लेंगे। और लॉस एंजलिस पे उतरने के 2 तरीके थे, या तो वो समुद्र के ऊपर से जाते, समुद्र के ऊपर से रनवे पकड़ते, या फिर थोड़ा घूम के आते, उन्हें शहर की पूरी लाइट्स नजर आती, ज्यादा जल्दी नजर आ जाता उन्हें रनवे, आसानी होती। लेकिन कैप्टन ने कहा नहीं, अगर खुदा ना खास्ता ये जहाज क्रैश हुआ तो हम शहर के ऊपर नहीं गिर सकते, समुद्र में गिरेंगे चलेगा। तो उन्होंने लॉस एंजलिस चुना जहां पे हवा बहुत तेजी से चल रही थी। और यह भी उन्हें बताया गया कि सर आपको रनवे दिखेगा नहीं, महज 60 सेकंड पहले रनवे दिखेगा उतरने से पहले। आप समझ रहे हैं, आपको कहा जाए कि भाई आपको जो है फलां जगह से फलां जगह जाना है, लेकिन आपको यह भी कहा जाए कि वहां
तुम सही पहुंचे हो नहीं पहुंचे ये तुम्हें सिर्फ 60 सेकंड पहले पता लगेगा, मतलब महज एक मिनट पहले तुम्हें कहा जाएगा कि तुम सही जा रहे हो कि नहीं। तो कैसा लगेगा? वही पायलट साहब को कहा गया कि सर विजिबिलिटी नहीं है यहां पे, आप आ तो रहे हैं विजिबिलिटी नहीं है, आपको

बटर या लैंड क्रैश पॉसिबल है। ये सुन के वो डर गई, मगर उसका काम ये था कि इस चीज को बहुत आसानी से बताना कि कोई डरे नहीं है। उसने वापस जाके सारे लोगों को जो 41 पैसेंजर्स थे उनसे कहा कि डोंट वरी, कंपनी के प्रोसीजर्स के हिसाब से हम चल रहे हैं, एंड डोंट वरी, हम कुछ देर में लैंड कर जाएंगे। ये कितना मुश्किल काम है, ये कस्टमर सर्विस का सबसे मुश्किल हिस्सा है कि आपको इतनी बड़ी बात के लिए झूठ बोलना है जहां पर आपकी जान भी खतरे में है, इतना बड़ा डेंजर छुपाना है। बहरहाल कॉकपिट में अभी भी गहमा गहमी थी और समझ में नहीं आ रहा था कि हम करेंगे कैसे, वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा था, मगर कैप्टन अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस को बटोर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, हम बेसिक तरीके से लैंड करेंगे, 33 डिग्री पर फ्लैप्स जैसे कि होते हैं, 10 नॉट्स की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब लैंडिंग स्पीड जितनी जहाज की अमूमन होती है उससे थोड़ी सी बढ़ा दी, क्योंकि डर यह था कि जहाज अगर इस तरीके से जैसे चल रहा है, मतलब नोज अप है और बिल्कुल व्हीली मार रहा है, तो अगर जमीन से टच करने की कोशिश करी तो शायद टप्पा खा के वो फ्लोट होने लग जाए और मामला और खराब हो जाएगा। और अगर नोज ऊपर ही रही इस जहाज की तो जहाज को वापस रनवे पर उतरने के बावजूद उड़ाना पड़ेगा और फिर डेफिनेटली क्रैश है, नहीं बचेंगे। एटीसी ने बोला कि सर दूसरी साइड से आ जाइए, सिटी लाइट से आपको दिखेगा रनवे, मगर खतरा वही है ना, कैप्टन साहब यही सोच रहे थे कि पानी में हम क्रैश हो जाए चलेगा, लेकिन लोगों की जान बचनी चाहिए, अगर शहर पर गिरे तो बहुत मसला हो जाएगा। सो दे चोज रनवे 06 राइट। अब सब कुछ कैप्टन के ऊपर है, लैंडिंग स्लो होनी चाहिए और स्लो होनी भी ऐसी चाहिए कि धीरे धीरे जहाज में लगातार चेंजेस वो करते रहें, एकदम सडन अगर कुछ भी किया, माइक्रो सेकंड की गलती, यहां पर बहुत भारी पड़ेगी। ऊपर से फ्यूल भी जहाज का कम है, 22 डिग्री पर फ्लैप कर दिए गए, 165 की स्पीड पर जाएगा जहाज और फाइनल अप्रोच के लिए बढ़ गए। अब पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अब कोई ऑप्शन सोचने के लिए वक्त भी नहीं है। 4 डिग्री फ्लैप खोले, नीचे आया थोड़ा जहाज, जो कॉलम था कॉलम कंट्रोल उसे हल्का सा पीछे की तरफ लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे लेकिन जहाज नीचे आने के बाद थोड़ा सा काबू में आया, 180 नॉट की स्पीड, 12 डिग्री पिच, मतलब आगे की नोज ऊपर। फिर पायलट ने सोचा ऑटो पायलट लगा दूं क्या, मगर उन्होंने जैसे ही इंगेज किया ऑटो पायलट, वो जहाज पूरी तरह शिफ्ट होके एकदम से ऊपर, जैसे यूं समझ लीजिए जहाज अपनी पूंछ पे खड़ा हो गया हो, बिल्कुल वैसा होने लगा। तो उन्होंने फौरन उसे बंद किया, वो समझ गए कि अगर ऑटो पायलट पे किया तो जहाज जो है ये पक्का क्रैश करेगा। उन्होंने थ्रॉटल वापस पीछे लिए धीरे धीरे 5000 फीट, फिर रेडियो बीम्स को फॉलो किया। रेडियो बीम्स रनवे पे लगी होती हैं, तो अगर इनको फॉलो किया जाए, इनकी फ्रीक्वेंसी से मिल जाए, तो ये ऐसा है जैसे जहाज को अपनी तरफ रनवे अपने आप खींचता है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द रेडियो बीम्स और अपने आप जहाज उतर जाएगा, विजिबिलिटी हो या ना हो। लेकिन यहां पे मसला था क्योंकि जहाज काबू में ही नहीं था। खैर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम के भरोसे रेडियो बीम्स को फॉलो करने लगे, रनवे 06 राइट लॉस एंजलिस 9000 फीट। अब वापस बादल में आ गए, कुछ नहीं दिख रहा, नीचे आना ही होगा। कंट्रोलर ने एटीसी वालों ने फिर से वेक्टर दिए कि रेडियो बीम्स को पिक कर सकें। पायलट्स को समझ आया कि अब मैनुअल ही उड़ाना पड़ेगा। कैप्टन जैक ने सबको काम बांट दिए, फर्स्ट ऑफिसर को बोला मिस्टर रेडफोर्ड आप कंट्रोल करेंगे क्राफ्ट को, जहाज को। इंजीनियर को बोला कि अपडेट देते रहो कैबिन क्रू को, पैसेंजर्स को, और कैबिन क्रू को कहा कि क्रैश लैंडिंग के लिए तैयारी करो। ये मान चुके थे वो कि डेफिनेटली क्रैश होने वाला है। जहाज आया 5000 फीट पे, लोकलाइजर नीडल, मतलब अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि कुछ किया जा सकता है। 28 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट से जहाज अभी। कैप्टन जैक ने रनवे देखने की पूरी कोशिश करी, फिर सामने सिस्टम पे एक चीज आती है, ग्लाइड स्लोप। यूं समझ लीजिए जहाज के सिस्टम में एक ट्रायंगल शेप बनाता है, ये ग्लाइड स्लोप का होता है। इसका मतलब है कि जहाज को ग्लाइड स्लोप फॉलो करना है, मतलब यहां से ढलान है, इस ढलान पे नीचे नीचे आता चला जाना, इसी को फॉलो करना है। ये इनविजिबल सी लाइन है जिसे जहाज फॉलो करता है। अब उन्हें ग्लाइड स्लोप दिख गई, कैप्टन ने इसे फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे रनवे की तरफ जहाज को जैसे

तैसे खींचते हुए लिवर्स को ले जा रहे थे, बिल्कुल एक सन की घोड़े की तरह, वो भी हवा में। जहाज अभी 800 से 900 फीट पर मिनट नीचे आ रहा था और यही चाहिए था ग्लाइड स्लोप के लिए। पर जो पिच थी जहाज की, जो नोज थी, वो 12 डिग्री ऊपर की थी और उन्हें पता था कि जहाज अगर ऐसे ही इस ढलान को, इनविजिबल ढलान को फॉलो करते हुए जमीन पर उतरा तो जहाज की पूंछ टकराएगी और नेस्ता नाबूद हो जाएगा। जहाज के जो स्पॉयलर्स होते हैं उन्हें डिसेबल किया और फैसला किया कि ग्राउंड पर आकर एकदम से ऑन करूंगा। ये चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर और कोई रास्ता नहीं। फ्लाइट 1080 2000 फीट पे थी, पानी के ठीक ऊपर, लाइक लिटरली अगर आप जहाज में तो आपको पानी दिख रहा है और बहुत करीब। उन्होंने लैंडिंग गियर नीचे किए लेकिन फिर उससे पता लगा जहाज जो है वो लिटरली ड्रिफ्ट मार रहा है। अब आप गाड़ी को ही सोच लीजिए, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, गाड़ी अगर ढलान पे से उतर रही है और एकदम से ड्रिफ्ट मारने लग जाए, आप ना लेफ्ट ले सकते ना राइट ले सकते, वो वाली सिचुएशन में जहाज था। उन्होंने जल्दी से जो गियर थे उन्हें वापस अंदर किया कि जहाज का ड्रैग कंट्रोल हो सके, लेकिन नहीं हो रहा था। वो जानते थे कि अब क्रैश करना है तो वापस गियर को नीचे किया जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर जहाज ड्रिफ्ट हो रहा है तो होने दो। जहाज की नोज को नीचे करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। अभी समझ लीजिए जहाज अभी बिल्कुल आड़ा आ रहा है नीचे की तरफ, सीधे आता है रनवे की तरफ, आड़ा आ रहा है और ऊपर से उसकी नोज जो है वो ऊपर की तरफ है, एकदम रफ फ्लाइंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई डेजर्ट में से गाड़ी चलती है, बिल्कुल वैसा। मगर जहाज अभी ग्लाइड स्लोप को कम से कम फॉलो कर रहा है। रनवे पर सारे इमरजेंसी वाले आ गए थे, एम्बुलेंसेस, पुलिस वाले, एवरीबॉडी वाज देयर। लैंडिंग का वेट कर रहे थे प्लेन के फ्लैप्स 18 डिग्रीज, स्पीड 170 नॉट्स पे। कैप्टन ने 165 डिग्री की जब करीब नॉट्स पे ले आए तो जहाज को देखते रहे, फॉलो करते रहे। लग रहा था कि अब कुछ हो जाएगा, शायद हो जाएगा। फाइनली 700 फीट पे आया फ्लाइट 1080, बादलों से पूरा निकलता हुआ। फिर 800 फीट 18 डिग्री फ्लैप पे कैप्टन समझ गए कि हार्ड लैंडिंग होने वाली है। लास्ट मिनट डिसीजन। फिर रात को 1:25 पे फ्लाइट 1080 रनवे 06 के ठीक ऊपर थी, 170 फीट और जहाज 300 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से रनवे के बिल्कुल ऊपर, चारों तरफ जगमगाती रनवे की लाइट्स, कुछ नहीं था पर लाइटें ही लाइटें। फिर जहाज का वो मोमेंट जिसका इंतजार था कैप्टन को, जहाज के व्हील्स गियर टकराए जमीन से और जैसे ही टकराए उन्होंने शार्प राइट मारा और जहाज को पूरी तरह से राइट पे करने की कोशिश करी, कंट्रोल करने लगे व्हील्स को बहुत बुरी तरह से और वे जो नोज थी उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे आगे की तरफ। बहुत तेजी से उतरा था जहाज रनवे पर और कैप्टन ने फुल ब्रेक्स, जो रिवर्स ब्रेक होते हैं इंजन 1 और 3 के, मैक्सिमम पे डाल दिए और इंजन 2 को आइडल पे रखा। फिर फर्स्ट ऑफिसर जहाज की स्पीड बोल रहे थे 130, 120, 110 एंड कैप्टन ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। जहाज कील तक नहीं टकराई, टायर तक नहीं फटे, जहाज लिटरली ड्रिफ्ट करा हुआ, जैसे फ्रिस्बी फेंकते हैं वैसे ही उतरा रनवे पर, लेकिन फिर भी एक सेफ लैंडिंग के साथ। स्टोरी यहां पे एंड हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाज को कैप्टन साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाकायदा टैक्सिंग करते हुए गेट तक ले गए, इमरजेंसी सर्विसेज को वापस लौटा दिया एनिक्स आए जहाज को चेक करने के लिए। मगर जो पैसेंजर्स जिन्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ और कैप्टन क्या कर रहे हैं, उन पैसेंजर्स ने लगातार कागज लिख के, चिट्ठियां लिख के और कैप्टन को सुनाया। एक कागज एक बंदे ने दिया, बोला मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो गया, तुम्हें जहाज उड़ाना नहीं आता, किसने तुम्हें कैप्टन बना दिया? कैप्टन साहब ने मुस्कुरा के कहा कि अगली बार ध्यान रखूंगा। And he did not tell, जब तक ये खबर पूरी तरह से बाहर नहीं आई। पैसेंजर्स को पता भी नहीं था कि जिस कैप्टन के साथ वो पूरे जहाज में थे उसने क्या किया है, कि वो कितने करीब थे। अगर वो पर सेकंड का हिसाब ना रखते तो

बेटिंग छोड़िए, समुद्र के गोते लगाने पड़ जाते इनको बाकायदा, उन्हें जो बनता भी था। लेकिन बहुत सारे सवाल ये उठे कि दिक्कत क्या थी। यूएस ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने जब पता किया तो पता ये लगा मैकेनिक्स के थ्रू कि जो मॉइस्चर होता है हवा में वो पीछे वाले जो स्पॉयलर्स होते हैं उनमें उसके क्लैंक में जाके पानी फंस चुका था और वो काफी से था जिसकी वजह से अंदर जंग लग गया बुरी तरह। अब मसला ये था कि उस टाइम 1977 में जहाज़ों में इस चीज़ की वार्निंग नहीं आती थी, कैप्टन को पता ही नहीं लगा कि अगर जंग लगा है फ्लैप्स काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, क्या काम करना बंद कर सकते हैं, मॉइस्चर है कि नहीं। और ये मैन्युफैक्चरर्स ने इस पे काम किया और डिफ्लेक्टर्स लगाए पानी को बाहर रखा जा सके। एयरक्राफ्ट का पूरा डिज़ाइन इस हादसे के बाद चेंज हुआ बहुत ज़्यादा। इस केस की वजह से हर एक चीज़ चाहे फ्लैप्स में मॉइस्चर जाए कुछ भी हो, एक चिड़िया तक का हिसाब किताब सामने स्क्रीन पर नज़र आता है जहाज के। दिस स्टोरी चेंज्ड एवरीथिंग फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड ऑफ एविएशन। यही थी कहानी आज की। दिस इज़ प्रॉब्ली द लॉन्गेस्ट स्टोरी आई हैव एवर टोल्ड, बट आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और आपको अच्छा लगा हो इस जहाज में मेरे साथ बैठना। 666-22-107 नंबर है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा कि आपने अपने आप को इस जहाज में महसूस किया या नहीं। स्टे ट्यून्ड।

0: सी।
1: इस गाने के पार मिलेंगे तलंजुम डाउनर्स एट डस्क। कहानी कैसी लगी बताइएगा, बिकॉज जहाज की कहानियां अक्सर काफी फैसिनेटिंग होती हैं एंड एविएशन इज वन ऑफ आवर फेवरेट सेगमेंट्स। तो इंतजार रहेगा आपके मैसेज का। तलंजुम डाउनर्स एट डस्क। क्या रैप किया भाई ने, भाई साहब।
2: गम बेहिसाब थे, अलग ही वफा के जाब्ते, अलग ही है अगर मंजिले तो क्यों ना अलग ही रखें हम रास्ते।

तेरी बात कोई तू टूटते तारों पे मांगे मुझे तुझे मयसर हो ऐसी रात कोई I've been working a lot लिखना नहीं छोड़ता लिखना ही तोड़ है दिखते हैं ये गाने लाखों में क्या ये सब पैसे का शो

Sıza. Talancım. Ey. Kontala, kontala, rap eliyadı contala. So ne yapın? Ey. Hancı. बड़ी बड़ी प्यारी एल्बम है यार, बड़ी प्यारी एल्बम है तलांजुम की वाली. इफ़ यू हैव हर्ड इट, पाकिस्तान के मेरे जितने भाई बहन हैं उनको सुननी चाहिए. आप ही का रैपर है भाई, बहुत बढ़िया लिखता है ये.

सवाल जी तो आपने दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। आज की एविएशन की स्टोरी सुनने के बाद मुबशिर मुबीन भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं मैं तो पाकिस्तान अब बोट से जाने वाला हूँ। कह रहे हैं जब लैंड हुआ जहाज तो उन्होंने क्लैपिंग तक की। भाई मैं भी जब कहानी तैयार कर रहा था मेरी भी क्लैपिंग निकल गई थी भाई, मैं कहा यही है कहानी सुनाने लायक है। और एक और मैसेज किया मेरे भाई ने, काशिफ भाई थैंक यू सो मच, उन्होंने स्टोरी बहुत अच्छी लगी। वो कह रहे हैं एंडिंग मैं समझ नहीं पाया, एंडिंग ये थी कि भाई जहाज के साथ जो परेशानी हुई थी उसके बारे में पता लगा और सारे के सारे मॉड्यूल्स जहाज के चेंज किए गए। आने वाले फ्यूचर में जो आज हम जिस जहाज में बैठते हैं उसके अंदर भी जो चेंजेस हैं, जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वो सारे इस हादसे की वजह से हैं, जो कि हादसा हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। फलक भाई वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं जबरदस्त स्टोरी, थैंक यू सो मच। वो इंटरव्यू कहाँ देखने को मिल गया इमरान हाशमी वाला, आई थिंक फेसबुक पे होगा मेरे, मैं देख के निकाल के इंशाल्लाह कल लेके आता हूँ। ये मैसेज कबीर भाई, आज की स्टोरी स्टार्टिंग पॉइंट मिस हो गया, बट वट एवर आई हर्ड इट रियली गेव मी गूज बम्स, नाउ आई वॉन्ट टू लिसन द फुल स्टोरी। शाहनवाज भाई एब्सोल्युटली मेरा भाई, एब्सोल्युटली मिल जाएगी। और ऋषाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और कृष्ण राव ने मैसेज किया, लिखते हैं वाओ कबीर भाई टू गुड स्टोरी, लव यू, थैंक यू सो मच भाई, लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल। और फिर एक भाई लिखते हैं वेरी इमर्सिव स्टोरी टेलिंग, थैंक यू सो मच भाई, इस यही एक कॉम्प्लीमेंट है जो सुनने को तरस जाता है स्टोरी टेलर। सात भाई को बहुत सारा प्यार, सात भाई थैंक यू। और एक भाई कह रहे हैं दिल धक धक कर रहा था, थैंक यू भाई। अदर भाई थैंक यू। देन खलील भाई ने मैसेज किया, कबीर भाई जबरदस्त स्टोरी थी, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ मैसेजेस हैं, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अभी एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाज़ में ही बैठा हूँ और आपकी वजह से मुझे लगता है कि अपना एनुअल प्लान मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है जहाज़ में बैठने की। अरे नहीं, ये तो 1977 की कहानी है, 1977 वो दौर थोड़ा अलग था मेरे भाई, उसमें ठीक है उसमें ये सब हो रहा था, लेकिन आज एकदम बढ़िया चल रहे हैं जहाज। मुझे कबीर भाई स्टोरी वॉज एक्सलेंट इन फुल ऑफ सस्पेंस, थैंक यू सो मच भाई, यही इसी बात के तो पैसे हैं भाई, थैंक यू सो मच। ये ही सुनना चाहता हूँ मैं कि सस्पेंस अब तक पहुँचा नहीं पहुँचा। और तौकीर अहमद भट्ट साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जानी, ग्रेट स्टोरी, प्लान प्लेन के अलावा क्या है, किसके किसके लिए मुल्क जा सकते हैं, क्या प्लान के अलावा किसके लिए मुल्क जा सकते हैं, मैं समझा नहीं, क्या कह गए आप, मैं इंटरप्रेटेट नहीं कर पाए, इंटरप्रेट नहीं कर पाए सॉरी, क्या हो गया मेरी अंग्रेजी को। अस्सलाम वालेकुम, एक और भाई मैसेज करते हैं, कह रहे हैं कबीर भाई अच्छी कहानी सुनकर मुझे सच में लगा कि मैं खुद ही कैप्टन हूँ और खुद ही लैंड करके मुझे खुद ही खुशी हुई। अच्छी बात है भाई, ये वाली जो खुद ही को मिलती हुई खुशी है इसको बरकरार रखिए। एविएशन की कहानी होती है ऐसी है, हर किसी के लिए होती है भाई वो, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जहाज से उड़ के आया है, कुछ लोग आए हैं बोट से बहुत पुराने ज़माने में, लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ मैं। कबीर भाई कैसे, मैं

या वाहिद भाई आप सुनाइए आपके क्या हाल है. मुझे कहानी नहीं सुनी बट क्या एक सेकंड क्या हुआ बट कमेंट सुन के लगा जबरदस्त होगी. विमलेश भाई को भेजी जाएगी. विमलेश भाई कहानी आप सुन के बताइएगा जरूर. विमलेश भाई पीछे पड़ जाऊंगा अब मैं. कहीं टाइम में कस्टमर हैं क्या कहानी टाइम में कस्टमर क्यों आते हैं. उनको बोलिए आप भी सुनिए. यूसुफ भाई उनको भी सुनाइए पकड़ के. सुनो गाड़ी से उतरना नहीं जब तक पूरा नहीं हो जाता. क्या है इसके अलावा कैसे मुल्क जा सकते हैं. क्या ग्रेट स्टोरी पर जहाज के अलावा कैसे मुल्क जा सकते हैं. काश कोई और तरीका होता. सबसे पहले मैं वो तरीका अपनाता. मैं भाई मेरा बहुत दिल है पानी के जहाज से जाने का. भाई मुमकिन नहीं है ना. कहती मैं तो चढ़ जाऊँ पानी के जहाज पे बढ़िया एकदम. और एक वैसे अस्सलाम वालेकुम भाई. आई कुडंट टेल अ डिफ नहीं क्या आई कुडंट टेल इफ यू आर एन आरजे और अ स्टोरी टेलर बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस अनबिलीवेबल स्टोरी टेलिंग स्किल्स यू शुड डू इट एल्सवेयर एज वेल. व्हेन आर यू प्लानिंग टू व्हेन आर यू प्लानिंग टू डू इट इन पर्सन. भाई इन पर्सन क्या बुक हो जाएगा किसी दिन ऑडिटोरियम. उस दिन देखिए सुनाएंगे कहानी बढ़िया सबको बुला के. एक एक कप चाय रखेंगे चार बिस्किट रखेंगे कहानी सुनाएंगे फ्री में. मेरा तो खुद मन है भाई ऐसा हो जाए. मैं तो खुद इन पर्सन सुनाना चाहता हूँ. ऐसी दिक्कत नहीं है भाई. वैसे जैसे पानी वाले जहाज में भी डूबने का मसला है. पानी वाले जहाज की भी कहानी है मेरे पास. है मेरे पास एक बहुत बढ़िया कहानी वो मैं तैयार करके सुनाऊंगा. एक में से एक कबीर भाई कहानी बहुत अच्छी थी. भाई दिल एकदम से धक धक हो रहा था. मेरा भी वर्दा सरफराज भाई जब मैं ये कहानी तैयार कर रहा था मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि जहाज को कैसे लैंड कराऊं मैं. बाकी मैसेज करता रहिए 666-22107 पर इनकेस यू लव द स्टोरी 666-22107. एंड फिर होगी मुलाकात. जानने अभी तो बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको. भरा बैठा हूँ भाई. आपके भाई ने लुक भी चेंज कर लिया. वेट हे बॉय लग गई तुम्हें समझना.

हाँ जी कि यहाँ सब बढ़िया। एक मैसेज आया मेरे पास, एक भाई कह रहे हैं आवारापन तो देख क्या है भाई, कितने स्टार देंगे उसे, ये सवाल मुझसे पूछा सरफराज आलम भाई ने। भाई देखो मैं बहुत बायस्ड हूँ इमरान हाशमी के लिए, बहुत ज़्यादा बायस्ड हूँ। मैं वैसा वाला फ़ैन हूँ जो हर किसी चीज़ को अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि फ़ैन हूँ भाई। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगी आवारापन टू, पब्लिक रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। एक चीज़ है बस कि मूवी जो है उन्हीं के लिए जो एक तो फैंस हैं और जिन्होंने आवारापन वन देखी है, उनको भाई बहुत बढ़िया लगेगी। बाकी भाई दुनिया तो है, दुनिया तो बोलती रहेगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आए बेटा म्यूजिक।

एयरपोर्ट था। अगर जहाज गो अराउंड कर पाता यानी कि मुड़ पाता तो वो सैनडिएगो में उतर जाते, वापस मुड़ जाते, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो उनके लिए जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ऑप्शन भी था वो लॉस एंजलिस ही था, तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर देम कि वो कहीं और उतर सकते। सो देयर यू गो, दैट इज योर आंसर। एक मैसेज, भाई टेस्ट में स्कोर देखा आपने? नहीं भाई, मैंने अभी नहीं देखा, बताओ क्या स्कोर चल रहा है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई, क्या हाल है? मैनी मैनी मैनी मैनी। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, क्या स्टोरी, थैंक यू सो मच। आई विल शेयर, नो प्रॉब्लम, मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ जो है वो याद दिलानी पड़ती है बार बार लोगों को, तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ। खबर में भी वापस गवर्नमेंट की तरफ से याद दिलाया गया है। सो अगर कोई एक्सीडेंट होता है खुदा ना खास्ता और उसमें आप जो है वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल लीगल नहीं है, ठीक है? इट इज़ प्रोहिबिटेड, म्यूजिक बंद करके बता रहा हूँ, प्रोहिबिटेड अंडर द कतरी लॉ। इस पे बहुत बड़ा जुर्माना और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके ऊपर। तो कितनी भी क्यूरियोसिटी हो सोशल मीडिया चलाने के चक्कर में आप कुछ करें तो ये जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, स्पेशली जो नए लोग आए हैं। एनी इन्फॉर्मेशन बार बार बार बार दी जा रही है ताकि आपको ये दिमाग में एकदम फिट हो जाए। इसमें जेल तक हो सकती है और 10,000 कतरी रियाल का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों के दोनों हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए भाई साहब और लोगों को बताइए, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जो एक खबर है कतर की तरफ से, वो कतर ने लॉन्च की है हाइयो एप्लीकेशन, और ये एक नई स्पोर्ट्स लॉयल्टी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है जो कि रिवॉर्ड करती है फैंस को अटेंड करने के लिए एलिजिबल स्पोर्टिंग इवेंट्स, और उसके साथ साथ पॉइंट्स भी देती है। इस ऐप के थ्रू फैंस जो हैं वो पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और टिकट्स खरीद सकते हैं अनटिल द एंड ऑफ द मैच। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत क्रिएटिव चीज़ है, ये अच्छी भी गई, ये बहुत क्रिएटिव चीज़ है, ये बाकी कंट्री सोचती भी नहीं है, ये जो चीज़ की गई है मैं इसके बिल्कुल साथ हूँ भाई। ऐसी कोई चीज़ तलाश है जब हर जगह रिवॉर्ड्स मिल ही रहे हैं, मूवी बुक करो तो मिल रहे हैं, इधर बुक करो तो वर्ड्स मिले, तो इसके लिए भी मिलनी चाहिए। एक और जो खबर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से, जिन्होंने लॉन्च किया है सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन ऑन लिवर कैंसर। उन्होंने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंस ऑफ रिकग्नाइजिंग रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या हो सकते हैं, वार्निंग साइंस क्या होते हैं, और टाइमली मेडिकेशन इवेल्यूएशन के लिए जाना चाहिए, कब कब जाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में ये कैंपेन जो है ये शुरू किया गया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वैसे भी फुल बॉडी चेकअप तो करा लेना चाहिए भाई, ये अकल भी मेरे को बहुत टाइम बाद आई है, लेकिन आ गई तो मैंने ये तो करना चाहिए। बाकी जगह जगह इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुए, आप सबको फिर से मुबारकबाद, बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान एंड इंडिया। अच्छा, कुछ मैसेज हैं आसिफ भाई के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ भाई बिल्कुल, हुसैन भाई लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी सेंड कर देना प्लीज़, मैं सुन नहीं सुन पाया। अच्छा, कबीरा स्पीकिंग, 1 2 3 हेलो। आगे लिखते हैं भाई, मैंने एआई से पूछा कि मुझे बिना फ्लाइट और बोट के घर जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊँ? जवाब दिया भाई कि तू पहले हॉस्पिटल जा, अपना ट्रीटमेंट करो। एआई कह रहा है, अरे हुसैन भाई इधर आओ।

क्या कह रहे हो भाई, क्या मुझे डिलीट करो आप, AI खुद ही कह देगा इनसे, हुसैन भाई मेरे को डिलीट कर दो यार, मेरे को आपके फ़ोन में रहना ही नहीं भाई, आप मुझे तो पहली बार नक्की करो, मैं मेरे को जान दो, आप मेरी सब्सक्रिप्शन मत दो भाई, मेरे को चलना ही नहीं है। और लिखते हैं वो जिसने पायलट को लेटर लिखा था उसकी मीटिंग लेट हुई, उसको मेरा नंबर दे दो मैं उसकी मीटिंग निकाल दूंगा। एक मैसेज है, ये तो शाम सोशल मीडिया के लिए हिडन जैम है, ये तो क्या हिडन जैम है। और तबस्सुम में लिखती हैं, लास्ट पार्ट नहीं सुन पाई कबीर भाई ड्यू टू नेटवर्क इशू, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैट्स ऑफ टू योर हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनिंग सो मच डिटेल्स बेन, आई रियली ट्राइड माय लेवल बेस्ट। जहाज तो मैं पूरा सीख गया हूँ, जैसा लगता है मैं चालू तो कर दूंगा, कैप्टन साहब लोग चालू कर दिया है जहाज मैंने, अब आप चला लो। और लिखती हैं, डिड दे सर्वाइव नॉट, दे डिड, दे डिड सर्वाइव। और आसिफ भाई आपके मैसेज पूरे पढ़ने वाले होते नहीं है भाई, समझ रहे हो ना आप, आपका कैसा है ना, आप बिरयानी परोसते हो लेकिन उसमें इतनी इलायची डाल देता हूँ कि एक इलायची मुँह में आ जाए ना फिर मैं प्लेट साइड में कर देता हूँ, तो आपकी वो वाली बिरयानी की प्लेट है, इलायची भर देता हूँ उसमें बीच में, वो अच्छा खासा चल रहा होता है बीच में मामला। और एक खबर मिली है, बांग्लादेश ने मैच जीत लिया है, कांग्रेचुलेशन तमाम बांग्लादेशियों को मेरे भाइयों, मैं तो पहले ही आई वॉज रूटिंग फॉर यू, जब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का जब टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी तो मैंने पहले ही कह दिया था भाई आई एम विद बांग्लादेश, कम ऑन गाइस व्हाट्स अप, बढ़िया। और ये कह रहे हैं हमारा अपन टू रिव्यू, देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ एहसन कमाल भाई, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, दो कंडीशन है अवारापन टू को देखने की, फर्स्ट कंडीशन इज़ कि आप इमरान हाशमी के फ़ैन होने चाहिए, इफ़ यू आर अ फैन, फैन फैन मतलब बिल्कुल फ़ैन, आपको पता होना चाहिए अफसाना बना के भूलना जाना कौन सी पिक्चर का है, इतना बड़ा फ़ैन अगर आप हैं तो आपके लिए बिल्कुल है मूवी, ठीक है। दूसरी चीज़ अवारापन आपके लिए जो पहली आई थी वो अगर नॉस्टैल्जिक है तो आपके लिए है ये मूवी। एक खराबी जो है, खराबी भी क्या है, होना ही था, वो लग ही रहा था, वो है दिशा पाटनी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी पिक्चर में भाई कोई आवश्यकता नहीं थी उनकी, मगर वो है मूवी के अंदर, तो अगर आप इतना सा बर्दाश्त कर सकते हैं तो बिल्कुल जाइए, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़। एंड विलन का काम भाई जो किया है लड़के ने, रे रे रे रे रे, बहुत बढ़िया भाई, मेरे को मज़ा आ गया। एक में से कैप्टन कबीर तुसी ग्रेट हो पाजी, बहुत सारा प्यार फलक भाई, बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू सो मच। और एक में से आसिफ भाई का कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का कैसे रहा है, कैसे रहा है बताओ। तब उसमें बहन लिखती हैं कि अफसाना बना के भूलना चाहता, अपर बहन मैं एक आइडिया बताऊँ, मतलब एक सवाल पूछूँ, बता इमरान हाशमी का कोई फ़ैन है वो इस बात से पता लग जाएगा कि अफसाना बना के भूलना जाना कौन सी पिक्चर का गाना है, बता दो। चलो मैंने बहुत बार पूछा है, अगर अभी भी नहीं बता पाए तो मत देखना हमारा बट्टू क्योंकि ये सवाल जो है बहुत बहुत ज़रूरी है भाई, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, लोग हल्के में लेते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी लेजिट क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए अगर आप खुद को इमरान हाशमी का फ़ैन कह रहे हैं तो। एक और मैसेज मेरे पास आया है, क्या कह रहे हैं, नहीं भाई गलत जवाब कह रहे हैं, अक्सर नहीं है काका, तभी तो मैंने पूछा था ये बहन, आपका एकदम सही जवाब है पर पब्लिक को बताऊंगा नहीं, बिना इंटरनेट की मदद से अगर आप बता पाए कि ये जो है कौन सी मूवी का है तो एक काम करते हैं, ये वाला नहीं चला, चलो रुको रिमिक्स रुको, मैं ओरिजिनल वाला चलाता हूँ ताकि आपको हो सकता है थोड़ा बहुत याद आ जाए, ये ओरिजिनल ही है, हाँ ये लो ओरिजिनल लो, फिर अखा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ, बिल्कुल भाई क्या। तो हैदर भाई थैंक यू सो मच, हैदर भाई के बाद आपके इमरान हाशमी के फैंस बहुत हैं, कैसे भी रही फिल्म देखेंगे भाई, देखेंगे उसको भाई, हम तो थिएटर भर देंगे भाई, तो बिना इंटरनेट के बता दो भाई कौन सी पिक्चर का गाना ये, फिर आप एलिजिबल हैं अवारापन टू के टिकट्स के। आसिफ भाई चीटिंग करके जो बताया ना आपने, इंटरनेट खर्च करके बताया आपने, पता लग रहा है भाई, हिशाम भाई बहुत बढ़िया 637। आसिफ भाई में मुझे भरोसा कौन है भाई, एक रुपए का भरोसा नहीं था आदमी भाई।

हाँ जी, बहुत सारे गलत जवाब आए हैं कि ये मूवी कौन सा, सॉरी गाना कौन सी मूवी का है, क्योंकि मैंने कहा था इंटरनेट यूज नहीं करने का वहाँ। एक बहुत ही ईमानदार शख्स है, उन्होंने बाकायदा ईमानदारी से गलत जवाब दिए। मैं अभी सही जवाब बताता हूँ। सरफराज आलम भाई ने पहले बोला फुटपाथ मूवी का, मैंने कहा ना, फिर लिखते कि भाई दिया मिर्जा के साथ मूवी थी वो, पता कौन सी थी, तुमसा नहीं देखा, जो आप दिया मिर्जा वाली पिक्चर की बात कर रहे हैं, ये वाली है दिल दिया है, दिल दिया है मूवी का नाम है। इसमें इमरान हाशमी जो होते हैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, मतलब ओन करते हैं उसे, और जो मूवी की एक्ट्रेस थी वो आज की तारीख में हरभजन सिंह जो क्रिकेटर हैं उनकी वाइफ हैं, गीता बसरा। डिटेल देख रहे हैं भाई, ऐसे छोटे मोटे फैन नहीं है भाई। कौन कौन से दिन है जो बड़े जरूरी है आज, पता है इत्तफाकन मैंने एविएशन की कहानी भी सुनाई, और आज है एयरबोर्न डे, मतलब जहाज जब आसमान में चला जाता है तो एयरबोर्न, तो आज एयरबोर्न डे भी है। आज एक और खास दिन है, आज है टेल अ जोक डे। प्लीज मत सुनाना, आई नो कि अगर फॉरन कहा जाए कि एक जोक सुनाओ जोक सुनाओ जोक सुनाओ तो बहुत ख़तरनाक जोक सुनाते लोग भाई, बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता। और इसके बाद आज है सर्विलेंस डे, ये सर्विलेंस डे उन लोगों के लिए है जो शादी के बाद घर से रात में कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं जा पा रहे हैं, चाय पीने नहीं निकल पा रहे हैं, आपको सर्विलेंस डे की अलग से मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी ज़्यादा मुस्कुराना रोना नहीं, कैमरे के उसमें आप नज़र में, ठीक है, थोड़ा सा कम हंसें आप प्लीज़। अच्छा, इनके बाद आज एक और दिन है, ये कौन सा दिन है, रोलर कोस्टर डे। जी रोलर कोस्टर का तो पता कौन ही भाई, रोलर कोस्टर में कभी बैठे हैं आप, आज रोलर कोस्टर का दिन भी है, बाकी तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट दिन नहीं है। सर्विलेंस डे है और देख लीजिए, कह रहे हैं आज क्या आज की जितनी न्यूज़ कहाँ से लाते हो, इतनी न्यूज़ कहाँ से, कौन सी वाली न्यूज़, केड़ी न्यूज़ पाजी, ये तो इंटरनेट पे इजीली मिल जाती है। सलाम स्टोरी अच्छी थी, प्लीज़ शेयर, मैं बिल्कुल शेयर करूँगा भाई, बिल्कुल शेयर करूँगा। तो ये सर्विलेंस डे मुबारक हो बहुत सारे लोगों को। एक और भाई ने मैसेज किया है, कैप्टन कबीर आप कल कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। भाई मुझे अभी आधे घंटे का नहीं पता, मुझे कल मुझे कोई आइडिया नहीं भाई, कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह। अभी देखो मैंने सबसे लॉन्गेस्ट स्टोरी सुनाई है, थोड़ा कम करना पड़ेगा। एक मैसेज है, भाई मैंने तो आपका करंट टॉपिक हाईजेक कर लिया, कौन सा वाला भजन, कौन सा टॉपिक हाईजेक किया आपने मुझे, प्लीज़ बताएं। एहसन कमाल साहब माशाल्लाह, दाढ़ी आपने बहुत मेंटेन करके रखी है भाई, फ़ैन हो गया भाई मैं। तो 666-22107 पर बताइएगा कहीं पर ट्रैफिक में है आप, वैसे तो अभी ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, सब गए हुए हैं गर्मी में हम और आप ही हैं, पर कहीं पर ट्रैफिक मिल जाए भूले भटके तो बता दीजिएगा। बाकी आपकी गाड़ी में यूँ समझ लीजिए कि मैं भी आपके साथ ही हूँ, वॉल्यूम बढ़ा के ही रखिए, कम होने की वजह मैं दूंगा नहीं।

समझे तो आपने बहुत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई कहने फेवरेट सॉन्ग भाई कौन सा वाला, फ्लिपराचे फुसला हैदर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार। भाई अशफाक भाई ने मैसेज किया है, भाई आज स्टोरी नहीं सुन सका, उसकी वजह ही मैकेनिक साहब को गाड़ी दी थी सर्विस के लिए और ये लॉक नहीं लगा, तो उन्होंने फोटो भेजा। भाई मेरी दिल से दुआ है गर्मी में किसी की भी गाड़ी बीच सड़क पर ख़राब ना हो भाई, आमीन। बस मेरी यही दुआ है, कसम से बहुत तकलीफ होती है, किसी भी गाड़ी कोई भी गाड़ी देखता हूँ मैं सड़क पे अगर गलती से ख़राब हो जाती है, वो भी भरी दोपहर में, और भाई गाड़ी में ख़राब होती है चीखें हमारी निकल जाती हैं, बहुत तकलीफ होती है। प्लीज़ अपनी गाड़ियों को भाई मेंटेन करके रखो, इस गर्मी में नहीं हो पाता भाई, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। बाकी 666-22-107 ये नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। कुछ लोगों ने मैसेज किया भी है, काशी भाई ने, काशी भाई थैंक यू सो मच, काशी भाई मैसेज भी रीड करूंगा मैं। उससे पहले सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में बता दूं, FM 107 Qatar इस नाम से हर जगह मौजूद है, और अगर आप मुझे भी ढूंढना चाहें तो प्लीज़ ढूंढिएगा दोहा वाला कबीर, KABIR इस नाम से अगर आप ढूंढेंगे, साथ में लिखना है सब कुछ, तो मैं आपको टिकटॉक इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। आ जाइए भाई, टिकटॉक फैमिली ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह, तो वहाँ पे भी आइएगा इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ करेंगे उस पर। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, मिलते हैं वापस। अब तो हफ्ता शुरू हो चुका है, कल क्या आएगी कहानी पता को नहीं भाई, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। एक मैसेज और है, इस सॉन्ग से इतनी नफरत हुई कि मैंने अपनी कंपनी के लिए प्रमोशन वीडियो बनाई थी, 23,000 व्यूज़ थे, मुझे बोला ये क्या वीडियो बनाई, ये क्या वीडियो बनाई आपने, ये मतलब क्यों ऐसा क्यों कहा, 23,000 व्यूज़ तो अच्छे खासे हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। एनीवे कल मिलते हैं, कहानी अभी आपको कुछ देर मिल जाएगी, चाय पीते पीते ही 7 बजे सुनेंगे आप न्यूज़ बुलेटिन, एंड फॉर नाउ दिस इज़ दोहा वाला कभी साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: असलामुअलैकुम, आपका गैजेट गुरु हाजिर है। नहीं, गैजेट गुरु थोड़ा कूल नहीं लग रहा। आपका टैकी, नहीं ये भी कूल नहीं लग रहा। छोड़ो, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे। असलामुअलैकुम, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है सर जी। इस बार टेक्नोलॉजी के बारे में जरा बात कर लेंगे। आज जो है मैं बहुत जबरदस्त चीजें लेके आया हूँ आपके लिए। मैं सही बता रहा हूँ, अभी आपके सामने जब पेश करूंगा बोलेंगे भाई ये तो बड़ी काम की चीज है। तो आज बहुत काम की चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। AI टूल्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप यूज करने लगेंगे तो आप बोलेंगे रोए भाई, ये तो गजब उठा दिया भाई, तो धुआं उठा देंगे भाई। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर आना है आपने। सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह हैं, तो आपको भी हमारे साथ जुड़े होना चाहिए। वी आर फैमिली। नो आइए आप और शुरू करेंगे सबसे पहले ऐप से, एंड उसके बाद हम जाएंगे गैजेट्स पे और फिर जरा खबरों की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, चला शुरू कर दें। एक सेकंड। सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 कतर, इधर भी आइएगा और मैं मुझे भी ढूंढ लीजिएगा दो हवाला कबीर के नाम से, KABIR। चलो शुरू करते हैं। ट्रेंडिंग ऐप्स, सबसे पहले बात करेंगे एप्स दिस वीक में ऐप नंबर वन की। ये रैंकिंग नहीं है, रैंडमली बता रहा हूं, तो उसी हिसाब से सुनिएगा। जो सबसे पहले जो वेबसाइट है AI की वो है nosignups.net, nosignups, nosignups.net, NET। सो nosignups.net एक बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। अब तो ये मैंने पब्लिक कर दी, तो इट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर। इस वेबसाइट पे जाइएगा, आपको बहुत सारी जो पेड AI टूल्स नहीं होते जो आपकी जेब से पैसे ले रहे होते हैं, उनके सारे के सारे ऑल्टरनेट आपको मिलेंगे। जैसे कैप कट की जगह आपको ओपन कट मिल जाएगा, बहुत सारे और भी AIs हैं जिनके ऑल्टरनेटिव्स यहां पर आपको मिलेंगे। ऑल ऑफ देम आर फ्री, फ्यू ऑफ देम एक्चुअली रिक्वायर्ड यू टू पे समथिंग, मगर वो बहुत कमी है। या ये बहुत कमाल की साइट है, कोई साइन अप नहीं, सीधा का सीधा आप जो AI टूल्स दे रखे हैं, जो ऑल्टरनेट दे रखे हैं, आप यूज कर सकते हैं। दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वेबसाइट दैट आई गॉन थ्रू, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुतों के काम आने वाली है। आपको वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट टू स्पीच, डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन, वर्कफ्लो, किसी भी काम के लिए चाहिए यहाँ पर, हर चीज के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए भी यहाँ पर सारे के सारे ऑल्टरनेट्स मिलेंगे। डेफिनेटली एक बार देखने के लिए तो वेबसाइट है, हो सकता है आपका काम का आपको कुछ मिल जाए। nosignups.net। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो वेबसाइट है, दिस आल्सो एन AI वेबसाइट क्यों बोल रहा हूं मैं, AI टूल है, इसका नाम है रफायल AI। मेरे गले पे मत हंसिएगा, वो हो जाता है कभी। ओके, RAPHAEL, रफायल AI, दोबारा एक बार बोल देता हूं मैं, RAPHAEL.AI, या स्पेस एक AI लिखेंगे आप तो ये पेज अपने आप आ जाएगा। इसमें आप AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, एंड एवरीथिंग इज मोस्टली फ्री। आप बिल्कुल इसके एडवांस वर्जन में जाएंगे जो बात दूसरी है, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको कंपटीशन नजर आएगा इसके और बहुत सारे और भी AI के बीच में। दिस इज डेफिनेटली ऑन द लिस्ट, क्योंकि बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी के साथ काफी अच्छा देता है AI। वो वाला एक तो देखो AI की वाली इमेजेस होती है जो देखते पता लगता है ये तो AI है, लेकिन इसकी बनाई हुई इमेजेस आर जस्ट अमेजिंग मैन। आई वॉज ब्लोन अवे कि ये मेरी नजर में कैसे नहीं आया और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। सो रफायल AI, this is definitely on the list right now. मैं एक बार फिर से इसका इसे स्पेल आउट कर देता हूँ, RAPHAEL, रफायल AI। ये इतना सर्च कीजिएगा, एक पेज खुलेगा, उसमें आपको सब का सब दिख जाएगा। ठीक है, हैप्पी इमेज क्रिएशन। मुझे बताइएगा कोई भी हेल्प लगे मेरी, तो आई वुड लव टू हेल्प। कोई आपने कुछ नया चीज इसमें ढूंढ ली हो तो प्लीज शेयर इट दैट विद मी, मेरे भी काम आ सकते हैं। ओके ओके, मूविंग ऑन। देख, एक परेशानी होती है लोगों की, फोटोज में किसी बंदे को या बंदी को हटाना होता है तो पहले जमाने में लोग फोटो फाड़ देते थे और उसके बाद जो है एडिटिंग टूल्स आए और आप सीधा सीधा फोटो अपलोड करें और जिस बंदे को, जिस ऑब्जेक्ट को या बंदी को आपको हटाना है आप फोटोज में से क्लियरली हटा सकते हैं। सो ये AI का नाम है cleanup.pictures, cleanup, CLEANUP, cleanup.pictures, PICTURES। इस पे जाइएगा और मैं आपको ट्रिक बताता हूं, 720p कर दीजिएगा, चूज कीजिएगा रेजोल्यूशन, और उसके बाद आप बढ़िया करके रिमूव करिए जो आपको रिमूव करना है पिक्चर पे से। अब इमेज अपलोड करना है, उसमें आपको जो नहीं चाहिए उसे मार्क करो, हट जाएगा अपने और बहुत क्लीन हटेगा। मैं सही बता रहा हूं, ये आपके बहुत काम आने वाली। ट्राई दिस वन, क्लीन अप डॉट पिक्चर्स एंड मैं आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। ठीक है, तो ये तो थी कुछ AI टूल्स वेबसाइट जो मैंने आपको बताई। अब जरा आगे बढ़ते हैं गैजेट्स दिस वीक की तरफ।
1: cool gadgets.
0: तो गैजेट नंबर वन, ये मुझे चाहिए भाई, मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं अपने आपको गिफ्ट कर दूंगा, कोई नहीं करेगा। तो इसका नाम है मैक्लॉक, मैं स्पेल आउट कर देता हूं, आप जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, MACLOCK, मैक्लॉक। ये एक विंटेज डेस्क पे रखने वाली एक क्लॉक है। अब बोले घड़िया तो यार क्या बड़ी बात है घड़ी में, ये एक छोटा सा पुराना कंप्यूटर याद है आपको, व्हाइट वाला कंप्यूटर आता था पहले, है ना, बल्कि सा होता था उसका मॉनिटर, बड़ा भारी सा फ्लॉपी डिस्क याद है किसी को, ये मिलेनियल समझ पाएंगे भाई, फ्लॉपी डिस्क होती थी एक, जेन ज़ी वालों को बता रहा हूँ, वो इसमें इंसर्ट करेंगे टाइम हो जाएगा। और बहुत क्यूट है यार ये, बहुत इसके साथ स्टिकर्स भी आते हैं, इतनी प्यारी चीज है ना ये। अब अगर आप गिफ्ट करेंगे ना किसी को, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी का बर्थडे आने वाला है और बर्थडे किसी आपके मेल दोस्त का आ रहा है, किसी लड़के का आ रहा है, आदमी का आ रहा है, उसको गिफ्ट कर दो, डेफिनेटली खुश हो जाएगा। बहुत प्यारी चीज है यार, बहुत प्यारी चीज है मैक्लॉक, ये नाम है इसका MACLOCK। देखिए आप इसकी फोटो एक बारी फिर मुझे बताइएगा, डेफिनेटली बोलेंगे यार, चीज तो प्यारी है, बड़ी क्यूट सी वॉच, वॉच कह रहा हूँ वो है, घड़ी है, डेस्कटॉप पे आप अपने रख सकते हैं अपने काम करते करते, एंड डेफिनेटली गिफ्ट वर्दी चीज है भाई, पूरी की पूरी गिफ्ट वर्दी चीज है, एंड बजट में भी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बहुत सिंपल लेकिन मुझे बहुत काम का लगा। देखिए जब क्या है, बैटरी खत्म हो जाती है ना भाई साहब रिमोट की, तो थप्पड़ मार के आप कब तक रिमोट चला लेंगे, एक पॉइंट तो आएगा जब आपका चांटा जो आप रिमोट पे टीवी के मारे जा रहे हैं वो काम नहीं आएगा, और तब आपको बैटरी वन ईयर सेल जो है वो बदलने पड़ेंगे, फिर आप कहेंगे अरे यार, इरिटेशन होता है राइट। या तो आपने घर के अंदर वो चार्जर खरीद के रखा होगा जिसमें आप जो रिचार्जेबल बैटरी होती है आप लगा देते हैं, वेट करते हैं अगली सुबह निकालूंगा। लेकिन एक और बैटरी है और ये सिस्टम मुझे बहुत बढ़िया लगा, इनका नाम है पोर्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ए लिथियस। मैं पहला नाम बता देता हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सुनने में, PORTRONICS, पोर्ट्रॉनिक्स लिथियस। तो ये एक सेल ऑफकोर्स बैटरी है लेकिन रिचार्जेबल बैटरी है, और ये दो के पैक में आती है, मतलब दो सेल आपको एक साथ मिलेंगे, लिथियम आयरन सेल कॉम्पोजिशन है इसमें भी, और 440 mAh की पावर है, मतलब जो आपके डिसीजन टीवी का रिमोट ये सब इनके काम आएगा, एंड इसको USB से चार्ज कर सकते हैं। खत्म भाई कहानी खत्म, US का जो है सेक्शन दिया हुआ है, तो यू कैन जस्ट चार्ज द सेल इजीली कहीं पे भी।

0: लगा के जल्दी चार्ज हो जाते हैं, कोई सेपरेट चार्जर फार्जर कुछ नहीं चाहिए और डिस्चार्ज भी जल्दी नहीं होते, सालों साल चलेंगे भाई। ये मुझे इतनी मस्त चीज लगी ना, ये किसी को गिफ्ट करोगे तो हो सकता है कि वो कह रहे यार मेरे को सेल क्यों दे रहे हो भाई, लेकिन आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो। ये वाला जो है ये खुद को गिफ्ट करने वाला प्रोडक्ट है एंड इट इज डेफिनेटली हाईली हाईली रिकमेंडेड अपने लिए। तो भाई ये आप ले सकते हैं, एक बारी में आपकी सारी जो परेशानी है ना, ये टीवी के रिमोट बन जाना, एसी का रिमोट का सेल गया, फलाने का सेल गया, तो वो परेशानी ठीक हो जाएगी। आई नो वो डिवाइस आप कह रहे होंगे हम तो डिवाइस में लगा देते हैं, मगर ये और भी ज्यादा बढ़िया है, इट ऑल्सो लुक्स कूल। कुछ चीजें कूल लगने के लिए भी ले लेनी चाहिए, ठीक है, और बहुत सस्ती भी है। आगे बढ़ते, ये प्रोडक्ट जो बताने जा रहा हूं मैं तीसरे नंबर पे, ये मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट है ऑन द लिस्ट। सॉरी, इस बार मैं थोड़ा फेवरेबल हो चुका हूं, ये मेरा फेवरेट है इस हफ्ते। इसका नाम है मेसन वैक्यूम सीलर मशीन, मेसन एम ए वाई, जैसे मई के महीने का लिखते हैं ना स्पेलिंग, एम ए वाई सन एस ओ एन वैक्यूम सीलर मशीन, और पैकिंग 3-in-1 कॉर्डलेस पोर्टेबल पैकेजिंग मशीन। ये पैकेजिंग भी करती है, ये वार्म भी करती है, ये हवा भरने का सिस्टम भी है इसमें, गुब्बारों में किसी चीज में। ये 3-in-1 डिवाइस जो है ना, ये मेसन वैक्यूम सीलर मशीन, ये मुझे इतनी पसंद आई है, मैंने डिसाइड कर लिया मैं छुट्टी पे जाऊंगा भाई, ये उठा के मैं जरूर लाऊंगा जरूर। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आप हल्के में लेते हैं, पर जब वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं तो आपको लगता है यार ये पहले क्यों नहीं सोचा मैंने। फॉर एग्जांपल, आपने चिप्स का पैकेट खोल लिया, चिप्स का पैकेट खोल लिया आपने, और आपने आधा खाया आधा छोड़ दिया, बड़ा वाला पैकेट लिया, अब वो सील जाते हैं चिप्स उसके अंदर, आप जितनी कोशिश कर लीजिए, है ना। जो लोग कतई समझदार वेरी वेल मैनेजमेंट है उनकी बात दूसरी है, लेकिन मेरे और आपके जैसे लोग जो थोड़े से लीजी होते हैं भाई, चिप्स सील गए पूरे, ये उसको ऊपर पूरी तरह से सील करके देता है। कितने रुपए का बताऊं रेडियो सुनने के लिए? 500 रुपए का है, इंडियन रुपीज में। ये मैं डेफिनेटली लेके आने वाला हूँ भाई, आई बिकेम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट एज सून एज आई सॉ द प्राइस टैग, ये तो भाई आएगा। और ये अमेजोन पे अवेलेबल है, तो इन केस आप अमेजोन पे कहीं से ऑर्डर करना चाहें या कहीं ट्रेवल करते हैं तो आप इसको मंगा सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ, इन टेक न्यूज। तो खबर नंबर 1 गूगल से आ रही है। जब आप ये शो सुन रहे होंगे तो ये सब कुछ हो चुका होगा, तो उसका रिव्यू बाद में दूंगा, मगर गूगल मेड बाय गूगल जो उनके फोन्स आते हैं, वो इवेंट जो वो करता है वो लॉन्च कर रहा है। कंपनी ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अभी लॉन्च हो चुके होंगे पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो, पिक्सल प्रो फोल्ड और पिक्सल वॉच 5। आई विल नॉट से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ गूगल पिक्सल का, पर रिसेंटली मुझे लगता है कि गूगल जो कर रहा है बहुत नीश है और बहुत कमाल का कर रहा है, एक सेपरेट बेस बनाया है अपना। एंड अब जो पिक्सल 11 की पूरी लाइनअप लॉन्च हो चुकी है, क्योंकि जब आप इसे सुन रहे हैं तो उसका रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह आपको करके जरूर जरूर बताऊंगा। बट डेफिनेटली इफ यू हैवंट ट्राइड गूगल पिक्सल, अगर आप एक चेंज सोच रहे हैं कि यार मैंने एंड्रॉयड बहुत यूज कर लिया, आई हैव ट्राइड एप्पल, सो यू शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट, एक थोड़ा सा ट्वीक आएगा अगर आप पिक्सल यूज करेंगे। मैं भी आपकी तरह सोच रहा हूँ, मेरा भी मन है थोड़ा अलग यूज करने का। तो दिस होल लाइनअप, द पिक्सल 11 लाइनअप इज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड 12 अगस्त को, तो जो भी रिव्यू है आपको इंशाल्लाह अगले शो में मिल जाएगा। आपका कोई रिव्यू है तो बता दीजिएगा कि भाई मैंने ये फोन यूज किया है। इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग पिक्सल तो अपने रिव्यू जरूर दे दीजिएगा, बिकॉज आई नो कि कुछ चीजें ऐसी हैं पिक्सल फोन की जो बहुत ही अच्छी हैं और कुछ ऐसी जो आपको लगता है ये ना होता तो मैं ये फोन ले लेता। बट लेट मी नो जो आपको लगता है रिव्यू, और इसके लाइनअप के रिव्यू अगले हफ्ते। ओके, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो है सीधा गेमिंग की दुनिया से है,
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट।
0: सो रॉकस्टार गेम्स ने अनाउंस किया है कि उनका जो एक्सटेंडेड लुक है GTA 6 का, वो नेटफ्लिक्स पे लॉन्च होगा। ये खबर ज्यादा नई नहीं है, लेकिन 27 अगस्त को जब ये लॉन्च होगा आफ्टरनून में, तो निराश मत होइए, आपको लग रहा होगा नेटफ्लिक्स की बिना सब्सक्रिप्शन के आप देख नहीं पाएंगे, भाई दोपहर में नेटफ्लिक्स पे और उसके बाद शाम तक या रात तक ये YouTube पर भी लॉन्च हो जाएगा, ऐसा रॉकस्टार गेम्स ने कहा है। तो आई डोंट वांट टू ट्रस्ट देम, मुझे भरोसा नहीं है रॉकस्टार गेम्स का, आजकल बड़ी डाइसी और बहकी बहकी बातें करने लगे हैं ये लोग। बट व्हाटएवर द रीजन इज, ये लॉन्च होगा 27 अगस्त को एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट। तो अगर आप भगदड़ में हैं और आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं सिर्फ इसके लिए, मत लेना, यूट्यूब पर आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, ये गेमर्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये खबर भी गेमिंग की दुनिया से है, बीस्ट ऑफ रीइंकार्नेशन ये गेम लॉन्च हुआ। मैं जब इसका गेम प्ले देख रहा था मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था, मुझको यार क्या गेम बनाया, और बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने पोकेमोन के सारे गेम्स बनाए, तो इट वॉज रियली ऑड, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई गेम नहीं बनाया जिसमें एक समुराई है, उसका तलवार है और वो बकायदा लड़ रहा है. मुझे लगा नहीं था कि पोकेमोन के डेवलपर्स ऐसा करेंगे. बट दे अटेम्प्टेड समथिंग. क्या हो गया मेरी जुबान को? अटेम्प्टेड समथिंग जो कि ठीक है. मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओ माय गॉड ये क्या बना दिया. इट इज ओके. गेम का कॉम्बैट बहुत बढ़िया है. मतलब इफ यूजिंग द सॉर्ड एंड पैरी सिस्टम क्या आप टिंग टिंग टिंग टिंग आवाज आती रहेगी. पर स्टोरी कुछ भी नहीं है यार. मतलब क्या बना दिए हो. सारे बॉसेस ऑलमोस्ट सेम लगते हैं. बट फिर भी मैं इसे बैड गेम नहीं बोलूंगा. इट इज स्टिल अ प्लेबल गेम. इट्स जस्ट दैट आई विल नॉट स्पेंड $60 इस पे अभी. मैं तो वेट करूंगा जब ये सेल पे आएगा या जब फ्री हो जाएगा तब यूज कर लेंगे भाई. पर इफ यू लुकिंग फॉर द रिव्यू बीस्ट ऑफ रीइनकार्नेशन मैं इतना कहूंगा कॉम्बैट एक नंबर है. स्टोरी बहुत लेंथी है. बॉसेस आर लिटिल रिपीटेटिव और क्या. हाँ यही है. तो इस कुल मिला के इसके बारे में यही है. बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट खबर आई है फैंटम ब्लेड जीरो से. फैंटम ब्लेड जीरो के जो बनाने वाले हैं और गेमर्स इस बात को जानते हैं कि वी आर ऑल एक्साइटेड फैंटम ब्लेड जीरो के लिए. उन्होंने बोला कि जितना भी हमने गेम प्ले दिखाया सब का सब बच्चों साइड क्वेस्ट है. मेन गेम तो हम दिखाई नहीं है तुमको. सो दैट इज अ न्यूज. On that note, this is Doha Wala Kabir signing off. Social media handles FM107 Qatar. FM107 Qatar is naam se. Hum har jagah maujood hain. Agar aap mujhse raabta qaim karna chahein, so Doha Wala Kabir. Aapko mil jaunga main TikTok aur Instagram pe bhi. And Kabir ki spelling rahegi K-A-B-I-R. This is Kabir signing off. Apna khayal rakhiyega. Kyunki aap behad, behad zaruri hain. Maasalama.
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107 दिल से देसी.
0: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का. आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर. मेरी पहचान. बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है. आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरी

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। एफएम 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107 एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी स्ट्रेस हो बिजी रूटीन हो फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हर हफ्ते एक नई हदीत एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम हदीत टू हैबिट दिल से सुनिए जिंदगी में अपनाइए
5: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, स्टूडेंट्स की लाइफ में बुक्स, नोटबुक्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और स्टडी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑनलाइन लर्निंग। पढ़ाई हमारी डेली रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, मैं ये बात मानती हूँ। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी स्टडी हैबिट्स का एनवायरनमेंट पे क्या असर आता है? कितनी नोटबुक्स यूज होती हैं, कितना पेपर वेस्ट होता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर्स और लाइट्स के लिए यूज होती है, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो क्यों ना भाई, हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी आदतें अपनाएं जो नेचर के लिए भी बेहतर हों। तो भाई, आज हम इको स्विच में बात करते हैं इको फ्रेंडली स्टडी हैबिट्स के बारे में, यानी ऐसी पढ़ाई की आदतें जो लर्निंग को भी बेहतर बनाए और एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखे। तो भाई, प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। साथियों, एजुकेशन जरूरी है, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन स्टडी के दौरान भी हम बहुत से रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, हर असाइनमेंट के लिए ज्यादा पेपर प्रिंट आउट करना, अधूरी नोटबुक्स या अनयूज्ड पेपर्स को फेंक देना, जरूरत से ज्यादा स्टेशनरी खरीदना, स्टडी रूम में लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को बेवजह ऑन रखना। कभी कभी स्टूडेंट्स नए सेमेस्टर के शुरू में ही बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, जबकि घर में पहले ही आइटम्स अवेलेबल होते हैं या रीयूज किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम पढ़ाई करना नहीं है, प्रॉब्लम है रिसोर्सेज को अननेसेसरी वेस्ट करना। अब यहाँ पर सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन ढूंढते हैं भाई, स्टूडेंट्स के लिए कुछ सिंपल इको फ्रेंडली स्टडी हैबिट्स। पहली चीज ये कि पेपर स्मार्टली यूज करें, जहाँ जरूरत हो वहाँ पेपर यूज करें, लेकिन अननेसेसरी प्रिंटिंग से बचने की कोशिश करें। नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिजिटल ऑप्शंस भी अपनाए जा सकते हैं भाई। दूसरी चीज ये कि नोटबुक्स को पूरा पूरा यूज करें ना, लेकिन नोटबुक्स में कुछ पेजेस बच जाएं तो उसे फेंकने के बजाय उन्हें कंटिन्यू करें। पुरानी नोटबुक्स के ब्लैंक पेजेस को रफ वर्क के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरी चीज ये कि स्टेशनरी रीयूज करें, नए पेन्स, पेंसिल्स और नोटबुक्स लेने से पहले चेक करें कि घर में पहले से क्या अवेलेबल है। अच्छी क्वालिटी की स्टेशनरी ज्यादा अरसे तक चलती है और आपका खर्चा भी बच जाता है भाई। चौथी चीज है डिजिटल लर्निंग का स्मार्ट यूज। ऑनलाइन नोट्स, ई बुक्स और डिजिटल असाइनमेंट्स पेपर यूज को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन डिवाइसेस का इस्तेमाल भी स्मार्ट तरीके से करें भाई, और जरूरत ना हो तो उन्हें बंद कर दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी सेविंग स्टडी रूटीन। स्टडी करते वक्त सिर्फ जरूरत की वजह से ही लाइट्स वगैरह ऑन करें, दिन के वक्त नेचुरल लाइट का फायदा उठाएं और एनर्जी बचाएं और उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। तो साथियों, रियल लाइफ अगर एग्जांपल दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब अपनी स्टडी रूटीन में इको फ्रेंडली चेंजेस ला रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने नोट्स को डिजिटल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ अपनी पुरानी बुक्स डोनेट कर देते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के भी वो काम आ सके, फायदे में आए। कुछ स्कूल्स रिसाइकलिंग ड्राइव्स और पेपर सेविंग कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एक स्टूडेंट अगर अपनी बुक्स का ख्याल रखे तो पेजेस वेस्ट नहीं करता और स्टेशनरी रिस्पॉन्सिबली यूज करें तो वो एनवायरमेंट के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बन जाता है। और भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैबिट्स स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज और रिस्पॉन्सिबल भी बनाती हैं। तो साथियों, आज का हमारा इको स्विच चैलेंज ये है स्टूडेंट्स के लिए कि अगले 7 दिन के लिए एक इको फ्रेंडली स्टडी हैबिट चूज करें ना। क्या आप पेपर वेस्ट कम करेंगे, क्या आप पुरानी स्टेशनरी रीयूज करेंगे, या क्या आप अपना स्टडी एरिया एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे? तो भाई, इनमें से कोई भी चूज करें और हमें जरूर बताएं कि आप पढ़ाई के लिए ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं, हैंड रिटन नोट्स या डिजिटल नोट्स। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, अच्छी पढ़ाई सिर्फ मार्क्स नहीं देती, अच्छी आदतें भी सिखाती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। बात करेंगे कतर के एक उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ी के बारे में जिनका नाम है अय्यूब अलवी। या दोस्तों, अय्यूब अलवी कतर के एक यंग फुटबॉलर हैं और इन्हें अभी रिसेंटली 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था। उन्होंने छोटे से उम्र से ही फुटबॉल के साथ लगाव रखा और लोकल एकेडमीज में ट्रेनिंग हासिल करके अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया। उनका खेलने का स्टाइल एनर्जेटिक और मॉडर्न फुटबॉल के मुताबिक माना जाता है, जहां वो मिडफील्ड या अटैकिंग एरियाज में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अय्यूब की सबसे बड़ी खासियत उनकी फिटनेस, स्पीड और बॉल कंट्रोल है। वो प्रेशर सिचुएशंस में भी काम रहते हैं और टीम के लिए बेहतर डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, और उनकी पासिंग एबिलिटी और ऑफ द बॉल मूवमेंट उन्हें एक वर्सेटाइल प्लेयर बनाती है जो मुख्तलिफ पोजीशंस में अडेप्ट कर सकते हैं। कतर के डोमेस्टिक फुटबॉल स्ट्रक्चर में ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को डेवलप करने पर बहुत तवज्जो दी जा रही है और अय्यूब अलवी उन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कोचेस का भरोसा जीता है। उनका फोकस ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट पर रहता है जो उनकी ग्रोथ को मुस्तकबिल में और बेहतर बना सकता है। दोस्तों, अगर वो इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन को मेंटेन रखें तो आने वाले सालों में अय्यूब अलवी कतर की नेशनल टीम का मुस्तकबिल हिस्सा बन सकते हैं। उनका सफर अभी इब्तदाई मरहले में है, लेकिन उनमें पोटेंशियल वाजे नजर आता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगली बार एक और कतरी स्टार्स और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One Step to 2030.
1: दोस्तों, आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और ये है फ्यूचर ऑफ रिटेल टेक्नोलॉजी. देखिए, रिटेल टेक्नोलॉजी का फ्यूचर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे शॉपिंग एक्सपीरियंस को चेंज कर दिया जाएगा. आने वाले सालों में स्टोर्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, इंटरैक्टिव होंगे और कस्टमर सेंट्रिक होंगे. ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टोर आपसे बात कर रहा है. जी हाँ, आज का कस्टमर सिर्फ शॉपिंग नहीं चाहता, वो कन्वीनियंस चाहता है, एक्सपीरियंस चाहता है और शायद पर्सनलाइज्ड अप्रोच चाहता है. और इसी वजह से ब्रांड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और AR जैसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही हैं. फ्यूचर में स्टोर्स कस्टमर के प्रेफरेंसेस को पहले से समझकर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देंगे. मिसाल के तौर पे, अगर कोई कस्टमर फर्नीचर स्टोर विजिट करता है तो AI उसकी प्रीवियस शॉपिंग हिस्ट्री और लाइफस्टाइल को देखकर सजेस्ट करेंगे कि उनके घर के लिए कौन सा सोफ़ा ठीक है, किस कलर का सोफ़ा होना चाहिए, डाइनिंग टेबल कैसी होनी चाहिए, बेडरूम सेट ज़्यादा कौन सा उन्हें सूट करेगा. इससे कस्टमर का डिसीशन लेना आसान हो जाएगा. ओमनी चैनल्स रिटेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे. कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट करेंगे और इन स्टोर परचेज कंप्लीट कर सकेंगे या स्टोर में प्रोडक्ट देखकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे. ओमनी चैनल्स जो हैं वो रिटेल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनेंगे. दोनों एक्सपीरियंसेस सीमलेसली कनेक्टेड रहेंगे. वहीं VR/AR शॉपिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा. पर हम बनेंगे बेकार, मतलब इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद. अच्छा, फर्नीचर्स और होम डेकोर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑटोमेटिकली आपको एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स दिखाते रहेंगे. अब इससे रिटर्न्स कम होंगे और कस्टमर का एक काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. वहीं डेटा एनालिटिक्स रिटेलर्स को कस्टमर बिहेवियर समझने में मदद करेंगे. कंपनीज ये जान सकेंगी कि कस्टमर्स किस वक्त शॉपिंग करते हैं, किस तरह की शॉपिंग ये बंदा करना पसंद करता है, क्या प्रोडक्ट इसे पसंद आते हैं और किन प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है. अगर फ्यूचर की रिटेल बिजनेस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा. जो ब्रांड इनोवेशन को अपनाएगा और कस्टमर कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देगा वो मार्केट में टिक पाएगा, वही ज्यादा कामयाब हो पाएगा. जहाँ शॉपिंग फास्टर, स्मार्टर और पहले से ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएगी, जिससे कस्टमर्स और बिजनेसेस दोनों को भरपूर फायदा होगा. तो बस हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में रिटेल टेक्नोलॉजी में AI और AR दोनों ही डोमिनेट करेंगे, और ऐसे वैसे नहीं, भरपूर तरीके से डोमिनेट करेंगे. और अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं कि AI और AR किस तरह से डोमिनेट करेंगे, तो कुछ कंपनीज हैं जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, AI आपकी प्रीवियस परचेज को सर्च में डाल देता है और ये सर्च आपकी थिंकिंग पैटर्न्स को एनालाइज करके कुछ प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करते हैं. इस तरह से एक स्मार्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आपके सामने आती है. वहीं AI प्रिडिक्ट करता है कि किस सीजन में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड होगी. जैसे कतर में रमदान या फिर ईद से पहले लोग जो है वो कपड़े खरीदना पसंद करते हैं, या फिर फर्नीचर्स की शॉपिंग की जाती है, या फिर कुछ और होम डेकोर्स हैं, तो AI सेल्स डेटा एनालाइज करके पहले से इस स्टॉक को प्रिपेयर करने में भी मदद करता है. एक जिक्र मैंने AI चैटबॉट का भी किया. कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए AI चैटबॉट 24/7 कस्टमर क्वेरीज हैंडल करते रहते हैं. कस्टमर पूछता है मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, AI चैटबॉट फॉरन ट्रैकिंग डिटेल प्रोवाइड कर देता है. वहीं पर AI मार्केट कंडीशंस और डिमांड के मुताबिक भी प्राइसेस एडजस्ट करता है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. इसकी वजह से स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी एक सिलसिला बरकरार रहता है. वहीं अगर एआर की मैं बात करूं तो वर्चुअल फ्यूचर प्लेसमेंट्स भी, ये फर्नीचर इंडस्ट्री की सबसे वर्चुअल फर्नीचर प्लेसमेंट्स अगर देखा जाए, जैसे कस्टमर मोबाइल फ़ोन के कैमरा स्क्रीन पर देख सकता है कि सोफ़ा उसके लिविंग रूम में कैसा लगेगा, ये भी खरीदने से पहले. इससे होगा ये कि कस्टमर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और रिटर्न्स कम हो जाएंगे. वहीं पर वर्चुअल होम मेकर्स, एआर पूरे रूम का वर्चुअल होम मेकर है, पूरा वर्चुअल मेकओवर कर सकता है. कस्टमर देख सकते हैं कि नए पर्दे, नया कारपेट, नए डेकोर हमारे घर में कैसे लग रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी शॉपिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाते हैं. स्टोर में कस्टमर अपना मोबाइल किसी प्रोडक्ट पर पॉइंट करे और एआर उसकी डिटेल स्क्रीन पर दिखा दे. वहीं पर लार्ज रिटेल स्टोर्स में एआर कस्टमर्स को प्रोडक्ट तक गाइड करते हैं. कस्टमर ऐप में सोफा सेक्शन डालें और एआर रोज एरो सब यूज करके उसे वहां तक पहुंचा दें. तो आने वाले 5 से 10 सालों में मुमकिन है कि कस्टमर घर बैठकर ही वर्चुअल रियलिटी शोरूम विजिट करें, अपने पूरे घर का डिजिटल मॉडल बनाएं और एआई उसके बजट और स्टाइल के मुताबिक कंप्लीट फर्नीचर, कंप्लीट डेकोर और जो भी चीज़ें वो खरीदना चाहते हैं उन सबको सजेस्ट करें. मैं कह सकती हूँ कि फ्यूचर रिटेल सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं होगा. एआई कस्टमर्स को समझेगी, उसकी नीड्स प्रेडिक्शन करेगी और एआर उन्हें परचेज से पहले प्रोडक्ट का एक रियल एक्सपीरियंस दे. इस कॉम्बिनेशन से शॉपिंग ज़्यादा स्मार्ट, पर्सनलाइज्ड और इंजॉयबल बनेगी. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. कल एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
2: One step to 2020.
0: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है, जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामीन इकराम, जिंदगी को मुअत्तर करने वाली रूह परवर सुन्नतों में एक अहम सुन्नत ये भी है कि लोगों के दरमियान सुलह कराना। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि ताल्लुकात का दीन भी सिखाता है। इंसानों के दरमियान मोहब्बत, उखवत और भाईचारा कायम रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी मकसद

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि सेहतमंद खाना पकाने के मुख्तलिफ तरीकों की और जानेंगे कि एक ही ग़िज़ा, एक ही खुराक मुख्तलिफ अंदाज से पकाने पर हमारी सेहत पर मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। हम में से अक्सर अफराद सिर्फ इस बात पर तवज्जो देते हैं कि क्या खाना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि खाना किस तरीके से पकाया जाए या ये देखना है कि किस तरीके से खाना पकाया गया है। यही तरीका उसकी गजाइत, कैलोरीज, फैट्स और सेहत पर असरात को बदल देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम आलू को उबालकर खाते हैं तो वो निस्बतन कम फैट्स वाला होता है, लेकिन अगर उसी पोटैटो, उसी आलू को गहरे कढ़ाई में तल दिया जाए तो इसमें कैलोरीज और जो फैट्स हैं कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह चिकन है, फिश है या सब्जियां हैं, अगर उसे स्टीम में पकाया जाए या बेक की जाए तो उसमें मौजूद विटामिंस और मादनियात ज़्यादा देर तक महफूज रहते हैं। जबकि ज़्यादातर जो है, जब हम ज़्यादा देर तक पकाते हैं या जो टेम्परेचर पर उसे फ्राई किया जाता है तो उसके कई ग़िज़ाई अज्ज़ा जो हैं ज़ाया हो जाते हैं। अब सेहतमंद खाना पकाने के लिए जो फ़वाद हैं वो ये हैं कि जिस्म को बेहतर न्यूट्रिशन मिलती है, वज़न को काबू में रखने में मदद मिलती है, यानी अपना वज़न आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह दिल के जो बेशुमार मसाइल हैं या बीमारियां हैं उनका रिस्क या ख़तरा कम से कम होता चला जाता है। डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बेहतर इंतखाब साबित होता है और इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर रहता है। जब हम खाना पकाते हैं तो कुछ जो बिल्कुल आसान सी एहतियातें हैं वो भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जैसे कि हम खाना कम से कम तेल में पकाएं, बार बार एक ही तेल को, एक ही ऑयल को गर्म ना कीजिए, ज़्यादा नमक और मसाले से परहेज़ कीजिए। ताज़ा सब्जियों और जड़ी बूटियां हैं वो हमारा जो जायका है वो ज़्यादा कर देती हैं और आप इसी तरह से अपने खाने का जायका बढ़ाते चले जाएं। याद रखिए कि सेहतमंद खाना बेजायका नहीं होता, बल्कि सही तरीके से पकाया गया खाना ज़्यादा मज़ेदार भी होता है और फ़ायदेमंद भी। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि ग्रिलिंग और जो स्टीम हम देते हैं और उससे खाना बनाते हैं तो वो किस तरह से

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो प्रोग्राम जहां हम खेलों की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक लेजेंड के बारे में, स्विमिंग लेजेंड और वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनके नाम है माइकल फेल्प्स। या दोस्तों, माइकल फेल्प्स ओलंपिक तारीख का सबसे कामयाब एथलीट। ओलंपिक गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है जहां हर एथलीट का ख्वाब होता है कि वो अपने मुल्क के लिए मेडल जीते और तारीख में अपना नाम लिखवाए। लेकिन दोस्तों, चंद ही एथलीट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेडल नहीं जीतते बल्कि पूरे खेल की तारीख बदल देते हैं। स्विमिंग की दुनिया में माइकल फेल्प्स एक ऐसा ही नाम है। उन्होंने ओलंपिक गेम्स में 23 गोल्ड मेडल्स जीतकर वो कारनामा अंजाम दिया जो आज तक कोई और एथलीट हासिल नहीं कर सका। और ये बहुत मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात कर रहा हूँ, कोई पुरानी बात 50 साल 60 साल 40 साल की बात नहीं, वेरी रिसेंट फेनोमेना। माइकल फ्रेड फेल्प्स सेकंड की पैदाइश 30 जून 1985 को बाल्टीमोर मैरीलैंड अमेरिका में हुई। बचपन से ही उनमें स्विमिंग की सलाहियत नुमाया थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने स्विमिंग शुरू की और जल्द ही कोचेस को अंदाजा हो गया था कि भाई ये बच्चा मामूली टैलेंट नहीं रखता। उनके कोच बॉब बोमन ने उनकी ट्रेनिंग पर खास तवज्जो दी और माइकल ने बहुत कम उम्र में ही नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ना शुरू कर दिए। सन 2000 में माइकल फेल्प्स ने सिर्फ 15 साल की उम्र में सिडनी ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। वो उस ओलंपिक टीम के सबसे कम उम्र अमेरिकन मेल स्विमर थे। अगरचे वो मेडल नहीं जीत सके लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि एक नया सितारा उभर रहा है। उनका पहला ओलंपिक मेडल 4 साल के बाद एथेंस ओलंपिक्स और वहां पर सबने देखा। इस ओलंपिक में फेल्प्स ने 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये एक शानदार कामयाबी थी और दुनिया भर के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स ने उन्हें स्विमिंग का नया बादशाह करार देना शुरू कर दिया। लेकिन असल तारीख तो अभी लिखी जानी बाकी थी। या दोस्तों, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स माइकल फेल्प्स के करियर का सबसे यादगार मोड़ था। उन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमरीकी स्विमर मार्क स्पिट्स के पास था जिन्होंने 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीते थे। फेल्प्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़कर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक चैंपियन नहीं बल्कि एक लेजेंड है। बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने हर रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया, स्विमिंग के हर कैटेगरीज में, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, मेडली और रिले इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि मुख्तलिफ स्विमर्स उनके मुकाबले में कमजोर नजर आने लगे। दुनिया भर के मीडिया ने उन्हें द ग्रेटेस्ट ओलंपियन का टाइटल से पुकारना शुरू कर दिया। 4 साल के बाद लंदन ओलंपिक्स, वहां भी माइकल फेल्प्स ने अपनी बर्तरी बरकरार रखी और इस ओलंपिक में उन्होंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। इसके साथ ही उन्होंने सोवियत जिमनास्ट लारिसा लैटिनिना का ओलंपिक मेडल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लारिसा के पास 18 ओलंपिक मेडल्स का रिकॉर्ड था जबकि फेल्प्स ने इस नंबर को पीछे छोड़ दिया और ओलंपिक हिस्ट्री के सबसे

0: आधा मेडल जीतने वाले एथलीट बन गए। दोस्तों लंदन ओलंपिक्स के बाद माइकल फेल्प्स ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बहुत से लोगों को लगा कि उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन चंद सालों बाद उन्होंने स्विमिंग में वापसी का फैसला किया और यह फैसला ओलंपिक हिस्ट्री के सबसे कामयाब कमबैक्स में से एक साबित हुआ। 2016 रियो ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स ने फिर दुनिया को हैरान कर दिया। 31 साल की उम्र में जब अक्सर दोस्तों स्विमर्स अपने करियर के आखिरी मराहिल में होते हैं, फेल्प्स ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर साबित किया कि वो अब भी दुनिया के बेहतरीन स्विमर हैं। रियो ओलंपिक्स के बाद उनके गोल्ड मेडल्स की तादाद 23 तक पहुंच गई, जो आज भी ओलंपिक हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। फेल्प्स के ओलंपिक करियर के सबसे हैरतअंगेज पहलू ये है कि उन्होंने मजमूई तौर पर 28 ओलंपिक मेडल्स जीते, इनमें 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। यह रिकॉर्ड इतना बड़ा है कि कई ममालिक पूरी ओलंपिक हिस्ट्री में इतने गोल्ड मेडल्स नहीं जीत सके जितने माइकल फेल्प्स ने अकेले हासिल किए। हैरानगी की बात यह है कि उनकी कामयाबी सिर्फ मेडल्स तक महदूद नहीं दोस्तों, फेल्प्स ने स्विमिंग के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी कायम किए। बटरफ्लाई और इंडिविजुअल मेडली इवेंट्स में उनकी हुक्मरानी कई सालों तक जारी रही। उनका ट्रेनिंग रूटीन भी गैर मामूली था। रिवायत के मुताबिक वो हफ्ते के 7 दिन ट्रेनिंग करते थे और रोजाना घंटों पानी में गुजरते थे। कहते ना कि इफ यू लव द वॉटर विल लव यू, कि इफ यू स्पेंड मोर टाइम इन एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट दैट स्पोर्ट विल लव यू। वो पैशन, दैट एडमिरेशन, वो माइकल फेल्प्स को देख के ही हमें अंदाजा हो जाता है। और साथ साथ डिसिप्लिन, मेहनत और कंसिस्टेंसी उनकी कामयाबी के बुनियादी असबाब थे। अदरवाइज ऐसा मुश्किल ही होता है। हर स्विमर आते तो हैं, हर यू नो एथलीट आते हैं, लेकिन जो छाप छोड़ जाने वाली बात होती है ना, वो बहुत कम एथलीट में हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ माइकल फेल्प्स वन ऑफ दोज रेयर कैरेक्टर। माइकल फेल्प्स की जिस्मानी सलाहियत भी गैर मामूली थी, फिजिकल अपीयरेंस। उनके बाजू आम इंसान के मुकाबले में ज्यादा लंबे थे, जिससे स्विमिंग में उन्हें फायदा मिलता था। उनके पैर फिंस की तरह काम करते थे और पानी में उनकी मूवमेंट इंतहाई मुअस्सर होती थी। लेकिन सिर्फ जिस्मानी खूबियां ही उनकी कामयाबी का सबब नहीं थी, उनकी जहनी मजबूती और कंपटीशन के दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत ने भी उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाया। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट एट ऑल अ रिक्वायर्ड, यू नो आई वुड से कि एक पॉजिटिव बात होती है। हाँ, फिजिकल एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल द स्टैमिना होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं तो आप जीतेंगे। साथ साथ यू नीड टू हैव दैट यू नो स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। वो माइंड जो दिमाग जो तेज और आपको ना थका दे, बल्कि आप उस गेम को थका दें आपके दिमाग के ज़रिए, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। और यहाँ पे माइकल फेल्प्स के पास दोनों ही चीज़ें मौजूद थी। फेल्प्स ने अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलात का भी सामना किया, जैसे कि मसलन के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि करियर के दौरान उन्हें तनकीद, पर्सनल चैलेंजेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, तो मैं गलत नहीं हूँ। ये फैक्चुअल कोई एरर्स नहीं है, दिस आर रियल स्टोरी ऑफ माइकल फेल्प्स। पढ़िएगा, माइकल फेल्प्स को पढ़िएगा अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है। आई मीन देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अगर ज़िंदगी में तरक्की के जहाँ आप लेट डाउन हैं, यू नो ऑन अ पर्सनल लेवल आप लेट डाउन हैं कहीं पर भी, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे ज़ाती ज़िंदगी में हो, चाहे आपके कामकाज में हो, माइकल फेल्प्स इज वन ब्राइटेस्ट एग्जांपल, जिसको आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यू कैन डू दैट, यू कैन विन, यू कैन एक्चुअली ओवरकम चैलेंजेस। मेंटल हेल्थ इश्यूज आप समझ सकते हैं, ही वॉज अंडर ग्रेट डिप्रेशन। ये मैंने एक किताब में आई हैड रेड अबाउट हिम, कि ऑलमोस्ट वो स्विमिंग को छोड़ ही दिया था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑलमोस्ट रिटायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन वापसी की 2016 रियो ओलंपिक्स में और वहाँ पे उन्होंने दोबारा मेडल जीत कर ये साबित किया कि ही वॉज नॉट फिनिश्ड। तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है, दिमाग और दिल, ये जो है चीज़ है ना, इसको काबू में रखने के लिए यू नीड टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, जो कि माइकल फेल्प्स के अंदर में हमें देखने को मिला। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की और एथलीट्स की मेंटल हेल्थ के लिए आवाज़ उठाई, और इस वजह से उनकी अहमियत सिर्फ एक एथलीट तक महदूद नहीं रही बल्कि वो स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल भी बन गए। अक्सर हमने देखा है जैसे कि जिमनास्टिक्स में भी, आई विल टेल यू कि सिमोने बाइल्स एक मशहूर जिमनास्ट हैं, अमेरिकी जिमनास्ट है। जो मॉडर्न जिमनास्टिक्स की हम बात करते हैं तो वुमेन जिमनास्ट में सिमोने बाइल्स की बात में हम बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपिक जिमनास्ट, बहुत सारे मेडल्स हैं। उनको भी कुछ इस तरह के ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। आई डोंट नो, एक लेवल तक एथलीट्स को एक आउट से कि कुछ गहराई तक चले जाते हैं, सोच की गहराई तक चले जाते हैं, कुछ सोच उनको खा जाती है, कुछ डिप्रेशन, तरह सम स्टोरीज जो कि अनटोल्ड स्टोरीज हैं हमें नहीं पता। और यहाँ पर माइकल फेल्प्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, डिप्रेशन का शिकार है और यू नो बिग लेट डाउन, अपने आप से लड़ाई कर रहे थे कि व्हाट टू डू इन स्विमिंग, उसके बाद क्या। क्योंकि ये बात है कि सक्सेस तो उनके पास उनके बस बाएं हाथ का खेल था एंड यू नो उसके बाद क्या, शायद वो कुछ ढूंढ रहे थे और इसे करते करते करते करते आई थिंक फाइनली ही फाउंड हिमसेल्फ। जो सेल्फ जो है, बेसिकली सेल्फ वाली बात है, वो उन्होंने आई थिंक मेहनत करके उन्होंने ढूंढ निकाला कि ही हैज़ टू स्टे इन दैट रेस, ही हैज़ टू यू नो सक्सीड एंड देन से टाटा बाय बाय टू द स्पोर्ट। माइकल फेल्प्स ने दुनिया को ये सबक दिया कि टैलेंट के साथ मेहनत, डिसिप्लिन और लगन हो तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। उनका सफर एक छोटे से स्विमर से दुनिया के अजीम तरीन ओलंपियन बनने तक की कहानी है। ये कहानी हर उस नौजवान के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने ख्वाब पूरे करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ मार्वेलस स्टोरी माइकल फेल्प्स। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि आप लोग पढ़िएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूँ तो माइकल फेल्प्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। मेंटल फटीक, मेंटल डिप्रेशन, यू नो मेंटल इश्यूज अगर कभी किसी को हो रहा है, होता है, अगर आप एथलीट हैं, स्टूडेंट हैं, तो माइकल फेल्प्स को पढ़िएगा। ही इज़ अ रोल मॉडल और शायद आप मुतासिर होंगे माइकल फेल्प्स को पढ़कर या माइकल फेल्प्स की कहानी सुनकर। आई थिंक यू विल बी एबल टू ओवरकम दोज चैलेंजेस। ओलंपिक गेम्स ने बहुत से लेजेंड्स देखे हैं दोस्तों, लेकिन माइकल फेल्प्स का मकाम अलग है। 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, 28 मजमुई मेडल्स और बेशुमार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उन्हें स्पोर्ट्स हिस्ट्री के अजीम तरीन एथलीट्स में शामिल करते हैं। उनका नाम हमेशा ओलंपिक तारीख के सुनहरी सफ़ों में लिखा रहेगा और आने वाली जनरेशन उनकी कामयाबियों को याद करती रहेंगी। दोस्तों, माइकल फेल्प्स सिर्फ एक स्विमर नहीं, मैं अगर उनको सिर्फ स्विमर कहूँ, एक ओलंपिक एथलीट कहूँ, आई थिंक इट वॉज लार्जर देन लाइफ फिगर, बल्कि एक्सेलेंस, डिटर्मिनेशन और ग्रेटनेस की मिसाल हैं। इसीलिए उन्हें अक्सर द ग्रेटेस्ट ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। और उनका 23 गोल्ड मेडल्स, कितना, 23, याद रखिएगा, 23 गोल्ड मेडल्स ओलंपिक में जीतना, ये जैसे मैंने शुरू में कहा, किसी भी कंट्री, एक कंट्री भी इतने गोल्ड मेडल्स ले नहीं पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, तो 23 गोल्ड मेडल्स एक इंडिविजुअल स्विमर ने जीता। और उनका जो रिकॉर्ड है, ये 23 गोल्ड मेडल्स का जो रिकॉर्ड है, ओलंपिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। माइकल फेल्प्स की कहानी से हम काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं, आप भी हो रहे होंगे, और लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यू लिसनिंग टू एफएम 107, दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: वेलकम बैक टू एफ एम 107 और ये शो है स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन और आज हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नुमायां किरदार के बारे में। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं बिफोर द ब्रेक, माइकल फेल्प्स, 23 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक हिस्ट्री, आज भी जबरदस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अनब्रोकन है, ए फीट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, आई वुड से दैट। उस कॉन्फिक्शन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले ओलंपिक गेम्स में आई डोंट थिंक इट्स ईजिली ब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। 28 गोल्ड मेडल्स नहीं बल्कि टोटल मजमुई तौर पर जो मेडल्स उन्हें हासिल की, तोड़ना मुश्किल है। एनीवे, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में और देखते हैं आज एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड में क्या रिकॉर्ड है। एथलेटिक्स की दुनिया में मैराथन का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड आज हम बात करेंगे और ये सबसे यू नो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड केनिया के केल्विन किप्टुम के नाम है। केल्विन किप्टुम 8 अक्टूबर 2023 को शिकागो मैराथन में 42.195 किलोमीटर का मैराथन सिर्फ 2 घंटे 35 सेकंड में मुकम्मल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मैराथन देखने से ही लगता है कि भाई नहीं हमसे तो ना हो पाएगा लेकिन ये जो अफ्रीकन एथलीट्स हैं, अफ्रीकन एथलीट्स से मुराद मैराथनर्स जो हैं ज़्यादातर अफ्रीकन, यू नो दे आर द वर्ल्ड बीटर, आई मीन दे आर द वर्ल्ड चैम्पियंस, ओलंपिक चैम्पियंस। और यहाँ पर केल्विन किप्टुम के बारे में बात कर रहे हैं, इनका जो रिकॉर्ड 42.195 किलोमीटर यानी 42.195 किलोमीटर का जो मैराथन था शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 सेकंड में मुकम्मल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अफ्रीकन्स आर रियली गुड एट एथलीट, अफ्रीकन आर रियली गुड एट लॉन्ग डिस्टेंस मिडिल डिस्टेंस रनिंग में, और इस परफॉर्मेंस ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और किप्टुम को मैराथन हिस्ट्री के अजीम तरीन रनर्स में शामिल कर दिया। उनकी रफ्तार इतनी शानदार थी कि वो मैराथन को 2 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल करने के करीब पहुंच गए और यह रिकॉर्ड एथलेटिक्स की तारीख के सबसे यादगार कारनामों में से एक माना जाता है। एंड द रीजन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको अफ्रीकन एथलीट्स को चैलेंज करना है मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में मत करिएगा, दे आर द अनबीटेबल, दे आर द लेजेंड्स। अब देखते हैं कि फुटबॉल के मैदान पे क्या हो रहा है। जी हाँ, फुटबॉल की तारीख में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है दोस्तों। पोर्तुगल के सुपरस्टार CR7 के नाम से मशहूर दुनिया के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप्स में गोल स्कोर किया। यहाँ पर मेसी के फैंस थोड़े से नाराज हो जाते हैं ये सुनने के बाद कि हम रोनाल्डो के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों दोज आर लेजेंड्स, मेसी इज अ लेजेंड, रोनाल्डो इज अ लेजेंड, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं रोनाल्डो के इस यूनिक रिकॉर्ड को, पिछले महीने जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें रोनाल्डो ने 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप्स, अच्छा रोनाल्डो और मेसी दोनों ने 2006 में अपना जो वर्ल्ड कप का जो सफर है उसको शुरू किया था और रोनाल्डो ने हर वर्ल्ड कप में गोल किया 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और इस 2026 वर्ल्ड कप में उन्होंने ये गोल करके एक अपने आप को बना लिया कि फाइनली ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स। और ये कारनामा उनकी कंसिस्टेंसी, फिटनेस और गोल स्कोरिंग सलाहियत का सबूत है। कई दौर के फुटबॉल स्टार्स आए और गए लेकिन रोनाल्डो ने 2 दहाइयों तक अपनी शानदार परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए लिखवा दिया। अब चलते हैं, देखते हैं कि गोल्फिंग ग्रीन्स में क्या हो रहा है और गोल्फिंग ग्रीन्स में क्या रिकॉर्ड है। गोल्फ की दुनिया का एक और शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बायरन नेल्सन के नाम है। यहाँ दोस्तों बायरन नेल्सन ने 1945 में मुसलसल 11 PGA टूर टूर्नामेंट जीतकर ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक नहीं टूट सका। उन्होंने मजमू तौर पर 18 टूर्नामेंट जीते और गोल्फ की तारीख की सबसे डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस में से एक पेश की। लगातार 11 इवेंट जीतना इंतहाई मुश्किल माना जाता है क्योंकि हर टूर्नामेंट में मुख्तलिफ कोर्स और मुख्तलिफ हालात होते हैं, इसीलिए बायरन नेल्सन का ये रिकॉर्ड गोल्फ के सबसे अजीम रिकॉर्ड में शुमार होता है। हमने आउटडोर फील्ड्स, आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड्स, आउटडोर स्पोर्ट्स के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली। आप थोड़ा सा देखते हैं कि स्नूकर में क्या रिकॉर्ड है। स्नूकर की तारीख का एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड रॉनी ओसुलिवन के नाम है। यहाँ दोस्तों रॉनी ओसुलिवन ने प्रोफेशनल स्नूकर में सबसे ज्यादा रैंकिंग टाइटल्स जीतने का रिकॉर्ड कायम किया। अपनी गैर मामूली स्किल, तेज गेम प्ले और कंसिस्टेंसी की वजह से उन्हें द रॉकेट के टाइटल से जाना जाता है। रॉनी ने कई दहाइयों तक स्नूकर पर हुक्मरानी की और बेशुमार टूर्नामेंट जीते। उनकी कामयाबियों ने उन्हें स्नूकर हिस्ट्री के सबसे अजीम खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। आज भी दोस्तों उनके रिकॉर्ड्स और परफॉर्मेंसेस नए प्लेयर्स के लिए मिसाल और इंस्पिरेशन का जरिया है। इंडोर स्पोर्ट्स से मुराद बैडमिंटन एक और मज़ेदार स्पोर्ट्स है और बैडमिंटन में हर कोई नो इंटरेस्ट शो करता है। खतर में तो बैडमिंटन के कोर्ट्स इतने हैं, लोग सिर्फ फिटनेस के चक्कर में बैडमिंटन कोर्ट्स पहुंच जाते हैं। अंदर अ लॉट ऑफ बैडमिंटन कोर्ट्स जो कि यू नो एडवर्टाइज किया जाता है कि आइए खेलिए एंड अपने आप को फिट रखिए, तो यहाँ पे बच्चे बूढ़े यू नो यूथ सब पार्टिसिपेट करते हैं. बैडमिंटन इज़ अ वेरी वेरी फैंटास्टिक स्पोर्ट, और अगर आपने बैडमिंटन खेल लिया तो मैं समझ जाऊँगा कि आप अगर आधा घंटा खेल लिया और अगर हाँफते नहीं हैं तो मैं ये समझ जाऊँगा कि यू आर रियली फिट, बिकॉज बैडमिंटन इज़ रियली कहने को तो बड़ा ही आसान दिखता है, लेकिन जब आप लंजिंग करते हैं, फॉरवर्ड लंजिंग, बैक हैंड स्मैशिंग, हर तरह के स्ट्रोक्स मारते हैं, शॉट्स मारते हैं, नो बैक हैंड फोर हैंड और शटल को जिस तरह से आप पंच करते हैं, तो दोस्तों बैडमिंटन बॉडी मूवमेंट का एक नुमाया, अगर बॉडी मूवमेंट की बात करूँ पूरे खेल में तो एक नुमाया स्पोर्ट अगर मैं समझता हूँ वो बैडमिंटन है, सब अल्टीमेट फिटनेस स्पोर्ट है. तो दोस्तों यहाँ बैडमिंटन की बात हो रही है और बैडमिंटन की तारीख का एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड लिंडान के नाम है. जी हाँ, लिंडान दुनिया के पहले और अब तक के वाहिद बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीते. उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स और 2012 लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करके बैडमिंटन हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाया. लिंडान नाम याद रखिएगा. अपनी स्पीड, टेक्निक और कंसिस्टेंसी की वजह से लिंडान को द सुपर डैन कहा जाता है और उनकी कामयाबियां बैडमिंटन के सबसे अजीम रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स में शुमार की जाती हैं. मूविंग ऑन टू टेबल टेनिस, पिंग पोंग गेम डिफिकल्ट है. मैंने कभी कोशिश ही नहीं की इस खेल को खेलने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और मैंने ना कभी कोशिश भी की, एंड मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट. मुझे पता नहीं क्यों लगता, आज भी लगता है कि टेबल टेनिस रैकेट जो है, यू नो जो रैकेट तो नहीं मैं कहूँगा, टेबल टेनिस बैट है, मैनो रैकेट कह लीजिए, बैट कह लीजिए, दोनों ही ठीक है. उसको अगर आप पकड़ते हैं थोड़ा थोड़ा, यू नो देयर इज़ अ टेक्निक जिसको हम चाइनीज ग्रिप बोलते हैं, बेसिकली विद पेन हुक या पेंसिल हुक, जिस तरह पेंसिल और पेन पकड़ते हैं, उस ग्रिप में आप उस बैट को पकड़ते हैं या रैकेट को पकड़ते हैं, एंड देन यू फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू यू नो स्ट्राइक द बॉल. क्योंकि पिंग पोंग वो गेंद ऐसी है कि आपके जो टेबल टेनिस कोर्ट है वहाँ पर जब ये छलांग लगाती है ना ये गेंद, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. और यहीं पर ही बात होती है फिटनेस की, यहीं पर बात होती है कि टेक्निक की. और टेबल टेनिस की बात करूँ तो मालोंग मुझे हमेशा याद, मालोंग टेबल टेनिस की तारीख का एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड ओनर हैं, और मालोंग बेसिकली चाइना इज वर्ल्ड बीटर के टेबल टेनिस में उनके आसपास कोई यू नो मंडरा नहीं सकते हैं. हमें कहने का मतलब है कि दे आर रियली गुड. मालोंग दुनिया के पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी बने जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक मेन सिंगल्स गोल्ड मेडल जीते. उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करके ये अनोखा रिकॉर्ड कायम किया. अपनी बेहतरीन टेक्निक, कंसिस्टेंसी और प्रेशर में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से मालोंग को टेबल टेनिस हिस्ट्री के सबसे अजीम प्लेयर्स में शुमार किया जाता है. उनकी कामयाबियां दुनिया भर के टेबल टेनिस प्लेयर्स के लिए इंस्पिरेशन का जरिया हैं. नाउ मूविंग ऑन टू कैमल रेसिंग, और दोस्तों एज यूजुअल कैमल रेसिंग अरब दुनिया की सबसे पुरानी और मकबूल स्पोर्ट्स में से एक है. इस खेल में कई अजीम कैमल्स यानी ऊँटों ने अपना नाम तारीख में दर्ज करवाया, लेकिन बाशायर को सबसे मशहूर रेसिंग कैमल्स में शुमार किया जाता है. ये रेसिंग का जो सीज़न है ऑलमोस्ट आई थिंक इट विल स्टार्ट अराउंड अगस्त या सितंबर कतर में, और ये रेसिंग ट्रैक्स जहाँ पर है ये आप लोगों को बताया था मैंने पिछले बार भी कि रेसिंग ऑफ कैमल्स यानी ऊँटों की रेस जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर का हिस्सा है, अरब कल्चर का एक हिस्सा है, जहाँ पर ये जो हम बात करते हैं अबाउट हॉर्स रेसिंग, अबाउट मोटर रेसिंग, अबाउट यू नो एवरी डिफरेंट रेसिंग के बारे में जो हम बात करते हैं, तो वहाँ पे इट्स नॉर्मल, लेकिन ऊँट वाली रेस जो है, ऊँटों की रेस जो है वो एक नुमाया है, एक वेरी यू नो एक वेरी एक आई वुड से डिफरेंट है, बट आई वुड से इट्स यूनिक थिंग टू बी पार्ट ऑफ इट. इसको देखना भी बड़ा अच्छा लगता है, एंड जब यू नो और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं. द ह्यूज नंबर ऑफ फैन दैट यू नो दे मीट एट दैट प्लेस एंड दे शाहनिया रेस ट्रैक जो है वहाँ पर, एंड यहाँ पर ऊँटों के अगर आपने लाइव टेलीकास्ट भी अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो मुझे लगेगा कि लाइक यू नो यू हैव सीन समथिंग, ऊँटों के ऊपर एक वो लगा दिया जाता है। आई मीन ऑब्वियसली इट्स नॉट रन बाय द, जैसे कि हॉर्स राइडर्स होते हैं, यहाँ पे कैमल को दौड़ाने के लिए कोई कैमल

0: राइडर नहीं है बल्कि कैंबल को सिर्फ एंड सिर्फ उनके ऊपर कैमरा लगा दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, उससे क्या स्पीड मालूम चल जाता है एंड उसके साथ साथ ये डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन चैंपियन है और कौन रनर्स अप है, कौन थर्ड पोजीशन है. आई मीन दिस इज द वे दे कैलकुलेट, दे वे दे फाइंड आउट द चैंपियन इन द रेस. तो दोस्तों ये आज के जो जितने भी रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे शेयर किया आप लोगों से, जो मैंने बताया है, सो उनमें से आप लोगों को कौन सा, अगर मैं बोलूँ कि मैंने तो लीड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज जिसके बारे में मैंने बात किया था, जो टॉप लीड स्टोरी जो हमारी है वो है माइकल फेल्प्स की 28 ओलंपिक मेडल्स और 23 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक. सो 28 मजमूई तौर पर ये एक मेडल्स जीतना एक रिकॉर्ड है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. रिकॉर्ड तो मैं अगर कहूँगा तो बहुत ही छोटी सी बात होगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है. ओलंपिक गेम्स में 28 मेडल जीतना और 30 गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है. सो ओवरऑल आई फील दैट माइकल फेल्प्स की कहानी दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ, इसलिए कि जिन एथलीट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिन एथलीट्स को प्रेशर यानी दबाव से उनको परेशानी होती है और जिनके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटल वीकनेस है, मेंटल फटीग है, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उन तमाम एथलीट्स के लिए आई वुड रिक्वेस्ट गुजारिश है कि आप माइकल फेल्प्स की कहानी पढ़िएगा. माइकल फेल्प्स की कहानी अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम इनके जो परफॉर्मेंसेस हैं ऑन द टीवी, ऑन द सोशल मीडिया पर वो देखिएगा, रीड करिएगा हाउ ही ओवरकेम ऑल दोज चैलेंजेस एंड ही रिमेन वन ऑफ द टॉप लीडिंग नेम्स इन स्विमिंग. 2016 में वापसी करते हुए उन्होंने देखे क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी एंड उसी के साथ साथ आई फील दैट ऑल स्पोर्ट्स लेजेंड्स गोज थ्रू सम काइंड ऑफ डिफिकल्ट फेजेस और यहाँ पर ही एक चैलेंजेस हैं और इस चैलेंजेस को ओवर करने के लिए जो हिम्मत, जो सलाहियत, जो दिमागी आपकी जो तेज़पन है, दिमाग आपके तेज़ उतने ही होनी चाहिए सो दैट यू नो यू कैन ओवरकम द चैलेंजेस. और यहाँ पे माइकल फेल्प्स इज रियली अ चैम्पियन इन द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ द टर्म. तो दोस्तों कतर की स्पोर्ट्स तारीख में आज एक और आपको एक बात करूँ कि यहाँ पर एक कतर एंगल में अगर बात करूँ, दोहा स्टेडियम. जी हाँ दोस्तों, दोहा स्टेडियम एक ख़ास मकाम है. दोहा स्टेडियम अगर कतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, दोहा स्टेडियम को कतर के सबसे पुराने फुटबॉल स्टेडियम में शुमार किया जाता है और ये मुल्क में फुटबॉल की इब्तदाई दौर की निशानी है. पास में यह तलवार सिग्नल के जस्ट बैक साइड में है ये स्टेडियम. आप लोग जब कभी भी उस तरफ जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं. और स्टेडियम ने कई अहम मुकाबलों और कौमी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी की जिसने कतर में फुटबॉल के फरोख में अहम किरदार अदा किया. दोस्तों दोहा स्टेडियम का रिकॉर्ड ये है कि ये कतर के फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी मराहिल का गवाह रहा और मुल्क के स्पोर्ट्स सफर की इब्तदाई से जुड़ा हुआ एक तारीखी वेन्यू माना जाता है. और इसी के साथ हम क्लोजिंग स्टेजेस पे आ गए हैं इस प्रोग्राम, इस शो में. और दोस्तों आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह फेल्प्स ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए ओलंपिक गेम्स में अपना नाम मजीद रोशन किया. एंड ये हमेशा याद रखिएगा कि ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का नहीं, ये लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और एक्सेलेंस का रिकॉर्ड है. मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन. अगली किश्त में हम किसी और अजीम स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं.
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. Top 10 countdown. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
3: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
0: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के हलके में आप सबका खैर मकदम है। गुफ्तगू जारी है पिछले हलकों से हमारी इंसानी गलतियों के तीन बुनियादी अकसाम पर। पिछले हलके में हमने सूरह बकरा का एक हिस्सा पर गौर किया था, जहां अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। तो ओवरऑल हमने वहां गलतियों की तीन बुनियादी अकसाम बताई थी। एक है गफलत की गलती, फिर कमज़ोरी की गलती इसी तरह, और एक है बगावत या तमर्रुद की गलती। इंसान की लग्जिशें मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकती हैं, मगर उनके पीछे अक्सर यही तीन जहनी या अखलाकी कैफियतें होती हैं, और कुरान सिर्फ गलती की निशानदेही नहीं करता बल्कि हर किस्म के लिए अलग इलाज भी दिखाता है। इस हलके में हम गुफ्तगू को एक नहायत अहम मोड़ पर आगे बढ़ाएंगे, और वो ये कि सबसे ख़तरनाक मरहला ये नहीं समय कराम के इंसान से कोई मामूली लग्जिश हो जाए, बल्कि असल ख़तरा तो उस वक्त शुरू होता है जब वो मासियत ज़ौफ से निकल कर मासियत तमर्रुद में दाखिल हो जाए, यानी जब वो गुनाह करने के बाद नादिम होने के बजाय उस गुनाह को जस्टिफाई करना शुरू कर दे, हुक्म इलाही के सामने अपनी राय खड़ी कर दे और आहिस्ता आहिस्ता इस कैफियत को मामूल बना ले। यही वो मकाम है जहाँ इबलीसी तर्ज फिक्र शुरू होता है। कुरान हमें सिखाता है कि अगर शैतान की कोई जुबन, कोई वसवसा, कोई ख्याल दिल को छू भी जाए तो ये अपने आप में आखिरी शिकस्त नहीं। अल्लाह फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

शैतून यानी अहले तक्वा को भी शैतानी वसवसा छू सकता है, मगर फर्क ये है कि वो फौरन याद करते हैं, मुतनब्बे होते हैं और उनकी बसीरत वापस आ जाती है। गोया तक्वा का ये मतलब नहीं कि इंसान कभी आजमाइश में ना आए, कभी वसवसा ना आए, कभी नफ्स ना खींचे। असल तक्वा ये है कि जब दिल भटके तो वापसी जल्द हो जाए। पिछले हलके में हमने एक मिसाल का जिक्र किया था, यानी हमारी हालत यह है कि हम एक पहाड़ी रास्ते में हैं और इंसान मुसलसल ऊपर जाने की कोशिश में है। कभी कदम फिसलता है, कभी थकन होती है, कभी रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन अगर वो तौबा, जिक्र और शऊर के साथ खुद को संभालता रहे तो वो दोबारा चढ़ सकता है। अलबत्ता जब इंसान फिस्के तमर्रुद में दाखिल हो जाता है या शिर्क की तरफ बढ़ता है तो ये तेजी से नीचे ले जाने वाला रास्ता बन जाता है। और सामने के नाम कुरानी तरबियत का असल हदफ है चोटी तक पहुंचना। यहाँ चोटी से मुराद दुनिया में जन्नत हासिल कर लेना नहीं, बल्कि एक ऐसी नफ्सियाती और ईमानी कैफियत है जिसे कुरान नफ्सुल मुतमइन्ना कहता है, यानी इंसान उस मुकाम पर पहुंचे कि इताअत उस पर बोझ न लगे, नमाज राहत बने, जिक्र दिल का सुकून, हराम से रुकना टॉर्चर महसूस न हो। तो यह हालत तो अचानक नहीं आती, इस सिलसिले में नफ्स को ट्रेन करना पड़ता है, बिल्कुल जैसे जिस्म किसी नए निज़ाम का आदि होता है। इब्तिदा में वर्जिश मुश्किल होती है, इब्तिदा में खाने का नज़म मुश्किल होता है, इब्तिदा में जल्द उठना मुश्किल होता है, लेकिन रिपीटिशन के बाद बॉडी एडजस्ट करती है।

इसी तरह नफ्स भी एडजस्ट करता है। अगर उसे बार बार नमाज की पाबंदी पर रखा जाए, बार बार गुस्से को रोका जाए, बार बार ख्वाहिश के मुकाबले में अल्लाह की रजा को तरजीह दी जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता इताअत फितरी होने लगती है और यही रूहानी ट्रेनिंग है। यहाँ एक और अहम बात है कि इंसान अगर किसी मरहले पर तुमानीनत, इबादत की लज्जत और नफ्स पर कंट्रोल हासिल कर ले, तो ये ना समझे कि अब सफ़र ख़त्म हो गया। नहीं, चोटी पर बाकी रहने के भी उसूल हैं। दिल की हिफाजत चाहिए, जिक्र, तौबा, इल्म, सोहबत, तो नफ्स का मुहासबा, सब कुछ चाहिए। यानी तरबियत जिंदगी भर जारी रहती है, जब तक जिंदगी है मुजाहदा है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक तालिबे इल्म ऐसे स्कूल या तालीमी निज़ाम से गुजरे जहाँ कुरानी तरबियत सिर्फ सब्जेक्ट ना हो बल्कि पूरा एजुकेशनल मॉडल हो। ऐसा तालिबे इल्म सबसे पहले अकल में आज़ाद होगा। क्यों? क्योंकि कुरान शख्सियत परस्ती नहीं सिखाता। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी इंसान को इतना बड़ा बना दो कि उसकी बात दलील से बालातर हो जाए। कुरान कहता है قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। इसी तरह एक दूसरी जगह में है قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे पेश कर सको। तो एक एविडेंस बेस्ड माइंड बनाता है। इंसानी नफ्स उमूमन मेजॉरिटी से मुतासर होता है कि लोग क्या कह रहे हैं, सब तो यही सोचते हैं, सब यही करते हैं, फिर शायद यही सही होगा। लेकिन कुरान इस ज़हनी गुलामी को तोड़ता है। وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, यानी अगर तुम जमीन के अक्सर लोगों की पैरवी करोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को हकीर समझो, नहीं, लोगों का एहतराम करो, उनके जज्बात का लिहाज करो, मुआशरे की राय सुनो, मगर उसे मुकद्दस न बनाओ। एक कुरानी जहन की सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि वो अपनी राय से भी आज़ाद हो सके। कुरान कहता है या अय्युहा लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाहि वलव अला अन्फुसिकुम, यानी अदल पर मजबूती से कायम रहो, अल्लाह के लिए गवाही दो, चाहे वो गवाही खुद तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। तो ये बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। मैं आपसे बहस कर रहा हूँ, मैं पूरे एतमाद के साथ अपनी बात रखता हूँ, फिर दलील सामने आती है और मुझे मालूम होता है कि मैं गलत था। रानी तरबियत कहती है कहो मैं गलत था, ये शिकस्त नहीं, ये अकल की आज़ादी है। कुरान इंसान को ये भी सिखाता है कि हर मौजू पर ओपिनियन देना ज़रूरी नहीं। फरमाया वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, यानी उस चीज़ के पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। ये कहने का हौसला पैदा करें कि मुझे मालूम नहीं, ये जुमला कमज़ोरी नहीं, इल्मी दियानत है। अब नफ्सियाती सतह पर देखिए, कुरान इंसान को ये सिखाता है कि खौफ की असल सिमत अल्लाह हो, उम्मीद की असल सिमत अल्लाह, लोगों के पास वसाइल हैं मगर रिज़्क़ का मालिक कौन, अल्लाह, लोगों के पास ताकत है मगर फैसला कुन कुदरत अल्लाह की है, लोग तारीफ कर सकते हैं मगर असल कदर अल्लाह के हाँ है, लोग मजम्मत कर सकते हैं मगर आखिरी फैसला उनके हाथ में नहीं। तो ये तसव्वुर इंसान के दिल में सुकून पैदा करता है। वो हर मुसीबत पर टूट नहीं जाता, हर तारीफ पर बहक नहीं जाता, हर तंकीद पर बिखर नहीं जाता। अब यहाँ गुफ्तगू समीने कराम एक बहुत खूबसूरत नुक्ते तक पहुँचती है कि तौहीद शजाअत पैदा करती है और शिर्क ज़िल्लत व खौफ पैदा करता है। कुरान फरमाता है सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीन कफरु रुअब बिमा अशरकु बिल्लाह, हम कुफर करने वालों के दिलों में रौब डाल देंगे इस सबब से कि उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया है। तो यहाँ बिमा अशरकु में एक सबबियत का माना समझ में आता है, यानी जब दिल बहुत सी ताकतों, बहुत से सहारों, बहुत से खौफ और बहुत से माबूदाने बातिल के दरमियान तकसीम हो जाए तो अंदरूनी स्टेबिलिटी ख़त्म होती है। कभी माल का खौफ, कभी मनसब का खौफ, कभी लोगों की नाराज़ी का खौफ, कभी मुस्तकबिल का खौफ, इंसान हज़ार सहारों पर खड़ा होता है इसलिए हज़ार जगह से डरता है। लेकिन तौहीद दिल को एक मरकज़ देती है।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: अलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। बात करेंगे कतर के एक उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ी के बारे में जिनका नाम है अयूब अलवी। या दोस्तों, अयूब अलवी कतर के एक यंग फुटबॉलर हैं और इन्हें अभी रिसेंटली 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था। उन्होंने छोटे से उम्र से ही फुटबॉल के साथ लगाव रखा और लोकल एकेडमीज में ट्रेनिंग हासिल करके अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया। उनका खेलने का स्टाइल एनर्जेटिक और मॉडर्न फुटबॉल के मुताबिक माना जाता है, जहां वो मिडफील्ड या अटैकिंग एरियाज में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अयूब की सबसे बड़ी खासियत उनकी फिटनेस, स्पीड और बॉल कंट्रोल है। वो प्रेशर सिचुएशंस में भी काम रहते हैं और टीम के लिए बेहतर डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं और उनकी पासिंग एबिलिटी और ऑफ द बॉल मूवमेंट उन्हें एक वर्सेटाइल प्लेयर बनाती है जो मुख्तलिफ पोजीशंस में अडाप्ट कर सकते हैं। कतर के डोमेस्टिक फुटबॉल स्ट्रक्चर में ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को डेवलप करने पर बहुत तवज्जो दी जा रही है और अयूब अलवी उन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कोचेज का भरोसा जीता है। उनका फोकस ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट पर रहता है जो उनकी ग्रोथ को मुस्तकबिल में और बेहतर बना सकता है। दोस्तों, अगर वो इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन को मेंटेन रखें तो आने वाले सालों में अयूब अलवी कतर की नेशनल टीम का मुस्तकबिल हिस्सा बन सकते हैं। उनका सफ़र अभी इब्तदाई मरहले में है लेकिन उनमें पोटेंशियल वाजे नज़र आता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगली बार एक और कतरी स्टार्स और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
2: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले, चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
4: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
5: द रिक्वेस्ट शो
4: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि सेहतमंद खाना पकाने के मुख्तलिफ तरीकों की और जानेंगे कि एक ही गिज़ा, एक ही खुराक मुख्तलिफ अंदाज से पकाने पर हमारी सेहत पर मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। हम में से अक्सर अफराद सिर्फ इस बात पर तवज्जो देते हैं कि क्या खाना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि खाना किस तरीके से पकाया जाए या ये देखना है कि किस तरीके से खाना पकाया गया है। यही तरीका उसकी गजाइत, कैलोरीज, फैट्स और सेहत पर असरात को बदल देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम आलू को उबालकर खाते हैं तो वो निस्बतन कम फैट्स वाला होता है, लेकिन अगर उसी पोटैटो, उसी आलू को गहरे कढ़ाई में तल लिया जाए तो इसमें कैलोरीज और जो फैट्स हैं कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह चिकन है, फिश है या सब्जियां हैं, अगर उसे स्टीम में पकाया जाए या बेक की जाए तो उसमें मौजूद विटामिंस और मादनियात ज़्यादा देर तक महफूज रहते हैं, जबकि ज़्यादातर जो है जब हम ज़्यादा देर तक पकाते हैं या जो टेम्परेचर पर उसे फ्राई किया जाता है तो उसके कई गज़ाई अज्जा जो हैं ज़ाया हो जाते हैं। अब सेहतमंद खाना पकाने के लिए जो फ़वाद हैं वो ये हैं कि जिस्म को बेहतर न्यूट्रिशन मिलती है, वज़न को काबू में रखने में मदद मिलती है, यानी अपना वज़न आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह दिल के जो बेशुमार मसाइल हैं, ये बीमारियां हैं, उनका रिस्क या खतरा

0: का कम से कम होता चला जाता है। डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बेहतर इंतखाब साबित होता है और इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर रहता है। जब हम खाना पकाते हैं तो कुछ जो बिल्कुल आसान सी एहतियातें हैं वो भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जैसे कि हम खाना कम से कम तेल में पकाएं। बार बार एक ही तेल को, एक ही ऑयल को गर्म ना कीजिए। ज़्यादा नमक और मसाले से परहेज़ कीजिए। ताज़ा सब्जियों और जड़ी बूटियां हैं वो हमारा जो जायका है वो ज़्यादा कर देती हैं और आप इसी तरह से अपने खाने का जायका बढ़ाते चले जाएं। याद रखिए कि सेहतमंद खाना बेजायका नहीं होता, बल्कि सही तरीके से पकाया गया खाना ज़्यादा मज़ेदार भी होता है और फ़ायदेमंद भी। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि ग्रिलिंग और जो स्टीम हम देते हैं और उससे खाना बनाते हैं तो वो किस तरह से फ़ायदेमंद होता है। आप सेहतमंद रहिए और खुश रहिए।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: 107 Qatar, दिल से देसी।
1: Assalamualaikum साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं Eco Switch on FM 107। साथियों, स्टूडेंट्स की लाइफ में बुक्स, नोटबुक्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और स्टडी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑनलाइन लर्निंग। पढ़ाई हमारी डेली रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, मैं ये बात मानती हूँ। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी स्टडी हैबिट्स का एनवायरनमेंट पे क्या असर आता है? कितनी नोटबुक्स यूज होती हैं, कितना पेपर वेस्ट होता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर्स और लाइट्स के लिए यूज होती है, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो क्यों ना भाई, हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी आदतें अपनाएं जो नेचर के लिए भी बेहतर हों। तो भाई, आज हम इको स्विच में बात करते हैं इको फ्रेंडली स्टडी हैबिट्स के बारे में, यानी ऐसी पढ़ाई की आदतें जो लर्निंग को भी बेहतर बनाएं और एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखें। तो भाई, प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। साथियों, एजुकेशन जरूरी है, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन स्टडी के दौरान भी हम बहुत से रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, हर असाइनमेंट के लिए ज्यादा पेपर प्रिंट आउट करना, अधूरी नोटबुक्स या अनयूज्ड पेपर्स को फेंक देना, जरूरत से ज्यादा स्टेशनरी खरीदना, स्टडी रूम में लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को बेवजह ऑन रखना। कभी कभी स्टूडेंट्स नए सेमेस्टर के शुरू में ही बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, जबकि घर में पहले ही आइटम्स अवेलेबल होते हैं या रीयूज किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम पढ़ाई करना नहीं है, प्रॉब्लम है रिसोर्सेज को अननेसेसरी वेस्ट करना। अब यहाँ पर सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन ढूंढते हैं भाई, स्टूडेंट्स के लिए कुछ सिंपल इको फ्रेंडली स्टडी हैबिट्स। पहली चीज ये कि पेपर स्मार्टली यूज करें, जहाँ जरूरत हो वहाँ पेपर यूज करें, लेकिन अननेसेसरी प्रिंटिंग से बचने की कोशिश करें। नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिजिटल ऑप्शंस भी अपनाए जा सकते हैं भाई। दूसरी चीज ये कि नोटबुक्स को पूरा पूरा यूज करें ना। लेकिन नोटबुक्स में कुछ पेजेस बच जाएं तो उसे फेंकने के बजाय उन्हें कंटिन्यू करें। पुरानी नोटबुक्स के ब्लैंक पेजेस को रफ वर्क के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरी चीज ये कि स्टेशनरी रीयूज करें। नए पेन्स, पेंसिल्स और नोटबुक्स लेने से पहले चेक करें कि घर में पहले से क्या अवेलेबल है। अच्छी क्वालिटी की स्टेशनरी ज्यादा अरसे तक चलती है और आपका खर्चा भी बच जाता है भाई। चौथी चीज है डिजिटल लर्निंग का स्मार्ट यूज। ऑनलाइन नोट्स, ई बुक्स और डिजिटल असाइनमेंट्स पेपर यूज को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन डिवाइसेस का इस्तेमाल भी स्मार्ट तरीके से करें भाई, और जरूरत ना हो तो उन्हें बंद कर दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी सेविंग स्टडी रूटीन। स्टडी करते वक्त सिर्फ जरूरत की वजह से ही लाइट्स वगैरह ऑन करें। दिन के वक्त नेचुरल लाइट का फायदा उठाएं और एनर्जी बचाएं और उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। तो साथियों, रियल लाइफ अगर एग्जांपल दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब अपनी स्टडी रूटीन में इको फ्रेंडली चेंजेस ला रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने नोट्स को डिजिटल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ अपनी पुरानी बुक्स डोनेट कर देते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के भी वो काम आ सके, फायदे में आए। कुछ स्कूल्स रिसाइकलिंग ड्राइव्स और पेपर सेविंग कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एक स्टूडेंट अगर अपनी बुक्स का ख्याल रखे तो पेजेस वेस्ट नहीं करता और स्टेशनरी रिस्पॉन्सिबली यूज करें तो वो एनवायरमेंट के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बन जाता है। और भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैबिट्स स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज और रिस्पॉन्सिबल भी बनाती हैं। तो साथियों, आज का हमारा इको स्विच चैलेंज ये है स्टूडेंट्स के लिए कि अगले 7 दिन के लिए एक इको फ्रेंडली स्टडी हैबिट चूज करें ना। क्या आप पेपर वेस्ट कम करेंगे, क्या आप पुरानी स्टेशनरी रीयूज करेंगे, या क्या आप अपना स्टडी एरिया एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे? तो भाई, इनमें से कोई भी चूज करें और हमें जरूर बताएं कि आप पढ़ाई के लिए ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं, हैंड रिटन नोट्स या डिजिटल नोट्स। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, अच्छी पढ़ाई सिर्फ मार्क्स नहीं देती, अच्छी आदतें भी सिखाती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है हलाल रिस्क की अहमियत के बारे में। हलाल रिस्क कमाना और उस पे कनात करना इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। जो रिस्क हलाल तरीके से कमाया जाता है उसमें बरकत होती है और सुकून भी मिलता है। अक्सर लोग जल्दी या ज्यादा पाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होता है और अंदर से बेचैनी पैदा करता है। हलाल रिस्क चाहे कम हो लेकिन उसमें बरकत होती है और वो जिंदगी को सुकून देता है। ये सिर्फ एक अर्निंग तक महदूद नहीं बल्कि हर चीज में हलाल और हराम का फर्क समझना भी जरूरी है। आज का अमल ये है कि अपनी कमाई और खर्चों का जायजा लें और कोशिश करें कि सब कुछ हलाल और पाक तरीके से हो। ये था हमारा आज का पैगाम। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बरा का FM 107 पे RJ माविश के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: दोस्तों, आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और ये है फ्यूचर ऑफ रिटेल टेक्नोलॉजी। देखिए, रिटेल टेक्नोलॉजी का फ्यूचर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे शॉपिंग एक्सपीरियंस को चेंज कर दिया जाएगा। आने वाले सालों में स्टोर्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, इंटरैक्टिव होंगे और कस्टमर सेंट्रिक होंगे। ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टोर आपसे बात कर रहा है। जी हाँ, आज का कस्टमर सिर्फ शॉपिंग नहीं चाहता, वो कन्वीनियंस चाहता है, एक्सपीरियंस चाहता है और शायद पर्सनलाइज्ड अप्रोच चाहता है। और इसी वजह से ब्रांड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और AR जैसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। फ्यूचर में स्टोर्स कस्टमर के प्रेफरेंसेस को पहले से समझकर पर्सनलाइज्ड रेकमेंडेशंस देंगे। मिसाल के तौर पे

अगर कोई कस्टमर फर्नीचर स्टोर विजिट करता है तो एआई उसकी प्रीवियस शॉपिंग हिस्ट्री और लाइफस्टाइल को देखकर सजेस्ट करेंगे कि उनके घर के लिए कौन सा सोफा ठीक है, किस कलर का सोफा होना चाहिए, डाइनिंग टेबल कैसी होनी चाहिए, बेडरूम सेट ज्यादा कौन सा उन्हें सूट करेगा। इससे कस्टमर का डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। ओमनी चैनल्स रिटेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट करेंगे और इन स्टोर परचेज कंप्लीट कर सकेंगे या स्टोर में प्रोडक्ट देखकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। ओमनी चैनल्स जो हैं वो रिटेल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनेंगे। दोनों एक्सपीरियंसेस सीमलेसली कनेक्टेड रहेंगे। वहीं वीआर एआर शॉपिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा, पर हम बनेंगे बेकार, मतलब इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद। अच्छा, फर्नीचर्स और होम डेकोर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मोबाइल ऐप के जरिए ऑटोमेटिकली आपको एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स दिखाते रहेंगे। अब इससे रिटर्न्स कम होंगे और कस्टमर का एक काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वहीं डेटा एनालिटिक्स रिटेलर्स को कस्टमर बिहेवियर समझने में मदद करेंगे। कंपनीज ये जान सकेंगी कि कस्टमर्स किस वक्त शॉपिंग करते हैं, किस तरह की शॉपिंग ये बंदा करना पसंद करता है, क्या प्रोडक्ट इसे पसंद आते हैं और किन प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। अगर फ्यूचर की रिटेल बिजनेस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। जो ब्रांड इनोवेशन को अपनाएगा और कस्टमर कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देगा वो मार्केट में टिक पाएगा, वही ज्यादा कामयाब हो पाएगा। जी हाँ, शॉपिंग फास्टर, स्मार्टर और पहले से ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएगी, जिससे कस्टमर्स और बिजनेसेस दोनों को भरपूर फायदा होगा। तो बस हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में रिटेल टेक्नोलॉजी में एआई और एआर दोनों ही डोमिनेट करेंगे, और ऐसे वैसे नहीं, भरपूर तरीके से डोमिनेट करेंगे। और अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं कि एआई और एआर किस तरह से डोमिनेट करेंगे, तो कुछ कंपनीज हैं जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एआई आपकी प्रीवियस परचेज को सर्च में डाल देता है और ये सर्च आपकी थिंकिंग पैटर्न्स को एनालाइज करके कुछ प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करते हैं। इस तरह से एक स्मार्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आपके सामने आती है। वहीं एआई प्रिडिक्ट करता है कि किस सीजन में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड होगी। जैसे कतर में रमदान या फिर ईद से पहले लोग जो है वो कपड़े खरीदना पसंद करते हैं, या फिर फर्नीचर्स की शॉपिंग की जाती है, या फिर कुछ और होम डेकोर्स हैं, तो एआई सेल्स डेटा एनालाइज करके पहले से स्टॉक को प्रिपेयर करने में भी मदद करता है। एक जिक्र मैंने एआई चैटबॉट का भी किया। कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए एआई चैटबॉट 24/7 कस्टमर क्वेरीज हैंडल करते रहते हैं। कस्टमर पूछता है मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, एआई चैटबॉट फॉरन ट्रैकिंग डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है। वहीं पर एआई मार्केट कंडीशंस और डिमांड के मुताबिक भी प्राइसेस एडजस्ट करता है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी एक सिलसिला बरकरार रहता है। वहीं अगर एआर की मैं बात करूं, तो वर्चुअल फ्यूचर प्लेसमेंट्स भी, ये फर्नीचर इंडस्ट्री की सबसे वर्चुअल फर्नीचर प्लेसमेंट्स अगर देखा जाए, जैसे कस्टमर मोबाइल फ़ोन के कैमरा स्क्रीन पर देख सकता है कि सोफ़ा उसके लिविंग रूम में कैसा लगेगा, ये भी खरीदने से पहले। इससे होगा ये कि कस्टमर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और रिटर्न्स कम हो जाएंगे। वहीं पर वर्चुअल होम मेकर्स, एआर पूरे रूम का वर्चुअल होम मेकर है, पूरा वर्चुअल मेकओवर कर सकता है। कस्टमर देख सकते हैं कि नए पर्दे, नया कारपेट, नए डेकोर हमारे घर में कैसे लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी शॉपिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाते हैं। स्टोर में कस्टमर अपना मोबाइल किसी प्रोडक्ट पर पॉइंट करे और एआर उसकी डिटेल स्क्रीन पर दिखा दे। वहीं पर लार्ज रिटेल स्टोर्स में एआर कस्टमर्स को प्रोडक्ट तक गाइड करते हैं। कस्टमर ऐप में सोफा सेक्शन डालें और एआर रोज एरो सब यूज करके उसे वहां तक पहुंचा दें। तो आने वाले 5 से 10 सालों में मुमकिन है कि कस्टमर घर बैठकर ही वर्चुअल रियलिटी शोरूम विजिट करें, अपने पूरे घर का डिजिटल मॉडल बनाएं और एआई उसके बजट और स्टाइल के मुताबिक कंप्लीट फर्नीचर

0: डेकोर और जो भी चीजें वो खरीदना चाहते हैं उन सबको सजेस्ट करें. मैं कह सकती हूँ कि फ्यूचर रिटेल सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं होगा. AI कस्टमर्स को समझेगी, उसकी नीड्स प्रेडिक्शन करेगी और AR उन्हें परचेज से पहले प्रोडक्ट का एक रियल एक्सपीरियंस देगी. इस कॉम्बिनेशन से शॉपिंग ज्यादा स्मार्ट, पर्सनलाइज्ड और इंजॉयबल बनेगी. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. कल एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 DC. One step to 2030.
1: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम करते हैं बात। वेल, ये एक नया फ्रॉड आया है, ऑल्दो हो सकता है कि यहां पर आपके साथ इतना ना हो, लेकिन जहां QR कोड चलते हैं वहां पर ये फ्रॉड आपके साथ सामने खड़ा हुआ शख्स करता है। ये फ्रॉड होता कैसे है? एक बंदा आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि फला QR कोड पे आप उसे 500 रुपए या 500 रियाल ट्रांसफर कर दीजिए और वो आपको कैश देगा, क्योंकि जो वेंडर है या फिर वो जो कहीं और खरीदारी कर रहा है, स्कैमर कहीं और खरीदारी कर रहा है, उसको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही चाहिए, तो प्लीज आप मुझे ऑनलाइन पे कर दें, मेरे पास ऑनलाइन कैश नहीं है, आप मुझसे कैश ले लीजिएगा। आपको ये सीधी सीधी डील लगेगी, लेकिन ये एक तरह का फ्रॉड हो सकता है। देखिए, दो तीन तरीके हैं। हो सकता है कि आप उसे 500 ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन लास्ट मोमेंट पे 30 आ जाए उस QR कोड के जरिए। हो सकता है उस QR कोड में एक लिंक छुपा हो, हो सकता है उस QR कोड में कोई ऐसा एप्लीकेशन हो या फिर कोई ऐसी डिटेल हो जो कि आपके मोबाइल में नहीं जानी चाहिए, जिसकी वजह से आपका मोबाइल हैक हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आजकल स्कैमर्स यूज कर रहे हैं आपको स्कैम करने के लिए। वो आपको 500 रुपए दे भी देंगे, हो सकता है जब आप उस QR कोड को स्कैन करें, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में या एक दो दिन में या 3 दिन में स्कैम होना शुरू हो जाए आपके मोबाइल से।

0: जो डिटेल्स जो ओटीपी आती हैं वो उनके मोबाइल में भी जाना शुरू हो जाए, तो ये छोटी छोटी डिटेल का ख्याल आपको बहुत ज्यादा रखना है। तो दोस्तों इस तरह का मिलता जुलता स्कैम मेरे साथ होने वाला था लेकिन मैं बच गया था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जेन्युइन लड़का है। हुआ ये कि वो शख्स मेरे पास आता है, कहता है कि प्लीज आप एक काम करें, मुझे कुछ ना कैश दे दीजिए और जो कैश है वो आप मुझे देंगे तो ऑनलाइन मेरे पास पड़ा है, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। और उस लड़के को घर जाना था तो उसको कैश की जरूरत थी, ऐसे में वो मुझसे कहता है कि आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो बंदा कहता है कि आपको ऑनलाइन जो ट्रांसफर करेगा ना वो मेरा दोस्त होगा जो कि यहीं पास में खड़ा हुआ है, मैं उसको कॉल करके कह दूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं कोशिश करने लगा कि अगर कहीं से मुझे मिल जाए, क्योंकि उस दिन मैं पर्स नहीं रखा हुआ था, तो मेरे आसपास दोस्त लोग थे, मैंने उनसे इकट्ठा करके सॉरी यार जैसे ही इकट्ठा करे मैंने कहा ये लो पैसे लो, तो वो कहता नहीं नहीं रहने दीजिए, जिससे बात हुई थी वो अब चला गया है। और फिर वो बड़ा ही मतलब यू नो सुस्त और बड़ा ही इमोशनल हो गया। तो अब देखिए ये सच भी हो सकता है लेकिन ये एक फ्रॉड भी हो सकता है। हो सकता है वो ये डिमांड कर रहा हो कि उसको किसी तरह से पैसे मिल जाएं और उसे पैसा ना देना पड़े, इसी वजह से वो इमोशनल एकदम मुंह उतरा हुआ बना लिया, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर और कैश में फंसाते हुए वो आपको हो सकता है 100-200 रियाल का या 100-200 रुपए का स्कैम कर दे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा आपको होशियार रहना है। किस तरीके से बच सकते हैं जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों बचने के तरीके तो बहुत हैं लेकिन बड़ा ही मुमकिन है कि आपके साथ फिर भी फ्रॉड हो जाए। देखिए क्या है कि जमानों को पता है कि आजकल इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, लेकिन बावजूद ये जो स्कैमर्स की इंडस्ट्री है ना ये अलग तरीके से बूम कर रही है। हर साल स्कैम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बजाय इतने अवेयरनेस के कि कम हो ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा होशियार रहना है। सबसे पहला काम, कोई भी डिटेल किसी को नहीं देनी है। अगर आपके पास कोई शख्स आए, कोई आपको लगे कि वो आपको पैसा दे रहा है या फिर वो आपको QR कोड दिखा रहा है, ऐसे में उससे आप ये कहें कि QR कोड मत दिखाओ, आप मुझे पैसे दे दो 500 रुपए और आप अपना फोन नंबर बताओ जिसमें मुझे ट्रांसफर करना हो। तो QR कोड कभी भी स्कैन मत कीजिए, रैंडम किसी जगह पे भी QR कोड को स्कैन करने से बचिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि दूसरा बंदा बहुत ज्यादा जेन्युइन है तो उस बंदे से कहिए कि जहां पर पेमेंट हो रही है, जिस जगह ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहा है तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा वो वेंडर या जहां पर तुम खा के पी कर बैठे हुए हो, तो वहां जाकर खुद आप पेमेंट करिए 500 रुपए का, जो भी पेमेंट है 500 हजार जो भी है, और उससे फिर कैश लीजिए। QR कोड स्कैन करने से अगेन बचिए। तो उसके अलावा तरीका यह है कि किसी से भी OTP शेयर ना करें, बैंक डिटेल शेयर ना करें। अगर आप एक कॉल पर रहें तो दूसरे किसी अनजान शख्स के कॉल को मर्ज ना करें। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। स्कैम से बचने और बचाने के लिए लगातार मैं आपको यहाँ पर हर हफ्ते एक नए फ्रॉड के बारे में बताता रहूंगा। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: यकीनन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब नबियों में से एक हैं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद पे उनका तस्करा मुख्तलिफ सूरतों में फरमाया है, जिनमें सूरह यूनुस, सूरह अलसफात, सूरह अलअंबिया और सूरह कलम शामिल हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या कोई शहर ऐसा था जो ईमान लाया और उसके ईमान ने उसे अजाब से बचा लिया सिवाय यूनुस के लोगों के। जब वो ईमान लाए हमने उन पर दुनिया की रसवाई के अजाब को हटा दिया और उन्हें कुछ अरसा जिंदगी की खुशियों से नवाजा। ये आयत इस बात की दलील है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लोगों के सिवा दुनिया की तारीख में किसी शहर के तमाम लोग एक साथ अपने नबी की बात मानकर ईमान नहीं लाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में जाने का वाकया कुछ इस तरह से भी तहरीर हुआ है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने लोगों को छोड़ के निकले तो वे कश्ती में सवार हो गए। ताहम जैसे ही कश्ती रवाना हुई समंदर में बहुत शदीद तूफान आया और कश्ती डूबने के करीब पहुंच गई। इस मौके पर कश्ती में मौजूद लोगों ने मशवरा किया कि किसी का नाम निकाल के समंदर में फेंका जाए ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो और बाकी लोग महफूज रहें। कुछ मशहूर मुफस्सिरीन के मुताबिक उन्होंने 3 मर्तबा कुरा डाला और हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को फेंकने की पेशकश की लेकिन लोग राजी ना हुए। आखिरकार अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ कि वो समंदर में फेंके जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यूनुस भी पैगंबरों में से था। जब वो भारी कश्ती की तरफ भागा तो उसने कुरा निकाला और वो खो देने वालों में शामिल हुआ। फिर एक मछली ने उसे निकल लिया जिसमें वो अमल अंजाम दे चुका था जो काबिले मुज़म्मत था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली के पेट में महफूज रखा। मुफस्सिरीन के मुताबिक अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म को ना खाए। वो मछली के पेट में कई दिन तक जिंदा रहे। जहां अंधेरा था अंधेरा, मछली के अंदर अंधेरा, समंदरों की गहराई में अंधेरा।

निकाला और एक वीरान साहिल पे छोड़ दिया। जिस्मानी तौर पे कमजोर थे लेकिन रूहानी तौर पे मजबूत थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की तस्बीह और दुआ की। फिर अल्लाह ताला ने, कहा जाता है कि गाजर के पौधे का इंतजाम फरमाया, जिसकी छांव नरम और वसी थी और जिसके फल खाए जा सकते थे। इससे हजरत यूनुस अलैहि सलाम को जिस्मानी ताकत और राहत नसीब हुई। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला हर मोमिन के लिए वसाइल पैदा फरमाता है ताकि वो मुश्किलात में इस्तकामत इख्तियार कर सके। हजरत यूनुस अलैहि सलाम की दुआ ना सिर्फ उनकी निजात का सबब बनी बल्कि हर मुसलमान के लिए बाइज हिदायत और निजात है। ये दुआ हर मुश्किल वक्त में अल्लाह से मदद तलब करने का सबसे मौसर जरिया है। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहि सलाम के जरिए अपनी कौम को ईमान की तरफ रागब किया। उनकी कौम में 1000 से ज़ायद अफराद ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया की खुशियों से नवाजा और उन्हें यह सबक दिया कि तौबा और ईमान के जरिए हर बुराई का खात्मा मुमकिन है। ये वाकया कुरान की सादत की तस्दीक करता है और हमने यूनुस के लोगों को दुनिया की रसवाई के अजाब से बचा दिया और उन्हें कुछ अरसा जिंदगी की खुशियों से नवाजा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कुरान में मुतादिद जगहों पर दीगर नबियों के साथ जिक्र किया गया है ताकि उनकी अजमत और अल्लाह के बंदों की मोहब्बत को याद दिलाया जा सके। लिसनर्स, यहां हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत यूनुस अलैहि सलाम की जिंदगी से हमें मुख्तलिफ तालीमात मिलती हैं। हजरत यूनुस अलैहि सलाम ने अपनी कौम की जिद और नाफरमानी के बावजूद सब्र किया। मछली की पेट में दुआ और अल्लाह की इबादत ने उन्हें निजात दिलाई। अल्लाह की रहमत हर सूरत में वसी है और तौबा करने वालों को कभी मुस्तरद नहीं किया जाता।

0: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें। ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: music station. Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है। कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।